क्या तुम देखते नहीं हो कि अल्लाह आसमान से पानी बरसाता है और फिर उसके जरिए से हम तरह तरह के फल निकाल लाते हैं जिनके रंग मुख्तलिफ होते हैं। पहाड़ों में भी सफेद, सुर्ख और गहरी स्याह धारियां पाई जाती हैं जिनके रंग मुख्तलिफ होते हैं, और इसी तरह इंसानों और जानवरों और मवेशियों के रंग भी मुख्तलिफ हैं। हकीकत यह है कि अल्लाह के बंदों में से सिर्फ इल्म रखने वाले लोग ही उससे डरते हैं। बेशक अल्लाह जबरदस्त और दरगुजर फरमाने वाला है। जो लोग किताबुल्लाह की तिलावत करते हैं और नमाज कायम करते हैं और जो कुछ हमने उन्हें रिज्क दिया है उसमें से खुले और छुपे खर्च करते हैं, यकीनन वो एक ऐसी तिजारत के मुतवक्के हैं जिसमें हरगिज खसारा ना होगा। इस तिजारत में उन्होंने अपना सब कुछ इसलिए खपाया है ताकि अल्लाह उनके अजर पूरे के पूरे उनको दे और मजीद अपने फजल से उनको अता फरमाए। बेशक अल्लाह बख्शने वाला और कदरदान है। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो किताब हमने तुम्हारे तरफ वही के जरिए से भेजी है वही हक है, तस्दीक करती हुई आई है उन किताबों की जो इससे पहले आई थीं। बेशक अल्लाह अपने बंदों के हाल से बाखबर है और हर चीज पर निगाह रखने वाला है। फिर हमने इस किताब का वारिस बना दिया उन लोगों को जिन्हें हमने इस विरासत के लिए अपने बंदों में से चुन लिया। अब कोई तो उनमें से अपने नफ्स पर जुल्म करने वाला है

अल्लाह के नाम से जो बे इंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। यासीन, कसम है कुरान हकीम की कि तुम यकीनन रसूलों में से हो, सीधे रास्ते पर हो, और ये कुरान गालिब और रहीम हस्ती का नाजिल करता है ताकि तुम खबरदार करो एक ऐसी कौम को जिसके बाप दादा खबरदार न किए गए थे और इस वजह से वो गफलत में पड़े हुए हैं। इनमें से अक्सर लोग फैसलाए आजाब के मुस्तहक हो चुके हैं, इसीलिए वो ईमान नहीं लाते। हमने उनकी गर्दनों में तौक डाल दिए हैं जिनसे वो ठोड़ियों तक जकड़े गए हैं, इसलिए वो सर उठाए खड़े हैं। हमने एक दीवार उनके आगे खड़ी कर दी है और एक दीवार उनके पीछे। हमने उन्हें ढांक दिया है, उन्हें अब कुछ नहीं सूझता। इनके लिए यकसां है तुम इन्हें खबरदार करो या न करो, ये न मानेंगे। तुम तो उसी शख्स को खबरदार कर सकते हो जो नसीहत की पैरवी करे और बे देखे खुदाए रहमान से डरे, उसे मगफिरत और अजरे करीम की बशारत दे दो। हम यकीनन एक रोज मुर्दों को जिंदा करने वाले हैं, जो कुछ अफाल उन्होंने किए हैं वो सब हम लिखते जा रहे हैं और जो कुछ आसार उन्होंने पीछे छोड़े हैं वो भी हम सब्त कर रहे हैं। हर चीज को हमने एक खुली किताब में दर्ज कर रखा है। इन्हें मिसाल के तौर पर उस बस्ती वालों का किस्सा सुनाओ जबकि उसमें रसूल आए थे। हमने उनके तरफ दो रसूल भेजे और उन्होंने दोनों को झुठला दिया। फिर हमने तीसरा मदद के लिए भेजा और उन सब ने कहा हम तुम्हारी तरफ रसूल की हैसियत से भेजे गए हैं। बस्ती वालों ने कहा तुम कुछ नहीं हो मगर हम जैसे चंद इंसान, और खुदाए रहमान ने हरगिज कोई चीज नाजिल नहीं की है, तुम महज झूठ बोलते हो। रसूलों ने कहा हमारा रब जानता है कि हम जरूर तुम्हारी तरफ रसूल बनाकर भेजे गए हैं और हम पर साफ साफ पैगाम पहुंचा देने के सिवा कोई जिम्मेदारी नहीं है। बस्ती वाले कहने लगे हम तो तुम्हें अपने लिए फाले बद समझते हैं, अगर तुम बाज ना आए तो हम तुमको संगसार कर देंगे और हमसे तुम बड़ी दर्दनाक सजा पाओगे। रसूलों ने जवाब दिया तुम्हारी फाले बद तो तुम्हारे अपने साथ लगी हुई है, क्या ये बातें तुम इसलिए करते हो कि तुम्हें नसीहत की गई? असल बात यह है कि तुम हद से गुजरे हुए लोग हो।

चांद जमीन एक निशानी है, हमने उसको जिंदगी बख्शी और उससे गल्ला निकाला जिसे ये खाते हैं। हमने उसमें खजूरों और अंगूरों के बाग पैदा किए और उसके अंदर से चश्मे फोड़ निकाले ताकि ये उससे फल खाएं। ये सब कुछ उनके अपने हाथों का पैदा किया हुआ नहीं है, फिर क्या ये शुक्र अदा नहीं करते? पाक है वो जात जिसने जुमला अकसाम के जोड़े पैदा किए, खा वो जमीन की नबातात में से हों या खुद उनकी अपनी जिन्स यानी नौए इंसानी में से या उन अशिया में से जिनको ये जानते तक नहीं हैं। इनके लिए एक और निशानी रात है, हम उसके ऊपर से दिन हटा देते हैं तो उन पर अंधेरा छा जाता है और सूरज वो अपने ठिकाने की तरफ चला जा रहा है। ये जबरदस्त

अलीम हस्ती का बांधा हुआ हिसाब है, और चांद उसके लिए हमने मंजिलें मुकर्रर कर दी हैं, यहां तक कि उनसे गुजरता हुआ वो फिर खजूर की सूखी शाख की मानिंद रह जाता है। न सूरज के बस में यह है कि वो चांद को जा पकड़े, और न रात दिन पर सबकत ले जा सकती है। सब एक एक फलक में तैर रहे हैं। इनके लिए यह भी एक निशानी है कि हमने इनकी नस्ल को भरी हुई कश्ती में सवार कर दिया, और फिर उनके लिए वैसी ही कश्तियां और पैदा की जिन पर ये सवार होते हैं। हम चाहें तो इनको गर्क कर दें, कोई इनकी फरियाद सुनने वाला ना हो और किसी तरह ये न बचाए जा सके। बस हमारी रहमत ही है जो इन्हें पार लगाती और एक वक्त खास तक जिंदगी से मुतमत्ते होने का मौका देती है। जब कहा जाता है कि बचो उस अंजाम से जो तुम्हारे आगे आ रहा है और तुम्हारे पीछे गुजर चुका है, आयत के तुम पर रहम किया जाए तो ये सुनी अनसुनी कर जाते हैं। इनके सामने इनके रब की आयत में से जो आयत भी आती है ये उसकी तरफ इल्तिफात नहीं करते। और जब इनसे कहा जाता है कि अल्लाह ने जो रिज्क तुम्हें अता किया है उसमें से कुछ अल्लाह की राह में भी खर्च करो, तो ये लोग जिन्होंने कुफर किया है ईमान लाने वालों को जवाब देते हैं, क्या हम उनको खिलाएं जिन्हें अगर अल्लाह चाहता तो खुद खिला देता, तुम तो बिल्कुल ही बहक गए हो।

काम कहा गया है। और ऐ मुजरिमों, आज तुम छट कर अलग हो जाओ। आदम के बच्चों, क्या मैंने तुमको हिदायत न की थी कि शैतान की बंदगी न करो, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है, और मेरी ही बंदगी करो, ये सीधा रास्ता है। मगर इसके बावजूद उसने तुम में से एक ग्रोहे कसीर को गुमराह कर दिया। क्या तुम अकल नहीं रखते थे? ये वही जहन्नुम है जिससे तुमको डराया जाता रहा था। जो कुफर तुम दुनिया में करते रहे हो, उसकी पादाश में अब इसका ईंधन बनो। आज हम इनके मुंह बंद किए देते हैं, इनके हाथ हमसे बोलेंगे और इनके पांव गवाही देंगे कि ये दुनिया में क्या कमाई करते रहे हैं। हम चाहें तो इनकी आंखें मूंद दें, फिर ये रास्ते की तरफ लपक कर देखें, कहां से इन्हें रास्ता सुझाई देगा। हम चाहें तो इन्हें इनकी जगह ही पर इस तरह मस्क करके रख दें कि ये न आगे चल सके न पीछे पलट सके।

का एक बेसिक और एक्सेसिबल हिस्सा है जो हॉस्पिटल्स और पेशेंट्स के दरमियान का काम करता है। और हमने और भी आगे जाने की कोशिश की कि फार्मेसीज जो है वो सिर्फ मेडिसिन तक महदूद नहीं है, और हमारे गेस्ट का भी कहना था कि इनका रोल काफी बढ़ चुका है। इस पर उन्होंने जवाब ये दिया कि आजकल जो फार्मेसीज है ना वो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पर भी फोकस कर रही है। इसमें हेल्थ चेकअप्स है, वेलनेस प्रोडक्ट्स है, वाइटामिंस है, लाइफस्टाइल एडवाइस है और पेशेंट काउंसलिंग शामिल है। आपका कहना था कि अगर लोग अपनी हेल्थ का अर्ली स्टेज पर ही रखेंगे तो बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं, और फार्मेसीज इस प्रोसेस में बहुत। फिर उनसे उनके पर्सनल सफर के बारे में मैंने पूछा, जहाँ आप इस बिजनेस का आगाज कैसे हुआ, जहाँ से अपनी डिग्री इसी फील्ड में हासिल की, इनिशियली रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर उन्होंने अपने करियर का आगाज किया और फिर धीरे धीरे इसी तरह अपने मजबूत कर लिया तो धीरे धीरे खुद का बिजनेस लॉन्च। उन्होंने बताया उनका इंटरेस्ट हमेशा से हेल्थ केयर सेक्टर था और छोटे से लेवल से अपना सफर स्टार्ट भी किया। शुरुआत में उन्होंने लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ काम किया, लेकिन स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन और मेहनत से धीरे धीरे अपना बिजनेस जो था वो ग्रो किया। फिर हमने उनके इंस्पिरेशन के हवाले से भी सवाल पूछा, जहां आपने बताया कि शुरू से ही उनका इंटरेस्ट, पैशन और प्रोफेशन एक ही था बस, और साथ में एक चीज ये कि लोगों की खिदमत करना है, उनके लिए हेल्थ जो है वो टॉप प्रायोरिटी है। उनका मानना था हमारे गेस्ट का कि हेल्थ केयर एक ऐसी फील्ड है जहां काम करने से सिर्फ बिजनेस नहीं बल्कि इंसानियत को भी जिंदा रखा जाता है और किसी ना किसी तरह से लोगों की मदद की जाती है। शुरुआती दौर में जरूर चैलेंजेस रहे, जो कि उन्होंने बताया कि हर चीज में चैलेंजेस इनिशियली होते ही हैं, लेकिन जब आपकी टीम स्ट्रॉन्ग हो, जब आपकी टीम के एक पैशनेट टीम हो तो आप आगे बढ़ ही जाते हैं। हेल्थ केयर सेक्टर में लोग अपनी सेहत के हवाले से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी होते हैं, इसलिए उन्हें कन्विंस करना और उनका भरोसा जीतना आसान भी नहीं होता, ये भी बड़ा चैलेंज है। इसके अलावा कॉम्पिटिशन और फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स भी हैं जो कि चैलेंज बन ही जाते हैं, लेकिन उन्होंने बताया कि कंसिस्टेंसी और ट्रस्ट और कमिटमेंट, ये सारी चीज़ें अगर आप में हैं, डेडिकेशन, तो वो सारे चैलेंजेस को आप आसानी से ओवरकम कर सकते हैं। फिर मैंने ये भी उनसे जानना चाहा कि आप अपना बिजनेस आपने कैसे ग्रो किया, जहाँ पर उन्होंने कहा कि राज जो है वो कंसिस्टेंसी और कस्टमर सेटिस्फैक्शन, ट्रस्ट में और पेशेंस में छुपा है। उनका कहना था कि अगर आप कस्टमर्स को बेहतरीन सर्विस और जेन्युइन प्रोडक्ट्स देते हैं तो वो नेचुरली आप पर ट्रस्ट करते हैं और आपका बिजनेस ग्रो करता ही करता है। देखिए, आज के ना इस कॉम्पिटिटिव मार्केट के हवाले से अगर बात की जाए तो ये इंडस्ट्री जो है वो अपने आप में देखने में तो यूनिक है, लेकिन इसके अपने कुछ हिडन चैलेंजेस भी हैं। यहाँ पर कस्टमर का ट्रस्ट ये सबसे इम्पोर्टेंट है, और आपने बताया कि बिल्कुल ट्रस्ट के साथ साथ क्वालिटी और अफोर्डेबल प्राइसेस और फिर पर्सनल केयर पे फोकस, ये सारी चीजें मिल जाएं तब कहीं जाकर आपका बिजनेस जो है वो सस्टेन करने की पोजीशन में आता है। उनका कहना था कि हर कस्टमर के साथ एक इंडिविजुअल अटेंशन देना उनका मिशन है जो उन्हें दूसरों से भी अलग करता है। वहीं पर हमने टेक्नोलॉजी के बारे में भी पूछा, जहां हमारे गेस्ट ने बताया कि टेक्नोलॉजी के रोल पर अगर बात की जाए तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ने फार्मेसी बिजनेस को बहुत हद तक चेंज किया है। आजकल ऑनलाइन ऑर्डर्स, डिजिटल प्रिस्क्रिप्शंस और ऑटोमेटेड सिस्टम्स ने जो है वो काम को फास्ट और एफिशिएंट बना दिया है। इससे कस्टमर्स को आसानी होती है और बिजनेस ऑपरेशंस भी स्मूथ चलते हैं। वहीं ट्रस्ट के हवाले से अगर बात की जाए तो आपने बताया कि ट्रस्ट जो है वो सेक्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर कस्टमर आप पर ट्रस्ट करता है तो वो बार बार आपके पास आता है, और इस ट्रस्ट को बिल्ड करने के लिए वक्त लगता है, पेशेंस चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, ऑनेस्ट एडवाइस चाहिए, सर्टिफाइड मेडिसिन चाहिए और प्रोफेशनल बिहेवियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका कहना था एक ट्रस्ट जो है वो एक दिन में नहीं बनता, बल्कि ये टाइम के साथ जो है आपकी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के बलबूते पर डेवलप होता रहता है। वहीं पर हमने लास्ट में अपने गेस्ट से ये भी जानना चाहा कि मान लीजिए कोई इसी तरह का बिजनेस यहाँ पे कतर में स्टार्ट करना चाहे तो आप उनको क्या इंपॉर्टेंट एडवाइस देना चाहोगे। तो दो चीजें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी जो हमारे गेस्ट ने हाईलाइट की, वो था पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी। और ये एडवाइस मुझे लगता है नॉट दैट जस्ट हम हेल्थ केयर बिजनेस की बात करें वहीं पर एप्लीकेशन

एप्लीकेबल है, बल्कि सारे बिजनेसेस पर ये एप्लीकेबल है ही। इसके अलावा जो चीज बहुत और इम्पोर्टेंट हो जाती है वो है प्रॉपर नॉलेज। हमारे गेस्ट ने ये भी हमें बताया कि जो सक्सेस है ना वो फौरन या शॉर्टकट तरीके से आपको नहीं मिलेगी, इसके लिए आपको सब्र और लगन से लगे रहना है, बस लगे रहना कोशिश करते रहना है। वही देखिए, सूनर या लेटर आपको कामयाबी मिल ही जाएगी, लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है कि उस कामयाबी को आपको किस तरह से सस्टेन करना है। अब फ्यूचर प्लान्स की जब मैंने बात की उनसे तो हमारे गेस्ट ने बताया कि वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, ब्रांचेस इस्टेब्लिश कर रहे हैं, बहुत जल्दी इस्टेब्लिश हो भी रही हैं और हो भी जाएंगे और आपको पता भी चलेगा। इसके साथ साथ वो न्यू हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करने का प्लान भी रखते हैं ताकि कस्टमर्स को और बेहतर फैसिलिटीज मिल सके। कस्टमर एक्सपीरियंस के हवाले से सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है कि पेशेंट को कंफर्टेबल फील हो, उसको वैल्यूड फील हो, उसको टॉप प्रायोरिटी पे रखा जाए, एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट हो, ट्रेन्ड स्टाफ हो और सर्विसेज काफ़ी क्विक होनी चाहिए, क्योंकि आज का दौर ऐसा है जहां हम सब के पास बीमारी के दौरान तो बिल्कुल भी पेशेंस नहीं होता। वैसे मैंने एक सवाल और भी इम्पोर्टेंट किया था जो मुझे अभी याद आ रहा है, क्वालिटी कंट्रोल के हवाले से। जी हाँ, और इस पर भी हमारे गेस्ट ने बताया कि क्वालिटी कंट्रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है और सर्टिफाइड सप्लायर्स से मेडिसिन लेते हैं, प्रोडक्ट्स की अथेंटिसिटी हर हाल में इंश्योर की जाती है। ये उनके लिए इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पर लोग जो है वो डायरेक्टली उनका ताल्लुक जो है हेल्थ से है, तो किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज हो ही नहीं सकता। अच्छा, कस्टमर फीडबैक की अगर मैं देखूँ बात करूँ तो हालांकि ये भी सवाल मुझे पूछना चाहिए था, बट आई जस्ट मिस्ड इट। बट मुझे लगता है कि पता नहीं किस तरह से लोग इस फीडबैक को लेते होंगे या कोई देता भी है कि नहीं देता है, बट हाँ अगर सेटिस्फाइड नहीं होता होगा तो जरूर देता होगा। और एक चीज और मुझे यहाँ पर दोस्तों याद आती है, वो है इंडस्ट्री ट्रेंड्स। ये सवाल भी मैंने किया जिस पर हमारे गेस्ट का कहना था कि फ्यूचर में ना डिजिटल हेल्थ केयर और पर्सनलाइज मेडिसिन बहुत, ऑनलाइन कंसल्टेशन और होम टेली सर्विस भी बढ़ रही है, टीवी को ट्रांसफॉर्म भी कर रही है। ऐसे में एथिक्स का ख्याल रखना ये भी इम्पोर्टेंट है। ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी दोनों इम्पोर्टेंट पार्ट है बिजनेस की ग्रोथ के। एथिकल स्टैंड से कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए। आप हो सकता है थोड़ी देर के लिए कुछ पैसा बना भी लें, लेकिन आप अपने कस्टमर ट्रस्ट को भरोसा जो है ना वो खो बैठते। तो पर इंटरव्यू में जितनी भी बातें हुई वहां से मुझे समझ में ऐसी दिखने आसान लगता है वो है नहीं। और फिर ये अपने किसी कॉल्ड भी आज के दौर में एक सेक्टर कम्युनिटी हेल्थ के लिए, अवेयरनेस के लिए और प्रिवेंशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहा है। वहीं पर मिस्टर रहमान ने अपने सफर के जरिए दिखाया बताया कि डेडिकेशन हो, हार्डवर्क हो, क्लियर विजन हो तो आप किसी भी फील्ड में सक्सेस हासिल कर सकते हैं। उन्होंने ये भी एम्फसाइज किया कि बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट अर्न करने का जरिया नहीं होना चाहिए बल्कि लोगों की लाइफ को बेहतर बनाने का भी जरिया होना चाहिए। सो ऑल टुगेदर मैं ये कह सकती हूँ कि इंटरव्यू एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भी देता है कि हेल्थ केयर सेक्टर में काम करना सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं बल्कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फार्मेसीज आज के दौर में एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं जो कि सोसाइटी की वेलबींग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं मिस्टर रहमान की बातें खास तौर पर उन लोगों के लिए इंस्पायरिंग है जो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर हेल्थ केयर फील्ड में आना चाहते हैं। उनका फोकस क्वालिटी, ट्रस्ट और सर्विस पर है जो किसी भी सक्सेसफुल बिजनेस की बुनियाद है। आखिर में ये कहा जा सकता है कि अगर इसी तरह इनोवेशन, डेडिकेशन और कस्टमर केयर पर फोकस रखी जाए तो फार्मेसी सेक्टर मुस्तकबिल में और भी ज्यादा तरक्की करेगा और कम्युनिटी हेल्थ को बेहतर बनाने में एक स्ट्रॉन्ग रोल अदा करेगा। मुझे लगता है कि आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। मुझे यानी नाजिया और शहबाज अंसारी हम दोनों को इजाजत दीजिए। देखते हो सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी।

0: इंसान आसमान से इस दुनिया में उतारा गया है और उसे दोबारा आसमान की तरफ ही लौटना है। इसलिए इंसान के रब ने आसमान से एक रस्सी लटकाई और फरमाया, सब मिलकर इस रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में तफर्रका ना डालो। यह रस्सी यह हबले मतीन है, कुरान करीम। आइए तलहा अशरफुल जमान के साथ सुनिए एक खास प्रोग्राम पर्ल्स ऑफ द कुरान, जहां हम तलाश करेंगे कुरान के वो मोती जो हमारी जिंदगी को सवार दे।
1: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सभी किराम, प्रोग्राम कुरान के मोती के आज के इस हलके में आप सबका खैर मकदम है। गुज़श्ता हलके में हमारी जो गुफ्तगू हो रही थी रहमत इलाही के हवाले से, वहीं हमने ये भी कहा था कि अल्लाह की रहमत सिर्फ अहले ईमान तक महदूद नहीं, उसकी रहमत आम्मा इस दुनिया में वो शख्स भी पाता है जो अल्लाह पर ईमान नहीं रखता, यानी उस रहमत से एक हिस्सा पाता है। तो रहमत आम्मा के हवाले से ये बात है, अल्लाह की वो अमूमी रहमत जो दुनिया में सिर्फ मोमिन को नहीं बल्कि पूरी मखलूक को अपने दामन में लिए हुए है। इसलिए हम बार बार पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम, वो तमाम जहानों का रब है रब्बिल आलमीन, और इसी रुबूबियत के साथ उसकी रहमत के आसार भी पूरी मखलूक में दिखाई देते हैं। सूरह रहमान में अल्लाह फरमाता है, यसअलुहु मन फिस समावाती वल अर्द कुल यौमिन हुवा फी शअन, आसमानों और ज़मीन में जो भी है सब उसी से मांगते हैं और हर आन उसकी एक नई शान जलवागर है। यहाँ सवाल पैदा होता है कि क्या काफिर भी अल्लाह से मांगता है और क्या अल्लाह उसकी पुकार पर भी दुनिया में रहमत फरमाता है? जी हाँ, इस नुक्ते को समझने के लिए अहले इल्म ने मांगने की दो सूरतें बयान की हैं, सुआलुल मकाल और सुआलुल हाल। सुआलुल मकाल ये है कि इंसान जबान से मांगे, या अल्लाह मुझे अता फरमा, मेरी मुश्किल दूर फरमा, और सुआलुल हाल ये है कि जबान खामोश हो मगर इंसान की हालत खुद उसकी ज़रूरत बयान कर रही हो। एक सादा मंजर जहन में लाइए कि आप रास्ते से गुजर रहे हैं, सामने एक बहुत कमज़ोर शख्स सड़क पार करने की कोशिश कर रहा है। अब कदम कमज़ोर है, रफ्तार भी सुस्त है और उसे किसी सहारे की ज़रूरत है। उसने आपको आवाज़ नहीं दी, उसने ये भी नहीं कहा कि मेरा हाथ पकड़ लीजिए, लेकिन आप आगे बढ़ते हैं और उसका हाथ थाम लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी ज़बान ने नहीं, उसकी हालत ने सवाल किया था और आपके दिल में मौजूद थोड़ी सी रहमत ने उस खामोश सवाल को समझ लिया। तो फिर सोचिए, आप ज़्यादा रहम करने वाले हैं या वो रब जो अरहमुर रहीमीन है? उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा बयान करती हैं कि एक औरत मस्जिद नबवी में एक खेमे में रहती थी। वो आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा के पास आकर बैठती, गुफ्तगू करती और गुफ्तगू के खिताम पर बार बार एक शेर पढ़ा करती थी जिसका मफहूम था, वो शाह का दिन हमारे रब की अजीब निशानियों में से है, उसी वाक़े ने मुझे कुफर की बस्ती से निजात दिलाई। आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने एक रोज़ पूछा, तुम हर मरतबा यही शेर क्यों पढ़ती हो, उसके पीछे क्या किस्सा है? उस औरत ने अपनी ज़िंदगी का एक दर्दनाक बाब खोला। उसने बताया कि इस्लाम कबूल करने से पहले वो अरब के एक कबीले के साथ रहती थी। एक रोज उस कबीले की एक लड़की कीमती वशाह यानी जेवर से आरास्ता दुपट्टा या पट्टी पहनकर निकली। रास्ते में वो वशाह गिर गया। एक चील ने उसे गोश्त समझा, झपट कर उठाया और उड़ गई। घर वालों ने तलाश की।

0: FM 107. Time check.
1: गुड मॉर्निंग क्लास, 6:01. आज हम पढ़ेंगे वीकेंड पर कबीर को सुनने के फायदे, चैप्टर 107 पैराग्राफ 2. प्लीज सारे फोकस करेंगे और अपने अपने व्हाट्सएप निकालिए. जो फोन नहीं लाया है वो क्लास से बाहर जाइए. 666-22-107 नंबर है. प्लीज क्लास बिहेव.

0: दो हवाला कबीर एफएम 107 पे आपके एंटरटेनमेंट का सिक्योरिटी गार्ड हाजिर है भाई साहब, क्या चल रहा है, क्या माहौल है? आज तो वीकेंड है भाई, मैं बड़ा खुश हूँ, मैं सही बता रहा हूँ। मैं आपको लगता है वीकेंड इसलिए खुश है, इसको आराम मिलता होगा, इसको वीकेंड से अलग से प्यार। मैं आपको बताऊँ, आई एम लाइक द चाइल्ड हू गोज़ टू स्कूल एवरी सिंगल डे। मैं वही बच्चा हूँ जो स्कूल से छुट्टी मिलती है जिसे, और बड़ा खुश होता है क्योंकि मुझे कोई कहानी नहीं ढूंढनी है कल, शुक्र अल्लाह का। लेकिन तो एक दिन का आराम के लिए मैं इसलिए ज़्यादा एक्साइटेड रहता हूँ। आप ये सोचते ना ये ज़बरदस्ती का सेल कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है, ये ज़्यादा ही खुश होने की, नहीं एक्टिंग नहीं है, दिस इज़ फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट, आर्टिलरी से अंदर से निकल रहा है। आप मैसेज ज़रूर कीजिएगा 666-22-107 पे। कुछ मैसेजेस हैं, आसिफ भाई कहते हैं कबीर भाई क्या कबीर गरीबों का सहारा, कबीर हमारा वीकेंड आज जुमेरात की बड़ी मुराद। क्या क्या हो गया आसिफ भाई, कहाँ हो गया भाई आसिफ भाई, क्या किधर हो गया है? एक मैसेज अस्सलाम वालेकुम सर, हाजिर मोहम्मद इकराम, मोहम्मद इकराम साहब वालेकुम अस्सलाम। एक और मैसेज अस्सलाम वालेकुम भाई वकरा टू सईद अब्दुल जब्बार, भाई आपका नाम यार, नाम से बड़ा इंप्रेस हूँ मैं, चौड़े में कहूँगा मेरी दोस्ती जब्बार से। मैसेज अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई, टुडे ओवर एक्टिंग फ्रॉम वकरा टू मसीद, आप क्यों कर रहे हैं ओवर एक्टिंग? एक वैसे अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है भाई? फायदा नंबर वन, सभी में खुशियां बढ़ती है मेरा भाई सुभाष भाई, थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच, बहुत सारा प्यार सुभाष भाई को। एक मैसेज है भाई, वो कल वाला बंदा पिक्चर तो तबाही मचा दिया था, वो पिक्चर सेंड करो मुझे। अच्छा मैं कुछ देर में आपको भेजता हूँ भाई। आसिफ आलम है, वालेकुम अस्सलाम भाई, बहुत प्यार किया। एंड ये आसिफ भाई ने मैसेज किया, अभी वॉइस नोट में सुनता हूँ। ओके तो मैं बस एक टीज़र छोड़ देता हूँ आपको आज की कहानी के लिए, बिकॉज आज की कहानी मुझे बेचनी पड़ेगी मार्केट में, वरना फिर नहीं सुनी आपने तो मैं बहुत गमगीन हो जाऊंगा। आपको आज जो मैं कहानी सुनाऊंगा, इट इज नॉट अ स्टोरी, नहीं मतलब समझ रहे हैं, वो बेचते ना वैसे ही लिखा था ना टाइटल पे, नॉट अ स्टोरी बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स। लिसन टू मी, आज की कहानी इज एन एक्सपीरियंस। तो अमूमन जब आप कहानी सुनते तो आप सुन रहे होते गाड़ी में, यू जस्ट गोइंग विद द फ्लो। आज की कहानी में यू हैव टू इमेजिन योर सेल्फ जहां पर मैं आपको ले जाऊंगा, बस इतने कहूँगा। तो आज की कहानी के सिनेमा में आपको खुद को हीरो, विलन, साइड एक्टर जो समझना है समझिएगा, मगर कहानी में अपने आप को इमेजिन ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि उसका मज़ा कुछ और है। और आज वैसे भी वीकेंड है, तो इट्स गोना बी रियली रियली स्पेशल। बाकी 10 मिनट 30 सेकंड के बाद मिलेंगे तला भाई की आवाज़ के बाद सुबह के अधिकार, इंशाल्लाह फिर होगी मुलाकात 666-22-107। वैसे भी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो खुद यहीं इसी को सुनता हूँ कबीर को सुबह सुबह 666-22-107। Stay tuned.
1: एक पुरसुकून और खामोश सुबह फजर की रोशनी से शुरू होती है। इन्हीं पाकीजा लम्हों में दुआएं कबूल होती हैं, बरकतों का नुजूल होता है और अल्लाह की रहमतें उनकी तरफ मुतवज्जे होती हैं जो उसे याद रखते हैं। इरशादे खुदावंदी है, وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا, और सुबह शाम अपने परवरदिगार के नाम का जिक्र किया करो। और अब समाज फरमाइए सुबह के अजकार FM 107 पर।

कितना नहीं देसी जनता के बारे में तो मुझे पता नहीं, तो आप मुझे बताइए आप आपने कुछ लुक वुक चेंज किया आपने रिसेंट टाइम्स में, कुछ भी बालों से लेकर कपड़ों से लेकर कुछ चेंज लेके आए? मैंने बहुत कोशिश करी है भाई, कसम से बता रहा हूँ मैंने बहुत कोशिश करी है। अभी तो मैंने सबसे पहले अपना लुक ही चेंज कर दिया, उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं भाई कुछ वो जैपनीज किमोनो शिमोनो पहनूंगा, जचे ना जचे, दुनिया हंसे तो हंसे, मैं तो करूँगा भाई चेंज तो मैंने धनिया वो रखा है। बट डू यू ऑल्सो अग्री? क्योंकि देखो खवातीन तो अपना लुक्स अपने लुक्स बदलती रहती हैं, दे हैव ऑल द राइट टू एक्सपेरिमेंट, वो अलग अलग रंग अलग अलग ढंग सब कुछ कर सकती है। मर्द हजरात को लेके ये आर्टिकल ले किया, वो हम लोग चेंज नहीं करते हैं अपने लुक्स को। एक मैसेज आया, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग ब्रो, हैव अ वंडरफुल डे अहेड। ज़की साहब, हैव अ वंडरफुल डे अहेड टू यू एज़ वेल। मेरे भाई हम डीपी नहीं चेंज करें, लुक की तो बात दूसरी है। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम अली भाई, मैसेज अली भाई वालेकुम अस्सलाम। एंड देन एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है भाई के। एंड ये खालिद ने मैसेज किया है, ओके। और क्या मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सुम्बुल। मैंने आज गुड मॉर्निंग की जगह सिर्फ और सिर्फ जी एम लिखा है, बैटरी ख़त्म हो गई पूरे हफ्ते के बाद मुझे ऐसा लग रहा है बहन, अब बैटरी ख़त्म हो चुकी है। मैसेज, अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हो? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मेरा भाई, क्या हाल है भाई के। ये मैसेज किया सलमान भाई ने, सलमान भाई क्या बोलती पब्लिक, बोले तो तकलीफ। एक और मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया भाई, एकदम शानदार चल रहा हूँ, आप बताओ क्या हाल है भाई के। यो मैसेज क्या है भाई, मुदस्सर भाई ने, मुदस्सर भाई कैसे हैं? एक मैसेज है हसन भाई का, हसन भाई कहते हैं भाई चेंज इज़ द ओनली कॉन्स्टेंट थिंग इन माई लाइफ, दैट्स द मोटिवेशन। हसन भाई लेकिन क्या चेंज ले क्या है आप, मैं आपकी डीपी देख रहा हूँ जब से हम दोनों बात कर रहे हैं, डीपी चेंज होनी नहीं मेरी भी वही है हसन भाई, तो वॉट चेंज क्या बदला आपने? मतलब कपड़े पहनने का थोड़ा ढंग कुछ एक्सपेरिमेंट किया है, बालों के साथ दाढ़ी, वॉट हैव यू डन, क्या चेंज लेके आए हैं आप? आपने अंग्रेजी में डायलॉग तो मुझे फेंक के मार दिया, चेंज इज द ओनली कॉन्स्टेंट, लेकिन वाट वाट मिस्टर हसन वाट। एंड सुम्बुल बहन कुछ लिख रही हैं, लिखिए आराम से लिखिए, हमारा बधेरा टाइम है मगरिब तक लिखिए आप, कोई टेंशन नहीं है एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, कबीर अंकल मैंने अपने लुक को चेंज किया, मेरे बच्चे अभी तो आप इतने से हैं, आपने अभी से लुक चेंज कर लिया? ये मुझे मैसेज किया अहमद ने, एंड ही इज़ 13 ईयर्स ओल्ड, इन्होंने अपने हेयर स्टाइल चेंज किया है, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है अहमद, यू लुकिंग रियली फाइन, एकदम एकदम फाइन, क्या बात है, क्या लुक चेंज किया, आई एम सो इम्प्रेस्ड। तो ये मम्मी ने बेटा रखने दिया आपको ये लुक, कमाल हो गया ये तो, मतलब थोड़ा सा ये तो स्पाइक स्पाइक्स निकले हुए, लगता है छुट्टी वुट्टी बना रहे हो, ये क्या चक्कर है ये हमें तो नहीं रखने दिया था। एक और मैसेज है, भाई लुक के बारे में बात करें तो क्या होना चल जाता है, आम बदल जाए तो आपकी कीमत घट जाए, ये क्या कहेगा क्या क्या लुक के बारे में बात करें तो क्या हिमाली क्या। एक मैसेज है, अरे भाई साहब हुसैन भाई, यार हुसैन भाई ने पूरा लुक बदल, हुसैन भाई काफ़ी यार रईस वईस लग रहे हैं आप तो, यार होंगे आई एम प्रिटी श्योर, बताएंगे नहीं आप टैक्स क्रेडिट पढ़वाऊँ क्या असर भाई, लेकिन माशाल्लाह बढ़िया फोटो आई है भाई, बढ़िया फोटो आई है, लग रहा है आदमी जो है एकदम लुक वुक चेंज किया अपना भाई, एकदम रईस लग रहे यार। शहजाद सलीम वालेकुम अस्सलाम कह रहे हैं, आदाब जहाँ अपना ये शेख कहते हैं, वीकेंड में सरर भाई की तरफ से ज़बरदस्त तड़का है लेकिन मैं नहीं बताऊँगा, कब मत बताओ उनको तो मैं अलग से निपट लूँगा, कल तुम निपट ही लिए थे आयुब भाई से एक मैसेज तौफीक भाई का, वालेकुम अस्सलाम भाई तौफीक अल बकरा से। इनके बाद एक मैसेज आया है, बिल्कुल सही किया है भाई, हेयर स्टाइल थोड़ा चेंज किया हूँ, छोटे बाल रखते रखते तंग आ चुका था इसलिए थोड़ा 90 स्टाइल रखा। अरे मेरा भाई क्या बात है यार, एक सेकंड रुको भाई, ये हसन भाई के लिए और ये हमारे सुभाष भाई के लिए, यार ये बजाना पड़ेगा, एक सेकंड रुको भाई, ये हमने निकाल के क्यों नहीं रखा पहले। हाँ ओके, बनता भाई लुक चेंज करना, बनता भाई एकदम बढ़िया बहुत शानदार। तो वही मैं करता, आपने रिसेंटली अपना कुछ लुक वुक चेंज किया, भाई मैं अभी जो है तंग आ गया था लंबे बाल रखते रखते पिछले 15 सालों से, आए क्विट मगर ना जी मेरे से नहीं हो रहा, तो मैंने अभी मैंने छोटे बाल रख लिए, अब एकदम गुद्दी को यकीन नहीं हो रहा है, मेरी गुद्दी कह रही है मालिक ये क्या किया आपने एकदम से धूप आ रही है, इतने सालों से छांव थी। तो जो लोग ऐसा कर रहे हैं ना, लुक चेंज कर रहे हैं, बताइएगा जरूर, स्पेशली सारे के सारे मेल्स मर्द हजरात, क्योंकि मैं आगे सवाल बता दूं, सवाल मेरा यही है कि आर्टिकल मैंने पढ़ा जिसके मुताबिक 2022 के बाद लोगों ने अपने लुक्स में ज़्यादा काम करना शुरू किया है, वरना एक वक्त आया था बीच में जब सब आप एकदम कॉन्स्टेंट

कांस्टेंट होना छोड़ चुके थे, सॉरी कांस्टेंट हो गए थे, एक ही लुक रख रहे थे, चलता रहने दो, बूट सेट पहन रहे तो वही बूट सेट पहन रहे हैं। एक मैसेज है सुम्बुल बहन का, वो लिखती हैं, हम गर्ल्स बॉयज का लुक क्या मूड चेंज है, हम गर्ल्स बॉयज का लुक क्या मूड चेंज कर दे, क्या हो गया बहन, इसका इसका मतलब क्या है? कई मरतबा बहुत समझदारी की बात करती है लेकिन कई मरतबा आपके मैसेज को डिसाइफर नहीं कर पाता हूँ मैं, ऐसा क्यों बहन? एक मैसेज है, मेरे बच्चे मुझ में सेम लगते हैं बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ लुक्स, मैं समझा नहीं। अरे हाँ, आपका तो पूरा खानदान सेम लग रहा है भाई, तो ऐसा लग रहा है फोटो स्टेट किया भाई आपने। अली भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, अली भाई के दोनों लड़की पीछे खड़े हैं, अली भाई और उनके बच्चे एकदम कॉपी लग रहे हैं, बस दाढ़ी किसी की है किसी की नहीं है, वाह क्या फोटो स्टेट मारी है भाई। एक मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, जब लुक चेंज करने का सोचा तो ख्याल आया कि अब सर पर लिमिटेड बाल रह गए हैं, सिमिलर टू $1 बिल गाय। और चेंज ये किया 3XL से 4XL कर लिया। बाय बाय बाय बाय बाय, बहुत बढ़िया भाई, मैंने भी अपने कमर को कमरा करने से होने से बचाना है अभी, तो आपने मुझे जो याद दिलाया रियली रियली थॉटफुल, एक टाइम पे 32 से अभी 36 पे आ गया, बट दैट्स नॉट द पॉइंट। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम, ये वालेकुम अस्सलाम आरिफ भाई, ये जो फोटो है ये मैंने कल फोटो देखी थी भाई, ये सरर भाई को पकड़ते हुए, वेरी नाइस यार, ये बहुत अच्छी फोटो थी, बहुत अच्छी फोटो है, थैंक यू सो मच फॉर स्प्रेडिंग हैप्पीनेस। एक और मैसेज, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई, क्या हाल है? और तौफीक भाई ने फोटो भेजा, तौफीक साहब ये सारे के सारे अंडे आप खाने वाले हैं, मैं तो गिन भी नहीं पा रहा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 अंडे भाई इसमें, तो क्या कर रहे हो, कौन खाएगा 15 अंडे, आप खाने वाले हैं क्या? भाई मैं चेंज की बात कर रहा था, ये कौन सा चेंज है? बताओ जरा है भाई। तौफीक भाई ने मुझे फोटो भेजा, म्यूजिक रुक गया मेरा अपना, उन्होंने एक बॉल रखा हुआ है उसके अंदर 15 अंडे रखे हुए हैं उबले हुए, वो कह रहे हैं मैं खाने वाला हूँ। तौफीक भाई, भाई सलाम अलैकुम, कैसे भाई? एक मैसेज है, अंकल मैंने अपना हेयर बड़ा से छोटा कर दिया है। बच्चे मुझे ऐसा लगता है ये बड़े से जो छोटे हेयर स्टाइल किए गए हैं ये मम्मी पापा ने किए ना, आई डोंट थिंक इट इज़ योर चॉइस बच्चे।

0: और एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? सारे सब बढ़िया बढ़िया भाई, एकदम चाड़ा पड़ रखा। एक मैसेज और आया है समीरे बहन के, वो लिखती हैं, कबीर भाई मैंने भी हेयर कट किया है, रिजवान ने मैसेज किया है। अच्छा ओके, ये रिजवान भाई, रिजवान भाई हेयर कट मतलब आपकी डीपी में जो बाल हैं वो चेंज कर दिया आपने? अच्छा ये इससे भी छोटे किया आपने? रिजवान भाई बहुत बढ़िया भाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस, मैंने भी यही किया रिजवान भाई, हाथ में लाइए, अस्सलाम वालेकुम। एक और मैसेज है, इट वॉज माई चॉइस। मुझे क्यों नहीं लगता बच्ची ये आपकी चॉइस है, ये आपसे कहलवाया तो नहीं जा रहा है? मम्मी पापा पीछे बोलो ये तुम्हारी खुद की चॉइस थी। ए, ए, ए तौफीक भाई, लेकिन वाई 15 उबले हुए अंडे? भाई कितनी जगह है आपके पास, 3 BHK? तौफीक भाई को 3 BHK की जरूरत नहीं, वो खुद हैं 3 BHK। बहुत बढ़िया भाई। सुमन भाई लिखते हैं, बॉयज का लुक चेंज करते हैं, हेयर स्टाइल चेंज करना हो तो लुक चेंज करना नहीं कहते। हेलो हेलो भाई साहब, कोई समझाइए टीचर साहिबा को। टीचर साहिबा ने पता क्या आरोप लगाया हम पे? ये सुम्बुल मैन कह रही हैं कि लड़कों का लुक कोई चेंज थोड़ी होता है, हेयर स्टाइल चेंज करने से लुक थोड़ी बदल जाता है। बहन मेरा अभी का पहले का फोटो देखेंगे ना आप पहचान नहीं पाएंगी, ठीक है? इमिग्रेशन वाला रोक लेता है मुझे, भाई ये कौन है और वो कौन है। क्या बात कर रही हैं यार आप, जलते नहीं सुम्बुल बहन, हमसे मत जलो ठीक है। एक मैसेज शारिक भाई का, शारिक भाई वालेकुम अस्सलाम। और एक मैसेज, आई स्टार्टेड हिजाब फॉर स्कूल बिकॉज अम्मा डिडंट वांट टू मेक 2 braids टू मी एज इट वाज रिक्वायर्ड इन द स्कूल। ये भी सही है, 2 braids, अच्छा ओ ओके ओके, नहीं ये भी सही है, वेरी नाइस। तो ये दोनों दोनों दोनों जो लुक है दिखाइएगा हमें अलीना, एंड अम्मा ने घर पे कुछ अलग लुक दिया आपको या फिर सेम चला ही मामला? एक और मैसेज, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, ड्रेसिंग पे आए तो पूछो। सुम्बुल बहन ने दूसरा आरोप लगाया है हम पे, दूसरा इल्ज़ाम लगाया है, वो कह रही है कि लड़कों का हेयर स्टाइल जो है उसे बदलने से उन्हें लगता है लुक चेंज हो गया, पर कपड़े वही के वही रहते हैं, ड्रेसिंग का पूछो। बहन आज झगड़ा होगा, आज आप स्कूल मत जाइए, आप मुझसे झगड़ने के लिए आइए ये अलविदा पार्क, वहाँ पर कुर्सी लगा के बहस करेंगे। क्या बोलती हैं आप? मैं इधर से पंजाबी समोसे लेके आता हूँ, आप चाय लेके आइए, थर्मस, दोनों बैठ के इस पे बहस करेंगे। क्या कहती हैं आप? हाउ इज़ द प्लान? एक मैसेज, यासिर भाई फ्रॉम कॉर्निश लिखते हैं, नाइस टू हियर यू कबीर भाई। वालेकुम अस्सलाम यासिर भाई, बहुत सारा प्यार। कॉर्निश पे क्या कर रहे हैं भाई? और एक मैसेज है आर अंसारी साहब का, भाई पहले हैं पहले एक प्यार तो ये भी है कि बाल बड़े रखना है। बाल बड़े रखना भाई मेरा एक्सपीरियंस है 15 साल का, इतना आसान नहीं है, क्या समझ रहे हो? अरे भाई उन्हें मेंटेन करते करते मेरी कलाइयाँ मुड़ जाती थी भाई, बहुत मुश्किल काम है, हाँ सोच समझ के। तो भाई मैं अपना सवाल एक बार दोहरा देता हूँ, उससे पहले मैं जरा कॉल उठा लूँ सुम्बुल बहन की। अस्सलाम वालेकुम, क्या परेशानी है आपकी, मतलब क्या परेशानी है बताइए मुझे, व्हाट इज योर प्रॉब्लम?
1: ये टॉपिक गर्ल्स के लिए लाते तो मैं समझती भी, आपने बॉयज के लिए,
0: दोनों के लिए है, दोनों के लिए है। देखिए इसमें ख्वातीनों ने भी मैसेज है, ख्वातीनों का होता है,
1: मर्द हजरात,
0: हाँ बेचारे हम लोग, हमारे बारे में कहा था ना वी आर सिंपल, यस वी आर सिंपल, तो मैंने कहा आज इनका साइड, अब हम लोग
1: क्या करते हैं, आप लोग क्या करते हैं,
0: क्या करते हैं
1: अपने लुक चेंज करने के लिए? मतलब चेंज करने के नाम पे या तो बालों की भाई टकलू करा लेते हो, बिल्कुल बॉल्ड हो जाओ,
0: एक्सक्यूज मी,
1: दूसरा लंबे बालों के नाम पे आप लोग थोड़े से बाल बड़े करते हो लेकिन वो भी आपसे मेंटेन नहीं होते,
0: एक्सक्यूज मी,
1: यस
0: मेरे दिल पे इतने
1: सर, ओह माय गॉड मेरे बाल बड़े हो गए, मेरे से भी इचिंग हो रही है, मुझे डैंड्रफ हो रहा है, मेरा स्कैल्प इची हो रहा है, हाँ
0: आप मेरे वकील से बात कीजिए प्लीज।
1: जब बाल बड़े हो जाते हैं तो बार बार के पास जाके कहते हैं यार छोटे कर दो, बहुत उलझन हो रही है, प्लीज आई कांट टॉलरेट, और क्या फिर दूसरे लुक के बात करूं मैं, मुँह से कोई कटवा लेता है, कोई मुंडवा लेता है, कोई छोटी,
0: भाई मैं अकेला पड़ रहा हूँ, कोई आओ, अकेला पड़ गया हूँ,
1: ये लुक कैसे होता है?
0: अरे नहीं भाई इसमें कोई, आपको आसान काम लग रहा है आपको?
1: मतलब आप क्या कहना चाह रहे हो, क्या मतलब आप जीन शर्ट की जगह सलवार कमीज तो खैर पहनते हैं, जो है तो गरारा पहन के जाते हो, ओह माय गॉड कबीर प्लीज,
0: मैं कोई वकील हायर करूंगा, मेरे को जरूरत है भाई, कोई आओ अकेला पड़ रहा हूँ प्लीज। देखिए ऐसा है,
1: सुनो ना अभी और भी है, अच्छा। और एक्सेसरीज के नाम पे कभी कभी अगर कोई किसी मर्द हजरात एक ब्रेसलेट पहन लिया, ओ भाई मैं सलमान खान वाला टेंशन मान रहा हूँ, नहीं प्लीज
0: प्लीज कोई आइए,
1: नहीं, नहीं, नहीं, नहीं,
0: इनको ले जाइए, कुछ चावे पे लेके,
1: नहीं नहीं नहीं आप समोसा का इंतजाम करो, मैं

0: मैं बाल्टी भर के लाऊंगी।
1: ठीक है, आज आज हम बहस करते हैं, अलविदा मिलते हैं, वहीं बहस करेंगे, वहीं लड़ाई झगड़ा करेंगे बढ़िया वाली।
0: आपके पास
1: अरे हम मोटिवेट करें एक दूसरे को, भाई मोटिवेट कर लें दो यार, बेचारे ये लड़के अपना लुक चेंज करें, हम भी चेंज कर रहे हैं, डिमोटिवेट कर दिया यार।
0: क्यों, मेरे को पता है जब आपने टॉपिक बोला ना, जिंदगी हंसी मेरी, मैंने कहा बॉयज और चेंजेस,
1: यार मैं रो दूंगा भाई, मैं रो दूंगा भाई।
0: वो तो नहाए भी ना, नहाने के नाम पे परफ्यूम लगा ले।
1: एक्सक्यूज मी, अरे अरे क्या हो रहा है ये भैया, कोई सुनने वाले, दलील ले गया हूँ, अकेला पड़ गया हूँ मैं यहाँ पे बहन, मतलब इतने सारे अटैक एक साथ,
0: ये तो क्या कर?
1: बाकी तीर संभाल के रखने चाहिए।
0: और सुनो, एक मेक ओवर, और आईज के गर्ल्स के पास आईज मेकअप बहुत होते हैं, आप लोग क्या करते, एक सुरमा लगाते हैं।
1: ऐसा है, सुरमा तो भी कोई नहीं लगा रहा आज की तारीख में, ठीक है,
0: लगाते हैं। मेरे घर में मेरा शौहर लगाता है, वो अपनी हरी आंखों में सुरमा लगा के मुझे जेलस कराता है। देखो मेरी आई तुमसे अच्छी।
1: तो मतलब जलन है, जलन का शिकार हो रही है आप, उनकी आंखें खूबसूरत दिख रही, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? है
0: नहीं, है उनकी है।
1: हाँ तो
0: मैंने इस बात को एडमिट कर, मतलब इमेजिन करो कि बंदा लुक चेंज करने के चक्कर में अपने हेयर के ऊपर एक्सपेरिमेंट, ये मैं अपने हस्बैंड की बात बता रही हूँ। तो मतलब यार, अपनी शादी पे प्लीज बॉयज, जिनकी शादी नहीं हुई है, अपनी शादी पे कोई अपने बालों के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं करना।
1: अच्छा क्यों?
0: याद है जो आपने पहन, यार मेरे बंदे ने शादी के टाइम पे अपने बालों का हेयर स्टाइल चेंज करने के लिए उसने हेयर स्टाइल लगवाया, पर अच्छा नहीं लगा, उसने बाल कटवा दिए सारे। इमेजिन, मेरा मोस्ट इम्पोर्टेंट डे, आज भी हमारी इस बात पे लड़ाई होती कि तुमने बाल क्यों कटवाए थे शादी वाले दिन।
1: अरे यार बंदे बंदे को एफर्ट के तो नंबर दो यार, बंदे को एफर्ट के नंबर दो।
0: मिलिट्री में है क्या ये, तो छोटे छोटे बाल करे। इमेजिन करो कि जिसकी जिंदगी में फोटोज अच्छी है, उसकी शादी वाले दिन फोटोज अच्छी नहीं है, सिर्फ उसके बाल लोग के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा था।
1: ये समाज ना हमें एफर्ट के नंबर नहीं देता, उन्होंने कितने दिल से बेचारे ने सोचा होगा, नहीं यार मैं थोड़ा सा
0: एफर्ट किस बात का,
1: अरे किस बात का, मतलब बंदे ने सोचा होगा यार, ठीक है यार मैं थोड़ा सा हैंडसम और एक्स्ट्रा हैंडसम लग जाता हूँ, मेरी शादी है, कौन चाहता है बहन अपनी शादी के दिन अच्छी लगना, हद हो गई। मुझे लग रहा है आपकी शादी में आपको छोड़ के, दुल्हन को छोड़ के सबको अच्छे लगे होंगे, मैं बता रहा हूँ, लिख के ले लो मेरे से।
0: नहीं, मेरी फ्रेंड्स ने बाद में मुझसे पूछा था तुम्हारे हस्बैंड मिलिट्री में है क्या। मैंने एक्सपेरिमेंट कर लिया अपने बालों के साथ। तो आप इमेजिन कर रहे हैं कि इसने कितने छोटे बाल कराए थे।
1: अरे रे रे रे रे,
0: या अल्लाह।
1: पर
0: मेकओवर मत करा करो आप लोग।
1: अच्छा, तो आप चाहती हैं कि जितने मर्द हैं वो मेकओवर ना करें, हैं जैसे हैं वैसे ही रहें?
0: नहीं, मैं चाहती
1: थी। मोटिवेशन को पता है, आपने मोटिवेशन को पहले तो मारा, फिर उसे घसीटा, फिर उसे फावड़े से खोदा, जमीन को गाड़ दिया।
0: भाई कोरियन बैंड के नाम पे जो बॉयज, मैं कुछ, आई एम स्पीचलेस, आपको समझ।
1: कोरियन बैंड वाले नहीं हम लोग बहन, ये तो थोड़ा ज्यादा हो गया यार, कोरियन बैंड पे तो बच्चे। अरे नहीं भैया, पर्पल नहीं लगा रहे हैं हम, हेलो।
0: पर्पल की बात नहीं कर रही हूँ।
1: तो कौन सी बात कर रही हैं आप, आप किस बात की तरफ जा रही हैं, कोरियन बैंड को लेकर?
0: इमेजिन उस दिन के बाद से आज दिन, आज के दिन तक मेरे हस्बैंड की ए टू जेड चीजें मैं डिसाइड करती हूँ, आपको कौन से कलर के शर्ट्स पहनने, कौन सी पैंट पहनने, हेयर स्टाइल कौन सा लगाना है, मेरे हिसाब से भाई जो मुझे अच्छा लगे।
1: कहानी घर घर की,
0: नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है,
1: ऐसा ही है, ठीक है।
0: खुद पे एक्सपेरिमेंट करने के ऊपर आते हैं, वो अच्छा नहीं लगता।
1: देखो एक कैदी जब बहुत सालों से कैद रहे तो वो बेचारा सिर्फ जेलर की ही सुनेगा ना, है ना मलिक? मालिक चिप्स खिला दो मालिक। कहाँ उनकी मजाल की वो कुछ कर सके यार, क्या बात कर रही है, मेकओवर कर लेने दो ना, ये चाह रहे हैं लड़के मेकओवर करना, कर लेने दो ना इनको, आपने मोटिवेशन खराब कर दिया।
0: मेकओवर करने के नाम पे स्किन केयर करने की आप लोग ने शुरुआत करी, कुछ करी वो भी नहीं होती।
1: अरे पूरा पूरा हेयर स्टाइल चेंज कर दे रहे हैं बेचारे, आप स्किन केयर की बात कर रही है।
0: हेयर स्टाइल चेंज करते हैं ना, मैंने वही तो बोला।
1: तो आप क्या चाहती है, आप क्या चाहती है, क्या मेकओवर के नाम पे क्या करें,
0: चूड़ियां पहन के घूमेंगे आप?
1: नहीं नहीं, क्या करें मेकओवर?
0: अरे सुनो तो, एक अंगूठी पहन लेंगे भाई, आई नहीं है।
1: नहीं तो मेकओवर के नाम पे करें तो क्या करें, आज आप खुद एडवाइस देके जाइए टीचर जी।
0: मेकअप करेंगे आप लोग मेकओवर के नाम पे?
1: नहीं नहीं क्या करें, अरे तो मेरे को
0: गर्ल्स और बॉयज का टॉपिक छेड़ दिया।
1: नहीं नहीं नहीं वर्सेस नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि ये लोग मेक ओवर के नाम पे क्या करें, आप एडवाइस दे दीजिए ना।
0: कुछ मत करो, जैसे हो वैसे ही रहो, अच्छे हो वैसे।
1: अच्छा हमें हक नहीं है थोड़ा लुक चेंज करने का है?
0: कर लो, अगर आपसे बाल बड़े मेंटेन होते हैं आप बिल्कुल गो अहेड करो, मेंटेन करो, उनमें रोज शैम्पू करो, कंडीशनर करो, फिर दो दिन के बाद बोलोगे यार

0: कपड़े की ऐसे स्लीव भी लगाओ तब अच्छा लगेगा
1: आपको। मैं रू तो अच्छा लगूंगा तो क्या करूं यार, मेरे पास अभी कोई हथियार ही नहीं बचा है यार, क्या किया जाए। देखिए आप जो है चाय वाय पीजिए, मुझे लग रहा है कोई पिटपटा जाएगा मुझे रास्ते में।
0: है? नहीं ऐसा नहीं है।
1: हाँ, तो,
0: तो, मैं रोज सोचती हूँ कि नहीं आज मैं नहीं बोलूंगी, आज मैं नहीं बोलूंगी, मैं शपथ लेकर आती।
1: यार ये बेचारे हम इंक्लूडिंग माय ओन सेल्फ, हम थोड़ा मेकओवर करना चाह रहे हैं यार, बताइए। आपने दिल ही तोड़ दिया यार, बिल्कुल चकना चूर कर दिया। व्हाट इज दिस यार, व्हाट इज दिस। नहीं अब तो अरे अब नहीं नहीं अब मैं आपसे पूछूंगा। टीचर जी आप ही बता दीजिएगा, ब्लैक बोर्ड पे लिख के मैं कॉपी कर लूंगा, ठीक है। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज। तो क्या ही बोल सकते हैं इस पे, बताइए आप। है दम, है हिम्मत, करूँ कॉल। एक मैसेज है इरशादुल्लाह का, लेकिन एक मैं जरा मैं कॉल उठा लूँ, एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम।
1: आइए आप भी आइए, बैठिए बैठिए।
2: स्कूल से पहले तो आम की क्लास लग रही है आज कल।
1: भाई साहब देख रहे हैं आप, एफर्ट की भी नंबर नहीं मिल रहे भाई। पहले राइटिंग के नंबर तो मिल जाते थे, वो भी नहीं मिल रहे।
2: मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, ये जो इन्होंने एक बात बोली थी ना कि नहाए बिना परफ्यूम मार ले, भाई लोग मैनिक्योर पेडिक्योर करा रहे, आप मेकओवर की बातें कर रहे हो यार।
1: बताइए बताइए,
2: लड़के मैनिक्योर पेडिक्योर भी करा रहे हैं तो इतना जब खुद का ध्यान रख रहे हैं तो बाल तो संभाल ही लेंगे।
1: और क्या क्या दिक्कत है, पता नहीं यार, ये जलन जलन है नदीम भाई, जलन है और कुछ नहीं है भाई।
2: लोगों को वो एक्चुअली वो वाली फीलिंग आ गई मेरे को कि मेरी शादी में अगर बाल छोटे थे तो दूसरे क्यों बड़े करे। सबके छोटे हैं।
1: उन्होंने एक पॉइंट बोला है, उन्होंने बोला कि शादी वाले दिन जो है लड़कों को एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए। डू यू अग्री ऑन दिस? नहीं
2: आई डोंट एग्री। लड़के कुछ भी करा सकते मर्जी से। मैं बोलूंगा अभी भी कि भाई शादी के पहले या शादी के बाद बीवी की सुननी ही नहीं है, मैं तो नहीं सुनता अभी भी।
1: हमें अपना नेता मिल गया।
2: मैं तो अब भी नहीं सुनता भाई।
1: अरे भाई साहब,
2: लेकिन अभी अभी अपना ये हाल हो गया था कबीर भाई। हाँ। अभी ऐसे जो हालात चल रहे था उसके हिसाब से एक चीज है कि मेरे लुक चेंज होते रहते हैं। जब अच्छा काम चलता है, पैसे होते हैं, तो मैं एकदम आपको जवान दिखूंगा, बाल वाल एकदम कलर के हुए और एकदम। अब पैसे नहीं होते ना तो बाल वाल व्हाइट के, मतलब अभी समझ लो अगर 38 की एज है ना। हाँ। तो जब पैसे होंगे तो मैं आपको 30 का नजर आऊंगा, पैसे नहीं होंगे तो 50 का।
1: ये भी सही है भाई, ये भी सही है, क्या बात कही है भाई। उठ जाओ पैसे पे डिपेंड करता
2: है।
1: अच्छा ठीक है, ये भी सही है यार, वेरी गुड आंसर। मुझे भी ये लगता है कि कई मर्तबा इन चीजों पे डिपेंड करता है। तो नेक्स्ट टाइम मैं मिलूंगा तो समझूंगा अभी नदीम भाई पैसे वाले हैं या नहीं है।
2: नहीं अभी आप देखोगे, अभी तो मैंने चलो दो दिन पहले ही थोड़ा दाढ़ी वाड़ी खुद घर में ही सेट की, मतलब दाढ़ी भी बढ़ा ली थी।
1: अच्छा वेरी गुड, तो मतलब अभी ठीक ठाक चल रहा है माहौल, बिजनेस चल रहा है अभी।
2: हाँ मतलब चल रहा है, मतलब अभी 45 वाला चल रहा है, 50 वाला आया नहीं है।
1: नहीं भाई अल्लाह ना करे, आप 30 के ही रहे, ता उम्र 30 के रहे, यही दुआ है भाई मेरी, सलामत रहे आप। अरे नदीम भाई,
2: तो भाई ऐसा है कि भाई लड़के जब अगर करने पे आए ना तो टुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम लड़के हैं।
1: बिल्कुल भाई, मैं आपके लिए मैंने तो बोला ना,
2: लगते हैं बॉडी भी बना रहे, हेयर स्टाइल भी बना रहे, सब बन जा रहे, लोग देख के पहचान नहीं पाते भाई। मैंने खुद ने देखा अपनी लाइफ में कितने लोगों को।
1: क्या बात है नदीम भाई, आपने मोटिवेशन को वापस जिंदा कर दिया भाई, वापस मैं आपके लिए मैनुअल
2: ऐसे थोड़ी है।
1: वेरी नाइस।
2: ये जो लड़कियां बोलती है ना कि वो हम लोग ये बोलते हैं हमारे छोरे छोरियों से कम है क्या इसमें।
1: वेरी गुड वेरी गुड, क्या लाइन मारे भाई, क्या इसी बात पे गौर। वेरी नाइस नदीम भाई, नदीम भाई वेरी नाइस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। स्कोर 1-1, सुमुल भाई 1, नदीम भाई 1, वेरी गुड भाई। थैंक यू भाई, ख्याल रखिए, देखते हैं लोग क्या कहते हैं। ओके भाई, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। मैं जल्दी सारे मैसेज पढ़ दूँ क्योंकि बहुत सारे मैसेज हैं जो मुझे छूट जाएंगे। इरशादुल्लाह यूसुफ़ी साहब कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई, टीचर साहिबा को बोल दो अगर मैं अच्छे से क्या क्या कर लूँ, चेंज नज़र आता है, बाकी तो छोड़ो, अच्छे से क्या हटा दूँ। और एक मैसेज है आर्य वंसारी भाई कहते हैं, भाई मैं हूँ क्या हूँ, अब तो लेडीज़ गंजा करवा रही हैं। हाँ ये भी माहौल आ गया है फराज भाई। एक और मैसेज है, हमें टेंशन बहुत होती है।

0: इसलिए बाल छोटे करवा लेते हैं. वी मैन आर वेरी सिंपल, टेंशन होती बाल छोटे करा लेते. एक बार अस्सलाम वालेकुम भाई, आतिफ बाल पीछे बढ़ाओ तो आगे से और पीछे से हो जाते. हालांकि फिजिक्स चल रही है बात. एक मैसेज जकी भाई का लिखते हैं, लड़कों के मेकअप से लुक चेंज और मुंह धो के सेम पहले जैसे. जकी भाई वैसे कॉल वाला नंबर दे दो भाई. भाई 444-344-377 आज भाई कह रहे हैं भाई बोलने दो भाई, मैडम का टाइम है और तुम बच के रहो. मैं साइड में था भाई. शिजा सलीम मदद आजाद कभी भी कहीं भी ऑलवेज एवरग्रीन. ये मुझ पर रहे रे बेचारा, ये कौन है मुझ पर तरस खा रहे हैं, इन्होंने नाम नहीं बताया अपना. सही है बेटा, साइड में बोलिए. ताहिर भाई कह रहे हैं किस दिन मिस सुम्बुल का मॉर्निंग शो में इनवाइट कर लें, जिस स्पीड से आंसर कर रही है सुम्बुल संभाल. क्या लगता है क्वेश्चन पेपर कल? हाँ कल राहुल टीचर है ना भाई. सिद्धरा बहन लिखती हैं, अग्री शादी वाले दिन एक्सपेरिमेंट मत क्या करो, मेरे वाले ने क्लीन शेव कर लिया था, ये सुबह आके टॉपिक ख़त्म करके चली जाती है. हाँ बिल्कुल एंड करके जाती हैं, पिक्चर ही ख़त्म कर दिया. मैं क्या गंजू कर लूँगा क्यों माज भाई. और एक भाई कह रहे हैं भाई मुझे मारो. कबीर भाई अस्सलाम वालेकुम, प्रिंस भाई को दिखाओ, प्रिंस भाई करेंगे इनका फैसला. आने दो अभी मैं सारे में मैसेजेस पढ़ दूं पहले. अस्सलाम वालेकुम मोइन भाई कह रहे हैं भाई आज बस मुझे मत रोको फट जाऊंगा मैं. एक मैसेज है नसीम भाई का, ऐसे मैं पढ़ नहीं सकता. एक मैसेज है मिसेज अहमद का, लिखती हैं जब फाइनेंशियल लुक अच्छा होता है लोग खुद ब खुद उमड़ के बाहर आते हैं, चाहे लड़के हो या लड़की. और हाँ आपको लगता है कि यहाँ आकर कोई भी मैन या बॉय के सर के बाल काबिल रहते हैं लुक चेंज करने के लिए? होंगे तो चेंज करेंगे ना. रोज की सब रुला रहे हैं. अस्सलाम वालेकुम
1: भाई. वालेकुम अस्सलाम.
0: क्या हो रहा है ये समाज में, क्या हो रहा है?
1: वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि हमारी याद आई मेरे भाइयों को, तो ऐसा क्या हो गया?
0: अरे तो देखिए सुबह से आपने नहीं सुना ना बिल्कुल भी, अभी भी ट्यून इन किया है क्या?
1: बस थोड़ी जब आपको कॉल किया है ना तभी ट्यून इन किया है.
0: अरे तो फिर आप हमारा दर्द नहीं समझ सकते. अच्छा तो मैं बताता हूँ सवाल मैंने ये पूछा था. मैंने कहा देखो
1: नहीं, मेरे ड्राइवर साहब बता रहे थे.
0: अच्छा बताया आपको, फिर तो ठीक है.
1: सर आपको थोड़ा जल्दी आना चाहिए था.
0: हाँ जल्दी आना चाहिए था एक्चुअली में. तो हुआ दरअसल ये कि मैंने सवाल ये पूछा कि 2021 के बाद जब बेसिकली कोविड जब जा रहा था दुनिया से, हमें आज़ादी मिल रही थी अल्हम्दुलिल्लाह, उसके बाद देखा यह गया है कि मेल्स आर ऑल्सो ऑप्टिंग फॉर मेकओवर, मतलब मर्द हजरात भी जा रहे हैं मेकओवर करवा रहे हैं. तो सुम्बुल मैंने कहा आप लोगों का थोड़ी मेकओवर होता है, आप लोगों की क्या मजाल है, बस एक हेयर स्टाइल बदलने से थोड़ी मेकओवर हो जाता है. तो वो बहुत ही क्रिटिसाइज करके चले गए यार बस भाई.
1: अरे भाई पहली चीज मेकओवर उनको किया जाता है.
0: हाँ.
1: जो यानी मेकओवर के लिए मतलब आप समझ सकते हैं कि मतलब खराब हो जाए चीज तो उसको मेकओवर किया जाता है. सिंपल सी चीज, हम लोग तो पहले से खराब है नहीं. दूसरी चीज, हम लोग जितनी चीजें करवाते हैं अगर ये क्या कहते हैं मैडम्स अगर बर्दाश्त कर सके तो मैं बता सकता हूँ.
0: अच्छा प्लीज प्लीज बताइए, एक दो चीजें बताइए जो बताने लायक हो.
1: एक दो, मोरोकन बात हम करवाते हैं.
0: अच्छा ठीक है.
1: क्यूटिकल्स फिनिशिंग हम करवाएंगे.
0: क्यूटिकल्स फिनिशिंग माय
1: गॉड.
0: ओके
1: यस, क्यूटिकल्स फिनिशिंग हम करवाते हैं. और हेयर स्पा होता है अल्हम्दुलिल्लाह. मैनिक्योर पेडिक्योर होता है. हाइड्रा फेशियल होता है हमारे लिए.
0: क्या होता है हाइड्रा? हाइड्रा फेशियल ये लिखो भाई, सारी चीजें लिखो. अच्छा ठीक है, और क्या होता है?
1: भाई हाँ? ये मोहतरमाओं को समझाइए
0: हाँ?
1: कि हमारा खुद का अपना खर्चा
0: हाँ?
1: मंथली 2500 से ऊपर ही होगा हर मंथ.
0: ये मेकअप पे कह रहे हैं?
1: नीचे नहीं होगा.
0: अच्छा इतना हो जाता
1: है? नॉट मेकअप बॉस, वी आर टेकिंग केयर ऑफ अवर बॉडी.
0: मैं आपके लिए एक हॉर्न बजाना चाहूंगा, पा पा पा पा पा पा.
1: ये वाला बेहतर था भैया,
0: ये वाला बढ़िया,
1: ये वाला बढ़िया था गुरु.
0: अरे यार प्रिंस भाई ये जो आपने गिरा
1: दिया. वैसे भी लड़कियां इसीलिए बोलती है कि मेकओवर ना करे या मेकअप ना करे, चाहे जो भी बोल रही हो. लेडीज
0: हाँ
1: देखिए सिंपल सी बात ये, आप लोगों को लगता है अगर हम लोग शुरू कर देंगे तो फिर आपके खर्चे रुक।
0: नहीं, उन्होंने ये भी बात करी कि शादी के दिन, उन्होंने बोला शादी के दिन जो है लड़कों को एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए, मतलब जिनके अभी शादी नहीं है उनको उन्होंने एक एडवाइस दी है। इस पे क्या कहेंगे,
1: फिर किन्हें करना चाहिए? लड़कियों को नकली बाल लगा के?
0: अरे रे रे भैया भैया
1: पलकों के ऊपर डुप्लीकेट वाली पलके लगा के रोमोश वगैरह सब बना के गाल फुगा के किसे करना चाहिए?
0: मैं घर चला जाता हूँ, आप आगे शो कर लीजिए, काम ही नहीं है।
1: अरे नहीं भाई,
0: अरे बाप रे प्रिंस भाई,
1: सुबह बंदा बेचारा उठ के चला जाए, सुबह उठ के नहा धो के वो निकले, जब तक बेगम तैयार होके रिटर्न वापस आती है तो बोले अरे भाई इससे तो मैंने शादी की नहीं थी।
0: अच्छा ठीक है, कंट्रोल भाई कंट्रोल। और अब क्या कह रहा था मैं, हाँ ये कह रहा था प्रिंस भाई के कल वाली आपने स्टोरी सुनी थी वैसे?
1: जी भाई सुनी थी, कल आपने मुझे कहा था कि मुझे कॉल करेंगे लेकिन आपने किया नहीं।
0: अरे आई एम रियली सॉरी, कल आपकी कॉल रही थी।
1: एक सॉन्ग के बाद में करता हूं, कोई बात नहीं भाई, आज उसका बदला मिल गया आपको।
0: हाँ वेरी नाइस, आज पूरा मतलब आपने बदला ले लिया है, मतलब
1: नहीं हाँ, मैंने लिया है
0: वो भाई
1: मतलब। इन्होंने लिया है उनके बिहाफ पे, फिर वापस मैं आपके बिहाफ पे बात कर रहा हूँ।
0: नहीं नहीं, मेरे बिहाफ इनमें हो ही नहीं प्रिंस भाई, तो हो ही नहीं, मैं इधर नहीं
1: अभी क्या। अच्छा ओके, मेंस कम्युनिटी के बिहाफ पे बात कर रहा हूँ।
0: अच्छा ऐसा, ओके
1: भाई,
0: थैंक यू थैंक यू।
1: हम लोग बहुत कुछ करवाते हैं,
0: दोबारा साथ
1: लेडीज को ये डर ना रहे कि हम आपके ब्यूटी पार्लर के पैसे कट कर देंगे, हम ये बोलेंगे हमें भी खर्चा होता है, समथिंग एंड समथिंग एंड समथिंग, व्हेन वी आर गेटिंग मेकिंग ओवर थिंग्स एवरीथिंग ईच एंड एवरीथिंग, देन वी आर लुकिंग मोस्ट हैंडसम पर्सन इन द वर्ल्ड। और आप लोग ये सब क्यों करवाती है?
0: अच्छा देने के लिए
1: करवाती है, आपको किसका अटेंशन चाहिए?
0: भाई यासिर भाई ने भी आपके लिए कहा है, आपकी मेरी तरफ से भी पी पी पी पी पी पी ये थैंक यू प्रिंस भाई।
1: तो किसका अटेंशन चाहिए?
0: नहीं नहीं बात तो सही, मैं आपके साथ हूँ भाई, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने कॉल करी और काम के लिए निकल गए आप। ये देखिए अभी अमूजन बात कर रहे थे ब्रेकफास्ट का भी, अभी तौफिक भाई ने 15 अंडे एक जगह रखे, कहने सारे मैं खाऊंगा। आपकी कैपेसिटी है, क्योंकि मैंने सुना है आपके इधर भी अंडे वंडे मिलते ना सुबह सुबह खाने के लिए।
1: अब तो मेरा ऑब्वियसली ब्रेकफास्ट आप जानते हैं,
0: हाँ हाँ,
1: डिपार्टमेंट की तरफ से आता है,
0: हाँ हाँ,
1: तो ये तो 5-6 तो नॉर्मल है भाई।
0: अच्छा पर ये 15 खा रहे हैं भाई?
1: नहीं नहीं 15 नहीं, 5-6 तो नॉर्मल ही है।
0: अच्छा,
1: क्योंकि उसमें कुछ दो दो के अलग अलग हिसाब से बनते हैं, कुछ तशक्शु का बनता है,
0: क्या बात है,
1: बाकी के दो अलग अलग टाइप के सैंडविच बनते हैं, बॉइल्ड और फ्राइड मंगली।
0: क्या बात है प्रिंस भाई, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आप सुबह आपने चार चांद लगाया उसके लिए बड़ा शुक्र गुजार हूँ मैं। और जब कहानी आएगी तो जरूर सुनेगा, आज आपको मजा आएगा भाई, आज इट्स एन एक्सपीरियंस।
1: जरूर जरूर भाई, मजा आने के लिए तो जुमेरात का इंतजार किया जाता है।
0: थैंक यू सो मच प्रिंस भाई, बहुत प्यार
1: भाई। यही सोच के आते हैं कि भाई आज तो कुछ कमाल ही होगा।
0: बहुत प्यार भाई प्रिंस भाई
1: कहानी में, लेकिन हमें क्या पता था कि आज सुबह सुबह ही कमाल हो जाएगा आपके साथ।
0: थैंक यू भाई, बहुत बहुत प्यार प्रिंस भाई।
1: नहीं आपका, आप लोगों का भाई है भाई यहाँ पे मेंस कम्युनिटी की तरफ से बात करने के लिए, डोंट
0: वरी। हमें याद रखिए, थैंक यू, और इनके बाद जो है मैं एक मैं स्पेशल मेंशन करना चाहूंगा, ये मुझे एक मैसेज आया है और इनका नाम है दुआ, और दुआ बनी है अपनी क्लास 1B की स्टार ऑफ द वीक, और ये दुआ के लिए भी पी पी पी पी पी पी कंग्रेचुलेशंस दुआ, बहुत बहुत सारा प्यार, बहुत बहुत सारा प्यार। एंड आई थिंक आई शुड कॉल यू, एक सेकंड रुको, मैं ट्राई करता हूँ, उसके बाद मैं जैस भाई आपका नंबर उठाता हूँ, लेट मी सी, क्योंकि जब बच्चों की बात आती है तो मैं थोड़ा इमोशनल हो जाता हूँ। आई हैव टू कॉल एंड चेक इफ शी इज अराउंड, या फिर स्कूल पहुंच चुकी हैं, अगर वो होंगी तो बात हो जाएगी, वरना तो कोई गाल नहीं। बाकी तो मैं मैसेज पढ़ता सी, एक सेकेंड, क्या है क्या है ये मैसेज टीचर, अच्छा अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू, कैसे कभी भाई?
0: मैं अल्हम्दुलिल्लाह एकदम बढ़िया, और ये जो आपने भेजा है एक मुबारकबाद सीधा दुआ को जाती है हमारी, बहुत बहुत बढ़िया
2: दुआ से। थैंक यू अंकल,
0: लॉट्स ऑफ लव टू यू स्वीट हार्ट, बहुत बढ़िया कांग्रेचुलेशंस। इसके लिए क्या करना पड़ता है ये स्टार ऑफ द वीक बनने के लिए? मुझे भी बनना है,
2: जल्दी से बताओ।
0: क्या करना पड़ता है?
3: अच्छा
0: काम करना पड़ता है, ठीक है। अब मैं भी बनूंगा स्टार ऑफ द वीक, देखना तुम संडे को। आई विल ऑल्सो शो यू माई सर्टिफिकेट, ठीक है? एंड कॉन्ग्रेचुलेशन।
2: इंशाल्लाह,
0: थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, ऑल द बेस्ट।
2: थैंक यू सो मच कभी भाई, इंशाल्लाह मैं स्टोरी सुनूंगी फिर कमेंट भेजूंगी। अल्लाह हाफिज। ओके,
0: अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज,
2: अल्लाह हाफिज।
0: और कंग्रेचुलेशन कहने के बाद जो है, हाँ ये जकी भाई बिल्कुल सही पकड़े हैं आप, कुछ मैसेज बीच में भी है, मैं वही पढ़ देता हूँ। मैं प्रिंस भाई के लिए दिल बना रहे हैं लोग। एक और मैसेज है, नदीम भाई कह

0: नया कंटेंट आ रहा है अब्दुल करीम भाई बहुत बहुत शुक्रिया एक मैसेज कह रहे हैं बीवी के हाथों से नोचे जाने के बाद बचने के लिए बाल करवाते हैं लोग भाई ने लिखा मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ मुझे कोई नहीं लपेटेगा वालेकुम अस्सलाम और एक मैसेज आया है भाई सुम्बुल बहन ने अच्छा ट्राई किया है लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ा हम ट्रेंड सेटर्स हैं फॉलोअर्स नहीं मेरा भाई सुम्बुल बहन लेकिन आज जो है कोराम मचा के गई है एक मैसेज कहती हैं कि कबीर जेलिस की बात ना करिए क्योंकि बॉयज ऑलवेज जेलिस मेडिक्योर पेडिक्योर वो गर्ल्स से कॉपी करते हैं एवरीथिंग देन कॉपी फ्रॉम गर्ल्स बॉयज आज के फिलर्स भी कर रहे हैं फिलर्स ये क्या होता है मुझे पता नहीं है मुझे इतना पता कि फिलर्स कुछ तो होता है बॉयज करा रहे हैं फिलर्स भी बहन इफ यू आर राइट देन मुझे साइड चेंज करनी पड़ेगी मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ आई डोंट नो व्हाट टू से राइट नाउ एक मैसेज आया शब्बीर मेरा भाई शब्बीर भाई जो बात चल रही है उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ मैं एक मैसेज हमने कोरोना टाइम पे खुद से सब सीख लिया था शादी के दिन जो धोखा मेकअप की वजह से मिलता है इसलिए करना है नेल्स हेयर्स एड ऑन सब फेक लेकिन ये टॉपिक क्या है इरफान भाई पूछे इरफान भाई वालेकुम अस्सलाम सबसे पहले तो टॉपिक मैं अभी कॉल पर बता देता हूँ आपको इनके साथ ही अस्सलाम वालेकुम जैस भाई जैस भाई आपके साथ साथ मैं जरा टॉपिक बता दूं लोगों को तो मैं ये कह रहा था कि 2022 के बाद आफ्टर कोविड वेंट अवे चला गया था तो एक आर्टिकल में आया है कि लड़कों ने मेकओवर करना शुरू किया है तो क्या आपने भी किया है ये पूछ रहा था हाँ आप बताइए जैस भाई क्या कहना चाह रहे
1: हैं कोविड का वक्त क्यों भाई पहले से क्या लड़के थे नहीं क्या
0: भैया मैंने थोड़ी छापा है यार आर्टिकल यार ये बड़े बड़े लोग छाप रहे हैं भैया
1: पहले तो भाई साहब प्रिंस भाई को और नदीम भाई को ना 42-42 तोपों की सलामी
0: है ना
1: भाई साहब 21 तोपों की नहीं पूरी 42-42 तोपों की
0: समझ रहे हैं आप
1: हाँ जी थैंक यू भाई जो इतनी बात रखी
0: मैं नहीं कह पाता आपने कह दी भाई थैंक यू भाई और आज आपने मेंशन किया आपकी एनिवर्सरी आज
1: हाँ भाई
0: अरे कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई जैस भाई क्या बात है आज तो आपको वैसे भी नहीं बोलना चाहिए इस टॉपिक पे बनता भी नहीं है आपका भाई
1: मैडम हमारी सुन ना रही है हमें टेंशन फ्री है
0: तो आज ये भी बता दीजिए आपने शादी के दिन मेकओवर किया था या फिर आप ऐसे चले गए थे मतलब शेव वेव करा के थोड़ा सा क्या बात है क्या बात है मेरा भाई शानदार यार जैस भाई हैंडसम लग रहे हो
1: चेहरा ग्लो कर रहा था माशाल्लाह
0: माशाल्लाह तो फिर तो वो शादी में लाइट की जरूरत नहीं पड़ी होगी आपके चेहरा दिखा दिया
1: ना चेहरा ही अपना काम कर गया था अंदर अच्छी लाइट पड़ रही थी भाई साहब
0: माशाल्लाह माशाल्लाह
1: पता नहीं खवातीन को आज क्या परेशानी पड़ गई क्या भाई साहब के लड़कों के मेकओवर से ना परेशानी हो रही है
0: नहीं बताइए क्या करें मैंने वेरी सिंपल ये हम अच्छे से बताना चाह रहे हैं ये हमने बताया एक मैसेज आया है जैस भाई से पूछो माज भाई कह रहे हैं आपके लिए सवाल है पहले मैडम वाली एनिवर्सरी या दूसरी अरे अरे अरे अरे कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे रहे हैं ये देख रहे हैं आप ये आपस में नंबर
1: पहले पहले पहले जो है ना अपने घर में पता करना
0: एक और मैसेज आया है आपके लिए जैस भाई क्या आपकी शादी का फोटो है हमें भी दिखाइए अच्छा ठीक है थैंक यू सो मच जैस भाई और आज की कहानी जरूर सुनिएगा यू माइट एज वेल लाइक इट मेरा भाई मजा आ जाएगा आपको
1: इंशाल्लाह जरूर
0: और आयु भाई से मिल लिए थे अब
1: अरे हाँ कंफ्यूज थे भाई साहब तुम्हें तो फोन लगाने के चक्कर में थे
0: हाँ मैंने नहीं उनको मैंने अलग से भेज दिया था आयु भाई को टेंशन में आ गए थे
1: फोन लगा रहे थे क्या भी फोन लगा रहा हूँ नन का नींद खराब मत करो बब्बर शेरा हमारा सो रहा
0: नहीं आज कुछ नया करेंगे आज कुछ नया करेंगे आज कुछ बहुत ही नया करेंगे
1: लास्ट
0: में बताऊंगा भाई आज कुछ नया होगा ठीक है चलो
1: भाई देखता हूँ भाई साहब देखो अभी देखो फोटो भेजता हूँ
0: ठीक है मेरा भाई डन डन डन
1: ओके भाई
0: अल्लाह हाफिज़ एक मैसेज है गुलजार हुसैन साहब का क्या मेकअप की वजह से फरिश्ते किसी और को ले जाते और ये हमारे ख्वाजा साहब हैं सैयद ख्वाजा साहब ने मैसेज किया और कहते हैं कबीर भाई इन कतर ऑन एन एवरेज द एक्सपेक्टेड एक्सपेट्रिएट स्पेंड्स मिनिमम ऑफ 40 कतरी रियाल फॉर देयर मेकओवर मैन आर सिंपल दिस इज आर बजट फिक्स्ड बजट मेकओवर फॉर मैन इज लिमिटेड कंपेयर्ड टू वुमेन मैन कैन नॉट कम्पीट विद वुमेन इन दिस मैटर व्हेन वी रीच 100 मीटर्स दे आर 1000 किलोमीटर्स

बड़ा ही साइंटिफिक वे में आपने रिप्लाई दिया है. ताहिर भाई ने लिखा है स्टार्ट विद जिम देन हाइड्रा फेशियल. यार ये हाइड्रा फेशियल मुझे देखना पड़ेगा, मुझे पता नहीं है, बहुत ज़्यादा ही पीछे चल रहा हूँ मैं. बियर्ड लाइन विद लेज़र और फिर क्या है डर्मा पेन, मेसोथेरेपी, बोटॉक्स फॉर क्रो फीट, मैनीक्योर पेडीक्योर, इतना ही काफ़ी है. इतना है क्या ये, क्या क्या कह गए? हाइड्रा फेशियल भी कह रहे हैं, बियर्ड लाइन विद लेजर, डर्मा पेन, मेसोथेरेपी, बोटॉक्स फॉर क्रो फीट, क्या होता है यार? आज मुझे ऐसा लग रहा है मैंने कुछ जिंदगी में पढ़ाई नहीं करी है. एक मैसेज है भाई, मिल गया मैडम को जवाब. हाँ आज तो मैडम ने जवाब दिया, हार नहीं मान रही हूँ मोहम्मद भाई. एक और मैसेज है कबीर भाई, समोसे 3, चाय का कप 3 हमारे प्रिंस भाई के लिए. भाई बिल्कुल बात. और बिग रिस्पेक्ट टू प्रिंस भाई. मोहसिन भाई ने लिखा है और एक मैसेज आया, अस्सलाम वालेकुम भाई, कुर्बानी से पहले बकरे को कुछ खिलाया जाता है, वैसे वो कुर्बानी होने से पहले तैयार होकर गए थे. इश्तियाक भाई ने मैसेज किया है, जैज भाई का नंबर, इन्होंने अलग टेलीफोन डायरेक्टरी खोल रखी है तौफिक भाई ने. जैस भाई अगर नंबर देना चाहो तो बताना, मैं दे दूंगा. एक मैसेज है, गुड मॉर्निंग कबीर भाई, विनेश शेयर लिखते हैं, मैन कैन डू मेनी थिंग्स, दे कैन ग्रो बियर्ड, दे कैन डू क्लीन शेव, फ्रेंच बियर्ड, ग्रो हेयर, हेयर कट, डू स्पाइक स्टाइल, मेनी अदर थिंग्स, बट फॉर वुमेन कैन डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स. आंसर टू दैट टीचर, शादी टाइम अगर कुछ अलग नहीं किया तो भी प्रॉब्लम, शादी टाइम कुछ अलग किया तो भी प्रॉब्लम, दे लेटर ऑन दे विल से कुछ एफर्ट ही नहीं डालते तुम तो हैं विनीश. आइए लिखते हैं, अगर कुछ अलग नहीं किया तो हमारा स्पेशल डे हुआ हमारा, सो इट्स आर स्पेशल, सो वी विल डू यूनिक थिंग्स फॉर द लास्ट टाइम. वैसे भी शादी के बाद अप्रूवल मांगना तो पड़ेगा. कुडोस टू कूल एस कुकम्बर नदीम भाई एंड माचो प्रिंस भाई. पी पी पी पी पी पी विनीश भाई आपके लिए भी. एक मैसेज है, भाई ये जो बहन कह रही है कि कुछ करो जैसे हो वैसे रहो, तो ये बताओ लेडीज, देखो मेकअप का तो बनता है, मैं इस पर क्या ही बोल सकता हूँ, ये वर्सेस हो जाएगा रियाज भाई. और एक मैसेज है, मुझे तो मेकओवर की ज़रूरत नहीं है, माशाल्लाह ओरिजिनल ब्यूटी है, बेहतरीन. और ऑल्सो ऊपर वाला क्या दिख रहा है मैसेज भी, क्या क्या देखना है, ये मैसेज क्या है मुझे, मेहर अजीज़ भाई ने. मेहर अजीज़ भाई थैंक यू. एक मैसेज है, मेकअप का सीन है कि एक फेस वॉश अलग ही खातून दिखेंगी, कुछ तो खातून भी नहीं भाईजान दिखेंगे, मर्दों का सीन फेस. हाँ भी एक फेस वॉश, किसको नंबर चाहिए मेरा, जैस भाई कह रहे हैं, जैस भाई आपका नंबर चाहिए ये तौफिक भाई को. एक मैसेज है, महीने 2500 रियाल सजने संवरने में खर्च करते हैं, माशाल्लाह हमारा 100 रियाल कमाने के लिए बहुत. भाई अबू अहमद भाई हाई फाइव भाई, बोल रहा हूँ ऊपर एक वीडियो भेजा है भाई, वो देखूँगा मैं अभी कुछ देर में देखूँगा, बाकी तो अभी वक्त हो चुका है हमारे जिंगल का. किधर ये, ओके ये रहा, चलो

0: FM 107 Time Check.
1: You know what time it is. आपको तो पता ही मैं क्या कहने वाला हूँ. 7:02 और घड़ी में भी हो रहे हैं भाई साहब 7:02. कैसे हैं आप? इंट्रोड्यूस करा दूँ अपने आप को. लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ.

0: मुशीर आलम भाई वेलकम अस्सलाम वालेकुम इरफान अली भाई लिखते हैं भाई हमारा एक ही साबुन और एक ही टॉवल में बाकी समझदार गुशारा काफी है अपने सारे रेगुलर लिसनर को फोन नंबर शेयर करें आपने तो मिलना नहीं एटलीस्ट उनसे ही मिलने क्या ताना मारा है पी पी पी पी पी पी बहुत दूर थे इरफान अली भाई थैंक यू सो मच फरहत भाई जो है एकदम आखिरी में आए हैं जैसे पुलिस आती है लास्ट में लोगों क्लाइमेक्स में सब लपेटने के लिए फरहत भाई अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं भाई और फराज भाई कह रहे हैं कल तो मजा आ गया था स्पेशली आयुब भाई को तो फेमस कर दिया हमने अच्छा ताहिर मैंने एक्सप्लेन किया है कि क्रो फीट होते क्या हैं क्रो फीट आर रिंकल्स ऑफ स्किन एट कॉर्नर ऑफ आईज विद एज अच्छा इन्हें क्रो फीट क्यों कहते हैं मगर मुझे लगा पैर वैर की बात हो रही होगी क्रो फीट आर रिंकल्स ऑफ स्किन एट कॉर्नर ऑफ आईज अच्छा यार ये तो नहीं पता था ताहिर भाई आपने तो मेरी आंखें खोल दी लेते हैं मिसेज इज एस्थेटिक डर्माटोलॉजिस्ट ये सब चलता है ताहिर भाई आपने मुझे आज ही बताया कि क्रोफीट का कोई पैर से ताल्लुक नहीं है आज ही मुझे पता लगा है ऐसा लग रहा है कि थोड़ी पढ़ाई और कर ली होती एक मैसेज अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम ये क्या कह रहे हैं कबीर भाई आज मैंने आपको देखा है मुझे सिर्फ कंफर्म करना है कि आप ही थे तो मुझे एक सेल्फी भेज दीजिए अरे ये क्या बात है अस्सलाम वालेकुम
1: वालेकुम अस्सलाम
0: हाँ जी कौन है लाइन पे
1: मैंने आपका जी मेरा नाम फरीन है
0: हाँ जी फरीन जी बताइए अस्सलाम वालेकुम
1: वालेकुम अस्सलाम आपका टॉपिक सुन रही थी मैं
0: जी जी जी
1: तो काफी डिबेट अच्छी चल रही थी बहुत मजा आ रहा था
0: जी
1: तो मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रही हूँ आप जो बोल रहे हो ना कि मेकओवर
0: मैं कुछ नहीं कह रहा
1: मेकओवर या मेंटेनेंस देखिए लड़कों को भी है ना पूरी राइट है मेंटेनेंस करने की
0: बिल्कुल
1: जैसे कि भाई ने बताया हाइड्रा फेशियल हो गया या बियर्ड का अच्छा लुक हो गया तो फिर भाई बीवियों को भी अच्छे लग जाते हैं ना
0: अरे क्या बात है
1: तो
0: क्या
1: मुझे
0: बात
1: ऐसा
0: है?
1: लगता है कि लड़कियां है ना थोड़ी पॉजिटिव हो जाती है कि अरे भाई हमारा यहाँ तो बहुत अच्छा लग रहा है तो इसीलिए शायद मेकओवर से डर जाती है आई थिंक मेकओवर या मेंटेनेंस हर किसी को करना चाहिए है कि नहीं
0: आपने इतना
1: अगर आप चाह रहे हो कि आप अच्छी लगो तो आपके हस्बैंड भी तो अच्छा लगना चाहिए ना भाई
0: क्या बात है असली तो मैं बताऊँ आपके लिए बनना चाहिए हॉर्न एक सेकंड ना बनता है आपने इतना स्वीटली पूरा डिबेट को एकदम खत्म कर दिया ना क्या बात है माशाल्लाह
1: नहीं हाँ और आपको पता है असल में लेडीज है ना बहुत ज्यादा क्या कहते हैं थोड़ी पॉजिटिव भी हो जाती है और एक्सपेंड भी हो जाती है आप यकीन करो हमारे साथ आज ज्यादा है ना अगर जिम ना करे घर में ही रहे ऐसे ही सड़े हुए रहे ना
0: सड़े हुए
1: सही है अच्छा फिर बंदा जब जिम चला जाए थोड़ा अपने पे मेंटेन करे ना भाई ऐसे लगता है ये तो छोटा कोई लड़का ही हो गया ना
0: हीरा है
1: हीरा चार बच्चों का बाप है हाँ कौन बनेगा चार बच्चों का बाप है कौन बनेगा पांच बच्चों का बाप है
0: क्या बात
1: तो
0: है?
1: वो थोड़ा पॉजिटिवनेस हो जाती है शायद
0: माशाल्लाह माशाल्लाह आपने ना लिटरली रिफ्यूट कर दिया पूरे पूरे डिबेट को आपके लिए पी पी पी पी पी पी क्या बात है वेल डन क्या बात है
1: देखो मैं आपको एक बात बोलूं
0: हाँ बताइए
1: हस्बैंड बोलते हैं जाओ जाके आप है ना अपने आप को मेंटेन कर लो आप जाओ हाइड्रा फेशियल करा लो आप जाओ मोरक्कन बात करा लो व्हाई नॉट मैन उनको राइट नहीं है और वो बेचारे देखो 9 to 5 पूरा वीक आप काम कर करके थक जाओ और दिखते भी लेबर हो एंड में
0: क्या बात है
1: अगर आप अपने आप को मेंटेन कर लोगे थोड़े अच्छे दिख जाओगे तो क्या बुराई है
0: क्या बुराई है बिल्कुल हमारा नेता हमने सब हटा के आपको चुन लिया है आप ही हमारी नेता थैंक यू सो मच आज आपने रुला दिया इमोशनल कर दिया आपने क्या बात है
1: स्टैंड विद दिस आपको अपना मेंटेनेंस करना चाहिए आई डोंट वांट कि आप है ना एकदम से डिबेट में आ जाओ कि नहीं करना है ऐसे क्यों करना है मर्द आदमी को नहीं करना चाहिए बिल्कुल करना चाहिए
0: क्या बात
1: यू शुड मेंटेन योरसेल्फ मेकओवर का मतलब ये थोड़ी होता है कि आप रात में उठोगे और सुबह में शाहरुख खान बन जाओगे जैसे ही हो तो मेंटेनेंस करना चाहिए आपको थोड़ा बार बार अच्छे से सेट कर लो आप यकीन जानो छोटे लड़के जैसे कि छोटे बच्चे है शेयर कट कराते हैं तो चेंज हो जाते हैं
0: राइट
1: ठीक है फेस लुक चेंज हो जाता है मदद में तो फिर थोड़ा अपने आप पे केयर कर ले फेशियल करा ले और मेंटेन

0: कर लेते, फिर क्या से क्या बात हो जाती है।
1: यू किल्ड इट टोटली, आज इससे बेहतर कोई नहीं बोल पाएगा इसमें मैं भी नहीं, कमाल कर दिया भाई। ये हमारी तरफ से एक और, ये हम उनको देते हैं जो अर्न कर पाते हैं। यू टोटली डिजर्व्ड इट एंड टोटली किल्ड इट, थैंक यू सो मच कि आज आपने कॉल करी। ये पहली बार तो आप शो सुना
0: फोन
1: या फिर
0: ट्राई करती ना, लेकिन लगता नहीं है फोन आपका।
1: नहीं आप एक आप ये आप तो मैं आपसे चार बार माजरत चाहता हूँ, अगर नहीं लगा होगा तो एक काम किया करें, आपने मुझे एक मैसेज कर दिया करें कि कॉल मैं कर लूँ तो मैं कर लूंगा। मैं बता रहा हूँ कॉल मिस हो जाती तो मेरा शो खराब हो जाता भाई, आपने मुझे बचा लिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, दिस इज कम्प्लीटली किल्ड इट, यू स्लेड इट जो आज की भाषा में कहते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रगुजार
0: हूँ,
1: जजाकल्ला, अस्सलाम वालेकुम, ख्याल रखिए अपना। तो भाई बात सारी ऐसी है कि कहाँ गए वो लोग, क्या बात है। एक कॉल आ रही है, इट्स रेनिंग, अस्सलाम वालेकुम, क्या है भाई।
2: वालेकुम अस्सलाम कबीर भाई, क्या हाल है।
1: बस भाई आप भले चंगे भाई, आप सुनाइए क्या हाल है भाई के।
2: अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो ये जो लास्ट हमारी कॉलर थी फरीम बाजी, क्या जबरदस्त उन्होंने पॉइंट ऑफ व्यू रखा और रियली आई अप्रिशिएट,
1: जबरदस्त पॉइंट ऑफ व्यू था। टोटल भाई टोटल छा गई भाई, छा गई, क्या बात है यार, क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आप मेकओवर के लिए क्या कुछ मेकओवर कराया आपने रिसेंटली इरफान भाई, इन द रीसेंट इयर्स समथिंग दैट यू हैव डन यू रिमेम्बर इट, कुछ ऐसा है।
2: यस एग्जैक्टली, मैं अच्छा ये मेकओवर का जो वर्ड है ना ये थोड़ा सा सूटेबल नहीं है, और ये जो सलीम भाजी ने जो कहा ना कि मेंटेनेंस, तो यस आई डू टेक केयर, और जाहिर बात है मैंने अपनी शादी पे भी करवाया था थोड़ा सा लिया, लेकिन जाहिर बात है ये जो देखें मीडिया में जितने लोग हैं, जितने मर्द नजर आते हैं, आर्टिस्ट वगैरह हैं, सब करवाते हैं, और ये मर्दों का हक है, करना चाहिए। लेकिन ये कि मिसाल के तौर पे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मेरे चेहरे पे ना एक पिंपल निकला था, उसको मैंने अपने हाथों से ब्रश कर दिया, अब उसका निशान रह गया। तो एक ब्लरिंग टैन आती, मैंने पाकिस्तान से छोटी सी टैन थी आर्टिस्ट की, तो 7000 पाकिस्तानी रुपीज की थी, तो मैंने अपनी वाइफ से कहा कि ये मैं ब्लरिंग टैन मंगवा रहा हूँ, इसकी क्या जरूरत है, मेरा फाउंडेशन यूज कर लो डब्बा छुप जाएगा तुम्हारा। मैंने कहा नहीं मुझे ब्लरिंग टैन चाहिए। खुद लाखों डब्बा भर भर के कैसे भर भर के मेकअप में खर्च करते, और अब फिर मर्द आजाद को कहे नहीं नहीं तुम्हें इसकी जरूरत क्या है। इवन मुझे रिसेंटली एक रनिंग क्लब से 700 कतरी रियाल का वाउचर मिला था, मैंने रनिंग वो जीता था, तो वो उन्होंने पूरा वाउचर मेरे से छीन लिया, बल्कि लिया नहीं छीन लिया, और फिर डीएफसी ने जाके शॉपिंग भी कर ली, मैं भी थोड़ा सा अड़ गया। मैं भी खास तौर पर उनके साथ साथ डीएफसी गया, और मैंने अकीस मर मरा की एक क्या नाम है फेस स्क्रब तो मैंने ले ही लिया, तो मैंने कहा नहीं ये तो मुझे लेना है और करना भी चाहिए। और जारी बात है वो मर्द हजरा, तो ये मैं जो लेडी थी फरहीन बाजी, मैं उनका साथ हूँ कि आदमी लोग होते ना किसी के नाक से कान से बाल निकल रहे होते, अरे भाई अपने आप को मेंटेन करो, ये जरूरी है। तो इन चीजों का ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, और अपने ऊपर खर्चा करना चाहिए, सारी बात है थोड़ा सा बन ठन के थोड़ा सा निकले, ऐसे उनका हक नहीं है। अच्छा किसी ने ये नहीं कहा कि हम उनके अगेंस्ट हैं,
1: हाँ, या ये मैंने भी नहीं कहा, ये मैंने भी नहीं कहा वो अलग बन
2: नहीं, नहीं मगर आपकी बातों से लग रहा है, क्योंकि आप कह रहे हैं ना, कह रहे हैं ये क्या होता है, ये क्या होता है,
1: नहीं मुझे नहीं पता, ये भाई मुझे आज पता लगा है, क्रोफीड का पैरों से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, ये मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता था भाई, अभी पता लगा है मुझे।
2: और जो मर्द हजरात मिसाल के तौर पे जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कोई दूसरी चीजें, तो भी डेफिनेटली वो फिल्टर से काम चला रहे हैं, लेकिन करते सब है
1: करते सब है, बताता कोई
2: करते
1: नहीं
2: सब है, एग्जैक्टली शौकीन सब है, लेकिन बताता। अच्छा कुछ मर्द हजरात शर्माते नहीं है कि यार ये सजना सवरना तो औरतों की जीनत है, तो अगर हम अपने दोस्तों को या अपने घर वालों को बताएंगे तो वो जरा शर्मिंदगी होगी, तो वो छुपी छुपी जाके फेशियल वगैरह करवा के आ जाते हैं, ठीक है ना। तो
1: अरे बेचारे अगर एक अंग्रेजी,
2: मैं खुद ऐसे करता हूँ,
1: एक अंग्रेजी का वर्ड कोई बोल दे तो दोस्त नहीं छोड़ते भाई, कोई बोल देना कि यू नो, अच्छा आज यू नो भाई आई एम से मिलने के लिए, यू नो
2: एग्जैक्टली। तो डेफिनेटली मैं बस ज्यादा फेशियल की हद तक मैं भी करवाता हूँ, मैनीक्योर पेडीक्योर मैंने आज तक नहीं करवाया, मुझे डर लगता है उस चीज से, क्योंकि कोई मेरे नाखून को पैर के नाखून को यानी खुद काटे और तो मुझे उससे थोड़ी सी एक अजीब सी वो वहशत होती है कि आपको पता है जब नाखून ज्यादा कट गया तो कितनी गोश्त के अंदर एक अजीब सा कुछ
1: दर्द होने लग गया भाई, दर्द होने लग गया इरफान भाई सोच के दर्द होने लग।
2: एग्जैक्टली तो वो मैं नहीं करवा सकता, फेशियल की हद तक करवा सकता हूँ, बाकी थोड़ा सा आपने अगर कोई फेस वॉश वगैरह या फेस स्क्रब वगैरह ले लिया तो इट्स फाइन। हाँ ये नहीं कि मेकअप धो रहे हो अपनी खवातीन का मेकअप उठा के सुबह शाम

0: भी नहीं होना चाहिए ठीक है ना पता चला गोरे चमक रहे अच्छा किसी जमाने में जो सलून वाले पाकिस्तान में कराची में तो ये था एक ना क्रीम आया करती थी मैं नाम ले ले तो तिब्बत करके ना
1: अच्छा
0: तिब्बत नाम का पता नहीं क्या था अब वो हजाम क्या करता था आपकी दाढ़ी वाड़ी बना के उसको ना तिब्बत क्रीम लगा के उस वक्त आपको इतना गोरा कर देता था आप भी बड़े खुश फहमी में रहते थे वाह भाई मैं कितना गोरा हो गया घर में आके जैसे मुंह धोया तो ये जो तलहा है ना मेरी बात से एग्री करेगा
1: थैंक यू सो मच यार
0: वन भाई बहुत सारी चीजें हैं जनाब
1: टॉपिक अच्छा है और लगे
0: रहे
1: बहुत बहुत शुक्रिया तो बात सारी यो है भाई के अरसलान भट्ट साहब ने मुझे क्रो फीड भेजे लिटरली कौवे के पैर लगा के फोटो भेजा भाई बहुत बढ़िया भाई एक कॉल उठा रहा हूँ मैं अस्सलाम वालेकुम अरे किया मैं एक बार टॉपिक दोहरा दूं क्योंकि लोग कंफ्यूजन है क्या है टॉपिक टॉपिक ये है कि 2022 के बाद जो है एक बेसिकली नॉट अ सर्वे मगर एक एरा आया है उस बताया गया आर्टिकल पे कि लड़कों ने अपना मेकओवर करना ज़्यादा शुरू किया दे हैव रियलाइज कि नहीं भाई अभी मेकओवर की ज़रूरत है अपन कब तक पड़े पड़े ऐसी दिखते रहेंगे सो वो कपड़े पहनने के ढंग से लेकर हेयर कट से लेकर हर एक चीज़ है तो डू यू अग्री कि आपने भी ऐसा किया है कि नहीं ये है टॉपिक ओके ओवर टू यू मिस्टर फवाद
2: मेकओवर इज बहुत बड़ा वर्ड है लेकिन देखें सारे लड़के जो हैं मोटरसाइकिलों पे पैदल मिट्टी धूल में मेहनत करने जाते हैं तो उनका हक है कि अपने आप पे कुछ तो लगाए ना जो अपनी अल्लाह ताला ने ओरिजिनल शक्ल दी है उसको तो बाहर रखे उसको इस धूप मिट्टी गर्द में फारग ना कर देना
1: तो फवाद भाई आप आज आज कौन सा फाउंडेशन लगा के निकले
2: सर मैं लगाता हूँ नॉर्मली 42C ठीक है कंपनी का नाम नहीं लूंगा अमेरिकन है लेकिन कहते हैं कभी कभार जब कोई बड़ी मीटिंग हो
1: ओके ओके बड़ी मीटिंग हो थोड़ा सा ओके
2: थोड़ा टिशन टिशन दिखाने के लिए ठीक है वरना नॉर्मली कहते हैं फेशियल जिस तरह है महीने में एक दफा और इट्स नॉट एक्सपेंसिव अगर आप हाफ भी करा सकते हैं कोई भी करा सकता है ये आपकी स्किन के लिए अच्छा है
1: अच्छा
2: मेडिकल मेडिकल हाँ मुश्किल काम है लेकिन मैंने पहली दफा कराया था मुश्किल लगा उसके बाद बहुत मजा आया
1: अच्छा ये ट्राई करने के लिए कह रहे हैं आप एक बार करा लो मजा आ जाएंगे जिंदगी बदल जाएगी
2: एक बार जब आप करा लेंगे तो आप हर बार कराएंगे क्योंकि आपके पांव इतने रिलैक्स और फील करेंगे ना कि आप कहेंगे यार वाकई ये दोबारा करना चाहिए
1: क्या बात
2: है ऐसी हो जाएगी जैसे चेहरे की तरह हो जाती है चमकदार
1: माय गॉड क्या प्रमोट किया है आपने भाई क्या प्रमोशन किया है ऐसे तो मेरा नाई भी नहीं करता होगा जैसे आपने प्रमोट किया
2: और ये बात बिल्कुल सही है जो लास्ट भाई साहब थे उन्होंने सही कहा कि हमसे चीजें हथिया ली जाती है
1: अच्छा
2: ठीक है और सिर्फ 80-90% वही कब्जा कर जाते हैं हाँ मेरी तो बेटी माशाल्लाह बड़ी है तो फिर जाहिर बात है माँ और बेटी दोनों मिल के लूट लेते हैं तो मुझे वाउचर में कुछ मिलता ही नहीं है
1: आपके साथ भी हो रहा है क्या
2: ये हो चुका है सर होना क्या
1: ठीक है फवाद भाई पॉइंट टू बी टेकन
2: तो बस यही है कि भाई हर बंदे को अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए लेकिन आजकल मेकओवर का मतलब यानी जो लोग ले लेते हैं ना बहुत ही ज्यादा जो मेकअप ठोक लेते हैं मर्द वो अजीब सा लगता है जो उन्होंने पहले बता दिया कि कई दफा बहुत आउट ऑफ द ब्लू लगता है बंदा कि भाई यार ओए ये क्या कर लिया है
1: भाई आज आज मुझे मुझे जितना ज्ञान आज मिला है ना मैंने कभी नहीं सोचा था भाई इतनी सारी चीजों का मुझे पता लगा है ना आज और आप लोगों से पता लगा आई नेवर न्यू के एक रूटीन
2: है पूरा नॉर्मल चीज है मैं आपको ले जाऊंगा आके स्क्रबिंग डेड हेड और स्टीमिंग कराने के लिए नो इशू
1: नहीं नहीं थैंक यू सो मच भाई मैं मुंह पे पानी मार के खुश हूँ भाई ये तो मुझे सोच के नर्वसनेस हो रही है
2: वो भी पानी मारेंगे लेकिन उनके स्टाइल अलग होगा पानी मारने का ताकि आपके जो कतर में रह रहे कि जो इतनी गर्मी और दस्त जमा हुई है ना वो निकल आए
1: अच्छा ठीक है आपने काफी प्रमोट कर दिया है देखते हैं मैं मेरा नाई अगर इससे अग्री करता है तो मैं
2: देख आप मसाज कराने जाया करें ठीक है वो बहुत जरूरी है इंसान की बॉडी के लिए इतना स्ट्रेस लाइफ आप गुजार रहे हैं देखें बैठे होंगे कुर्सी पे
1: बहुत टाइम है ना बहुत टाइम बाद आपके पास मुझे लग रहा है जीवन में बहुत

0: टाइम है माशाल्लाह तो भाई कह रहे
1: सर अगर अपने लिए टाइम ना निकाला तो किसके लिए टाइम निकाला
0: क्या बात है क्या एक आप फवाद भाई के लिए फवाद भाई के लिए बंदा भाई ठीक है
1: सर लिटरली बता दूं कोविड के बाद मैंने सबसे ये कहा है कि अपने लिए टाइम निकालो अपने लिए टाइम निकालो बंदा कब आके और कब गुजर जाए ऊपर कोई पता नहीं ये पैसा पीछे दे दे के या सबको उगा उगा के कोई फायदा नहीं
0: ये
1: इसलिए तो मैं सर आपको याद हो कि मैं यूरोप गया था
0: वो एक तो ये आदमी घूम फिर के यूरोप की ट्रिप पे आया था ये बताओ मेरे को ये एंड में डराने की क्या जरूरत थी कि उसके तो ऊपर जाने इसके बिना भी तो बात हो सकती थी डराने की क्या जरूरत थी
1: नहीं सर बंदे को बताना चाहिए कि भाई कभी भी वक्त आ सकता है ठीक है तो इसलिए अपना ख्याल रखो
0: अच्छा
1: जो पैसा कमाया अपने ऊपर लगाना जरूरी है
0: ठीक है सर अभी लगाता हूँ अभी जाते ही लगाता हूँ मैं गाने लगा के अभी सीधा फेशियल करा के आता
1: हूँ पड़े हैं उससे फेशियल हल्का सा करा ले आप
0: ठीक है आज आज मैं ये करा ले जाऊंगा फवाद भाई शुक्रिया आपने मेरी भी आंखें खोल दी थैंक यू
1: बहुत शुक्रिया
0: अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज और इनके बाद एक कॉल आ रही बहुत देर से मैं उठा लेता हूँ अस्सलाम वालेकुम हेलो बस भाई बढ़िया हूँ आप सुनाइए भाई
2: भाई अल्हम्दुलिल्लाह
0: जी भाई बताइए
2: भाई वैसे तो फोन जो झूठी अफवाह फैला रहा है कि हम लोग मेंटेनेंस नहीं करते एक तो ये बात है
0: नहीं नहीं नहीं अफवाह नहीं फैली अरे नहीं नहीं अफवाह कोई नहीं फैला रहा है सवाल ही दूसरा था वो बन गया वैसा तो सवाल ये था कि आपने मेरे को आपने कोई लुक वुक चेंज किया है पिछले चार पाँच सालों में
2: मैं लुक चेंज मैंने करते रहता हूँ भाई कभी बाल बढ़ा लेता हूँ फिर घर गया था तो दादा ने बोला कि बाल कटा लो अच्छा नहीं दिख रहा फिर मैंने कटा लिया फिर अभी इधर आया हूँ तो फिर बाल बढ़ा रहा हूँ
0: ओके बहुत बढ़िया यार ये शानदार है आप तो प्राइम एग्जांपल है सुबह क्यों नहीं आया आप सुबह आने चाहिए था आपके में बहस करवा देता
2: भाई मैं सुन रहा था मैंने मैसेज किया है
0: अच्छा हाँ नहीं आपने मैसेज तो किया है मैं
2: हाँ ने हमारा सपोर्ट किया है मैं था
0: अच्छा ओके सपोर्ट भाई सपोर्ट दिखाया आपने मजा आ गया
2: टीचर जी आई थी टीचर ने जो हमारी क्लास लगाई है हम
0: है ना आज तो भाई
2: सपोर्ट मिला है भाई सपोर्ट को मिला
0: सपोर्ट मिला है
2: उसके एक बात में ये क्यों एक बात देखो आप हम लोग जो बाल कटाते हैं हमेशा जिससे कटाते हैं उसको छोड़ के दूसरे से बाल नहीं कटाते हैं बहुत
0: नहीं हम तो नहीं चेंज करते भाई पिछले आठ सालों से जहाँ पे मैं जा रहा हूँ वहीं पे जा रहा हूँ मैं चाहे वो आदमी 50 किलोमीटर दूर चला जाए
2: भाई सबका सेम है
0: हाँ सबका ही सेम है ना वो है
2: जिससे बाल कटा रहा है ना दूसरा बोलेगा कि 5 रुपया कम दे दो 10 रुपया मैं काट दे रहा हूँ नहीं काटते हैं बोलते हैं वही काटेगा
0: यही तो है
2: उसके पास दो
0: ये
2: पहला कौन रहा है कि हम लोग अपने आप को वो नहीं कर रहे हैं बाल बिगड़ना चाहिए इसीलिए तो हम लोग उसी से कटा रहे हैं ना
0: बेवफाई नहीं चलेगी साफ सीधी बात सही है बहुत बहुत शुक्रिया भाई
2: मेंटेनेंस का था ना मैं तो मेरी बीवी बोलती रहती है कि वो बाल कटा अभी भी मैं बाल बढ़ा रहा हूँ उसको अच्छा नहीं लगा तो मैंने दिन से मेरे से बोल रही है कि बाल कटा लो अच्छा नहीं दिखा और जो जिम के हवाले से वो मैं बोलता हूँ मैं जिम जाने के लिए सोच रहा हूँ मेरा पेट बाहर आ रहा है वो बोलती है नहीं पेट अच्छा दिख रहा है
0: पेट अच्छा दिख रहा
2: है भाई मैं सोच रहा हूँ मैं जिम जाऊँ पेट बाहर आ रहा है थोड़ा वो बोलती है नहीं बहुत अच्छा दिख नहीं जाओ
0: ये मोहब्बत है मेरे भाई ये तो मोहब्बत है ए मोहब्बत जिंदाबाद मेरे भाई
2: मेंटेनेंस कैसे करें फिर सोच रहा हूँ छोड़ो अब उसको अच्छा लग रहा है तो ऐसे ही रहेगा
0: हाँ मेरा भाई भाई के लिए क्या बात है भाई एंड में जो लाइन बोली ना उसको अच्छा लग रहा है तो ऐसे ही रहना तो मेरा भाई क्या बात है भाई वेरी गुड भाई हीरो निकले आप पिक्चर के भाई वेरी नाइस थैंक यू मेरा भाई कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया ओके भाई अल्लाह हाफिज अरे भाई आज तो मतलब सब बड़ास निकाल रहे हैं अपनी मैं एक लास्ट कॉल ले रहा हूँ उसके बाद आई हैव टू स्टॉप बिकॉज बहुत सारे मैसेजेस भी हैं अस्सलाम वालेकुम
3: हाय सर साहिल
0: व्हाट्स योर नेम ब्रदर साहिल हेलो क्या कोई है साहिल हेलो
3: यस सर
0: यस साहिल आई कैन हियर यू नाउ सो वेयर आर यू फ्रॉम ब्रदर
3: आई एम फ्रॉम इंडिया
0: आजमगढ़ तो काहे अंग्रेजी में बात कर रहे हैं हम हिंदी पे आओ मैं सोचा कहीं साउथ ऑफ से हो यार आजमगढ़ से हो यार क्या साहिल भाई यार खामखा मुझे कॉल सेंटर का निकलवा देते
3: भाई से यहां मूव किए सर 7 महीना हो गया

0: छह सात महीने में तो अंग्रेजी नहीं बोलने का भाई।
1: ये वहां की आदत पड़ सर, यहाँ की नहीं
0: है। आओ आजमगढ़ में आओ, अब बात करो आजमगढ़ से आओ। तो साहिल भाई क्या कहना चाह रहे थे? साहिल भाई मेक ओवर क्या किया आपने थोड़ा सा रिसेंट सालों में?
1: अभी मैं टॉपिक बहुत थोड़ा सा सुना सर मैंने।
0: हाँ हाँ,
1: उसमें लुक चेंज का जो होता है वो एज वाइज भी चेंज होता रहता है।
0: वो तो ठीक है, वो तो नेचुरल है, पर आपने कुछ चेंज किया अपने ऊपर तीन चार सालों में? थोड़ा हेयर स्टाइल, थोड़ा लुक चेंज करने की कोशिश करी क्या?
1: हाँ करते हैं सर, जैसे बाल बढ़ा लिए, पौनी रख कर लिए।
0: अरे पौनी भी रखी है भाई ने?
1: कर लिए।
0: हाँ ए, क्या बात है भाई, फैंसी हो रहा है क्या?
1: तो
0: बात है?
1: अभी अभी हाँ। वो जो सिक्स पैक था सर दुबई में,
0: हाँ।
1: वो घर जाके पूरा खराब हो गया।
0: अच्छा,
1: और यहाँ पे आने के बाद
0: हाँ। सिक्स पैक बना लिए थे?
1: हाँ सिक्स पैक सर, लॉन्ग टाइम से था वो।
0: अरे
1: तो घर जाके घर वालों ने ऐसा वो खिलाया, वो नहारी और वो कबाब वो सारी चीजें जो है, तो ओ, उसकी वाट लग गई सर।
0: अरे
1: और दूसरा चीज ये भी होता है सर कि हाँ। जैसे जैसे आपने बोला कि ये लुक मेरे ऊपर अच्छा लग रहा है,
0: हाँ।
1: वो तुरंत बीबी को ना पसंद आ जाएगा। हाँ। बोले गो बंदा कहीं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है सर।
0: अच्छा।
1: इसलिए आपको ये नहीं बोलना है कि ये मेरे ऊपर, अगर आपने बोल दिया कि ये सिक्स पैक अच्छा लग रहा है ना, फिर वो सोचेगी कि इसकी वार तो लगानी है बहन।
0: अच्छा, तो पूछते नहीं हो क्या पहले कि मैं ये लुक रख लूं कि ना रख लूं?
1: नहीं, वो जैसे आप बोलोगे कि ये चीज मेरे ऊपर अच्छा लगे, मैं ये रख लेता हूँ।
0: अच्छा।
1: नहीं नहीं नहीं नहीं
0: नहीं नहीं, नहीं, ये
1: हाँ,
0: नहीं
1: तुम गंजे सही लगते हो। हाँ बेस सही लगता तुम्हारे ऊपर।
0: अरे मेरा चांद,
1: चीजें होती है सर। मतलब सर वो सोचेंगे कि भाई अगर मुझे अच्छा लग रहा, जो चीज उनको अच्छी लगेगी वो सोचेंगे कि ये दूसरे को ना अच्छी लग जाए कहीं। तो वो सारी चीजें बड़ी बड़ी मुश्किल होती है सर।
0: अरे रे साहिल भाई,
1: जैसे हाँ। मैंने इस तरह से मेंटेन किया था अपने आप को सर,
0: हाँ।
1: कि मेरी जो डॉटर है वो इंटर में पढ़ रही थी उस टाइम,
0: हाँ।
1: और मेरी एज इस टाइम 41 है, बट वो लुक वाइज उस तरह से दिखता नहीं है क्योंकि भाई बहुत हेल्थ कॉन्शियस है। तो वहाँ पे जब मैं स्कूल में गया, उस वक्त प्रिंसिपल वो मेरे पहचान के थे, तो सीधा वो क्लास में लेके गए। तो वहाँ पे लड़के लड़कियां सब बैठे हुए थे,
0: हाँ।
1: क्लास में अब डॉक्टर मेरी उठ के, जैसे मेरे यहाँ वो है नॉर्मल, आके वो गले लगते हैं जैसे,
0: हाँ।
1: भाई के या मम्मी के या किसी के भी,
0: हाँ।
1: इस तरह से होता है सर।
0: हाँ।
1: तो वो लड़की उठ के आई मेरी, मैं बोला कोई दिक्कत नहीं बताता, नहीं नहीं बता ठीक है जाओ। अब वो पौनी बनाया हुआ, सिक्स पैक है, बॉडी वॉडी जो है ना, तो वो मेरे निकलने के बाद टीचर, वो लेडीज टीचर थी, अब आया वो हिजाब करती है, तो उन्होंने कहा कि तुमको मालूम नहीं है कि यहाँ पे अलाउड नहीं है, कैसे तुमने बुला लिया किसी लड़के? कह रही है लड़का नहीं मेरे पापा है।
0: अरे पापा को लड़का बोल
1: क्या? बाल बीमा हुआ था क्या इनका? कौन भाई?
0: अरे यार भाई, साहिल भाई आपके लिए यार, साहिल भाई के लिए, साहिल भाई के लिए भाई, जलवा है भाई साहिल भाई यार, क्या बात है, क्या बात है भाई, इंस्पायर कर दिया।
1: आजमगढ़ से तो टू लाइनर तो बनता है सर।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कहिए इरशाद।
1: की मोहब्बत तो सियासत का चलन छोड़ दिया, हम अगर इश्क ना करते तो हुकूमत करते।
0: अरे भाई ये लो भाई, ये लो भाई, ये लो, वेल डिजर्विंग, वेल डिजर्विंग भाई आज साहिल भाई, क्या भाई अंत कर दिया भाई, आखिर आखिर ये हुई आजमगढ़ियों वाली बात। थैंक यू सो मच मेरे भाई, बहुत प्यार। ओके भाई अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिए।
1: अल्लाह हाफिज़।
0: तो उस्मान भाई आपको मैं कॉल नहीं कर पाया हूँ, आई नो, बट आई वुल नॉट बी एबल टू टेक कॉल्स अभी, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस हैं। बाप रे भाई, बाप रे, आज तो इतने मैसेजेस हैं। तला भाई आपको मैं कुछ देर में कॉल करता हूँ, बाप रे कैसे पढ़ूँ मैं सारे, एक सेकंड। हाँ तो जिशान भाई कहते हैं आज की स्टोरी किसी बहरूपिये पे तो नहीं है, जानेंगे आप क्या है। एक मैसेज है, कबीर भाई सरवर भाई रोज बोलते हैं कि कबीर भाई को छोड़ूंगा नहीं, तो आप उनके हाथ कब लगोगे? नहीं बताऊंगा। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, बेचारे को गंजा है क्या, वही करेंगे। ये मैसेज है, इनके बाद बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं इरफान भाई, ओके। फिर शादुल्लाह यूसुफ़ी साहब लिखते हैं मुझे जमाल भाई का इंतज़ार है। जमाल भाई को भी मैं उनकी कॉल आ रही थी, मुझसे ड्रॉप हुई है, बिकॉज मैं अभी कॉल उठा नहीं पाऊंगा क्योंकि मुझे सारे मैसेज ख़त्म करने हैं। एक मैसेज है, मेंटेनेंस तो हम भी करवाते हैं भाई, हमने तो अपनी शादी पर 500 कतरी रियाल गोल्ड मास्क करवाया सेलों से, फेशियल अलग करवाया 2013 में। आजकल के लौंडे लपेटे क्या जाने, लौंडे लपाटे क्या जाने। या इरफान अली भाई इतना सुना दिया आपने तो। एक मैसेज, कमिंग बैक टू द टॉपिक, आफ्टर कोविड पीपल एक्चुअली स्टार्टेड लुकिंग टू मच इन द मिरर, मे बी दैट्स द थिंग, एक्चुअली में यही हुआ है सईद खाजा भाई, क्योंकि लोग ज़्यादा शीशे में दिखने लगे तो उनको अंदाजा हुआ कि बाबा अभी तो अपने को थोड़ा एक्सपेंसिव दिखना पड़ेगा। नुमी भाई कहते हैं भाई अपन फोर्टनाइटली क्लिनजिंग पक्की कराता हूँ, कुछ कोई कुछ कह ले, इट्स नॉट

0: Poor maintenance is just basic aesthetics. Okay. इनके बाद सही हमजा भाई ने लिखा है, सलाम कबीर, ये भी सिस्टर थी, इन्होंने मर्दों के लिए बहुत कह दिया, बट डिपेंड्स ऑन स्किन टू स्किन. ऑल्सो हम तो हैंड वॉश से भी मुंह धो लेते हैं, हेयर कट करवाएं, क्रीम लगवाएं, ऐसे ही रहते हैं. नेचुरल ब्यूटी वॉक पर वॉक और रनिंग करते हैं. अच्छा, मैं तो हैरान हो जाता हूँ कि फेस की क्रीम अलग, हाथों की अलग, नाइट की अलग, डे की अलग. भाई इसी हैरानी में मैं भी जी रहा हूँ, रिसेंटली डिस्कवर किया है मैंने. एक और मैसेज है, लास्ट ईयर चांद रात पर 200 कतरे रियाल लगाकर हाइड्रा फेशियल करवाकर घर आया, सोचा बेगम को सरप्राइज मिलेगा, बट शी लुक्ड एट मी एंड सेड, हेयर कटिंग करवाई थी तो फेशियल भी करवा लेते. अरे यार भाई, दिल टूट गया मेरा ये पढ़ के, मेरा दिल टूट गया. अरे रे रे रे रे, अरे मेरा भाई शे मंजूर भाई, भाई सब सारे लड़के भाई के लिए दुआ करेंगे कह रहे 200 कतरे रियाल लगा के हाइड्रा फेशियल करवाए घर पहुंचा, अब बेगम कह रही है मूवी दिलवा ले अरे भाई इनके बाद एक मैसेज कहते, कबीर भाई, बेसिक हाइजीन शुड बी मैंडेटरी फॉर एवरीवन इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर. इसके अलावा अपना ख्याल रखना, जिम जाना, मेंटेनेंस करना, सब कहा गया. आई एम नॉट सेइंग के पॉप की तरह मेकअप शुरू कर दे. आई ऑलवेज अप्लाई सनस्क्रीन एंड लिप बम. और थाईलैंड जाके मेडिक्योर पेडिक्योर मस्ट है. स्टे यंग, एज इज जस्ट अ नंबर. बीच में थाईलैंड मेंशन करना जरूरी था शुभ भाई उसके बिना भी तो बात हो सकती थी एक मैसेज है अरबाज भाई का, भाई ने कतई लुक चेंज किया, कह रहा सर मैंने बहुत लुक चेंज किए, करता रहता हूँ. भाई बहुत बढ़िया, सारे लुक बढ़िया लग रहे हैं यार, मुझे पहला वाला लुक ज़्यादा अच्छा लगा आपका अरबाज भाई. एक मैसेज है आज कबीर भाई, भाई हर हफ्ते अपना मेकओवर होता है जब बालों पे कलर लगता है, आज पक्का बहरूपिया की कहानी आने वाली है. एक मैसेज है, क्या है, हम तो सिविल इंजीनियर साहब, हमारे फेस पर कोई भी क्रीम काम नहीं करती नहीं धोबी और टेलर, इन तीनों को आप चेंज नहीं करो, आपका दिमाग. हाँ ये बात तो है, हम भी चेंज नहीं करते. इश्तियाक उस्मानी भाई, मैं आपके बिल्कुल साथ हूँ भाई. एक मैसेज है आया भाई का, लिखते हैं, भाई क्या मेकओवर, बस बेड और हेयर स्टाइल चेंज करना, इंस्टेंट मेकओवर है, मैं आपके साथ हूँ भाई. यार कॉल कर लेते मज़ा आ जाता. अच्छा रुको भाई, इनकी कॉल कर ही लेते हैं, मैं एक दो मैसेज और पढ़ दूँ भाई प्लीज़. सलाम कबीर भाई, आज तक सिर्फ संतूर मम्मी देखी थी, आज संतूर अब्बा देख लिए अरे भाई ओ मनी भाई, वालेकुम अस्सलाम भाई, मैं सबके मैसेज नहीं पढ़ पाऊंगा, बहुत सारे मैसेज. साहिल भाई का लाइन एक नंबर था, तुम गंजे ही अच्छे लगते हो, है ना, कितनी प्यारी लाइन थी वो भाई, बहुत प्यारी लाइन थी फजील भाई, वो बहुत प्यारी लाइन थी वो. और एक मैसेज है, मिस कर दिया आज के टॉपिक, क्या आप तो गया टॉपिक. हाँ बताओ, बीच में थाईलैंड मेंशन करना ज़रूरी था फरद भाई ज़बरदस्ती. एक मैसेज, शकील सिद्दीक ने कहा था, आदमी नेचुरल ब्यूटी एक ब्लेड और क्या है चक चल चक, और अब कैसे खर्चा करने लग गए. सादिक भाई दुनिया बदल गई है, नहीं निकल पा रहा, क्या है अभी काफ़ी पिक है, लेकिन भाई बहुत बढ़िया मेंटेन करी है आपने दाढ़ी भाई, क्या बात है रिजवान भाई, इम्प्रेसिव भाई इम्प्रेसिव. अच्छा ये कह रहे हैं मजा आया था, इनको मैं लास्ट कॉल कर लेता हूँ प्लीज़, है ना, ज़रूरी है, वरना भाई जो है ना अभी नाराज़ घूम रहे हैं मुझसे पहले, मैं इनको कॉल कर दूँ. भाई मैं सारी कॉल नहीं ले पा रहा हूँ, मैं माजरत चाहता हूँ, क्योंकि आज जो है ट्रैफिक बहुत ज़्यादा चल रहा है भाई. एक सेकेंड, ये उस्मान भाई को कॉल कर रहे हैं, देखते हैं क्या कहना है. तला भाई ने, अरे तला भाई यार, अस्सलाम वालेकुम जी. उस्मान भाई कैसे हैं भाई
1: जी? भाई जी ठीक है, आप कैसे हैं?
0: बस भाई अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं भाई.
1: एक सेकेंड, आपकी आवाज मुझे वो गाड़ी कस्टमर बंद कर रहा हूँ, कैसे है भाई? ठीक है
0: एकदम भाई, अल्हम्दुलिल्लाह. आप सुनाइए भाई उस्मान भाई, क्या कहना चाह रहे थे
1: यार? इतनी बातें थी जेन में, अभी एक दो ही याद है मुझे.
0: एक बता दो.
1: आपको याद होगा इसका, जो पाकिस्तान से पता नहीं इंडिया में भी है ये, पहले टाइम में ना कुछ आज से कोई 15 साल पहले, एक बनाते थे हर घर में क्रीम, वो तीन चार क्रीम मिक्स करके वो रात को लड़कियां लगा के सोती थी और सुबह भाई शादी ब्याह में कभी चेहरा कभी देखते थे ना, तो वो चेहरा तो जहाँ पे लगती थी क्रीम व्हाइट हो जाता था, कान काले रह जाते थे
0: वो मुझे मैं समझ गया, उसको कुछ कहते उसको कुछ अलग से कुछ नाम था कोई, मैं नुस्खा बोल रहा हूँ
1: पता नहीं क्या उसको कहते थे। हाँ। तीन चार मिक्स होती थी ऐसे। हाँ। ये जो बहनें सुन रही होंगी उनको पता होगा वो क्या। और गर्दन भी पाई काली नजर आ रही है, चेहरा

0: जहाँ जहाँ पे लगा हुआ है।
1: अरे रे रे रे भाई, या कभी आपने अप्लाई किया रिसेंटली, कुछ अप्लाई किया भाई आपने उस पर भाई, एक्सपेरिमेंट किया
0: भाई? मैं ऐसा कुछ भी नहीं, कभी भी नहीं, मैं कभी कोई क्रीम नहीं लगाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह।
1: ये नदीमा कह रहे हैं मुल्तानी मिट्टी नहीं, नदीमा वो देयर इज इट वाज समथिंग एल्स, वो कुछ
0: नहीं, नहीं मुल्तानी मिट्टी नहीं,
1: वो कुछ और है,
0: क्रीम ही रहती थी ये, तीन चार में नाम नहीं अभी टोटल का वो भाई। मैंने एक शादी पे फेशियल कराया था और अभी कुछ टाइम पहले एक ऑफर लगी हुई थी यहाँ पे, तो वो ₹50 में 10 सर्विस दे रहे थे।
1: अरे मेरा भाई ये तो यार शेयर क्या करो भाई, भाई?
0: वो सर्विस पता क्या दी उन्होंने, आपने ये फैक्ट्रीज देखी होंगी मशीन पे वो बनती हैं चीजें, हाँ, जैसे मोबाइल बन रहा है,
1: हाँ,
0: वो एक सेकंड में मशीन उठाती है, आधे सेकंड में उठाती है, आगे रखती है, आगे उठाती, वैसे भाई उन्होंने 10 सर्विस मुझे दी जल्दी जल्दी वो सर्विसेज थी। अब आप कुछ सोचो 50 में क्या ही आएगा।
1: अरे यार आपने उम्मीद जगा दी थी, मैंने कहा 50,000 में भाई ने 10 सर्विस, यार ये तो मतलब रिकॉर्ड तोड़ दिया।
0: नहीं बाल बाल काटे, वो फेशियल किया और स्क्रब लगाया, ये वो सब किया उसने, लेकिन वो आप समझिए ना जो मैंने आपको बता
1: मैं दिया। समझ गया भाई। वो पोछा मार दिया बस,
0: पोछा मार दिया।
1: वेल डन भाई, वेल डन भाई, उस्मान भाई दिन बना दिया आपने, सेट कर दिया भाई मामला।
0: और दूसरी एक चीज बोलना चाहता हूँ,
1: बोलो ना बोलो,
0: कि जैसे सब लोग ये बता रहे हैं इसमें अपना अपना, वो ठीक है करें अपना फेशियल करें सब कुछ पैसे लगाएं, लेकिन थोड़ा बॉडी पे भी ध्यान दें।
1: हाँ हाँ ये भी जरूरी है, कल्ले कल्ले से भी चीज पे ध्यान नहीं।
0: ये शक्ल पे पैसे लगा लो इतना, वो ये ब्रांड्स की चीजें खरीद के खर्चा मर्चा करके और पेट निकले होते हैं कईयों के, सर झुके होते हैं, मतलब आपको कुछ कपड़ा पहनो तो जचना भी चाहिए थोड़ा सा, खाली चेहरे की वो खूबसूरती देखे क्या करोगे
1: अभी। आपने तो मुझे टारगेट किया है, मुझे ऐसा लग रहा है पेट निकल रहे होते हैं लोगों के।
0: हाँ नहीं नहीं नहीं नहीं, और एक और बात भाई, वो लास्ट टाइम भी बोलना चाह रहा था, अभी बच्चों को छोड़ के बस घर पहुंचो भाई, सुबह जब जाता हूँ ना निकलता हूँ
1: जी,
0: ऐसे होगा अल्लाह माफ करे ऐसा माहौल होता है ना गाड़ी में, और जैसे ये एफएम लगाता हूँ आपका, बच्चों के चेहरे पे हल्की हल्की स्माइल आना शुरू हो जाती है।
1: थैंक यू भाई, बहुत बहुत बड़ी बात कह दी आपने भाई, मेरा दिन बना दिया।
0: और अक्सर मैं ये सुन रहा होता हूँ कभी ड्राइव करते हुए एफएम सुनो तो वैसे वो उंगली जो है ना स्टेरिंग पे घूमती रहती, चैनल चेंज होता रहता है, जैसे ही आपका अगर आ रहा है तो फिर उधर ही बस स्टक हो जाता है, वही।
1: बहुत प्यार भाई, यू हैव लिटरली मेड माय डे भाई, ये बोल के ना आपने दिन सेट कर दिया भाई, कसम से बता रहा हूँ।
0: नहीं नहीं सच बात है, कोई वो नहीं इसमें लगी लगती नहीं है, ये सच बात है भाई।
1: जजाक अल्लाह मेरे भाई, दिल से बहुत प्यार।
0: बस आपका टाइम बहुत ले लिया, अभी आप अपना
1: बस भाई कहानी सुनाएंगे, बस आप कहानी सुनेंगे आप इंशाल्लाह, ठीक है? देखिए मेरा बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़। और तला भाई ने जो मुझे फोटो भेजा, इनके तला भाई यार एकदम प्रीमियम लुक आया भाई, एकदम आप मत मिलिएगा मुझसे भाई, मैं इतने बड़े लोगों से नहीं मिलता, सॉरी, थैंक यू भाई, तला भाई अल्लाह हाफिज़। और एक मैसेज है प्लीज़ जनाब, क्या है ये अपना लुक भेजा है भाई ने 5 साल पहले का और अभी का, और ये 5 साल का जो वो है कंपेरिजन उमर शहजाद भाई का, शहजाद भाई ऊपर आपका छोटा भाई लग रहा है और ये बड़े भाई लग रहे हैं। एक नदीम भाई कह रहे हैं भाई बात तो सही है, स्कूल पहुंच जाता है फिर भी वो गाड़ी से नहीं उतरता भाई, थैंक यू सो मच यार, आप लोग खुश हैं शो सुन के, मैं खुश हूँ। सादिक भाई कह रहे हैं भाई को सर्विस के नाम पे कन्वेयर बेल्ट पर डाल दिया। अरे भाई ओके हाँ, तो अब कहानी की तरफ बढ़ते हैं। तो मैं आज की स्टोरी सुनाने से पहले सिर्फ इतना कहूँगा आपको, जो मैं आपको सुनाऊँगा ना वो एक एक्सपीरियंस है, इट्स नॉट जस्ट अ स्टोरी। बहुत मेहनत लगी है मुझे कहानी तैयार करने में, और मैं आपसे सिर्फ एक ज़रा सी मेहनत चाहता हूँ कि आप अपने आप को इस जगह पे रखिएगा जहाँ की ये कहानी है, दैट्स ऑल आई वांट, ठीक है? और फिर हम इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे, इज दैट ओके? ठीक है, तो अभी मैं जो ना थोड़ा सा आपको एक सेकेंड यार कुछ बढ़िया सा आपके लिए लगाते हैं, ताकि जो है ना एकदम मज़े आ जाए आपको, मतलब आप बोलेंगे क्या हो गया ये, बस मुझे मिल जाने दो, किधर गया मैं, किधर गया, अगर आप हाँ ओके रेडी। ये हमारा वीकेंड का रिचुअल रहता है, अगर आपको याद हो, वॉल्यूम हाई है, ये इसके गाने के ठीक बाद कहानी की तरफ बढ़ रहा हूँ मैं, तो वो ओहो हो आने वाला है, आपको बताइए साथ में करना है, वॉल्यूम बढ़ा के रखनी है, सुबह सुबह एकदम चार्ज भाई, गाने से ही आपका फोन चार्ज हो जाएगा, आप देखो आप रेडी पब्लिक। सीता भाई साहब इसके बाद कहानी है, साथ में करना जी, ओहो ऐसे नहीं, हां जी चलो जी सारे

हाँ जी, तो ये गाना जो है सैड गाना है, लेकिन सब भंगड़ा बातें हैं इस पे। इस मानी भाई ये कह रहे हैं भाई सैड गाने में लग जाती है भाई, यही काम है इसी बात को तो पीस आ भाई। और इरफान भाई कह रहे हैं पिछले वीकेंड भी भाई, वीकेंड का हमारा रिचुअल है ये गाना चलाना, बड़ा ज़रूरी है ये गाना जो है ना, स्पेशली हम दिल्ली वालों के लिए बड़ा ज़रूरी है। इट टेक्स अस इन द वाटर पार्क, समझ नहीं रहे आप, ये गाना चलता ना तो हमारे जहन में आता कि हम वाटर पार्क में, हमारे अंदर के बच्चे को हम आपके लिए मार दें, ऐसा थोड़ी। ये मैसेज क्या है, लव यू भाई, गुड मॉर्निंग, मज़ा आ जाता है भाई, थैंक यू सो मच भाई, बहुत सारा प्यार रिजवान भाई को, बहुत सारा प्यार। एक मैसेज है भाई, एक बंदा है इरफान क्या प्रिंस भाई लिखते हैं, एक बंदा अपने दिल की तकलीफें बयां कर रहा है और आप बोल रहे हो ओहो। प्रिंस भाई इसी बात का तो पेश आ भाई, चलो भाई शुरू करते हैं। तो जैसे मैंने कहा, आज की कहानी इज गोइंग टू बी एन एक्सपीरियंस, सो प्लीज़ इस कहानी को जब आप सुनेंगे ना तो जो भी मैं बोलूँगा वैसे ही आप अपने आप को ढालते रहिएगा कहानी के साथ साथ, तब आपको डबल ट्रिपल मजा आएगा, तब आपको लेगा पैसे वसूल होगा, ठीक है। तो कहानी का मकसद, सबसे पहले तो डिस्क्लेमर, इस कहानी का मकसद किसी के जज्बात को ठेस पहुंचाना नहीं, कहानी किसी किस्म के एजेंडे प्रोपेगेंडे को प्रमोट नहीं करती है, फिर सेवन किसी भी किस्म के सुपरस्टिशन को ना तो बढ़ावा देता और ना ही कभी देगा, लेकिन आज का किस्सा भी एकदम असली है और इस किस्से को अब आप फुल वॉल्यूम पर सुनिए, वॉल्यूम बढ़ा दी जाए। तो देखिए ये वैसे बहुत फेमस किस्सा है, पर जिनको नहीं पता है उनके लिए, और मैं ये मान के चल रहा हूँ, आई एम जस्ट अज्यूमिंग कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, जिन्हें पता है बहुत बढ़िया, आप ये मैसेज मत कीजिएगा हाँ हमें तो पता है, वेरी गुड दैट यू नो, बट जिनको नहीं पता है वो मेजरली सुने इसको। तो आज के किस्से को सुनाने के लिए मैं आपको ज़्यादा साल पीछे नहीं ले चलूँगा, लेट्स गो टू 2012, 2012 जनवरी की तारीख, और इस वक्त एक जहाज तैयारी कर रहा था, रवानगी की तैयारी, और जो जहाज था ये बड़ा खास जहाज था, ऐसा वैसा जहाज नहीं था, ये था कोस्टा कॉन्कॉर्डिया। यूरोपियन टूर की तरफ ये जहाज पानी का तैयार हो रहा

था, 7 दिन का ये सफर होने वाला था। और अगर मैं इसे कंपेयर करूं बहुत सारे जहाजों से, आपके जहन में पानी का जहाज जब भी आता होगा तो आप सोचते होंगे टाइटैनिक। तो यस, अगर टाइटैनिक से इसे कंपेयर करना चाहेंगे तो यूं समझ लीजिए कि टाइटैनिक से बड़ा तो था ही, टाइटैनिक से इतना बड़ा था कि 2000 एक्स्ट्रा पैसेंजर इसके अंदर आ सकते थे। सो नाउ यू कैन कैलकुलेट कि कितना बड़ा होगा, बाद में इसकी तस्वीरें देख लीजिएगा। इस जहाज में सफर करने के लिए तैयार हो रहे थे पैसेंजर्स 4252 पीपल वर रेडी टू बोर्ड कोस्टा कॉन्कॉर्डिया। इस जहाज को चलाने वाली जो कंपनी थी उसका नाम था कोस्टा क्रोसेयर, और ये पहले कंपनी जो थी ये पहले कार्गो शिप्स वगैरह ऑपरेट करती थी, मगर फिर 1948 में इन्होंने अपनी एक कोस्टा लाइंस लॉन्च कर दी थी, और देखते ही देखते ये लोग यूरोप की सबसे बड़ी क्रूज शिप कंपनी भी बन गए थे। आगे चल के भी 2000 जब साल आया तो कार्निवल कॉरपोरेशन के नाम से उन्होंने कंपनी भी खरीद ली, उस कंपनी ने इन्हें खरीद लिया, और कोस्टा क्रोसियर एक सब्सिडरी कंपनी बन चुकी थी। बहरहाल जून 2006 में इन्होंने अपना पहला जहाज लॉन्च किया था कॉन्कॉर्डिया क्लास का, जो ये वाला जहाज था जिसकी ये कहानी अब आप सुनेंगे। नाउ द इमेजिनेशन शुड रन। आप जा रहे हैं सफर करने वाले हैं, 4252 कस्टमर्स में से एक आप है, सफर करने वाले पैसेंजर एक आप है। आप जैसे ही पहुंचेंगे आपके सामने एक बड़ा सा इटालियन क्रूज शिप, बहुत बड़ा, जिसको बनाने में अगर मैं बताऊं कितने लगे तो $570 मिलियन लगे इसको बनाने में, उस जमाने के हिसाब से 2500 करोड़ रुपए, देसी भाषा में बता रहा हूं। जहाज के कैप्टन थे इटालियन, उनका नाम था फ्रांचेस्को शतिनो, और साल 2002 से वो कंपनी के साथ थे, तो काफ़ी लंबा टाइम उन्होंने कंपनी के साथ बिताया था। तो इस जहाज़ में अगर आप एंटर करते और आप एक पैसेंजर होते तो कॉन्कॉर्डिया में एंटर करने के बाद आपको अंदाज़ा होता कि एंटरटेनमेंट की कोई कमी नहीं है। 4 बड़े स्विमिंग पूल्स हैं इस जहाज के अंदर, 5 रेस्टोरेंट्स, 13 लाउंजेस हैं प्रॉपर, 1 कैसीनो, 1 बड़ा सा बास्केटबॉल कोर्ट है, बड़ा सा फिटनेस सेंटर जिसमें सोना जिम टर्किश बाथ, और इतना ही नहीं इस जहाज के अंदर एक F1 का सिम्युलेटर तक बनाया गया था। अब जहाज में जो लोग ऑन बोर्ड हुए थे वो सब बड़े खुश थे, बहुत सारे लोग अपने बच्चों के साथ थे, बहुत सारे लोग अपने फैमिली के साथ थे, इसमें बुजुर्ग भी थे, इसमें लोग व्हील चेयर पर भी थे, क्योंकि सबके लिए कुछ ना कुछ फैसिलिटीज थी एंड एवरीबॉडी वॉज ऑन बोर्ड। ये जो जहाज़ था जब निकलने के लिए तैयार हो रहा था तो बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, जैसे एक कपल था वो ऊपर वाले डेक पे थे, लीजी एंड एरोन, और ये दोनों आपस में बात कर रहे थे। लीजी जो थी वो बिल्कुल अपर डेक पे थी, उन्होंने एरोन से बोला यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना बिल्कुल टाइटैनिक वाली फील आ रही है, और टाइटैनिक वाला पोज देते हैं, उन्होंने टाइटैनिक वाला पोज भी दिया। एंड जो अंदर जहाज़ के जब डिनर का टाइम हो रहा था, जहाज़ के अंदर पूरा का पूरा जो समा था वहाँ पे एक गाना भी चल रहा था, और ये जो गाना भी था ये कोई नॉर्मल गाना नहीं था, ये टाइटैनिक का जो गाना है वो चल रहा था। ये जो जहाज था जब रवाना हुआ सो एवरीथिंग वाज काम एंड कोजी। 7:18 पर रवानगी हुई, डेस्टिनेशन थी सवोना। 2 घंटे तक ये जहाज एकदम नॉर्मल चला, लेकिन 2 घंटे के बाद कुछ ऐसा शुरू हुआ जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। लोग अपने अपने कैबिन्स में थे, कुछ लोग डिनर कर रहे थे, डिनर वाले सेक्शंस में थे, और फिर एक आवाज आई बूम। किसी को समझ नहीं आया कि अभी तक क्या हुआ, क्योंकि बहुत सारे लोग इससे पहले कभी क्रूज पे चढ़े ही नहीं थे, बैठे ही नहीं थे, देखा ही नहीं था। जहाज के साथ क्या हुआ पहले तो लोगों को समझ में ही नहीं आया, अफरा तफरी का माहौल, जो लोग रेस्टोरेंट में थे प्लेट्स उड़ रही थी, टेबल्स और चेयर इधर से उधर जा रहे थे, लोग गिर रहे थे, चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे, और फिर एकदम से लाइट्स भी ऑफ हो चुकी थी, तो किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि करना क्या है, जाना कहाँ है, हुआ क्या है। पर यह गलती किसकी है, जहाज के साथ क्या हुआ, ये गलती आपको समझनी पड़ेगी। कैप्टन फ्रांचेस्को शिटिनो वो एक आइलैंड के पास से होते हुए जहाज को ले जाना चाहते थे, कैप्टन खुद
और ये जो आइलैंड था, ये छोटा सा टापू जो था, ये इटली का बहुत फेमस टापू है जिसका नाम है गिगलियो आइलैंड। ये चाह रहे थे कि जो गिगलियो आइलैंड पे लोग रहते हैं वहाँ के लोग भी ज़रा जहाज की चमक धमक, इसके नज़ारे देख सकें, तो उसके करीब से निकालना चाह रहे थे ये जहाज़ को। देखिए, जब भी कोई जहाज ज़मीन के बेहद पास से गुजरता है तो उसे सेल पास्ट या सेल बाय कहते हैं। जहाज जब हद से ज़्यादा बड़ा हो, जैसे कोस्टा कॉन्कॉर्डिया था इतना बड़ा हो, तो ऐसा जहाज तकरीबन 7-8 किलोमीटर दूर ही चलता है, पास से नहीं निकलता ज़मीन से, क्योंकि अगर वो और करीब आएगा तो टकराने का डर है। उसे गहरा पानी भी तो चाहिए जहाज को। पर कैप्टन साहब के जहन में कुछ और ही आइडियाज थे। कैप्टन ने सेल बाय की वजह से ये जहाज इतना करीब कर दिया था कि सिर्फ 150 मीटर की दूरी पर था ये मेनलैंड से, मतलब आइलैंड से। अब 150 मीटर में आप समझ लीजिए पानी कितना ही गहरा होगा, जाहिर है इतना गहरा नहीं हो सकता। वहां बड़े बड़े पत्थर थे, रीफ्स, बहुत कुछ था वहां पे, और ऊपर से ये रात का वक्त था, और रफ्तार जो जहाज की थी वो भी ठीक ठाक थी। अब आप सोचेंगे लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए जहाज को इतने करीब से ले गए कैप्टन, इतना बड़ा रिस्क ले लिया कैप्टन ने। नहीं नहीं नहीं नहीं, कैप्टन फ्रांचेस्को शेटिनो जो थे वो एक टाइम पर एक सीनियर अपने कैप्टन मारियो पैलोम्बो के साथ काम करते थे, और ये मारियो साहब जो थे वो गिगलियो आइलैंड पे रहते थे। और जिस रात ये जहाज कॉन्कॉर्डिया जा रहा था, इसे लगा कैप्टन को कि वो आइलैंड पर ही होंगे, तो उसी रात जहाज को आइलैंड के बिल्कुल करीब ले जाके कैप्टन साहब ने मारियो साहब को कॉल करी, बोली, सर हम आपके आइलैंड के पास से गुजर रहे हैं सर, और आपकी आपकी शान में हम इस जहाज का सायरन भी बजाएंगे, हम आपको ट्रिब्यूट देना चाहते हैं। ये सुनकर जो मारियो थे फोन के दूसरी तरफ, उन्होंने कहा, भाई मैं उस आइलैंड पे हूं ही नहीं। इस बातचीत के बाद फोन डिस्कनेक्ट हुआ। ये कॉल की गई थी 9:40 पर रात पे, और चंद लम्हों के बाद जहाज में हर शख्स को वो आवाज सुनाई दी जो मैंने आपको बताई। जिसका डर था वही हुआ, पत्थरों से टकराया कोस्टा कॉन्कॉर्डिया। उसका जो हल था, नीचे का जो पूरा हिस्सा था, एक तरफ से पत्थर ने पूरा चीर कर रख दिया था। तकरीबन 70 मीटर गहरा ये घाव जहाज को लगा था, जहाज के सेंसिटिव हिस्सों पे जाकर। और जिस जगह ये पत्थर लगा था, जो कि अच्छा खासा बड़ा था, ये जहाज उस वक्त आइलैंड से 100 मीटर की दूरी पर भी नहीं था। ऊपर से रात का अंधेरा। इसके बाद पानी तेजी से जहाज में भरने लगा। 26 साल के एंड्रिया कोरोलो, जो कि थर्ड ऑफिसर थे कॉन्कॉर्डिया जहाज के, ये अपने कैबिन में उस वक्त सो रहे थे, और इनकी जब आंख खुली तो इस इंपैक्ट से, जब पत्थर से टकराया जहाज, उनकी आंख खुली, ये भागे हॉलवे की तरफ। तब तक पानी आ चुका था। वो भागे रूम्स चेक करने के लिए इंजन रूम की तरफ। इंजन रूम की खिड़की से इन्हें अंदाजा हुआ कि अंदर क्या चल रहा है। इन्होंने जब झांका तो बंद दरवाजे से इन्हें दिख रहा था कि इंजन और जनरेटर्स भरते पानी की चपेट में आ चुके हैं। 9:52 रात की, चीफ इंजीनियर और दूसरे ऑफिसर्स डीजल इंजन चालू करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इधर भी नाकामयाबी हाथ लगी। चीफ इंजीनियर ने भागकर कैप्टन को इस हालत के बारे में बताया। कैप्टन, कैप्टन ये हो गया। पर कैप्टन ने क्या अनाउंस किया? कैप्टन ने फिक्र नहीं दिखाई, बोले कोई बात नहीं। उन्होंने पब्लिक को झूठ बोला, उस जहाज की पब्लिक जो देर रात में जहाज में है, समुद्र में है, पब्लिक को अनाउंसमेंट करके उन्होंने बताया कि फिक्र करने वाली कोई बात नहीं है, अपने अपने कैबिन्स में लौट जाइए, सिर्फ लाइट गई है, ब्लैकआउट हुआ है। अगले कुछ मिनटों के बाद जहाज अपनी जगह पर तो था, पर वो धीरे धीरे सरक रहा था, आइलैंड से दूर सरक रहा था। रात के 10 के करीब कैप्टन साहब शेटिनो, उनको लगा कि जहाज को घुमा लेना चाहिए, थोड़ा घुमा देता हूं मैं, अगर डूबे तो बीच समंदर में होंगे तो ज्यादा खतरनाक है, इसलिए थोड़ा घुमा के आइलैंड के करीब ले आता हूं। तो उन्होंने जहाज का पूरा यूटर्न मारा, पर हुआ यह कि यूटर्न मारने से जहाज सीधा ना होके जहाज एक साइड पे झुकने लगा, पहले लेफ्ट साइड की तरफ झुकने लगा और फिर राइट साइड की तरफ झुकने लगा। जहाज के अंदर सिक्योरिटी के लिए कुछ लोग होते हैं जिन्हें क्राइसिस कोऑर्डिनेटर कहा जाता है। उनमें से एक शख्स थे रॉबर्टो फेरारानी। उन्होंने, रॉबर्टो साहब ने कॉल करी कैप्टन को,

एक नहीं दो मर्तबा कॉल करी, एक बार 10:05 रात के और 10:07 पे। दूसरी कॉल पे कैप्टन ने फाइनली झूठ ना बोलकर अपनी दिक्कत मानी कि कुछ दिक्कत हुई है, पर गलती को टाइम पे मान लेना जरूरी होता है। कैप्टन साहब जो थे उन्होंने मान तो ली थी अपनी गलती, इसके बाद भी उन्होंने एक बेवकूफी करी, कवर अप करने की कोशिश करने लगे। वो बोले, कह रहे वो लाइट पहले चली गई थी इसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ है, जबकि ठीक उल्टा हुआ था, एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से लाइट गई थी, ना कि लाइट गई तो एक्सीडेंट हुआ। अब अपने आप को इस जहाज में सोचिए कि आप शायद इस जहाज में होते तो सोच रहे होंगे यार कैप्टन तो जिम्मेदार होगा, बाकी क्रू मेंबर जिम्मेदार होंगे, हम बच जाएंगे। शायद आप डरे हुए होंगे, बेहद डरे हुए होंगे, बट एक उम्मीद तो होगी। बट दिस इज द साइड विच गेट्स वियर्ड। परेशान होकर कुछ लोगों ने, जब उनकी बिल्कुल सुनी नहीं जा रही थी, कोई उनकी मदद नहीं कर रहा था, तो जहाज में मौजूद लोगों ने पुलिस को कॉल करना शुरू करे। ये कॉल्स शुरू हुई 10:12 पर। कॉल उठाने वाले शख्स थे इटालियन कोस्ट गार्ड, उनके कैप्टन, और उन्होंने पब्लिक की बात सुनकर कैप्टन को कॉल लगाई। फिक्रमंद हो गए कि भाई पब्लिक परेशान है तो मैं सीधा कैप्टन से बात कर लेता हूं। उन्होंने कैप्टन को बोला, कैप्टन आपके पैसेंजर्स हमें कांटेक्ट कर रहे हैं। कैप्टन ने जवाब में कहा, हाँ कुछ नहीं है, बस ब्लैकआउट हुआ है, लाइट गई है, बाकी सब ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए। ये बात कैप्टन ने तब कही जब आधा घंटा हो चुका था जहाज को टकराए हुए। 10 मिनट की बात, 10:22 पर कैप्टन का मन वापस बदल गया। उन्हें लगा यार अब ज्यादा लंबा झूठ नहीं बोल सकता, अब बताना पड़ेगा, क्योंकि जहाज जो है वो धीरे धीरे टिल्ट हो रहा है, झुकने लगा था वो सीधे हाथ की तरफ। कैप्टन ने रेडियो ऑपरेटर को ऑर्डर देते हुए कहा कि कोस्ट गार्ड को बता दो कि जहाज अब टिल्ट होने लगा है, उसमें टक्कर लगी है और कॉन्कॉर्डिया जहाज को अब टक बोट्स की सख्त जरूरत है, लोगों को लाइफ जैकेट्स हमने दे दी है और सब लोग सेफ हैं। जहाज टिल्ट होए जा रहा है। फाइनली जाकर 10:33 पर एक जनरल इमरजेंसी अलार्म फाइनली बजाया गया और पैसेंजर्स को कहा गया कि इमरजेंसी असेंबली में सबके सब इकट्ठे हो जाएं और बाकी इंस्ट्रक्शंस वहां पर आपको मिलेंगे, रिमेन काम। ये लगातार सायरन बज रहा था। जस्ट इमेजिन कितने सारे लोग, 4,252 लोग इस जहाज में हैं, उनमें बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, लोग अपनी फैमिली के साथ हैं, देर रात हो रही है और आप किसी सड़क में नहीं है, यू आर इन द मिडल ऑफ द सी, आप समुद्र में हैं, एन अलार्म बज जाए तो क्या होगा। लोग भाग रहे हैं, भगदड़ मची हुई है, जहाज धीरे धीरे टिल्ट हुए जा रहा है, जो उनकी साइड की दीवारें थी वो फर्श बनती हुई नजर आ रही है उन्हें। जस्ट इमेजिन, क्या आप भाग भी नहीं पा रहे क्योंकि जहाज टेढ़ा हो रहा है धीरे धीरे, एंड इन योर हेड यू आर थिंकिंग के मुझे ऐसा लग रहा है क्या सच में ऐसा हो रहा है। 10:48 पर जहां जहाज 30 डिग्री झुक चुका था, आप अंदाजा लगा लीजिए इस बात से। फिर फाइनली 10:54 पर कैप्टन ने ऑर्डर कर दिया। फाइनली इनको लगा कि अब तो बहुत देर हो चुकी है, उन्होंने ऑर्डर दिया, हमें जहाज को छोड़ना पड़ेगा। अरे 4,200 लोग हैं, ये पहले बोलना चाहिए था। आप अंदाजा लगाएं 4,200 से ज्यादा लोग और जहाज 30 डिग्री पर झुका हुआ है, नीचे के डेक्स में तो ऑलरेडी पानी में जो सारे कैबिन से वो डूब रहे हैं, एक तरफ पानी तेजी से अंदर भर रहा है और ऊपर के डेक्स का जो सामान है वो इधर उधर, लोग खड़े हुए तो उनके उड़कर उनके चेयर लग रही है, टेबल्स इधर उधर हो रही है, खाना जो रखा हुआ था किचन में और जो बाहर था वो सारा इधर उधर हो रहा है। लोगों को समझ नहीं आ रहा कि किस हिस्से को इस जहाज के पकड़े ताकि वो खड़े रह सकें। और कैप्टन फ्रांसिस्को शेटेनो जो थे, उन्होंने एक ही अच्छा फैसला किया था, वो ये कि उन्होंने यू टर्न ले लिया था जहाज का, जिसकी वजह से जहाज बस थोड़ा सा आइलैंड के करीब था, मगर इस फैसले की बुनियाद पर वो चाह रहे थे कि पब्लिक उनको हीरो मान ले कि क्या काम किया है सर आपने। मगर सारे के सारे फैसले उनके बिल्कुल बेवकूफ वाले थे, एक के बाद एक झूठ गुमराह कर रहे थे वो भी डूबते हुए जहाज में। जस्ट इमेजिन, और इसके बाद वही हुआ जिसका डर था, लोगों में गुस्सा भर रहा था।
जैसे ही कैप्टन साहब ने कहा कि जहाज छोड़ना पड़ेगा, भगदड़ मच चुकी थी। हर कोई लाइफ बोट में बैठना चाहता था, इसमें लोगों के हाथ में बच्चे थे, 2 साल के 3 साल के, कुछ लोग बुजुर्ग थे जो व्हील चेयर पे थे। कहां, कैसे, कौन भागेगा? लाइफ बोट में जो लोग बैठे भी हुए थे उनको ऑर्डर ही नहीं मिल रहे थे कि अभी लाइफ बोट को नीचे करना है। एवरीबडी वॉज वेटिंग, अंधेरे में चीख रहे हैं लोग। लाइफ बोट्स में कुछ फाइनली निकल पाए और कुछ लोग ऐसे थे जिनसे रुका नहीं गया। वो ऊपर वाले डेक पे थे या नीचे वाले डेक पे थे फर्क नहीं पड़ता, उन्हें ये यकीन था कि वो लोग तैर सकते हैं, तो वो लोग जहाज से सीधा कूद गए क्योंकि उन्हें सामने आइलैंड दिख रहा था। उन्होंने कहा भाई मैं किसी पे भरोसा नहीं कर सकता, और जो अकेले थे या दोस्तों के साथ थे वो लोग कूद के तैर के बाकायदा इस ठंडे पानी में, चिल्ड बर्फीला पानी, इसमें तैर के आइलैंड तक पहुंचे। लोग धक्का मुक्की कर रहे थे। अच्छी बात भी इसमें अगर मैं बताऊं तो क्या थी, वो ये थी कि जहाज के ज्यादातर क्रू मेंबर्स जो थे वो कैप्टन से बगावत कर चुके थे। उनके सिग्नल देने से पहले वो लोगों को मूव कर रहे थे इधर से उधर, उनको लाइफ बोट से बिठा रहे थे, उनकी मदद कर रहे थे, उनको बोल रहे थे टेक योर जैकेट, टेक योर कोट, कम ऑन, हरी हरी हरी। जहाज झुकता जा रहा था एक तरफ, रात के अंधेरे में 40 डिग्री 50 डिग्री, राइट साइड में जितने भी कैबिन थे, जिस तरफ ये जहाज झुक रहा था उस तरफ भी कैबिन थे ना। अब जरा सोचिए, उन कैबिन में जो लोग थे वो बंद हो गए थे क्योंकि पानी का जो प्रेशर है वो दरवाजे को खोलने ही नहीं दे रहा है, एंड दे वर ट्रैप्ड इनसाइड द कैबिन। और वो सारे कैबिन अभी पानी के लेवल पे आ चुके थे। वो लोग जो राइट की तरफ थे उनके पास कोई चारा नहीं था, उन्होंने पानी में कूदना शुरू कर दिया। वो जानते थे कि यही तरीका है, तैरने की कोशिश करना ज्यादा सही है रादर देन वेट करना कि क्या होगा क्या नहीं होगा। लोगों के लिए जो पहले जहाज की दीवारें थीं अब वो फर्श बन चुकी थी, ऊपर से उन्हें रास्ता भी ढूंढना है। आप समझ रहे हैं, एक ऑप्टिकल इल्यूजन है ये कि आपको रास्ता भी ढूंढना है, लेकिन अभी तक जो आपके लिए दीवार थी अब वो आपके लिए जमीन बन चुकी है, तो आपको टेक्निकली दीवार पर दौड़ना है। आप सोचेंगे कि आप कैसे रास्ता ढूंढेंगे, बिकॉज योर माइंड विल नॉट वर्क इन दिस सिचुएशन। इस धक्का मुक्की में एक इंडियन क्रू मेंबर भी थी जिनका नाम था करनाथा रमेशाना, और वो कॉन्कोर्डिया की सिक्योरिटी स्टाफ के जो 11 लोग थे उनमें से एक लौती खातून थी। उन्होंने बताया कि लैंग्वेज बैरियर आ रहा है सामने, वो समझा नहीं पा रही हैं लोगों को क्योंकि सफ़र करने वाले ज़्यादातर लोग इटालियंस थे और क्रू मेंबर्स इटालियन भाषा नहीं समझ पा रहे थे, कुछ लोग अंग्रेज़ी भी नहीं समझ पा रहे थे। ऊपर से ज़्यादा सिक्योरिटी वाले ऐसी सिचुएशन के लिए तैयार ही नहीं थे, वो तो सर्विस स्टाफ थे बेचारे। इसमें भी ये लोग हीरो थे, इनको ट्रेंड नहीं किया गया था, लेकिन करना था जो कि इंडियन क्रू मेंबर थी, उन्होंने पर्सनली एक ब्लाइंड वुमन को लिटरली लाइफ बोट में बिठाया, इस भीड़ में से निकाल के ले गई। बाकी 2 लोग ऐसे थे जिन्होंने व्हीलचेयर में से लोगों को उठाया, अपने कंधों पर ले जाकर लाइफ बोट में बिठाया। उस रात एक और इंडियन क्रू मेंबर थे जिनका नाम था रसल रिबेलो, जो कि एक वेटर थे, बतौर वेटर इस जगह पर काम कर रहे थे, और उन्होंने भी कैप्टन की नहीं सुनी। उनके ऑर्डर से पहले वो लोगों की मदद कर रहे थे, लाइफ बोट में उन्हें बिठा रहे थे, आखिरी दम तक मदद करते रहे, बट ही कुड नॉट सर्वाइव। वो जिसके कैबिन में बचाने के लिए गए थे वो कैबिन जब बंद हो गया पानी के प्रेशर से, वो उस कैबिन में कैद रह गए, एंड ही कुड नॉट ओपन, वो वापस कैबिन को नहीं खोल पाए। दूसरी तरफ हमारे कैप्टन साहब, कैप्टन फ्रांचेस्को शटेनो, इन जैसे भी लोग थे। कैप्टन साहब ने जब सिग्नल दिया था कि जहाज को छोड़ना पड़ेगा, सिग्नल देते के साथ ही पैसेंजर से पहले, क्रू से पहले वो भाग चुके थे आइलैंड की तरफ, पीछे सबको छोड़ के। 11:19 पे ये सबसे पहले भागने वाले शख्स थे इस जहाज से। दिग्लियो आइलैंड जिस पे ये पहुंचे थे एक गांव की तरह ही था, ज्यादा लोग नहीं रहते थे, सिर्फ 700 लोग की पॉपुलेशन थी यहाँ पे। और उस रात जो लोग वहाँ पे रहते थे वो बेचारे अपने घरों से बाहर निकले। इस आइलैंड के मेयर मारियो पेलेग्रिनी वो भी बाहर निकले, उन्हें पता लगा कि जहाज के साथ ऐसा हो गया है। ये बेचारे खुद एक सिविलियन बन के जहाज के पास पहुँचे मदद करने के लिए। एक मिनट इन्होंने नहीं सोचा कि लाइफ बोट होगी, मैं बचूंगा नहीं बचूंगा। इन्होंने लाइफ बोट मंगाई मदद करने के लिए। रात के गुप्त अंधेरे में ये पहुंचे। इन्होंने कहा जब जहाज गिर चुका था, अंदर कुआं बन गया था क्योंकि एक तरफ से पूरा अंदर था जहाज, ये ऊपर चढ़ के लोगों को बचा रहे थे लिटरली।

रस्सियों से, जितनों को बचा सकते थे इन्होंने बचाया। अर्ली स्टेज में जो बचाने की कवायद जो शुरू हुई थी, 3000 लोग सेफली आइलैंड पर पहुंच चुके थे। 11:38 पे 400 लोगों के पास अभी भी मौका नहीं था, कहां से जाएं, किधर से जाएं, जहाज में फंसे हुए थे। इटालियन कोस्ट गार्ड के हेलीकॉप्टर्स आए, फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज वाले आए, बोट्स में आए, हेलीकॉप्टर्स में आए, मदद करी, 100 लोगों को और बचाया। पर इनको भी पता नहीं था न जाने कितने अभी भी अंदर है। 12:42 देर रात कोस्ट गार्ड कमांडर कैप्टन ग्रेगोरियो दिफेल्को, कैप्टन ग्रेगोरियो दिफेल्को ने कैप्टन साहब को कॉल करी, मतलब कोस्टा कॉन्कॉर्डिया के कैप्टन को, और उनको डांटा, भर भर के डांटा। उन्होंने जैसी कॉल लगाई, बोला तुम कैप्टन हो ना कोस्टा कॉन्कॉर्डिया के, तुम आइलैंड पे क्या कर रहे हो? इट्स माय ऑर्डर कैप्टन, बुज़दिल बनना बंद करो, अभी के अभी वापस जाओ कोस्टा कॉन्कॉर्डिया पे अपने जहाज पे और लोगों को बचाओ। इज दैट क्लियर? और कैप्टन शेटिनो जो ऑलरेडी भाग के आ गया था सबको छोड़ के, उसने बोला नहीं प्लीज सर मैं नहीं जा सकता जहाज पे सर, मुझे वापस मत भेजिए। लेकिन कैप्टन ने कहा नहीं, इट इज योर ड्यूटी, वापस जाओ, नो एक्सक्यूजेस। मगर कैप्टन फ्रांसिस्को कभी वापस नहीं गए बचाने के लिए, अपने लोगों को, पैसेंजर्स को छोड़ के आइलैंड पर दूर से तमाशा देख रहे थे। दूसरी तरफ जाबाज क्रू मेंबर्स इस जहाज के रात भर लोगों की मदद कर रहे थे। लोगों को अंदाज़ा भी नहीं था कि जहाज किस पोजीशन में है। जब सुबह का सूरज निकला ना, रोशनी पड़ी, तो लोगों को एहसास हुआ कि हादसा जो है ये कोई छोटा मोटा हादसा नहीं है। आप खुद फोटो देख लीजिएगा, अगर ये आइलैंड के करीब जहाज नहीं होता, दिस वुड हैव बीन वर्स देन टाइटैनिक। सुबह तक ज्यादातर लोग बचा लिए गए थे, पर 3 लोगों की खबर आई सुबह सुबह कि उन्हें नहीं बचाया जा सका। अभी भी लोग सुबह तक वहां पे फंसे हुए थे। इस जहाज के जो मैनेजर थे, जो लोगों को बचा रहे थे, वो भी एक कैबिन में फंसे हुए थे। उनको बेचारों को सुबह निकाला गया, एंड ही वाज 65 और 70 ईयर्स ओल्ड। उन्होंने हिम्मत नहीं आ रही, सुबह तक लोगों को बचाया उन्होंने अपनी इस उम्र में भी, एंड सुबह उन्हें हेलीकॉप्टर से बचा लिया गया। इस बीच आइलैंड पे लोग थे जो लोकल थे, महज 700 की पॉपुलेशन थी, उन लोगों ने सभी दरवाजे खोल दिए थे अपने घरों के, दुकानों के, हर जगह के। कुछ लोग जो आइलैंड पे पहुंचे थे तैर कर, वो हाइपोथर्मिक हो चुके थे, क्योंकि बहुत ठंडा पानी था, बर्फीला पानी था। वो पैनिक मोड में कूद तो गए थे, मगर तैरते तैरते दे जस्ट वेंट हाइपोथर्मिक। लोग अपने फैमिली वालों को आवाज लगा रहे थे, जो आइलैंड पे पहुंचे थे उन्हें पता भी नहीं था कि उनके चाहने वाले, उनके जानने वाले किधर हैं। कुछ लोग अपनी जान बचा के भागे, कुछ लोगों को उनके घर वालों ने कहा कि नहीं तुम कूद जाओ पानी में, तुम्हें तैरना आता है, हम आते हैं। सब अपने अपने लोगों को ढूंढ रहे थे। और इस बीच एक कैप्टन बैठा था इस जहाज का, कॉन्स्टा कॉन्कॉर्डिया का, जो दूर से ये सारे नज़ारे देख रहा था। आइलैंड के लोगों ने लोगों को ब्लैंकेट्स दिए, इनकी मदद करी, रेस्क्यू ऑपरेशन लेकिन चलता रहा। सबको इन्वॉल्व होना पड़ा, रेस्क्यू डाइवर्स भी आ गए, क्योंकि दरवाजे नहीं खुल रहे थे कैबिन्स के, पानी के प्रेशर के चलते। 14 जनवरी को एक साउथ कोरियन कपल को बचाया गया, जो कैबिन के अंदर पूरी तरह से पैक्ड हो गए थे, दरवाजा नहीं खोल पा रहे थे। और ज्यादातर लोगों का यही हाल था जो बेचारे कैबिन्स में फंस गए थे। कुछ लोग नहीं बच पाए, पानी अंदर चला गया, 32 लोगों की जान गई। पर क्या मिशन खत्म हो गया? अगला मिशन ये था कि इस बड़े से जहाज को, जो बहुत ही बड़ा था, इसको पूरी तरह से निकालना भी तो है। और निकालने से पहले जो फ्यूल है, जो तेल है इस जहाज के अंदर, इंजीनियर्स को वो निकालना पड़ेगा। जब इंजीनियर्स ने इसे परखा तो उन्होंने कहा कि एक वर्ड होता है इनकी डिक्शनरी में, कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस, यानी कि इंजीनियर्स की भाषा में कि इस जहाज को अब दोबारा नहीं चलाया जा सकता, इसको डिसेंबल करके इसे स्क्रैप में बेचना पड़ेगा। लिटरली कबाड़ हो चुका है ये जहाज। मगर सबसे पहले जहाज के अंदर का फ्यूल निकालना पड़ेगा। तकरीबन 19 लाख लीटर तेल था इसके अंदर, क्योंकि 2 ही घंटे चला था तो फुली लोडेड जहाज था। फ्यूल निकालने के लिए फ्यूल बैरियर इसके इर्द गिर्द बनाया गया। 12 फरवरी 2012 को यह प्रोसेस शुरू हुआ। सर्दियां थी तो आधा तेल ऐसा था कि वो पूरा सॉलिड फॉर्म ले चुका था, तो मुमकिन नहीं था। अब क्या करें समझ में नहीं आ रहा, उसको हीट करना पड़ा। दूसरे टैंकर्स लगाए गए, पंप किया गया कि चलो इधर से पंप करके ऑयल निकालते हैं।
ये करने में एक महीने से ज्यादा लगा। 24 मार्च को जाकर तो ये खत्म हुआ। अब अगला टास्क है ये जहाज पूरा का पूरा, ऐसे सीधा भी तो करना है, ये तो पूरा राइट में है, इसको ले जाना भी है। तो एक स्टील स्ट्रक्चर बनाया गया अंदर पानी के। ये काम शुरू हुआ अप्रैल को अगले साल 2013 में, जो बनाया गया उसके बाद उसमें पानी भरा गया, कुछ वो सेक्शंस लगा के रस्सियां लगाई गई, केबल्स, जहाज को खींचा गया, बॉक्स लगाया गया कि जिन्हें मेरे ख्याल में कैसॉन कहते हैं, कैसॉन इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, वो लगाए गए ताकि जहाज को खींचा जा सके। 16 सितंबर को जहाज सीधा करने की कवायद शुरू हुई थी। 19 घंटे सिर्फ इसे खींचने में लगे कि सीधा हो जाए। अगला स्टेप था इस जहाज को फ्लोट कराना। दोनों तरफ बक्से की तरह चीजें लगाई जिससे, जैसे मैंने कहा ना कैसॉन कहते हैं उसे, जहाज के दोनों तरफ लगाए गए। फ्लोट जब होना शुरू हुए तो फिर जहाज फ्लोट होना शुरू हुआ। उसके बाद भी काम खत्म नहीं हुआ। 500 डाइवर्स, टेक्नीशियन, इंजीनियर्स, बायोलॉजिस्ट, सब के सब बेचारे इन्वॉल्व हुए। 19 महीने बीत चुके थे। इस जहाज को बचाने की कीमत जानते हैं कितनी लगी? $799 million। पोर्ट पर दूसरे जहाज को अलग से लाना पड़ा जो टो करके ले जा रहा था इसको। 2024 जो साल था वो शुरू हो चुका था, जुलाई का महीना था ये। अब तक टोटल कॉस्ट कितना हो गया था? $1.2 billion बी। लेकिन खर्चा भी बाकी था। टूटे हुए जहाज में से मेटल भी तो निकालना है, इसका खर्चा अलग है। 300 लोगों को और काम पे लगाया गया। ये प्रोसेस जुलाई 2017 में जाकर पूरा हुआ। लेकिन अब केस पर जाते हैं। एक एक पैसेंजर ने केस कर दिया था। उनको टिकट के प्राइस तो वापस दिए ही गए हर एक पैसेंजर को जो पहुंच गए थे, बच गए थे, उनको 11,000 यूरो को कॉम्पनसेशन भी दिया गया। जिनके परिवार वाले, दोस्त, करीबी नहीं बच पाए थे उनको एक अनडिस्क्लोज्ड अमाउंट दिया गया जिसकी कहीं पे भी मेंशन नहीं किया गया है। टोटल कॉस्ट जो खामियाजा भुगतना पड़ा कॉन्स्टा कॉन्कॉर्डिया को वो था $2 billion से भी ज़्यादा। अब आप पूछेंगे वो कैप्टन, वो बुज़दिल कैप्टन किधर गया? कैप्टन फ्रांचिस्को शेटिनो जो थे, उन्हें कोर्ट में पेश होने के लिए जब कहा गया तो पेश होकर उन्होंने जानते क्या कहा? जज साहब ने पूछा, भाई तुम क्यों भाग गए थे सबको छोड़ के? तो बोले, सर वो मेरा पैर फिसल गया था जहाज के टिल्ट होने से। 60 डिग्री पे था ना सर जहाज, तो मैं फिसल के गिर गया था लाइफ बोट में। मैं जज तो नहीं हूं लेकिन मैं भी इस बात पर नहीं मानता। और वही हुआ, किसी ने नहीं सुनी। 2017 में मैन स्लॉटर का उन पर चार्ज लगा। 16 साल की उन्हें जेल सुनाई गई। इनके सीनियर जो थे, याद है मारियो साहब, जिनको ये ट्रिब्यूट देना चाहते थे, उन्होंने खुद बयान दिया कि ये तो झूठा आदमी है, बात बात पे झूठ बोलता है। रोबर्टो बोसियोस नाम के एक बंदे थे इस जहाज पे, कॉस्टा कॉन्कॉर्डिया पे, जो इस जहाज के कैप्टन नहीं थे, वो दूसरे जहाज के, कॉस्टा सेरिना के कैप्टन थे। इनको कोई लेना देना नहीं था, बेचारे वेकेशन पे आए थे। इन्होंने फिर भी इवैक्यूएशन में लोगों की मदद करी। उन्होंने बोला कि मेरी जिंदगी का सबसे खराब एक्सपीरियंस था ये, पर मुझे हीरो मत कहो लोगों को बचाने में, मैंने अपनी सिर्फ ड्यूटी करी है। कैप्टन के साथ साथ 5 और लोग अरेस्ट हुए जो हाई रैंक ऑफिसर्स थे। 2-2 साल की सजा सुनाई गई। कैप्टन को नाम दिया गया, अखबारों से एक नाम मिला, कैप्टन कावर्ड। और कॉस्टा कॉन्कॉर्डिया ऑलमोस्ट टाइटैनिक जैसा होते होते बच गया, बट स्टिल अ वेरी वेरी कॉस्टली अफेयर। तो ये जो है आपके हवाले है कहानी। आप बताइए कैसा लगा 666-22107 पे। इफ यू एक्सपीरियंस दिस स्टोरी, देखो सुनना और एक्सपीरियंस करना दोनों अलग अलग बात है। आपने सुनी है, एक्सपीरियंस करिए आप बताइएगा 666-22107 पर।

0: मुकाबले के दरवाजे खुल चुके हैं, पॉइंट्स की दौड़ का आगाज हो चुका है, मुकाबले फिर सजेंगे और हर राउंड लेकर आएगा एक नई कहानी। यतूर लीग सिर्फ और सिर्फ अलकास चैनल और शूफ प्लेटफॉर्म पर।
1: FM 107 टाइम चेक।
2: आज 8:14 बाय द क्लॉक। अस्सलाम वालेकुम, मैं दुहा वाला कबीर एंड बताइएगा आपको कहानी कैसी लगी। एक भाई कह रहे हैं भाई ये कहानी आसिफ भाई कह रहे हैं कोई मूवी, भाई इस मूवी नहीं डॉक्यूमेंट्री है पूरी की पूरी और मेरे ख्याल में इसी नाम से, किस नाम से बोल रहा हूँ मैं, है डॉक्यूमेंट्री है। इफ़ यू सर्च कोस्टा कॉन्कॉर्डिया तो आपको मिल जाएगा डेफिनेटली। बहुत बहुत बहुत फेमस है भाई, बहुत ज़्यादा फेमस है, मल्टीपल डॉक्यूमेंट्रीज हैं। कैप्टन क्या कैरेक्टर सेम ही थे बगोड़ा कैप्टन इंडियन वेटर आइलैंड, नहीं भाई वो अलग कहानी थी, ऑलमोस्ट सिमिलर कहानी है ऐसी, मगर ये थोड़ी बड़ी वाली कहानी थी। बढ़िया, आई होप यू लाइक इट, थैंक यू सो मच। और एक मैसेज आया है, वेरी नाइस स्टोरी, थैंक यू सो मच। डीप एंड पोसाइडियन एडवेंचर डीप इन ओशन, नहीं आप बताइएगा ज़रूर कैसे लगी आप लोगों को कहानी एंड आई विल वेट फॉर योर मैसेज क्योंकि मुझे एक गाने का ब्रेक चाहिए। जहाज घुमा देंगे भाई, जमा जहेज बना दिया भाई। 8:15 बाय द क्लॉक, गलियों के गालिब। हाँ जी गालिब साहब, मैसेज कर दो 666-22-107। Let's go।

0: हाँ जी, क्या हाल है? अब आप बता सकते हैं कि कहानी आपको लगी तो लगी कैसी? भाई बहुत मेहनत लगती है इन कहानियों को ढूंढने में और फिर इनमें पूरी रिसर्च करने में, पूरे पापड़ बेल के ये कहानियाँ को सुनाई है। जस्ट लेट मी नो कि आपको लगी तो लगी कैसी। एक कॉल आ रही है मेरे पास, पहले तो कॉल उठा लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हाँ आवाज़ आ रही है आपकी, आप बताइए।
1: कैसे हैं कबीर भाई?
0: अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आप बताइए।
1: अल्हम्दुलिल्लाह।

0: ठीक ठाक हैदराबाद कर रहा हूँ।
1: जी हैदर भाई बताइए मेरे भाई।
0: यार एक तो बड़ी गुड मॉर्निंग हैप्पी वीकेंड।
1: थैंक यू भाई बहुत प्यार भाई को।
0: आपका गुड मॉर्निंग और मेरा थोड़ी देर तक गुड नाइट होने वाला है।
1: अच्छा शिफ्ट खत्म हो रही है क्या अभी?
0: नहीं नहीं शिफ्ट नहीं, पोर्ट पे कुछ सामान था उसके लिए सारी रात लग गई।
1: अरे रे रे रे मेरा भाई।
0: पहले मैंने आपसे वो मांगा ना नंबर के लिए, मैंने आपको मैसेज किया कि वो कॉल के लिए नंबर।
1: जी जी जी भाई।
0: आप यकीन माने वो तलावत चल रही थी वो आपने लगाई ना, तो वो गाड़ी में बैठे बैठे बस हो गया।
1: अरे भाई ठीक है नींद आती है भाई, अच्छा वो रोक के सोए ना ये अच्छी बात है।
0: और मैं सो गया, पता है कब मैं उठूं?
1: कब?
0: जब जहाज डूब। तो मैं सोच रहा हूँ
1: भाई आप कैप्टन, आप कैप्टन तो नहीं थे? कैप्टन तो नहीं थे?
0: और मैं क्या सोच रहा हूँ कि जी सामान हमारा डूब गया।
1: अरे यार भाई ये आपने सबसे गलत लोकेशन चूज करी थी भाई कहानी सुनने के लिए।
0: नहीं वो आपने कहा ना वो जहाज डूब गया, मेरी आंख खुली मैंने कहा है डूब गया।
1: अरे कैप्टन साहब असली आईडी से आइए कैप्टन साहब। मेरे पर आप आपने मतलब फिर आखिर का ही सुना है, कोई कोई मसला नहीं आता भाई। काम हो गया आपका? ये इम्पोर्टेंट है, काम हुआ आपका? नहीं हुआ?
0: मैं क्लियर करके अब घर जा रहा हूँ तकरीबन, और 15-20 मिनट में घर पहुंच जाऊंगा जाके अब आराम।
1: अल्हम्दुलिल्लाह भाई प्लीज, भाई प्लीज आराम करें भाई, प्लीज आराम करें भाई, मानता है आपका भाई।
0: काफी दिन से ना मैं सोच रहा था मैं आपको इंशाल्लाह कॉल करूंगा, लेकिन ना फिर वो मसरूफियत कुछ ऐसे, आपको पता है मेरी ड्यूटी 11-12 बजे कहीं जाके स्टार्ट होती है।
1: जी जी जी।
0: तो वो आपकी वो स्टोरी मैं सुन लेता हूँ, वो भी लैपटॉप के ऊपर लगा के ना वो हेडफोन।
1: हाँ
0: तो कोई है ना ऑफिस में तो मैं साथ ही हूँ। ओके इंशाल्लाह।
1: ओके इंशाल्लाह। बाय बाय सही जा रहा है भाई। मैं कोई मसला नहीं आज की, आज तो कल तो छुट्टी होगी ना आपकी?
0: हाँ
1: भाई आराम से सुनना, फिर आराम से सुनना आप।
0: वेरी काइंड, आपसे बड़ी मोहब्बत है यार,
1: बहुत प्यार है।
0: कब आएंगे आप नाइट पे या शाम के टाइम, अब कब हमें सुनने को मिलेंगे?
1: नहीं भाई जल्दी जल्दी इंशाल्लाह, इंशाल्लाह भाई जैसा आप बोले।
0: मैंने okay. तो वो लेफ्ट ट्रैक छोड़ दिया था आपकी वजह से, वो जब आप सुनाते थे स्टोरी मैं लेफ्ट से वो साइड पे आ जाता था कि ठीक है अब आराम से घर जाना है यार कोई जल्दी।
1: बहुत प्यार मेरे भाई,
0: कबीर भाई सुना रहे हैं स्टोरी अपनी। ट्रैफिक बड़ी अच्छी चलने लग गई थी दोहा की ना, वो कहते स्टोरी सुनाता है तो सारी दुनिया आराम से जाती है घरों में।
1: थैंक यू भाई बहुत प्यार आपको आदर भाई। बस आज आप इसी बात पे नींद खींचिए भाई, बढ़िया वाली आज बढ़िया नींद मारी जाए। ठीक है
0: बस आप दुआओं में याद रखा करें, और आपके लिए भी ढेरों दुआएं हैं, अल्लाह आपको और कामयाब करे और आपके हमारे जैसे चाहने वाले बने।
1: जजाकअल्लाह मेरे भाई, बहुत प्यार आपको आदर भाई, और बहुत बहुत शुक्रिया इस मोहब्बत के लिए, इज्जत के लिए। थैंक यू सो मच भाई,
0: बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया।
1: बेशक आप भी मेरे भाई, ख्याल रखिए भाई, अल्लाह
0: हाफिज़।
1: वालेकुम सलाम। तो हैदर भाई ने जिस तरह मोहब्बत से लुटाऊंगा, थैंक यू भाई, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। एकदम पोर्ट पे जाके कहानी सुन रहे हैं, वो भी जहाज की। आज भाई ये कह रहे हैं कबीर भाई थोड़ा चाय वाय पी लो भाई, गला सूख गया होगा, इतनी प्यारी कहानी बता दी है। कबीर भाई की जय हो, हमारे नेता कैसा हो, कबीर भाई जैसा हो भाई, कसम से आज ये कहानी सुना के मेरा गला सूख गया। जहाज वाली कहानियाँ आर नॉट ईजी, ट्रस्ट मी। जिस भाई कह रहे हैं कबीर बहुत ही ज़बरदस्त, सिमिलर टू टाइटैनिक, मैं तो बस स्टार्ट का पार्ट मिस्ड हुआ लेकिन पूरी कहानी समझ आ गई। ये क्रूज़ को बचाने में तो काफ़ी अमाउंट लगा होगा भाई, $2 बिलियन खर्च करवा दिए कैप्टन साहब ने। कह रहे हैं एक जो क्रूज़ का रियल कैप्टन था वो भाग गया, और एक जो बेचारा वेकेशन पर आया था उनने पैसेंजर की जान बचा ली और कहा कि मुझे हीरो ना कहें। ही इज़ द रियल अनसंग हीरो डेफिनेटली भाई, अलग किस्म की जनता है भाई दुनिया में। अस्सलाम वालेकुम मिस्टर आसिफ।
2: अस्सलाम वालेकुम भाई मिस्टर कबीर।
1: ये रियाज कबीर, ये आसिफ भाई आपके साथ साथ जो है रियाज भाई ने एक सवाल पूछा, कह रहे हैं सरोवर भाई को कौन सा करेक्टर बनाए आज, बता सरोवर भाई से क्या पूछना है। आज सरोवर भाई से कहना सरोवर भाई एक बात बताओ, आप क्यों जहाज को छोड़ के आइलैंड पे आ गए? लोगों को क्यों नहीं बचा?
2: भाई अगर सोचो सरोवर भाई, अगर टाइटैनिक की जो जहाज पे जो पोज देके बंदा खड़ा था उस जगह पे कबीर भाई ये सरोवर भाई को खड़ा कर दे तो कैसा लगेगा?
1: बैलेंस्ड आउट हो जाता, जहाज बच जाता आज। तो आज हमारे साथ जो है जो सरोवर भाई आएंगे 1:30 बजे, वो कैप्टन है, उनसे पूछेगा कि आप जहाज छोड़ के क्यों भागे, बस इतना पूछना है। और तो बताइए
2: आज उनका नाम रख दिया गया सरोवर कप्तान।
1: हाँ कैप्टन सरोवर। जहाज का कप्तान
2: यार भाई, क्यों पंगे लेते हो क्या? आपको क्या मतलब रहने का नहीं है कतर के?
1: मजे आते हैं भाई मुझे, मजे आते हैं। जीवन सफल लगता है। आसिफ भाई कैसे लगी कहानी पहले बताओ?
2: भाई कहानी बहुत जबरदस्त लगी, कोई मूवी भी बनेगी नहीं
1: भाई इस पे? भाई बहुत डॉक्यूमेंट्रीज हैं, दर्जनों डॉक्यूमेंट्रीज हैं भाई, बहुत सारी हैं।
2: अच्छा भाई, हाँ। फिल्म एकदम ऐसा लगा था आज वीकेंड मजा आने वाला है भाई इस कहानी, काश ये कहानी हम लोग वीडियो में देखते
1: भाई। है इसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन है।
2: एक चीज बोलना चाहता हूँ भाई, अगर जैसा अपन समंदर के बीच में और मतलब समंदर के साइड वाइड में या कहीं भी बोर्ड पर लेट के कहानी सुन रहे हो, कभी भाई बोल रहे जहाज डूब गया तो मतलब क्या फील होगा?
1: भाई मैं खुद नहीं सुनाऊंगा कहानी इस जगह पे,
2: बंदे लोग बोलेंगे अरे कबीर भाई जहाज नहीं डूबा है हम लोग तो पे।
1: कुछ दिन में बुलबुले उठ रहे हैं के कबीर भाई कहानी क्यों नहीं सुना रहे, क्या बुलबुले उठ रहे?
2: कबीर भाई भाई ऐसा मत करो भाई, जहाज को मत डुबाओ, शादी नहीं हुई, कोई बोलेगा भाई घर जाना है।
1: नहीं नहीं नहीं भाई, मैं अभी तो देखो एक भाई जो पोर्ट पे सुन रहे थे कहानी, तो ये ऐसा भी होता है।
2: मैं सुना भाई, वो सुना मैं भाई,
1: तो ऐसी जगह पे नहीं सुनने। हाँ हैदर भाई ऐसी जगह पे नहीं सुनने।
2: हैदर भाई को बहुत बहुत प्यार भाई, हैदर भाई लैपटॉप पे सुनते भाई स्टोरी आपकी।
1: जी हैदर भाई को बहुत प्यार भाई, हैदर भाई जो है बस गलत जगह पे सुन रहे थे कहानी, तो बस सही है। तो ये आज कैप्टन साहब को जरूर याद दिलाएगा आप भी और जितने भी लोग सुन रहे हैं।
2: मैं नहीं भाई, मैं देखो भाई कबीर भाई मैं ये सब पंगे
1: नहीं, नहीं मेरी तरफ से, मेरी तरफ से भाई बोलना कबीर।
2: अरे कबीर भाई पंगे हो जाएंगे, मैं तो पता ही नहीं आऊंगा बीच में। अरे भाई मैं साइड में बैठ के सुनने वाला हूँ भाई, देखूंगा कौन बंदा फंसने वाला। अरे काई के लिए पंगे ले देगा भाई,
1: बिग बॉस वाली जनता
2: भाई कसम से। जिस दिन बोल रहा ना, जिस दिन अगर सरोवर भाई की हट गई या कभी मैं अगर गलती से अगर मैं बोल दिया सरोवर भाई ऐसा सा बोल दिया कभी भाई ने तुमको, कोई बात नहीं आसिफ आओ कभी चाय वाय पे बैठेंगे तुम और मैं भाई चाय पे, तो बाद में अगर बंदा मेरे पर बैठ गया ना भाई निकल जा।
1: आज आज देखते हैं फिर क्या होता है इंशाल्लाह, डेढ़ बजे का शो
2: मजा। आज तो मेरे को लगता है तीन जगह नाम था तीन बंदे लोग का, एक अख्तर भाई हो गए वो कर सकते है काम, और एक हमारे माज भाई हो गए, माज भाई करके गए आपके लिसनर, वो कर सकते हैं काम।
1: देखते
2: और है हमारे शहजादा सलीम,
1: शहजादा सलीम से भी उम्मीद है, देखते कौन आता है आगे इस लाइन में इंशाल्लाह।
2: देखते भाई आज हम तीन जन को सोच रहे कर दे हुए काम,
1: डन है भाई। देखते
2: बाकी क्या बोलते कबीर भाई?
1: बस भाई सब बढ़िया भाई, शानदार एकदम,
2: कहानी बहुत अच्छी थी, बाकी मजा आ गया भाई।
1: जजाकल्ला भाई बहुत प्यार,
2: हैप्पी वीकेंड ब्रो,
1: हैप्पी वीकेंड भाई, हैप्पी वीकेंड भाई। ओके मेरा भाई,
2: गरीबों का सहारा कबीर भाई हमारा।
1: थैंक यू मेरा भाई, लव
2: तुम्हारे लिए एक चीज बनाया भाई, छोटी सी चीज
1: भेजो
2: भाई, भेजो क्या भेजो भाई,
1: अरे सुना रहे हो क्या
2: बोल रहा हूँ, सब लिसनर लोग सुनेंगे।
1: सुनाओ भाई सुनाओ, क्या बनाया है सुनाओ।
2: नहीं जान दो भाई, बाद में बोलो।
1: अरे
2: नहीं जान दो भाई,
1: ओके भाई अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। अभी अरबाज भाई ने एक और फोटो खींचा है, ये सर्वर भाई का भेज देना। कैप्टन साहब जहाज क्यों छोड़ा, ये सवाल होना चाहिए आज। कॉल आ रही है, उड़ा लेता हूँ मैं जरा। अस्सलाम वालेकुम। हाँ कौन है?
3: वेरी गुड।
1: ऐसे आवाज में बोलोगे तो कौन, ये बोलोगे ना कौन है? छुपो मत गाड़ी के अंदर फलक। बता।
3: एक्चुअली मैंने स्पीकर ऑन किया गाड़ी का, वो गाड़ी से हटा के मैंने कहा इनको आवाज नहीं आ रही है तो पहले स्पीकर ऑन करो।
1: हाँ कुछ ज्यादा ही दबा एकदम दब गई थी। हाँ बताओ फलक क्या चल रहा है, अभी भी शुरू हुई।
3: बॉडी शेमिंग
1: सर्वर भाई, आसिफ भाई, आई डिड नॉट लाइक इट। हां नहीं नहीं सर्वर भाई इज डूइंग इट ऑन हिमसेल्फ, ही वांट्स अस टू डू इट, इट्स अ वेरी गुड स्पोर्ट अबाउट।

0: आपको पता नहीं है, बहुत बहुत क्यूटी है हमारे भाई वो तो कैप्टन आज कैप्टन सर्वर के साथ हम जो है गुफ्तगु करेंगे। आज हमारे कैप्टन सर्वर साहब हैं। आज आपने कहानी नहीं सुनी ना?
1: नहीं यार, मैंने मिस कर दी।
0: नहीं बट नहीं सुन ली। क्या क्या क्या क्या क्या
1: जो मुझे सुनाई थी वही वाली स्टोरी है?
0: कॉन्कॉर्डिया वाली? हाँ मैंने शायद सुनाई थी। आई रिमेम्बर शायद मैंने तुम्हें सुनाई
1: होगी, लेकिन उसमें कैरेक्टर के नाम नहीं बोले थे शायद
0: आई डोंट रिमेम्बर, लेकिन मैं फिर भी भेजूंगा। मैं तो भेजूंगा
1: वो लव स्टोरी वाली ना?
0: नहीं नहीं नहीं बाबा वाली नहीं, ना ना ना वाली नहीं बाबा, दूसरी थी ये, दूसरी कहानी थी।
1: हां तो मुझे भेजते ना।
0: डन डन डन डन। और अभी काम शुरू हुआ है क्या?
1: हाँ बस अभी निकली हूँ मैं। I'm going to Azizia, तो मैंने कहा लाओ मैं कबीर से बात कर लेती हूँ।
0: लोकेशन का नाम बोलते हुए लोग अपने अपने अंग्रेजी क्यों निकल जाती? I'm going to Azizia, just now, yeah. I'm going to Mansoor after the show, yeah. And Saturday दाल बाटी को खाएगा भाई। Saturday में दाल बाटी खाएगा। मैं अभी जो है बॉस को कॉल लगा रहा हूँ और मैं बताता हूँ फलक ने क्या बोला है। ठीक है संभाल लेना।
1: नहीं चाहिए, सिफारिश चाहिए तो बोलो, मैं लिखती हूँ।
0: अरे यार तुम अकेली काफी हो यार, संभाल लोगे, कोई टेंशन थोड़ी है। फलक क्या है, कोई बोल सकता है क्या?
1: वही ना, उनको पता नहीं अभी पावर।
0: अरे हम बता देंगे, कोई टेंशन नहीं है, सीधा बात करा देंगे। ठीक है
1: चलो देन, टेक केयर,
0: टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। और फलक के बाद जो है कॉल आई है, अस्सलाम वालेकुम। हेलो,
2: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। भाई साहब क्या हालचाल है?
0: बढ़िया भाई, एकदम जैसे भाई, क्या हालचाल है भाई? ये
2: क्या भाई साहब, कोई दुश्मनी है क्या?
0: क्या बात हो गई
2: भाई साहब? कोई ना कोई शेयर जो है ना वीकेंड पे देके चले जाते हो।
0: भाई अरबाज भाई ने तो उसकी भी फोटो निकालती
2: भाई। कोई ना कोई भाई साहब, एक अभी ये दूसरा नया शेयर अनलॉक कर दिया तुमने, सोचते थे कभी, सोचते थे कि चलो यार बोटिंग करेंगे, कभी घूमेंगे भाई, अब तो बिल्कुल भी ना जानना का, मतलब नजदीक भी ना जानने का।
0: अरे जहाज में जाओ, मजे करो भाई, क्या टेंशन है।
2: खादी भी ना भाई सब देखेंगे भी नहीं, दूर से फोटो खींच लेंगे खड़े होके।
0: आओ तुमको शार्क दिखाए।
2: हम शार्क को जो है ना चैट जीपीटी से बनवा लेंगे भाई सब।
0: नहीं यही करना। वैसे कहानी कैसे लगी आपको, एक्सपीरियंस कैसा रहा?
2: अरे भाई साहब जबरदस्त।
0: थैंक यू सो मच भाई।
2: कैप्टन साहब का तो जवाब नहीं भाई साहब,
0: जवाब नहीं
2: सर्वर भाई, कैप्टन सर्वर।
0: हाँ कैप्टन सर्वर से सवाल पूछना है कि तुम भाई लोगों को छोड़ के क्यों भागे आइलैंड?
2: नहीं भाई, मैं तो सबसे पहले पूछूंगा जब आऊंगा ना 1:30 बजे के बाद गाड़ी में कॉल लगाऊंगा, मैं सबसे पहले पूछने वाला हूँ भाई।
0: आप जहाज को छोड़ के क्यों भागे यार, ये बताइए, बाकी सब
2: ठीक है? भाई ये बता दो, भागे तो मैं नन्हे नन्हे मासूमों की जान की परवाह नहीं थी?
0: कैसे आदमी हो यार
2: तुम, सबसे पहले निकल के भाग लिए।
0: हाँ ये जरूर पूछने का, वेरी गुड, सही जा रहे हैं।
2: आज भाई साहब बड़ा बड़ा डिजाइन
0: है। नहीं आज वो मुझे पक्का ढूंढ लेंगे, मुझे पूरा यकीन है उनपे। लेट्स सी क्या होता है।
2: ना आज नहीं ढूंढेंगे, आज है ना वीकेंड है ना, तो अपने अपने काम में लग जाएंगे।
0: लेट्स सी,
2: तैयारी करेंगे, कहीं ना कहीं निकल लेंगे।
0: देखते नहीं, आज तो मैं सुनूंगा जरूर, पर बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई कॉल करने के लिए जैस भाई। और इनके बाद जो है भाई तला भाई, मैं आपको ही कॉल लगाने जा रहा हूँ, बस एक कॉल के बाद सीधा आपको कॉल जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो,
3: वालेकुम अस्सलाम।
0: हाँ जी कमाल भाई, क्या हाल है?
3: अल्हम्दुलिल्लाह करम है भाई, बहुत लेट आवाज आई इसकी।
0: अच्छा अब बताइए भाई।
3: बस यही बोल रहा था भाई, खबरदार अगर जो बॉस को फोन लगाया, मैसेज किया कि जो सामने जा रहा हूँ करके भाई।
0: अच्छा सुबह में ही चाहिए आपको?
3: सुबह में ही चाहिए।
0: दन, दन, दन, जैसे, जैसे,
3: बाकी जो सामने जाने वाले बोल रहे हैं उनका नंबर दे दीजिए, हम लोग लड़ लेंगे आपस में भाई, वोटिंग कर लेंगे।
0: नहीं नहीं हमारी हमारी जो फलक है वो ही बड़ी खास है, तो हम उससे भिड़वाएंगे नहीं आपको, पर दोनों टाइम शो कर लेंगे यार, आप लोगों के लिए क्या टेंशन है भाई।
3: हाँ तो एक काम करो ना, क्योंकि भाई थोड़ा सा वक्त निकालिए, फ्राइडे और सैटरडे शाम में कर लो।
0: अच्छा
3: बाकी दिन जो है सुबह कर लो, वैसे भी तो सामने आप आते रहते कभी ना कभी रिकॉर्डिंग के जरिए ही, लेकिन आते तो हैं।
0: हाँ तो डेली कर लो, है बहुत बढ़िया।
3: डेली कर लो।
0: कहानी कैसे लगी आपको ये बताइए।
3: कहानी तो भाई तुम भरी।

0: कहानी थी, जो लोग घूमने का सपना देखे थे उनके सारे सपने में पानी फिर गया।
1: सच में पानी फिर गया?
0: पानी फिर गया भाई,
1: लिटरल पानी।
0: बताइए लोग, मेरे को तो लगता है कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि आपकी कहानी सुन सुन के लोग घूमना फिरना भी छोड़ दें। जहाज में जा रहे हैं उसको जो आप गिरा दे रहे हैं, पानी में जा रहे हैं उसको डुबा दे रहे हैं।
1: अरे रे रे रे रे, क्या करें अब, यही तो रोजी रोटी है मेरी, इसी से मेरा घर चल रहा है, सुनानी पड़ती है ऐसी कहानी। कमाल भाई क्या कर सकते हैं बताइए। आप कब जा रहे हैं जहाज में?
0: कैप्टन क्या बोले,
1: आप कब जाएंगे जहाज में फिर सफर करने के लिए?
0: जहाज में अभी तो कुछ बता नहीं सकते कब जाएंगे।
1: अब तो पानी से दूर
0: मिलेगी तब,
1: पानी से दूर
0: नहीं, पानी से डर नहीं लगता भाई। मैं जब भी जाता हूँ फिशिंग करने के लिए जरूर जाता हूँ,
1: वेरी गुड,
0: धक्के पेटों कभी जो है,
1: वेरी गुड भाई, सो प्राउड ऑफ यू भाई, डन है।
0: पानी से डर नहीं लगता भाई, नहीं स्पीड से डर लगता है।
1: अरे यार क्या बात है यार, आप ही के लिए बनी है सारी कहानियां भाई, आप धुरंधर हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कमाल भाई कॉल करने के लिए, धन्यवाद।
0: ठीक है,
1: अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। और कमाल भाई के बाद में बस एक लास्ट कॉल। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम।
1: हाँ जी भाई, आपका नाम?
2: मेरा नाम मोहम्मद शोएब है, कबीर भाई।
1: जी शोएब भाई कहिए।
2: ठीक है कबीर भाई, फर्स्ट टाइम कॉल लगाया हूँ आपके पास, बहुत अच्छा लग रहा है। और आपकी कहानी सुनता हूँ मैं, आज नहीं सुन पाया, लेकिन आपका सुनाने का अंदाज बहुत अच्छा है।
1: थैंक यू सो मच।
2: सुनाते हो तो फिर कैसी भी कहानी रहे बहुत अच्छा लगता है।
1: अरे बहुत प्यार शोएब भाई को। शोएब भाई कहाँ से हो?
2: मैं इंडिया।
1: अरे तो इंडिया बहुत बड़ा है यार। अच्छा यूपी में कहाँ से?
2: यूपी सुल्तानपुर
1: से। अरे सुल्तानपुर से मेरा भाई, क्या बात है। हाँ। ये हुई देसी पहचान, ये हुई बढ़िया बात। चलो बढ़िया है भाई, कोई दिक्कत नहीं, आप मैसेज कर दो, भेज दूंगा मैं आपको, मिल जाएगी। ठीक है
2: ठीक,
1: ख्याल रखो भाई, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह
2: हाफिज़।
1: वालेकुम सलाम भाई। और अब जो है इनको भी कॉल कर लिया जाए, क्योंकि अब मैं कॉल रोक रहा हूँ। दिस विल बी द लास्ट कॉल फॉर द डे। किधर है भाई अपना? ओके, माई जरा कॉल लगा रहा हूँ मिस्टर थिलहा। उसके बाद सारे मैसेज पढ़ूंगा, बहुत सारे मैसेज है माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
1: हाँ जी भाई साहब, क्या हाल है?
3: भाई होश आ गया आपको?
1: जी बिल्कुल, अभी भी होश आया भाई, अभी जहाज से उतरा ना मैं।
3: हाँ मुझे लग रहा था तुम्हारा दिन पूरा होगा कतर में।
1: मैं जहाज से उतरा ना फिर भी।
3: मैंने लगा ली थी कॉल।
1: हाँ अब बताओ क्या कहना चाहते हो, आपको कैसी लगी गानी? पहले तो तला भाई ये बताओ।
3: गाने बेहतरीन, जबरदस्त, मजा आ गया।
1: थैंक यू थैंक यू जी। अब आगे ये बताएं, आप इतने महंगे महंगे फोटो जो भेज रहे हैं, क्या इंटिमिडेट कर रहे हैं आप? क्या क्या चक्कर क्या है?
3: यार देखो ये फैमिली का मैं वो बोलने से पहले मैं बोलना चाह रहा हूं।
1: नहीं बढ़िया बढ़िया फोटोज है यार, काफी काफी बढ़िया है, सही है तला भाई, वेरी नाइस
3: भाई, इम्प्रूवमेंट
1: का ये भाई।
3: माशाल्लाह
1: माशाल्लाह माशाल्लाह, बढ़िया गया तला भाई, मजाक से हट के बहुत बढ़िया। और बताओ तला भाई,
3: क्या मोटिवेट कब होगी और कैसे करूंगा मैं
1: मोटिवेट? हूँ मुझे करना चाह रहा हूँ। अरे यार
3: ये मोटिवेट
1: जाट को ना बहकाया करते, सलानी दिया करते। समझ में आई?
3: जाट बना छोड़ दो भाई, ये जरा थोड़ा सा
1: नहीं भाई, नहीं भाई, जब तक हम गाड़ी के पीछे जाट बॉयज नहीं लिखवा लेंगे तब तक चैन से नहीं सोएंगे।
3: यार कसम यार, ये वाला नशा तो करना है
1: ना, ये वाला तो चाहिए भाई थोड़ा सा,
3: ये वाला तो चाहिए वाला।
1: देखा दो मिनट में बिगाड़ दिया आपको मैंने, अभी लाइन पे थे।
3: मैं हो गया ना मोटिवेट,
1: शाबाश
3: शेरा,
1: वेरी गुड वेरी गुड। तो आपने रिसेंटली मेरे को जो सवाल सुबह हम सवाल पूछ रहे थे उस पे आपका क्या ओपिनियन है, इतनी सारी बातें सुनने के बाद क्या कहना?
3: यार मेरे को यार असल में ना, मैं छोटी सी बात बोलूं, लड़के ना बुरा मान जाएंगे।
1: क्या
3: लड़के मेकओवर और मीठे बने में ना डिफरेंस नहीं करते? लड़का मेकओवर कराने जाता है, मीठा बन के आ जाता
1: यार।
3: तो वो ना हो बस, मेकओवर जो करना चाहिए करो।
1: हाँ तो आप चाहते हैं कि ये स्किन रूटीन ना फॉलो करें लड़की, थोड़ा ज्यादा हो रहा है?
3: नहीं करें बहुत ज्यादा ना करें, ये वो तिब्बत जो यार, एक बात बताओ, ये आजम क्या नाम था, आजम
1: भाई, इरफान भाई, इरफान भाई जो,
3: इरफान भाई यार, भाई इरफान भाई यार, अल्लाह की कसम भाई, मैं एक बड़ी बेलकुकू फैमिली से ताल्लुक रखता हूँ, पढ़ा लिखा बंदा है ना, आपने टपोरी बनानी है मुझे यार।
1: के तला भाई को तो पता होगा।
3: छपरी, अल्लाह की कसम छपरी वाली फीलिंग करा दी उन्होंने यार, हर कॉल पर मुझे कोट कर देते हैं भाई, ये मोहब्बत है इनकी, लेकिन यार मुझे फीलिंग अच्छी है, ये कोटेशन होती है मेरे बीच में।
1: वो हर बात कहते कहते ये तला को तो पता ही होगा।

0: मतलब अच्छा जो भी ऐसी होती है ना बात, हाँ, जो समझ रहे हो तुम वैसी वाली,
1: हाँ,
0: उसमें मैं मेरा रेफरेंस सामने पहले आया, ये तो तलाको पता होगा तलाको भाई ये पता होगा, अच्छी बात है, लेकिन
1: मुझे
0: महसूस ही नहीं हो रहा था तारीफ कर रहा बंदा या मतलब बेइज्जती में बिल्कुल इजाफा कर रहा है, क्या क्या चाहता क्या है आदमी।
1: मैं कल तो नहीं संडे को पूछता हूँ उनसे, मैं डेफिनेटली कंफर्म करेंगे हम, क्योंकि ये बड़ा सीरियस मैटर हो गया पता करते
0: हैं कि वो रात में भाई मैं कच्ची हो रहा
1: हूँ। सबसे पहले तो आपने अपना मकसद नहीं भूलना है। मैं करता हूँ कुछ, मैं करता हूँ, ये बात करूंगा
0: मैं स्पॉइल होना चाह रहा हूँ लेकिन ये होने नहीं दे रहे मुझे, तमीज से होने देना मुझे।
1: क्या यार इरफान भाई अगर आप सुन रहे हैं,
0: वो बहरहाल बताओ मैं तुम्हें, जो तुमने भाई के लिए बात कर रहा हूँ, अरुण भाई के लिए जो जहाज छोड़ के चले गए, तुम देखो तुम आप सोच रहे हो जहाज छोड़ के चले गए और सामने बैठ के वहाँ उकड़ू को बैठ के देख रहे हैं कि कौन डूब रहा है कौन बच रहा है, ठीक है, लेकिन तुमने एक चीज नोट नहीं करी, वो सारा खाना भी अपना ना त्याग करके चले गए, उन्होंने अपना सारा खाना भी छोड़ दिया जो शहर शिफ्ट था, जो उकड़ू को बैठे ना घुसने उनके सर से मुंह से लगे हुए घुसने।
1: ये एक मैसेज है, एक मैसेज आपके लिए है, आसिफ भाई कह रहे हैं कबीर भाई मेरा सवाल है, तला ऐसे कौन से कोने में बैठ के बात कर रहे हैं हमें भी बताएं, हम वो कोने में एक अच्छा सुबह हो गई है उठो, आपको ये कह रहे हैं कि सुबह, अरे सुबह मैसेज किया था तला भाई ने पर कॉल नहीं हो पाई।

0: चेकअप होगा
1: मैं इनसे बोलता हूँ आसिफ भाई, आई होप मैसेज पहुंच गया हो, लेकिन शुक्रिया तला भाई कॉल करने के लिए।
0: बाकी तुम जो है ना भाई मेरे, तुम मेरी ना बदनामी का सबब बने हुए, और कुछ नहीं है।
1: अच्छा, मैं कल से आपके बारे में और कुछ ढूंढ के लाता हूँ नया।
0: भाई तू कुछ नहीं कर भाई, मैं खुद कर लूंगा जो मैंने करना, मैं खुद कर लूंगा भाई। तू नहीं कर, जितना तूने कर लिया ना, मेरी सेहत तो बाकी भारी पड़ रहा है इस टाइम पे।
1: कल देखिए,
0: मैं कर लूंगा भाई,
1: संडे को देखते हैं।
0: अब देखो मैं क्या करता हूँ।
1: डन, ठीक है तला।
0: चलो भाई,
1: ओके भाई, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। और तला भाई के बाद सीधा जो है, अब हम आपके गाड़ी के बेस को चेक करने वाले हैं। जिनके गाड़ी के बेस अभी एकदम फुल किया हुआ है आपने, क्योंकि इसके बाद सीधा न्यूज आएगी कतर की, तो वो आपको बताऊंगा। मगर उससे पहले बीट जब ड्रॉप होगी भाई, भाई भाई भाई भाई, मजा आने वाला है आपको। हैप्पी वीकेंड सबसे पहले तो। मैं दुहा वाला कबीर एफएम 107 पे, एंड जी यो गाना भाई, स्पीकर आ लेंगे भाई गाड़ी के अभी कुछ देर में। बीट ड्रॉप का वेट करो, फिर देखो क्या होता है। वॉल्यूम बढ़ा के, हैप्पी वीकेंड।

मोहम्मद जुबेर भाई कहते हैं कैप्टन नेवी कट गोल्डी कुछ नहीं पढ़ सकता आपका मैसेज. एक मैसेज है, कौन सा कैरेक्टर है आज कैप्टन का भाई, कैप्टन का रियाज भाई आज मैसेज. हैप्पी वीकेंड कबीर भाई, वेरी वेरी नाइस स्टोरी, थैंक यू सो मच. और एक वॉइस नोट तो मैं सुन नहीं पाया, प्रिंस भाई ने बुलाया भाई, स्टोरी तो अच्छी थी लेकिन ये बताओ कैप्टन ने कितने पैसे दिए हमको आपको हमें इस वर्चुअल शिप में बिठाने के लिए. दूसरी बात भाई, जो जो शिप में बैठे थे आपके कहने पे उन सबको आपने बचाया या नहीं, बचा लिया भाई. कहते हैं जस्ट किडिंग, स्टोरी इज ऑसम एंड योर फैंटास्टिक वॉइस, थैंक्स ब्रो फॉर एंटरटेनिंग, थैंक यू सो मच भाई. और मैसेज किया है सत्यम भाई ने भी, थैंक यू सो मच. और एक वॉइस नोट तो अभी मैं सुन लूँगा. और क्या मैसेज है इनका तो मैंने पढ़ लिया. कहते हैं कैप्टन सर्वर भाई वो डेली आपको याद करें, आपको कोई लिसनर्स कुछ कहते हैं तो रिप्लाई करते हैं. टॉम एंड जेरी के भाई, टॉम एंड जेरी का ही सीन चल रहा है भाई अपना तो. और एक भाई कहते हैं मैं वोट करता हूं आपको मॉर्निंग शो के लिए, अली मकसूद भाई कह रहे हैं. कबीर भाई दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह आपको अपनी जुबान में रखे और मजीद मोहब्बत. भाई बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत प्यार आपको, थैंक यू सो मच. एंड एक मैसेज है सलीम भाई, कबीर भाई एनी वेयर यू ट्रैवलिंग विद क्रूज मस्ट बी यू नो वेरी वेल. अरे अब तो आपका भाई ट्रेंड है भाई पूरा इस मामले में. लिखते हैं हैप्पी वीकेंड मासलामा, ये तो निकल गई. ये मैसेज किया है मुझे फरद भाई ने, फरद भाई थैंक यू. एंड मुबीन बुखारी साहब जो है सबको विश कर रहे हैं. ओके अब जरा मैं खबर की तरफ बढ़ जाऊँ तो कुछ मेजर चीज़ें बताना जरूरी है. सबसे पहले हमारी ही ऑर्गेनाइजेशन यानी कतर मीडिया कॉरपोरेशन ने वेंसडे को लॉन्च किया यानी कल नहज, और ये एक इनिशिएटिव है जिसका मकसद है डिजिटल कंटेंट को एलिवेट करना, उसमें मोर क्रिएटिव वेज लेकर आना और री इन्फोर्स करना नेशनल वैल्यूज़ को और एक आइडेंटिटी क्रिएट करना जो कि इंकरेज करे लोगों को, प्रोत्साहित करे उनको, उनकी हौसला अफजाई करे और रिस्पॉन्सिबल बनाए टू यूज़ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इन द राइट वे. और ये जो प्रोग्राम है इसका एक स्लोगन भी है कमिटेड टू आवर वैल्यूज, और दिस हैज़ बीन इंप्लीमेंटेड इन पार्टनरशिप विद कतर यूनिवर्सिटी, वेरियस मिनिस्ट्रीज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और बहुत सारी अदर रेलिवेंट एंटिटीज जो इससे जुड़ी हुई हैं. बहुत बढ़िया कोशिश है एंड आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सबड्यू द पार्ट जहाँ पे लोग थोड़ा सा बॉर्डर लाइन हो जाती है. इसके अलावा एम्बेसी ऑफ द स्टेट ऑफ कतर इन ओटावा यानी कि कनाडा, उन्होंने वेलकम किया है मेंबर्स ऑफ कतरी कैनेडियन एंड वाइडर लोकल कम्युनिटीज़ को टू ओटावा फॉल गेट टुगेदर एट ले मे लेक. ये नाम मैं गलत पढ़ाऊँ सही पढ़ाऊँ मुझे पता नहीं है, पर एक लेक पार्क है और वहाँ पर एक बहुत बड़ा फंक्शन रखा गया. इट वॉज हेल्ड एट 2026 कैलेंडर ईयर ऑफ कल्चर पार्टनरशिप बिटवीन द टू कंट्रीज़. तो ये भी एक बेहतरीन इनिशिएटिव है, ना सिर्फ कतर में हो रहा है बल्कि बाहर भी हो रहा है, सो वेरी गुड इनिशिएटिव. इसके अलावा कतर कैलेंडर ने पोस्ट भी किया और आप देख भी सकते हैं, दे आर कम्प्लीटली सेट टू ब्रिंग बबल प्लैनेट. बेसिकली एक कैसे समझाऊँ, एक बड़ा ही इमर्सिव एक्सपीरियंस है जो दोहा में आने वाला है और ये इसकी ओपनिंग होने वाली है कतर नेशनल कन्वेंशन सेंटर में QNCC में ऑन दिसंबर 6th. तो अभी टाइम है, ज़्यादा टाइम तो नहीं है, बट दिसंबर 6th में. और इसके जो टिकट्स हैं वो सेल पर चले जाएंगे इस आने वाले महीने में यानी अक्टूबर से ही शुरू हो जाएंगे. तो ये थी कुछ बातें, एक मैसेज है, दो और कहानी बची है भाई. हैं एक बस दूसरी ट्रेन, ट्रेन वाली भी है मेरे पास, मैंने सुनाई नहीं है बस. एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम, हैप्पी वीकेंड, हैप्पी वीकेंड मेरे भाई, क्या हाल है आपके, बढ़िया. और भाई कहता है कि सोशल मीडिया हैंडल्स पे आप ज़रूर आइएगा बिकॉज वहाँ पे आप आएंगे तो आप देखेंगे बहुत सारे वीडियोस, हमारी कोशिश रहती है कि आप तक पहुँचाएँ जो इवेंट्स इधर उधर होते भी रहते हैं. 9 बजे जो न्यूज़ बुलेटिन होती है वो भी आपके लिए लाइव जाती है, सो मेक श्योर दैट यू आर देयर ऑल्सो, तो वो भी आप देख पाएंगे. बाकी क्या है, आप उनका क्या, आप उनका भाई आसिफ भाई क्या. एक मैसेज है, छुट्टी का टाइम हो गया, मोहसिन भाई कह रहे हैं छुट्टी का टाइम हो गया. इनको पहले बताया छुट्टी का टाइम हो गया, अच्छा. और एक और मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम भाई, जब आप कहानी सुनाते हैं तो इतनी तैयारी करके लाते हैं कि मुझे लगता है ये आदमी जो है अब बोलेगा तब बोलेगा लेकिन एक बार भी नहीं बोलते, ऐसा कैसे कर लेते हैं. बस भाई जिस काम के पैसे मिलते हो उस काम की बहुत कदर करनी चाहिए भाई. बस वही करके चलते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हो जाता है. मगर थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग द पार्ट के एफर्ट लगता है इसमें, आपने इसको इज्जत बख्शी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर बख्शी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका. बाकी दाजी संडे को मिलेंगे, अभी तो साइन ऑफ करने के वैसे भी टाइम आ गया. कुछ और आप कहना चाहें, ट्रैफिक हाल बताना चाहें तो बता दीजिएगा. एक भाई ने क्योंकि मुझे मैसेज किया है, अभी भाई अभी मैं सलवर रोड पे फंसा हुआ हूँ पिछले 10 मिनट से, निकलने को नहीं हो रहा. मेरा नाम है आरिफ, मैं मुंबई से हूँ. ये सारे आप मुंबई वालों को ट्रैफिक लग रहा है यहाँ पे भाई. नहीं भाई, आप मुंबई से हैं, आपको ट्रैफिक लगने का कोई हक ही नहीं है. आप नहीं कह सकते कि आपको ट्रैफिक महसूस हो रहा है. आई एम सॉरी, नहीं आपको ट्रैफिक लगेगा भी तब भी मैं नहीं मानूंगा. तो बताइए मुंबई वाले लोग यहाँ पे कह रहे हैं ट्रैफिक में फंसा हूँ मैं, जी नहीं.

आपका टाइम पास है। और एक और मैसेज मेरे पास जस्ट अभी आया है, क्या कह रहे हैं ये सर, क्या सर सर और भाई एक कहानी लिख दो ना प्लीज। क्या कहानी लिख दो, कौन सी कहानी लिख दो, समझा नहीं मैं क्या क्या कह गए। कुछ बातें ऐसी हो जाती है ना इतनी गहरी कि मेरे सर के ऊपर चले जाती है। मैं अस्सलाम वालेकुम, हमेशा जिंदा रहो, यकीन मानो अच्छा लगता है हर सुबह ड्यूटी जाते हैं और कबीर भाई की आवाज़ सुनते हैं, माशाल्लाह अल्लाह सलामत रखे। जज़ाकअल्लाह मेरे भाई, बहुत सारा प्यार आपको, थैंक यू सो मच। ये रहमान भाई ने मैसेज किया, रहमान भाई को बहुत सारा प्यार किया, सरोर भाई पे कहानी लिख दो। ठीक है भाई, लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उस कहानी में आप एंड में क्या चाहते हैं मुझे ये बता दीजिएगा, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि क्लाइमेक्स आपके हिसाब से हो। इफ़ यू नीड अ पर्टिकुलर क्लाइमेक्स आप प्लीज़ मुझे बताएं, मैं वैसा ही क्लाइमेक्स लिख के लेके आऊँगा। यार आप जो चाहेंगे वो तो डिलीवर करेंगे ना, टेंशन थोड़ी है भाई। और एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या कह रहे हैं, सब अल अहमद कॉरिडोर की तरफ से जा रहा हूँ, इधर अभी भी ट्रैफिक क्लियर हुआ है, जितने भी लोग आज निकले हैं आज सुनते हुए जाएं कबीर भाई को, और कबीर भाई कहानी जो है हमेशा की तरह, अच्छा हमेशा की तरह मज़ेदार रही। अभी आपने सब कुछ कवर कर लिया है, अब कभी स्कूटर पर भी कहानी सुनाएं। ठीक है, क्या बात हुई, स्कूटर पे कहानी सुनाओ, स्कूटर पे क्या कहानी सुनाऊं मैं आपको भाई। ये जो रिक्वेस्ट आ रही है ना, ये अलग अलग रिक्वेस्ट है, मैं इनको समझ नहीं पा रहा हूँ कि इसे फुलफिलमेंट कैसे करूँ इन चीज़ों की। एक होती है कि इसे उम्मीद बांधना, ये कैसी उम्मीद है कि मैं समझ ही नहीं पा रहा, उम्मीद का मुझे करना क्या है। एक मैसेज है, फिर एंड होने की आजम ही नहीं हो रहा। एक मैसेज है, तड़का लगाने वाले हैं जी आज, ऑफकोर्स जरूर सुनिएगा सारे के सारे हमारे शोज, वेरी इंपॉर्टेंट। सोशल मीडिया हैंडल्स तो आपको बताई दिए मैंने, FM 107 Qatar, FM 107 Qatar, इस नाम से हर जगह मौजूद है। अब आपसे मुलाकात होगी सीधे संडे को मिलते हैं, तब तक के लिए ज़्यादा चाहूँगा आपसे, आज तो वीकेंड, वेरी हैप्पी वीकेंड, प्लीज़ ड्राइव सेफली, कहीं भी जल्दी जाने की ज़रूरत नहीं है, एंड अपना ख्याल रखिएगा। 9 बजे न्यूज़ बुलेटिन, और याद रखिए कि आप बेहद बेहद ज़रूरी हैं। मास्टरामा।

आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।

0: कायम करने के लिए एक स्ट्रेटेजिक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर दस्तखत किए हैं। इस शराकत का मकसद अहम सनअती शोबों में मकामी सलाहियतों को फ़रोग देना और पैदावारी और खिदमाती बुनियाद को मजबूत बनाना है। और कदर स्टॉक एक्सचेंज का जनरल इंडेक्स ट्रेडिंग सेशन के अख्तिताम पर 31.75 पॉइंट्स या 0.33% के इजाफे के साथ 9,545.54 पॉइंट्स पर बंद हुआ। सेशन के दौरान तमाम शोबों में 24,012 ट्रांजेक्शन्स के नतीजों में 40 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में इजाफा हुआ और 9 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कमी आई, जबकि 4 कंपनियों ने अपनी साबिका क्लोजिंग प्राइजेस को बरकरार रखा। ये थी अभी तक की बिजनेस न्यूज अपडेट्स। आइए अब रुख करते हैं स्पोर्ट्स न्यूज का।
1: स्पोर्ट्स हेडलाइंस विद मोहम्मद अमीन।
2: अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स हेडलाइंस में एशियन गेम्स के मेंस शूटिंग इवेंट के स्कीट कैटेगरी में कतर की मेंस टीम ने गोल्ड हासिल की, वहीं इंडिविजुअल इवेंट में राशिद अल अतबा ने गोल्ड मेडल जीता। एशियन गेम्स में आलिया तामर ने 200 मीटर फ्री स्टाइल स्विमिंग के कंपटीशन में छठी पोजीशन हासिल की और आज कतरी स्विमर्स 50 मीटर बटरफ्लाई और 4x100 मीटर रिले में हिस्सा लेंगे, जबकि साद दिन 800 मीटर फ्री स्टाइल के फाइनल में कम्पीट

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: ए बनी आदम, क्या तुम दुआ का मजाक उड़ाते हो, दुआ को हकीर समझते हो, हालांकि तुम्हें खबर ही नहीं कि दुआ क्या कुछ करती है। ये रात के तीर हैं जो सीधे अपने निशाने पर जा लगते हैं, खता नहीं करते, अलबत्त उनका एक वक्त मुकर्रर है जिसके बाद उनका असर जाहिर होता है। तो दोस्तों, प्रोग्राम आज की दुआ, इसका मकसद हमें याद दिलाना है कि दुआ बंदे का सबसे कीमती हथियार है, दिल का सुकून है और रब से ताल्लुक का सबसे मजबूत रिश्ता है। आइए चंद लम्हों के लिए हम अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगे। समझ के हम चले आज सुनते हैं सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ। ये दुआ उन्होंने अल्लाह की बेशुमार नियमतों के एतराफ और उनका शुक्र अदा करने के लिए मांगी। ये दुआ उस वक्त की है जब सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने परिंदों की जबान समझने की सलाहियत अता फरमाई और उन्हें बेमिसाल सल्तनत बख्शी, और इस मौके पर बजाय गुरूर के उन्होंने आजिजी से अपने रब के हुजूर ये दुआ की थी।

0: يدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. رب اوزعني هي میرے رب مجھے توفیق دے میری رہنمائی فرما ان اشکر نعمتک کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں التي انعمت علی وعلى والدی جو نعمتیں تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کی وان اعمل صالحا ترضاه اور مجھے ایسے نیک اعمال کی توفیق دے جو تجھے پسند ہو وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما. یہ دعا بندگی شکر گزاری اور نیک اعمال کی رہنمائی کا عظیم سبق ہے. خلاصہ اس دعا کا یہ ہے کہ نعمتیں ملنے کے بعد شکر عاجزی اور نیک اعمال ہی اصل کامیابی ہے. آئیے ہم سب عاجزی سے یہ دعا پڑھیں. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدی وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين.
1: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام ایٹ ایف ایم 107 قطر. دل سے دیسی
2: جین زی جین ایکس جین الفا ملینیلز ये सब महज टर्म्स नहीं हैं, ये अलग अलग ख्याल आदतें इन सब को अगर एक दूसरे से मुखातिब कराया जाए तो क्या होगा.
3: तो ये जानने के लिए सुनिएगा जनरेशन टॉक जनरेशन टॉक विद आरजे कबीर एंड आरजे सफा एवरी ट्यूसडे एट 3 PM ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी. दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने हियरिंग इम्पेयरमेंट से मुतासिर लोगों की सेफ्टी और सिक्योरिटी को बहुत ज्यादा अहमियत दी है. उनकी मदद के लिए मिनिस्ट्री ने डेफ इमरजेंसी सर्विस शुरू की है जो उनकी इमरजेंसी कॉल्स का जवाब देने के लिए 24/7 दस्तयाब है. ये सर्विस उन लोगों के लिए है जो सुन नहीं सकते और जो अपनी इमरजेंसी सिचुएशंस में आसानी से मदद चाहते हैं. डेफ इमरजेंसी सर्विस एक एडवांस्ड और मॉडर्न सिस्टम का इस्तेमाल करती है जिसके जरिए लोग अपनी इमरजेंसीज रिपोर्ट कर सकते हैं और उन्हें फौरी तौर पर मदद मिलती है. सिर्फ एक सिंपल कॉल 992 से आप इस सर्विस को एक्सेस कर सकते हैं जो कि स्पेशली डिजाइंड है हियरिंग इम्पेयर्ड इंडिविजुअल्स यानी वो लोग जो सुन नहीं सकते. ये सर्विस उनकी जरूरत के हिसाब से उनको इमरजेंसी रिस्पांस देती है और उनके लिए सेफ्टी को इंश्योर करती है. यानी अगर आप या आपके आसपास कोई शख्स हियरिंग इम्पेयरमेंट से मुतासिर है तो 992 का नंबर याद रखें और इस सर्विस का फायदा उठाएं. ये इनिशिएटिव सिर्फ एक सर्विस नहीं बल्कि एक अहम कदम है उन लोगों की मदद करने के लिए जो अक्सर अपने हक में मदद हासिल करने में मुश्किलात का सामना करते हैं. मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की ये एफर्ट्स ये दिखाती हैं कि हर शख्स की सेफ्टी और सिक्योरिटी उनकी पहली प्रायोरिटी है चाहे उन्हें सुनाई न दे. तो अगर आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जो हियरिंग इम्पेयरमेंट से मुतासिर है उन्हें ये सर्विस जरूर बताएं. ये सर्विस उनके लिए एक नया रास्ता है अपने इश्यूज को सॉल्व करने का और इमरजेंसी सिचुएशंस में मदद लेने का. FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है.
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी.

Assalamualaikum दोस्तों, आज के स्पोर्ट्स हाइलाइट्स में हम बात एक ऐसे पाकिस्तानी हॉकी लेजेंड की करेंगे जिन्होंने अपनी स्पीड, स्किल, गोल स्कोरिंग एबिलिटी और अटैकिंग स्टाइल से दुनिया भर में अपना नाम बनाया। एक ऐसा खिलाड़ी जो पाकिस्तान हॉकी के गोल्डन एरा की पहचान बना और वो नाम है हसन सरदार। 22 अक्टूबर 1957 को कराची में पैदा होने वाले हसन सरदार को पाकिस्तान के ग्रेटेस्ट सेंटर फॉरवर्ड्स में शुमार किया जाता है। उनका इंटरनेशनल करियर 1979 में शुरू हुआ और 1987 तक जारी रहा। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान के लिए 148 इंटरनेशनल मैचेस खेले और 150 गोल स्कोर किए, यानी उनका स्कोरिंग एवरेज एक मैच से भी ज्यादा गोल कर रहा है, जो अपने आप में उनकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी गोल स्कोरिंग एबिलिटी का सबूत है। हॉकी में हसन सरदार इज अ लेजेंड। आज भी कोई भी चर्चा हो, हसन सरदार इज अ रेफरल पॉइंट। हसन सरदार का नाम सबसे ज्यादा पाकिस्तान के हॉकी के गोल्डन एरा के साथ जुड़ा हुआ है। उनकी सबसे यादगार परफॉर्मेंसेस में 1982 हॉकी वर्ल्ड कप शामिल है, जो बॉम्बे यानी आज के मुंबई शहर में खेला गया था। पाकिस्तान ने टूर्नामेंट जीता और हसन सरदार ने जबरदस्त परफॉर्मेंस देते हुए टूर्नामेंट के लीडिंग गोल स्कोरर का मकाम हासिल किया और उन्होंने वर्ल्ड कप में 11 गोल स्कोर किए और उन्हें मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी करार दिया गया। अच्छा, हसन सरदार 1982 के लिए खास तौर पर कामयाब रहा। अगर देखा जाए, पाकिस्तान ने इसी दौर में वर्ल्ड कप और एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीते और स्पेशली जो दिल्ली में हुआ था 1982 का एशियन गेम्स फाइनल, हॉकी फाइनल की बात करो दोस्तों, और इंडिया को 1-7 गोल से पाकिस्तान की टीम ने मात दी थी, एंड दैट वाज अ क्लासिकल मैच। हसन सरदार पाकिस्तान की लेजेंडरी फॉरवर्ड लाइन का अहम हिस्सा थे और जहां उनके साथ समीउल्लाह खान, कलीमुल्लाह खान, ये दोनों भाई थे, हनीफ खान और मंजूर हुसैन जैसे ऐसे मशहूर मारूफ खिलाड़ी मौजूद थे। पाकिस्तान हॉकी वाज ट्रूली ग्रेट टीम ड्यूरिंग दैट एरा, एंड पाकिस्तान टीम वाज अ ट्रूली ग्रेट टीम ड्यूरिंग दैट एरा।

फाइनल स्टेजेस में जर्मनी को एक के मुकाबले में दो गोल से शिकस्त दी। हसन सरदार ने टूर्नामेंट के दौरान पाकिस्तान के अटैक को लीड करने में हसन सरदार ने टूर्नामेंट के दौरान पाकिस्तान के अटैक को लीड करने में अहम किरदार अदा किया। अच्छा उनके खास बात यह थी कि उनके खास बात यह थी कि बिग मैच परफॉर्मेंसेस उनमें नजर आती। वो सिर्फ ग्रुप मैचेस में गोल करने वाले खिलाड़ी नहीं थे बल्कि बड़े टूर्नामेंट्स के फाइनल्स में भी अपनी टीम के लिए परफॉर्म करते थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने 1982 वर्ल्ड कप, 1982 एशिया कप, 1982 एशियन गेम्स और 1984 ओलंपिक्स के फाइनल्स में भी गोल स्कोर किया एंड दैट्स अ रिकॉर्ड। 1985 एशियन कप में भी हसन सरदार पाकिस्तान के टॉप स्कोरर्स में शामिल रहे और उन्होंने टूर्नामेंट में 10 गोल्स स्कोर किए और पाकिस्तान को टाइटल जीतने में अहम कंट्रीब्यूशन दिया। और अगर सिर्फ नंबर्स की बात करें तो हसन सरदार के करियर के आंकड़े वाकई हैरान कुन है। 148 इंटरनेशनल अपीयरेंसेस और 150 गोल्स। पाकिस्तान के इंटरनेशनल हॉकी गोल स्कोरर्स की लिस्ट में वो हिस्टोरिकली टॉप प्लेयर्स में शुमार होते हैं। लेकिन दोस्तों हमेशा मैं यही कहता हूं कि किसी भी खिलाड़ी की ग्रेटनेस सिर्फ स्टैटिस्टिक्स तक महदूद नहीं है और बात यहां पर हसन सरदार की हो रही है। एंड डेफिनेटली स्टैटिस्टिक्स कैन नॉट इवन इवैल्यूएट कि क्या ग्रेट प्लेयर रहे हैं अपने जमाने में। उनकी असली पहचान उनका ग्रेसफुल प्लेइंग स्टाइल, बॉल कंट्रोल, स्पीड, फिनिशिंग और गोल के सामने बेहतरीन पोजीशन थी। जिन्होंने देखा वो वाह वाह करते रहे हैं और जिन्होंने नहीं देखा वो कहते होंगे कि यार हसन सरदार क्या खिलाड़ी थे। आज वो सोशल मीडिया पर बैठ के, हो सकता है कि इस प्रोग्राम को सुनने के बाद आप लोग भी सोशल मीडिया पे हसन सरदार का नाम को सर्च मारिए और आपको पता चलेगा कि व्हाट अ क्लासी हॉकी प्लेयर ही वाज। अगर यू नो आप स्पोर्ट्स लाइक करते हैं, नॉट जस्ट क्रिकेट की बात होती है, हॉकी की बात होती है, एक जमाना पहले हॉकी एंड इंडिया और पाकिस्तान ये एक सिनोनिमस रहा है। हॉकी इंडिया और पाकिस्तान दे डोमिनेटेड द वर्ल्ड हॉकी और हसन सरदार, जफर इकबाल, मोहम्मद शाहिद ये जितने भी खिलाड़ी थे दे वेर आर्टिस्ट ऑन द फील्ड एंड उनको देखने के लिए भरपूर दर्शक या ऑडियंस फैंस जो है वो स्टेडियम पर उमड़ पड़ते थे एंड दैट वाज द मैजिक दैट दीज गाइस क्रिएटेड। और हसन सरदार वाज वन ऑफ द लीडिंग स्टार्स ड्यूरिंग दैट एरा। अच्छा रिटायरमेंट के बाद हसन सरदार ने पाकिस्तान हॉकी में एडमिनिस्ट्रेटिव और कोचिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी संभाली और नेशनल टीम के कप्तान और चीफ सेलेक्टर के तौर पर भी अपना किरदार अदा किया। दोस्तों पाकिस्तान हॉकी की तारीख में कुछ नाम ऐसे हैं जो सिर्फ प्लेयर्स नहीं बल्कि एक पूरे दौर की पहचान बन जाते हैं। हसन सरदार भी उन्हीं लेजेंड्स में से एक है। उम्मीद है आपको हमारा आज का ये स्पोर्ट्स सेगमेंट पसंद आया होगा। अगली बार एक और स्पोर्ट्स लेजेंड, एक और अपकमिंग स्टार्स के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीर और साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।

0: स्ट्रेस या टेंशन फील कर रहे हैं, चाहते हैं लाइफ में बैलेंस और ग्रोथ, तो सुनिए यू मैटर, आपके लिए प्रैक्टिकल टिप्स और स्ट्रेटजीज ताकि आप खुश, हेल्दी और फुलफिल्ड लाइफ जी सके, क्योंकि आप मैटर करते हैं।
1: सुनिए हर संडे टू थर्सडे सुबह 10 से 11 बजे यू मैटर, यू मैटर आरजे सफा और आरजे महविश के साथ, जहां वो शेयर करेंगी प्रैक्टिकल टिप्स, इमोशनल इंटेलिजेंस टेक्निक्स और पर्सनल ग्रोथ हैक्स, जो आपके स्ट्रेस को मैनेज करने में हेल्पफुल हो सकता है। ट्यून इन टू FM 107, दिल से देसी।
2: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se Desi.
3: FM 107 presents Tech Update. Tech Update.
4: अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु, मैं दुहा वाला कबीर FM 107 पे, एंड वेलकम टू अनदर टेक अपडेट। तो भाई साहब, हमने एप्पल को बहुत जम के रिव्यू कर लिया है, देखो क्या होता। अभी फिलहाल जो मैं कुछ क्रेजी वेबसाइट्स आपको बताने वाला हूँ, उसके बाद एक मेजर रिव्यू। गेमिंग की दुनिया में बहुत ज्यादा ही हलचल हो रही है। सबसे पहले एक बहुत ही क्रेजी वेबसाइट जिसका नाम है CleverHumanizer.ai, CLE

0: Clever, H-U-M-A-N-I-Z-E-R. Clever, चालाक वाला clever. Humanizer, human लिखिएगा फिर izer, I-Z-E-R dot A-I. अभी वेबसाइट पे जाके आपको क्या मिलेगा, आपको ये पता लग जाएगा कि किसी ने आपको जो टेक्स्ट भेजा है वो जो टेक्स्ट है क्या वो टेक्स्ट AI से लिखवाया है या खुद लिखा है. कितनी अच्छी चीज है ना चोरी पकड़ने के लिए. तो आपके पास अगर कोई भी मैसेज आता है जो आपको लगता है यार ये इस शख्स की तो लैंग्वेज नहीं लग रही है भाई, इस बंदी की भाषा नहीं है, इस बंदी की भाषा नहीं है, तो आप वो चेक कर सकते हैं. सिंपली आप वेबसाइट पे जाएंगे, इस पे जाके आप पेस्ट करेंगे और ये आपको बता देगा कि ये तो हमारी बिरादरी का है मैडम, ये ह्यूमंस ने नहीं लिखा है. एंड दिस वे यू कैन फिगर इट आउट कि सामने वाला तेज है कि आप उससे दो कदम आगे हैं. अगली वेबसाइट की तरफ बढ़ते हैं. ये भी बहुत लोगों के काम आ सकती है. ओके, नोट डाउन कीजिएगा. वेबसाइट का नाम है ट्रस्ट MRR, ट्रस्ट भरोसे वाला ट्रस्ट, फिर MRR.com. ठीक है, तो ट्रस्ट MRR.com पे जाके आपको दुनिया भर के वो स्टार्टअप्स की लिस्ट मिल जाएगी जो कामयाब हैं. उनके ओनर्स के बारे में पता लगेगा, उस कंपनी के बारे में पता लगेगा, स्टार्टअप कब शुरू हुआ वो पता लगेगा. आपको एक एक ढांचा मिल जाएगा कि भाई कौन सा स्टार्टअप जो है दुनिया भर में काम कर रहा है. इसमें बहुत कमाल के स्टार्टअप्स हैं, मैं सच बता रहा हूँ, जो आपने सोचे भी नहीं होंगे वो आइडियाज आपको यहाँ से मिल जाएंगे. एंड एग्जीक्यूशन भी मिलेगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ आइडिया दे दिया कि भाई ये काम करो ये खोल लो तुम ये बढ़िया स्टार्टअप है, नहीं. यहाँ पर आपको उन स्टार्टअप्स के बारे में जो कामयाब हैं, जो काफी बढ़िया चल रहे हैं, जिससे लोग इंगेज करें, उनके बारे में पता लगेगा और साथ में ये भी जान पाएंगे कि उन्होंने एग्जीक्यूशन कैसा किया है, क्या चीज उस स्टार्टअप की सबसे ज्यादा लोगों को पसंद आई है और जो सेलिंग पॉइंट है वो आपको यहाँ से मिल जाएगा. ठीक है, तो जवाब पे जरा नजर रखिएगा. अब तीसरी वेबसाइट की तरफ बढ़ते हैं. तीसरी वेबसाइट जो है इसका नाम है motionbgs.com. motion motion, motion b like basket, g like in gorilla, s like salman. motionbgs.com. जब आप इस वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको कई सारे मोशन लाइव वॉलपेपर्स यहाँ पर मिल जाएंगे कैटेगरी वाइज. अब एनिमे चाहते हैं, गेमिंग चाहते हैं, नॉर्मल चाहते हैं, एस्थेटिक चाहते हैं, नेचर चाहते हैं, एनिमल चाहते हैं, व्हिच एवर टाइप ऑफ वॉलपेपर यू लुकिंग फॉर यहाँ पर आपको मिल जाएगा. बहुत बढ़िया भाई, मैं तो ऐसे एक्सप्लोर कर करके ना जाने कितनी मरतबा दिन में वॉलपेपर चेंज कर चुका हूँ इस वेबसाइट की वजह से. गो ऑन विद इट. अब बढ़ते हैं जरा खबरों की तरफ, क्योंकि खबर जो है तगड़ी भाई. तो इंटेक न्यूज में बताना चाहूंगा आपको, पहली खबर जो है गेमिंग की दुनिया से है, बहुत ज्यादा हलचल मची है. सोनी वर्सेस एक्सबॉक्स की जो जंग है वो वापस सामने आई है. भाई मैं खुद प्लेस्टेशन को ओन करता हूँ, मतलब उनका कंसोल ओन करता हूँ, वो कहाँ से ओन करूँगा. और मैं हाल फिलहाल में सोच रहा हूँ कि क्या हो गया सोनी को, कोई घमंड शमंड आ गया है, क्या दिक्कत है. बिकॉज क्लियरली एक्सबॉक्स धीरे धीरे धीरे धीरे रेजिलियंस दिखा रहा है और जंग को और बड़ा करता चला जा रहा है. वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर्स इन द गेमिंग वर्ल्ड हिडेयो कोजिमा, उन्होंने उनका रिश्ता खराब हुआ सोनी के साथ और अब वो एक्सबॉक्स की तरफ चले गए हैं जहां पे उनके एक्सक्लूसिव लॉन्च होने वाले हैं एक्सबॉक्स के साथ. नॉट जस्ट दैट, प्ले स्टेशन का रिसेंट गेम, एक्सक्लूसिव गेम वुल्वरीन, भाई मुझे ट्रेलर देख के लगा नहीं था कि ये इसके साथ कुछ गलत हो सकता है, मगर वुल्वरीन फेल्ड सो बैडली कि मुझे नहीं लगता कि सोनी रिकवर कर पाएगा. इंसोम्निया का एक लौता अगर कोई बुरा गेम है तो वो यही है, और इंसोम्निया इस धब्बे को मिटा नहीं पाएगा. वो लोग जिन्होंने मेजर स्पाइडरमैन गेम्स बनाए, उन्होंने वुल्वरीन बनाया, ये देख के बहुत तकलीफ हुआ भाई. तो ये थी टेक अपडेट्स, मैं दुहा वाला कबीर एफ 107 पे, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर टेक अपडेट.
1: मुझे तो लगता है नोटिफिकेशन को बंद कर देना चाहिए, बहुत डिस्टर्ब करते हैं.
2: अरे पर कुछ मिस हो गया तो? इनफैक्ट हर नोटिफिकेशन ऑन रहना चाहिए, वरना बेचैनी रहेगी ना.
1: उफ, पर दिमाग को सुकून भी तो चाहिए ना.
3: यही वो अलाइनमेंट है दिमाग की, जिसे बनाए रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि हर ओपिनियन मैटर्स. सुनिए हमारा खास प्रोग्राम एनर्जी आर हर संडे से थर्सडे दोपहर 1:30 to 2:30 PM आरजे नाजिया और आरजे सरवर मिर्जा के साथ, ओनली ऑन FM 107, दिल से.

0: देसी। आप सुन रहे हैं FM 107। FM 107।
1: दिल से देसी।
2: स्कैम अलर्ट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। FM 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का। मेरा नाम है फजील और ये शो है फ्रॉड अवेयरनेस, जहां हर रोज एक नए जमाने के नए फ्रॉड के बारे में मैं आपको इतला करता रहता हूं। चाहे वो मिसिंग डिलीवरी का एड्रेस अपडेट का स्कैम हो, चाहे वो फेक ग्रोसरी कूपन का स्कैम हो, या फिर दुनिया के तमाम कोई ऐसे स्कैम जो लगातार लोगों के साथ हो रहे हैं, जो बहुत ज्यादा वायरल है। वेल, आज एक ऐसे स्कैम के बारे में बात करने वाला हूं जिसका नाम है सेकंड हैंड डिपॉजिट फर्स्ट स्कैम। इससे बचना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि स्कैमर्स ऑनलाइन मार्केट प्लेस का इस्तेमाल करते हैं और उस पे यानी कि ऑनलाइन फेक एड्स भी डालते हैं और कोशिश करते हैं कि किसी तरह एक ऐसे मासूम बंदे को फंसाया जा सके जिसके अकाउंट से पैसा चुराया जा सके। वेल, ये स्कैम काम कैसे करता है उस पर बात करते हैं क्योंकि ये है सेकंड हैंड डिपॉजिट फर्स्ट स्कैम। स्कैमर्स सोशल मीडिया मार्केट प्लेस या फिर ऐसे प्लेटफॉर्म पर जहां पर सेकंड हैंड आइटम्स मिलते हैं, जैसे कि लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक्स, सस्ते काउचेस यानी कि सोफा वगैरह, इन सब की फोटोज पोस्ट करते हैं। बायर्स को अट्रैक्ट करने के लिए ये प्राइसेस को बहुत ही ज्यादा कम करके रखते हैं या फिर सोशल मीडिया पर डालते हैं। जब आप सेलर को मैसेज करते हैं तो वो झूठ बोलता है कि बहुत सारे लोग इसको खरीदना चाहते हैं, और यहाँ पर ही आपके साथ स्कैम हो सकता है क्योंकि जब आपको जल्दबाजी दिखाई जाती है तो एक्चुअली में आपको स्कैम करने की कोशिश की जाती है। जब आप सेलर को मैसेज करते हैं तो कहता है हाँ ये तो अवेलेबल है लेकिन बहुत सारे लोगों ने खरीदने के लिए इसमें चाहत दिखाई है। आइटम को आपके लिए होल्ड करने के बहाने वो आपसे किसी डिजिटल पेमेंट के थ्रू एडवांस डिपॉजिट मांगता है। जैसे ही आप पैसा भेजते हैं सेलर अपना प्रोफाइल डिलीट कर देता है, आपका नंबर ब्लॉक कर देता है और आपको या आपके कैश के साथ वो शख्स गायब हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता कि उस शख्स को ट्रेस कैसे करें, वो बंदा रहता कहाँ है, ये जो डिटेल्स हैं ये डिटेल्स कैसे, क्योंकि उसमें जो अपडेटेड या उसमें जो एड्रेस भी रहता है ना, उस एड्रेस पर जब आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वहां पर कोई ऐसे ही रैंडम स्टोर है या फिर किसी के घर का रैंडम एड्रेस है, आप पकड़ ही नहीं पाएंगे। कई बार ये एड्रेस ऐसे डाल देते हैं कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। लेकिन इन स्कैम से बचने के सॉल्यूशंस भी हैं। कैसे बचा जा सकता है इन स्कैम से? सबसे पहला तरीका है नो एडवांस डिपॉजिट। जब तक आप खुद सेलर से मिल ना लें और आइटम को फिजिकली चेक ना कर लें, तब तक एक रुपया भी एडवांस पेमेंट ना करें। कोई भी जेन्युइन सेलर डील फाइनल होने से पहले एडवांस होल्ड मनी नहीं मांगता है और आमतौर पर नहीं मांग सकता है, ये भी आप कह सकते हैं। पब्लिक प्लेस में मिले ऐसे लोगों से डील करने के लिए हमेशा किसी पब्लिक और सेफ जगह जैसे कि मॉल या फिर पेट्रोल पंप पे या फिर बाहर किसी नॉर्मल जगहों पे, वहां पर आप उनसे मिलें। किसी के घर अकेले जाने से बचना चाहिए। सेलर की प्रोफाइल को खास तौर पे बहुत डिटेल में चेक करें। अगर सोशल मीडिया मार्केट प्लेस पर खरीदारी करने से पहले आप सही से चेक कर लेंगे, प्रोफाइल सही से चेक कर लेंगे, उनकी रेटिंग, रिव्यूज, अकाउंट या एज चेक कर लेंगे ना, तो आपको बहुत ही ज्यादा या बहुत हद तक आपको डिटेल्स पता चल जाएंगी उस शख्स के बारे में। अगर अकाउंट नया है और कोई रिव्यू नहीं है तो अलर्ट हो जाइए क्योंकि हो सकता है ये एक स्कैम हो। कैश ऑन डिलीवरी या हैंड टू हैंड कैश, हमेशा कोशिश करें कि पेमेंट तभी करें जब आइटम आपके हाथ में हो। किसी भी ऑनलाइन ऐप से या पहले किसी लिंक के थ्रू पैसा बिल्कुल ना भेजें क्योंकि हो सकता है ये जो लिंक है या फिर किसी वाउचर के थ्रू या गिफ्ट कार्ड के थ्रू आपको स्कैम किया जा सकता है। लेकिन फिर भी अगर आपके साथ इन सब के बावजूद, इन सब सॉल्यूशन के बावजूद स्कैम हो गया है तो बचने के सिर्फ दो तरीके हैं। प्लेटफॉर्म पर रिपोर्ट करें, फौरन उस सेलर की प्रोफाइल और एड को फेसबुक पर या फिर जहां पर वो एड आपको दिखा है वहां पर रिपोर्ट करें। उसके अलावा बैंक में जाकर या फिर एप्लीकेशन के थ्रू, बैंक एप्लीकेशन के थ्रू जो ऑफिशियल एप्लीकेशन है उसके थ्रू अपना कार्ड ब्लॉक करवाएं या फिर आप बैंक में डायरेक्ट कॉल करके अपना कार्ड ब्लॉक करवा सकते हैं। और अगर आपने पेमेंट कर दी तो जल्दी से जल्दी साइबर क्राइम में जाकर रिपोर्ट करें, हो सकता है कि आपका पैसा वापस भी आ जाए। तो दोस्तों ये था नए जमाने का नया स्कैम जो हम रेगुलर बेसिस पे आपको डेली इत्तला कर रहे हैं, बता रहे हैं, आगाह कर रहे हैं। उम्मीद है कि ये शो यानी कि ये फ्रॉड अवेयरनेस आपके लिए काफी फायदेमंद रहा होगा। इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत। मुलाकात होगी आपसे कल एक नए जमाने के नए फ्रॉड के बारे में बात करते हुए। दिल से देसी। स्कैम अलर्ट।
3: इस दुनिया में हमें मुख्तलिफ रिश्ते और ताल्लुकात जोड़ते हैं, मुख्तलिफ लोगों के साथ मेल जोल रखते हैं जिनमें से कई अफराद

0: दोस्त भी बना लेते हैं। ये सोहबतें हमारी जिंदगी का एक नुमाया रंग बन जाती हैं। पुराने करीम में भी अल्लाह ताला ने कई अस्हाब के वाकियात बयान किए हैं ताकि हम इबरत हासिल करें और राह रास्त पर आ जाएं।
1: सुनिए प्रोग्राम कससुल कुरान आरजी तलहा और आरजी सरवर के साथ हर जुम्मा दोपहर एक बजे से सिर्फ एफएम 107 पर।
2: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन एफएम 107 दिल से देसी।
3: हेलो एंड वेलकम टू अवर सेगमेंट कॉल्ड स्मार्ट मनी। मैं हूं आपकी दोस्त आपकी होस्ट नासिया। आज दोस्तों इस सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं इमरजेंसी फंड की, यानी मुश्किल वक्त का सबसे बड़ा आपका सहारा। वैसे तो अल्लाह ही है, लेकिन हाँ फाइनेंशियली अगर सहारा देखा ढूंढा जाए तो ये वही फंड है। आज हम एक ऐसे फाइनेंशियल टॉपिक पर बात कर रहे हैं जो शायद इन्वेस्टमेंट बिजनेस या फिर लग्जरी स्पेंडिंग जितना एक्साइटिंग ना लगे, लेकिन असल में ये हर घर और हर इंसान के लिए बहुत जरूरी है। इमरजेंसी फंड। जिंदगी में बहुत सी चीजों की प्लानिंग की जा सकती है, लेकिन हर चीज को प्रेडिक्ट करना नामुमकिन है। कभी कुछ भी अचानक हो सकता है, गाड़ी खराब हो गई, जॉब चली गई या कोई और सिचुएशन, उसका सामना करने के लिए क्या हम तैयार हैं? ऐसे वक्त में वैसे तो तैयारी होती ही होगी, लेकिन एक जो बड़ी तैयारी है वो है पैसों का इंतजाम। अब ये सवाल जो है इसका जवाब हमें ढूंढना है इमरजेंसी फंड्स के थ्रू। देखिए इमरजेंसी फंड्स होते क्या है? इमरजेंसी फंड वो पैसा होता है जो खास तौर पर अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस के लिए अलग रखा जाता है। ये पैसा आपके वेकेशन, शॉपिंग या अननेसेसरी एक्सपीरियंसेस के लिए या अननेसेसरी एक्सपेंसेस के लिए नहीं होते। ये सिर्फ उन सिचुएशंस के लिए होते हैं जब जिंदगी अचानक कोई चैलेंज सामने ले आए। इसलिए आप फाइनेंशियल फर्स्ट एड बॉक्स भी कह सकते हैं। जिस तरह घर में इमरजेंसी मेडिसिन रखी जाती है, उसी तरह फाइनेंशियल इमरजेंसीज के लिए इमरजेंसी फंड रखे जाते हैं। अब इमरजेंसी फंड्स की अहमियत पे बात करते हैं, और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि फाइनेंशियल स्ट्रेस को ये कम कर देता है। जब अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस सामने आए और आपके पास रिजर्व पैसा मौजूद हो तो आप पैनिक और टेंशन कम करते हैं या कम होती है। बहुत से लोग आपने देखा है कि इमरजेंसी की सूरत में लोन लेते हैं या फिर क्रेडिट कार्ड्स पर डिपेंड करते हैं। इससे फाइनेंशियल प्रेशर और बढ़ सकता है, लेकिन इमरजेंसी फंड आपको इसकी ज़रूरत से बचाते हैं या आपको फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस देते हैं। आज की दुनिया में जॉब्स और इंडस्ट्रीज तेज़ी से चेंज हो रही हैं। कभी कंपनी रीस्ट्रक्चरिंग करती है, कभी रोल चेंज हो जाता है, कभी इंसान खुद बेहतर अपॉर्चुनिटी के लिए ट्रांजिशन करता है। ऐसे वक्त में इमरजेंसी फंड एक सेफ्टी कुशन का काम करता है। ये आपको वक्त देता है कि आप बेहतरीन डिसीशंस ले सकें, सिर्फ मजबूरी की बुनियाद पर नहीं। वहीं इमरजेंसी फंड सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि पूरी फैमिली के लिए सिक्योरिटी का सोर्स होते हैं। अगर घर में किसी को हेल्थ इशू हो या कोई ज़रूरी एक्सपेंस आ जाए तो फाइनेंशियल प्रिपरेशन फैमिली को बहुत सी परेशानियों से बचा सकती है। कि हर बड़ी चीज़ की शुरुआत छोटे कदम से होती है। रेगुलर सेविंग और डिसिप्लिन

कहना चाहूंगी कि जिंदगी में हम हर कोई चैलेंजेस जो है उनका सामना करते हैं, वो चैलेंजेस सामने आते हैं और हम उन्हें रोक नहीं सकते, लेकिन उसके लिए खुद को तैयार जरूर कर सकते हैं। इमरजेंसी फंड हमें ये यकीन दिलाते हैं कि अगर कोई कल अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन हमारे सामने आ जाए तो हम घबराने की बजाय उसका सामना करें। लग्जरी चीजें हमें खुशी दे सकती हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट्स हमें ग्रोथ देती है, इन्वेस्टमेंट्स हमें सिक्योरिटी देती है। और अक्सर जिंदगी में सिक्योरिटी वो बुनियाद है जिस पर कॉन्फिडेंस, स्टेबिलिटी और कामयाबी की इमारत खड़ी होती है। तो बस जाते जाते आपसे यही कहूंगी कि इमरजेंसी फंड अमीर बनने के लिए नहीं है, बल्कि मुश्किल वक्त में मजबूती से खड़े रहने के लिए है। जब आपके पास फाइनेंशियल बैकअप होता है तो आप सिर्फ पैसे नहीं बचाते बल्कि अपने पीस ऑफ माइंड को भी महफूज करते हैं। बस मैं उम्मीद कर रही हूँ कि अल्लाह ना करे हम में से किसी को भी इस तरह की अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन का सामना करना पड़े, लेकिन फिर भी तैयारी तो हमें करनी चाहिए। बाकी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आज नहीं, कल करेंगे। अभी

0: सितारे उतरेंगे मैदान में अजमत की जुस्तजू में टीमें टकराएंगी टॉप पोजीशन के लिए और जोश ऐसा जो आखिरी सीटी तक थमने ना पाए दोहा बैंक स्टार्स लीग सिर्फ अलकास के इनक्रिप्टेड चैनल्स और शू प्लेटफॉर्म पर
1: FM 107 टाइम चेक

0: अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू साथियों, इस वक्त एफएम 107 की घड़ी में बज रहे हैं 10:02 और भाई टाइम हो चला है खुशी का, यानी कि यू मैटर का, और थर्सडे भी तो है हमारा। और भाई हाजिर हो गए हैं सफा और
1: मावश। अस्सलाम वालेकुम।
0: आ गई
1: जी, याद आ गई हूँ मैं। ये लोग बात है कि आवाज़ अभी भी थोड़ी सी मेरी
0: पता चल रही है।
1: वो अभी चलेगा, मुझे लगता है कि कुछ 2-4 दिन का तो होता है मामला, तो खैर लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मतलब बेहतरी है काफ़ी
0: अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई जिस जिस कोई शिकायत हो रही थी अगर माविश नहीं आई, माविश वैसे मुझे नहीं पता था मैं आपको इतना मिस करूंगी। देखो भाई मैं ज़्यादा दिल पे नहीं ले लेना इस बात को, बस ऐसी सरसरी सा बोल रही हूँ। मुझे कल आपकी कदर हुई है।
1: ओए होए क्या बात है, मेरी कदर तुम्हें होती रहेगी सफा, बार बार होती रहेगी।
0: नहीं अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, ऐसा ऐसी वाली कदर नहीं चाहिए।
1: नहीं भाई वो वाली कदर थी, वैसी कदर होगी होगी। अच्छा जी भाई, आज क्या होने वाला है आज आपको बताते चलें कि आज हम बात करेंगे, आज हमारा टॉपिक है व्हाट डज इमोशनल स्ट्रेंथ एक्चुअली लुक लाइक। तो इसके बारे में आज हमने बात करनी है, और आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं 4434377 पे, साथ ही साथ आप हमें मैसेज कर सकते हैं
0: और आप हमें जो है वो कॉल भी कर सकते हैं। और कॉल करने के लिए
1: गुम है, ये गुम है, मैसेज करने का नंबर पूछा था मैंने आपसे।
0: मैसेज करना
1: जी जी, नंबर मैंने बता दिया कॉल करने का।
0: अच्छा, ओ, ओ, तो भाई मैसेज करने का नंबर
1: है, खराब है लेकिन दिमाग उधर हजमे मामूल खराब चल रहा है।
0: नहीं ये जो है ना, ये मेरे जो 2 अदद नूडल्स बच गए ना उनको देख रही हूँ मैं।
1: तो अभी आप थोड़ा सा तवक्कुफ करें, थोड़ी देर के बाद आप इनको खा लीजिएगा। खैर जी, तो हमने आपको टॉपिक बता दिया है कि इमोशनल स्ट्रेंथ जो है ना वो किस तरह की होती है, कैसी होती है, असल में क्या होती है, तो इसके हवाले से हम बात करेंगे। और हमारे साथ एक कॉलर आ गए हैं, तो मेरा ख्याल उनको ले लेते हैं, आप जब तक नूडल्स खा सकती हैं।
0: नहीं नहीं अब हम बात करेंगे। अस्सलाम
1: वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह बरकात, क्या हाल है?
0: अल्हम्दुलिल्लाह। कौन है हमारे साथ?
2: मोहम्मद आजम।
0: मोहम्मद आजम,
1: आजम क्या हाल है आपके?
2: अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अल्लाह का, आप सुनाए ठीक है दोनों? सब
0: अल्हम्दुलिल्लाह। आजम भाई आपका नाम सुनकर वो मुझे वो याद आ गया, इसमें आजम मुझे बड़ा अच्छा लगता है, नाम भारी मतलब रोबदार नाम लगता है माशाल्लाह से, आजम भारी भारी नाम।
2: इसमें आजम, चलो इसमें आजम भी सुना देंगे फिर, 99 अल्लाह के नाम है वो भी सुना देंगे।
0: अच्छा भाई ये बताएं आपका दिन कैसा गुजर रहा है? आज तो वीकेंड है
2: अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा

0: हाँ रोज ही वीकेंड होता है जी।
1: ऐसी जिंदगी मेरे को भी चाहिए।
0: हाँ जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का शुक्र है बस।
1: अल्हम्दुलिल्लाह चलें भाई, अल्लाह ताला सबको खुश खुश रखे और राजी रहे सबसे। अच्छा ये बताएं भाई,
0: सबको खुश रखे खुशियां दे जी।
1: बिल्कुल। अच्छा तो भाई आज हम बात करने लगे हैं किसके बारे में माविश?
2: इमोशनल स्ट्रेंथ असल में क्या होती है। अच्छा अक्सर लोग अपने आप को समझ रहे होते हैं कि बहुत स्ट्रांग हैं और ये सब कुछ, लेकिन असल में क्या होता है ये
1: इमोशनल, लोग अपने आंसू छुपा लेते हैं, लोग अपना दर्द छुपा लेते हैं, समझते हैं हम इमोशनली बड़े स्ट्रांग हैं तो हम छुपा लेते हैं।
0: हाँ दर्द तो छुपाए जाते हैं जी, क्या करें, अब किसी को बता के भी कोई फायदा नहीं, ये तो अपने अल्लाह के साथ होना चाहिए ना रब्ता, क्योंकि अल्लाह से जो भी होता है वो अल्लाह ही करता है और अल्लाह से ही होने का यकीन होना चाहिए।
2: Exactly.
0: बाकी दुनियादारी तो फिर चलती रहती है।
2: बिल्कुल
1: सही, दुनियादारी चलती रहती है। वैसे मुझे भी यही लगता है कि लोगों के सामने ना कुछ फायदा नहीं है कुछ बोलने का,
2: लेकिन पता है चलता उन्हीं का है। आज ही मेरे साथ एक बात हुई है सुबह सुबह, बड़े मजे की हुई है, बाद में बताऊंगी। आजम साहब आप कंटिन्यू कीजिए।
0: हाँ जी हाँ जी, इसीलिए नहीं लोगों से कहने का कोई फायदा नहीं है, जब हमारा अकीदा हमारा इस्लाम ये कहता है ना जी कि भी आप अपने अल्लाह से रुजू करें, जो भी आपको कोई भी मसला है मसाइल है, तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम भी यही है ना।
1: हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल।
0: आप जो भी आपको मसला है अल्लाह ताला से रुजू करें, वो हल करने वाला है, वो कादर करीम है, रहमान है, रहीम है, समी है, बसीर है,
2: बिल्कुल
0: वो
2: बिल्कुल।
0: सारा कुछ वही है ना, वो हल कर देता है। फिर तकवा होना चाहिए इंसान का।
2: बेशक बिल्कुल ऐसा ही है।
1: मैं कहती हूँ अगर इंसान को इमोशनली वीक होना भी हो ना तो अल्लाह ताला के आगे हो जाए, इंसानों के आगे ना हो,
0: बस इंसानों के आगे ना हो।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
0: बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह जी।
1: चलें जी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, वीकेंड एंजॉय कीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।
2: बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़। रही जी तो आज़म हमारे साथ है और इसके साथ ही हमारे साथ एक और कॉलर हैं, देखते हैं कि आपके कौन है हमारे साथ। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
2: जी रईस भाई क्या हाल है आपके?
3: जनाब कैसे
2: अल्हम्दुलिल्लाह, बस ये थोड़ा बहुत मौसम की तब्दीली जो कि हो नहीं रही है, मतलब मैं यहीं पे फंसी हुई हूँ, गर्मी तो कमी नहीं हो रही, मेरे क्यों मौसम चेंज हो रहे हैं?
3: मेरे एहसास में भी आना शुरू हो चुका है कुछ, मतलब अपने मतलब जहन पे थोड़ा थोड़ा एहसास होना शुरू हो गया कि अब तबीयत में तब्दीली आएगी बस दो चार दिन के अंदर अंदर।
2: मतलब क्या कैसी तब्दीली आ जाएगी जो पहले से बताकर आ रही है, प्रेडिक्शन हो रही है जिसकी?
3: वो एहसास हो जाता है कि ये जो फीवर का हल्का जुकाम और ये सब जो है ना, वो मुझे पहले से एहसास होना शुरू हो जाता है।
1: ये अच्छा, ये मेरे साथ भी होता है। मैं टोटल बीमार नहीं होती खांसी जुकाम, लेकिन क्या हुआ गले में दर्द होना शुरू हो जाएगा, सर में दर्द होना शुरू हो जाएगा, ऐसा यूं आपको ऐसा लगा जैसे बॉडी ना बुखार वाली से हैवी हो जाती है ना, वैसी हो जाएगी,
3: थोड़ा सा बॉडी थोड़ा सा थकावट महसूस होना शुरू होता है बॉडी में, और मतलब थोड़ा बलगम सा हल्का फुल्का मतलब एहसास शुरू हो जाता है।
1: अच्छा ये भी एक चीज है बड़े मजे की कि सुबह सुबह माशाल्लाह उठते हैं, जब आज भी मैंने जब फजर की अजान हुई तो उठी तो वैसे जो ना गर्मियों के दिनों में सूरज जल्दी निकल आता है ना, अब मैं 5 बजे जो है ना पर्दा हटा रही हूँ, 5:30 बजे पर्दा हटा रही हूँ, फिर भी वो रोशनी नहीं है, मैंने कहा ये क्या रोशनी नहीं है, तो वो अंदाजा हो जाता है मौसम आ रहा है।
3: कभी कभी मैं क्या करता हूँ ना कि ये जो शहर है ना असल, इसको ज्यादा इस्तेमाल थोड़ा सा जैसे शुरुआत हुए उसको थोड़ा सा इस्तेमाल में मतलब ज्यादा ये कर दो तो तकरीबन वहीं से वो खत्म हो जाता है शहद का इस्तेमाल।
1: हाँ नीम गर्म पानी में ना थोड़ा सा शहद वो भी आपको अच्छा लगता है,
3: इस्तेमाल करते रहे तो तकरीबन मेरा तो कभी कभी बिल्कुल आगे भी थोड़ा फिर वापस चला जाता है क्योंकि वो उसके ऊपर इतना गर्म लगाता है ना, हावी नहीं होना पाता है, वो तकरीबन निकल जाता है, और अगर थोड़ा सा हावी भी हो जाए तो उसके अंदर काली मिर्च का थोड़ा पाउडर और हल्का अदरक का रस डाल के इस्तेमाल कर लेना तो बहुत ज्यादा आराम हो जाता है, तबीयत में सुधार हो जाता है।
1: अच्छा आज हमारे भाई ने भी बताया लौंग का पानी, लौंग का पानी भी अच्छा होता है,
2: बता गया
1: भाई ने बताया, इम्यूनिटी बढ़ाता है।
2: अच्छा पता है कि ये जो फ्लू होता है, ये फ्लू जो ना हमें लग रहा होता है फ्लू एक चीज है, बेसिकली फ्लू उस वक्त होता है जब

0: हमारी बॉडी के अंदर ना बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है और वो बॉडी उससे फाइट कर रही होती है, तो उस सूरत में आपको फ्लू होता है,
1: इन्फ्लुएंजा.
0: हाँ एग्जैक्टली. तो कोई ना कोई मतलब अंदर कुछ चल रहा है उसको निकालने के लिए फ्लू होता है.
1: अल्लाह ताला की कुदरत देखी, अल्लाह ताला की कुदरत देखी. मैंने पढ़ा था कि ये जो हमें जुकाम होता है ना, खास तौर पे जुकाम, इसे हम कहते हैं हमारे लिए बुरा है, ये हमें बचाता है वायरस से.
0: exactly.
1: क्योंकि ये वायरस को हमारे दिमाग तक पहुंचने में वो जो हम कहते हैं ना म्यूकस आ जाता है, बलगम आ जाता है, वो दिमाग को बचा रहा होता है कि वो दिमाग तक वायरस ना पहुंचे.
0: एग्जैक्टली. तो ये बड़ी अच्छी चीज होना चाहिए भाई. और एक तरह की आपकी
1: रनिंग नोज
0: क्लींजिंग हो रही होती है, बिल्कुल
1: आपको बचा रही होती है रनिंग नोज चीजों से.
0: अल्लाह ताला वाकई मतलब हमारे जिस्म में क्या कुछ चल रहा होता है रोजाना की बुनियाद पे, कितनी बीमारियां तो जैसे रईस भाई ने कहा कि आने से पहले ही रुक जाती
1: हैं.
0: है ना, मतलब यही होता है हमारे साथ कि चीजें जो हैं वो हमें पता ही नहीं चलती हैं, वो वहीं वहीं क्योर भी हो जाती हैं. तो बस शुक्र करना चाहिए अल्लाह ताला का. और मैं कहीं सुन रही थी अभी कि असल जो गौर व फिक्र है ना, जिसको गौर व फिक्र अल्लाह ताला ने कहा है, वो यही है कि आप जो है वो देखो कि अगर आप बीमार हो रहे हो तो वो जैसे है ना कुरान में भी मौजूद है कि मैं जब बीमार होता हूँ तो मुझे वही सेहत देता है, हज़रत इब्राहिम अलैहि सलाम की दुआ जो है. तो वाकई ऐसे है कि आप इस चीज़ के ऊपर गौर करो ना तो आपको बड़ी बड़ा ताज्जुब होता है.
1: सही. अच्छा भाई रईस भाई, आपसे सवाल ये कि आपके लिए इमोशनल स्ट्रेंथ का क्या मतलब है, क्या होती है ये इमोशनल स्ट्रेंथ?
2: नहीं मैं सोचता हूँ कि किसी से ज्यादा तवक्को रखेंगे ना अगर आपको, तो आपका इमोशनल इसमें ज्यादा हट होता है.
0: एग्जैक्टली ऐसे ही है.
2: ये चीजें बहुत ज्यादा किसी से मतलब तवक्को ना रखे, अल्लाह पे ज्यादा तवक्को रखे और अगर अपने उसके फैसले पे हम ये हो जाए ना, मुतमईन हो जाए कि चलो अल्लाह ने मेरे लिए बेहतर ही किया, जो मतलब मान लो मैंने कुछ उम्मीद रखा बांध के रखा था या कोई काम के मामले में या कोई भी मामले में, तो मेरे सामने ऐसा अगर मामला पेश आया तो अल्लाह मेरे साथ में बेहतर ही मेरे लिए ये करके मेरे लिए फैसला किया है उससे, अगर तो आदमी को उसका इमोशनल हर्ट नहीं होता है. और अगर किसी बंदे से अगर उम्मीद लगा के हम रखते हैं ना, तो ये सब तो में अपने का दुनियावी काम हो, दुनियावी काम से ही खासकर इंसानों से ये किया जाता है, तो ये इसमें मेरे ख्याल से इसमें ज्यादा दूसरों पे तो ना रखना
0: नहीं रखनी चाहिए,
2: आपसे नहीं रखना चाहिए, वो ज्यादा बेहतर है. तो
0: exactly.
2: आपका मैं हट होना और ये सब इसी के ऊपर यही टॉपिक चल रहा है ना, जो जिस तरीके से मैंने तो मेरे ख्याल से ये चीजें बहुत मायने रखती हैं कि किसी पर हम बहुत ज्यादा तो ना रखें, बाकी सामने वाला से वो चीज ना पाके फिर वो सामने वाले के अंदर तकलीफ होता है, खासकर अपने करीब के जो रिश्ते के होते हैं या अपना कोई सगा वाला या कजन कोई भी होता, तो उससे हम बहुत ज्यादा तवक्को रखना शुरू कर देते हैं कि यार इसने इसके साथ हमने ऐसा किया तो ये मेरे साथ भी ये ऐसा धोखा नहीं देगा, मेरे साथ में ये भी ये ऐसा करके निकल जाएगा, मेरा काम आसान हो जाएगा, उसका एक जरिया बना लेता है. तो उससे बहुत ज्यादा बंदे को नुकसान का ये उठाना पड़ता है और बाद में फिर उसका इमोशनल बहुत ज्यादा हर्ट होता है कोई भी मामले में. अल्लाह से अगर हम उम्मीद बांध के रखें हर मामले में, अल्लाह पे तवक्को रखें, तो ये चीजें थोड़ा सा आदमी को ऊपर जरब कम करेंगी मेरे ख्याल से.
1: सही.
2: तो यही मेरा ज्यादा उम्मीद, और मैं बहुत ज्यादा क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा धोखे खाए हैं तो मैं तकरीबन लोगों से उम्मीद कम रख बांधना बंद कर दिया मैंने. और लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, ये इसने मतलब क्यों ऐसा, पहले बहुत ज्यादा मैं इमोशनल क्या करता था और मैं बहुत ज्यादा बहस मुबाहसे में भी पड़ जाता था, लेकिन अब थोड़ा सा अकल आ चुका है कि यार नहीं, हर बंदे को अपने हिसाब से हम नहीं ढाल सकते हैं.
1: सही.
2: वो बंदा उसका मतलब हो सकता है हम सोचते हैं कि यार मैं इतना समझ सकता हूँ, ये बंदा क्यों नहीं समझ रहा है इस बात को. ये चीजें मतलब जरूरी नहीं है कि जो आप सोच रहे हो जिस हिसाब से जिस मामले में, और वो भी वो आपके बारे में इसी हिसाब से सोच रहा है या उस चीज को वो भी वैसे ही समझ रहा है जैसे आप समझ रहे हो. तो ये सब बंदे को ज्यादा ये नहीं करना चाहिए दूसरे ऊपर ये करके, थोड़ा सा कोशिश करें जानने का अपने तरफ से. अगर वो नहीं समझ रहा हो तो फिर उसके हाल पे थोड़ा देर छोड़ दें, चल भैया तू चल अपने हिसाब से कर, जब तू खुद ठोकर खाएगा ना तो तुझे पता
1: चलेगा
2: मैं तेरे पीछे अपने आप को तकलीफ में डाल के और ये करूं तो ये शायद है कि मेरे लिए अपने ख्याल से यही है कि बहुत ज्यादा दूसरों पे उम्मीद ना बांध के या दूसरों को अपने तरीके से ना मनवा के

0: बस उसको थोड़ा देर कोशिश करें, नहीं तो फिर उसको उसके हाल पे छोड़ दें।
1: रईस भाई मुझे आपकी बात बहुत अच्छी लगी, बहुत बहुत बताए आपने एक ऐसी बात बोल दी, मुझे नहीं पता अब आपको याद भी कि नहीं, लेकिन आपने बहुत ज़बरदस्त बात बोली। बाउंड्रीज जो हम बनाते हैं ना वो सिर्फ दूसरों के लिए नहीं होती, वो अपने लिए भी होती है। हमें ये बात सोचनी चाहिए कि क्या बात हमें दिल पे लेनी है और क्या नहीं लेनी। जो बात बहुत सारी चीज़ें जो हमारे बस में नहीं है, अब हम ये तो नहीं कर सकते ना कि दूसरों के ऊपर मुसल्लत हो जाएं, जैसा हम चाह रहे हो वैसा ही सोचें। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके ऊपर हमें अपने आप को बाउंड्री सेट करनी चाहिए कि भाई इससे ज़्यादा जो है ना अब नहीं होगा। वो जो सोच रहा है उसे सोचते रहने दो, जो कर रहा है उसे करते रहने दो। ये एक बहुत मजबूत चीज होती है, इमोशनल, हम कहते हैं ना इमोशनल स्ट्रेंथ। अपने आप को अंडरस्टैंड कराना कि भाई मेरी बाउंड्री यहाँ तक है, इससे आगे मैं ना भागूंगा।
0: बिल्कुल आपने बहुत आसान कर दिया, ये जो
1: अपने आप को बाउंड्री पे रखना चाहिए इंसान को।
2: एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही
1: दूसरों को तो हम बड़ा कहते हैं कि ये लिमिट में नहीं रहता, हम अपने लिए कौन सी लिमिट सेट कर लेते हैं।
2: बिल्कुल ऐसे ही,
0: तो उस दायरे से हमें मतलब
2: किसी दूसरे की सोच पे, किसी दूसरे की जिंदगी पे हम अपने आप को मुसल्लत नहीं कर सकते।
1: बिल्कुल,
2: ये हमें समझना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना, ये जो चीज हमें मिलती है देखो कुरान में, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहा गया कि आप जो है ना सिर्फ पैगाम देने वाले, पहुंचाने वाले, बाकी का काम आपका नहीं है। तो कोई भी किसी को जब हुजूर के लिए ये कहा गया कि वो सिर्फ पैगाम पहुंचा सकते हैं, किसी के दिल में जो है ना उसको ये नहीं कर सकते कि वो बिल्कुल पक्का यकीन उसके ऊपर लेकर आ जाए, तो फिर दूसरे आम लोग कौन होते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, तो ये अल्लाह ने इतने बड़ी शख्सियत, इतने बड़े, वो भी अल्लाह के बाद में जो सबसे बड़ा अल्लाह ने दुनिया में ये भेजा वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और उनको इस चीज से मतलब ये कर दिया कि आप अपनी मर्जी से नहीं मालिक हैं, आप अपनी मर्जी से कोई चीज को किसी को ना मनवा सकते हैं ना।
1: सही, आज रईस भाई कुछ ऐसे खोपचे में कि पता नहीं कहाँ है कि वो जो है ना आवाज ही नहीं आ रही उनकी, तो मजे की बात चल रही थी। रईस भाई हैं कि चले गए
2: है,
1: कौन से वाले, वो कहीं उस वाले जहाज पे तो नहीं बैठ गए जिसमें कबीर ने सुबह को चलवाया था, जो उड़वाया था, जो
0: मेरा आवाज नहीं जा रहा आपके पास आता है।
2: बहुत बहुत शुक्रिया रईस भाई, थैंक यू जी, थैंक यू आपकी कॉल के लिए। तो रईस भाई की आ रही है और जा रही है।
1: रईस भाई आइंदा के बाद अगर आपको आवाज आ रही है ना हमारे आइंदा के बाद, जहां आप इस वक्त है ना वहां से थोड़ा हटके कॉल कीजिएगा, क्योंकि आप मजे की बात कर रहे थे लेकिन पूरा पूरा सेंटेंस कट जा रहा था बीच में।
2: एग्जैक्टली हर जी, आजकल जो ना मैं ये देखती हूँ कि इमोशनली स्ट्रेंथ की जब हम बात करते हैं ना, इमोशनली आप स्ट्रांग हो, आप जो है वो थोड़ा इस तरह का मामला, तो यार एक अजीब ना लोगों की मेंटालिटी है, मतलब इमोशनली वीक लोगों ने बकायदा, मैं खासतौर पे देख रही होती हूँ सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, खासतौर पे वो जो स्टेटस वाली जो चीज़ें होती हैं ना, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह देखती नहीं किसी के भी।
1: अच्छा, मैं लगाती हूँ, मैं देखती नहीं।
2: मैं देखती नहीं ना लगाती हूँ, दोनों ही काम नहीं करती, लेकिन वो जो एक मामला है ना उधर इमोशनली मतलब आपको ना ब्लैकमेल किया जा रहा होता है बकायदा।
1: अच्छा,
2: और जो स्ट्रेंथ हो जिसके अंदर वो नहीं करता, और फिर दूसरी चीज़ ये कि उसको जो ना टिका टिका के सुनाई जा रही होती है, ये वाली चीज़ें जो ना होती हैं इमोशनल हथियाचार जैसे बोल रहे होते हैं
1: वो। अच्छा, मैंने एक चीज़ नोट की है, इमोशनल जैसे मैं कह रही थी ना, ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि दूसरों के लिए बाउंड्रीज सेट कर देते हो, अपने लिए क्या सेट करते हो। अब जैसे हम ये स्टेटस के बारे में बात कर रहे हैं ना, सोशल मीडिया पर हम स्टेटस लगा देते हैं, छोटे रील्स लगा देते हैं, कोई भी चीज़ के अंदर हमें अच्छी लग सकती है, क्या पता उसका बैकग्राउंड अच्छा लग रहा है, क्या पता जो बात बोल रहे हैं वो अच्छी लग रही है। मेरे अपने घर में मेरे मियाँ जो है ना वो नहीं लगाते कुछ भी, यहाँ तक कि उनका इमोशनल मतलब सोशल बैलेंस ये है।
2: मिस कर गई थोड़ी सी बात।
1: देखिए ना, कुछ लोगों का होता है ना थोड़ा सा क्या हो गया, अब जैसे मेरे जैसे इमोशनल लोग हैं कि हाय बेचारा इस रील में बड़ा अच्छा, एक ये रंग बड़ा अच्छा लग रहा है जो उसने पहना, वो रील पे लगा दिया। अच्छा, किसी फलानी बात पसंद आ गई, वो रील पे लगा दी। कुछ लोग इमोशनली और वो अपनी सोशल बाउंड्रीज इतनी रखते हैं कि आप उनके व्हाट्सएप स्टेटस पे कभी कुछ नहीं देखोगे।
2: मेरा नहीं है।
1: आप उनके अगर फॉर एग्जाम्पल वो कोई सोशल मीडिया फॉलो भी कर रहे हैं, दे विल एग्जिस्ट, लेकिन आपको पता भी नहीं होगा, उनका एक लाइक तक नहीं आता किसी चीज़ पर।
2: अच्छा, वो मतलब दो तरह की चीज़ें हैं, जैसे मेरा वो वाला मामला नहीं है, लेकिन हाँ कोई चीज़ पसंद आती है तो मैं इसलिए लाइक कर देती हूँ, खासतौर पे कुछ मतलब ये दीनी वाला होता है कि सुना है कि आप लाइक करो तो वो चीज़ आगे भी लोग देख पाते
1: हैं, एल्गोरिथम पकड़ लेता है।
2: एग्जैक्टली, तो बस इसलिए मैं लाइक कर देती हूँ कोई मुझे चीज़ बहुत अच्छी लगती है, अदरवाइज ये वाला कंट्रोल मेरे पास भी है, मतलब मुझे बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल है इस चीज़ के ऊपर कि मुझे लाजमी नहीं है कि मैं किसी चीज़ को दूसरे से शेयर करूँ, दूसरे को बताऊँ या अपनी राय को इम्पोज करूँ, इट्स नॉट नेसेसरी मेरे हिसाब से। तो मेरा भी वाला है, और मैं माशाल्लाह से मैं अपने आप को कहती हूँ कि मैं असाबी तौर पे इमोशनली काफ़ी मतलब स्ट्रांग हूँ अगर देखा जाए, और लेकिन ये कि वो आप होते हैं लेकिन आपको इस बात

0: ऊपर टारगेट किया जाता है, मतलब जो इमोशनली स्ट्रांग होगा ना उसको लोग इस तरह से नहीं लेते, इमोशनली स्ट्रांग हाँ उसको इस तरह से लिया जा रहा होता है, भाई ये तो बेहिस है, इसको तो किसी का एहसास नहीं है, ये वाली चीज आ जाती है।
1: कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैंने ऐसे भी देखे हैं कि समझ सब कुछ रहे होंगे, सुन सब कुछ रहे होंगे, लेकिन दे विल नॉट बी द पार्ट ऑफ कन्वर्सेशन। ये भी एक इमोशनल अंडरस्टैंडिंग है, स्ट्रेंथ है, कि आप दूसरों के मामले में बोलोगे ही नहीं जब तक आपको इनवाइट ना किया जाए कि आप इस कन्वर्सेशन का हिस्सा बनो। दे विल नो एवरी, हर खानदान में ऐसे लोग होते हैं जिन्हें हम कहते हैं ना वो गुन्ने कोने में बैठे हुए, गुन्ने का एक वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, ये बिनकी गुन्ने जो है ना साइड में बैठे हुए, और इनको सब अच्छा भाई उनको पूरे खानदान की खबर होगी,
0: पड़ता है वो करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप जज्बाती हो के ना आप हर चीज में कूद पड़ोगे, मतलब वो भी एक फेस रहता है आपका, हाँ वो भी एक फेस होता है हर किसी का कि वो करके देख चुका होता है इस बात को, लेकिन उसका कोई फायदा होता नहीं है आपको, मतलब आप जितना इन चीजों में पड़ोगे, जितना आप किसी को जवाब दोगे, जितना आप किसी को कुछ बोलोगे, वो बात बिला वजह की अगले बंदे ने नहीं समझनी ना, तो नहीं समझनी, तो इसलिए इग्नोर, कोई फायदा नहीं।
1: अच्छा ये अभी शो शुरू होने से पहले ना माविशा में भी यही बात कर रहे थे कि कितने मजे की बात है कि इंसान जो है ना, फॉर एग्जांपल एक बात कही जाए कि इंसान को अगर किसी बीमारी का डायग्नोसिस हो जाए ना और उसे वो डायग्नोसिस पता चल जाए तो कोलैप्स कर जाता है। लेकिन एक इंसान को ना डायग्नोसिस करो उस चीज का और ना ही उसे पता चलने दो किसी को बीमारी है, वो 25 साल भी चल जाएगा। मैंने अपनी आंखों से ये केस देखा है कि लोगों को जब डायग्नोसिस हुआ है तो विद इन मंथ्स जाते हुए देखा है मैंने उन्हें,
0: ऐसे
1: और जब नहीं पता था तो इतने सालों से चल रहे थे इस चीज को लेकर, बीमारी को लेकर,
0: ऐसे ही
1: बंदा कोलैप्स कर जाता है।
0: और मैंने देखा है मतलब जो लोग जो है ना जिनका वही एक अपना अपने ऊपर कंट्रोल या ये कह लो कि जिनका असाबी निजाम मजबूत होता है ना तो वो लड़ जाते हैं भाई, बड़ी बड़ी चीजों से लड़ जाते हैं, बीमारियों से लड़ जाते हैं और सब कुछ, इम्यून सिस्टम उनका उस मुताबिक, उनकी जो विल पावर जिसे कहते हैं ना तो उसके हिसाब से काम कर रही होती है। लेकिन जो बंदा फॉरन से ना मतलब जिसके हाथ पैर ढीले हो जाए ना एकदम से कुछ भी चीज सुन के,
1: साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है,
0: एग्जैक्टली आपको अपने आप को मजबूत करना पड़ता है बहुत सारे चीजों में।
1: जैसे एक बात है, एक बहुत वो आम सी मिसाल देती हूँ, वो अलग किस्म की स्ट्रेंथ में आ जाती है, लेकिन कुछ लोगों को हल्का सा खांसी जुकाम हो जाए ना तो बिस्तर पड़ जाते हैं। अक्सर उगाती मर्द हजरात के बारे में बुलाता है कि ये तो इनको जरा सा खांसी जुकाम भी हो जाए तो अम्मा ने पता नहीं कैसे पाला है कि जो है ना छुई मुई बन जाते हैं। वहीं औरतों को देखो आप, वो चाहे किसी भी मर्ज में मुब्तला हैं, चाहे कुछ भी है, घर का उठ के खाना भी बना रही हैं, घर के काम भी कर रही हैं, सब कुछ कर रही हैं। तो अच्छा, नॉट ऑल ऑफ द मैन आई वुड से, लेकिन मोस्टली आजकल की जो फैक्ट्री की जो मकदार है ना वो ऐसी ही चल रही है कि बहुत छुई मुई हो गए, तो वो बड़ा अलग सा सेटअप है दिमाग का, वो आपके दिमाग मुझे अब जाके समझ में आता है।
0: चक्कर क्या है ना कि हमारी सोसाइटी में जो लड़कों का जिस तरह से उनको पाला जाता है ना, तो वो ये समझा के पाला जाता है कि देखो पहले माँ काम कर रही है, फिर बेटी काम कर रही है, बेबी काम वो सॉरी बहन काम कर रही है, इस तरीके करके वो दे रही है सब कुछ, वो करके दे रही है क्योंकि भाई है, तो फिर बाद में आके बीवी जो है ना वो एक एक चीज़ करेगी, छोटी छोटी सी चीज़ें जो है ना, सॉक्स का भी ख्याल उसने रखना है सारी चीज़ें। तो वहाँ पे हम अपने लड़कों की मेंटालिटी ना आराम पसंद बना रहे हैं, हम
1: उनको उल्टा होना चाहिए
0: तरह से रहे। हाँ एग्जैक्टली, जबकि अब उससे हो क्या रहा है नुकसान कि अगर आप अपनी हिस्ट्री उठा के देखो तो आपको अपनी जो ना
1: जाया करते थे
0: जंगों पे जाने वाले लोग, अपने सारे काम खुद करने वाले, वो इतने नाजुक मिजाज तरीके से माओ ने पाला होता ना, तो फिर तो डेफिनेटली कोई जिहाद और कोई जंग कोई चीज नहीं होती। तो
1: मुझे ये आता है जो मैं अपने अब्बा से शिकायत करती थी ना कि हमें तो प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिला ही नहीं, अब जाके जब मैं देखती ना बहुत क्लोजली, तो पिछले दिनों अब्बा से बात हुई तो मैंने अब्बा को मुंह पे कहा, मैंने कहा अब्बा मुझे बड़ी याद आई आप कुछ चीजों में ना, जब मैं स्क्रू ड्राइवर पेचकस उठा के हथौड़ी छेने ड्रिल मशीन खुद यूज कर लेती हूँ, कुछ भी एक्सपायर्ड खुद कर लेती हूँ, तो मैं उस पर कहती हूँ नहीं भाई मेरे अब्बा।
0: पता है ये वाला एटीट्यूड ना सिर्फ ये लड़की के साथ बल्कि लड़के के साथ भी यही वाला एटीट्यूड होना चाहिए। आपकी लड़की है, आप उसको भी इसी तरीके से प्रिपेयर करो कि वो घर के काम बाहर के काम हर चीज कर सके, और इसी तरीके से लड़के को भी प्रिपेयर करो।
1: मेरे अब्बा ने बिल्कुल यही कहा, यही मुझसे
0: होना चाहिए, ये होना चाहिए।
1: मैंने कहा मैं आपको कहती थी हिटलर, मैं कहती थी क्योंकि वो फौजी आदमी भाई, वो तो पता है वो कैसे होते हैं, उनका दिमाग पता है। हमें इस चीज पे यही ट्रेन किया गया सर्वाइवल, जो आप कहते हो ना, वो मुझे अगर मैं खुदा ना खास्ता किसी ऐसे मोड़ पर आ जाऊं कि मुझे मैं कोलैप्स करने लगूं या कुछ करने लगूं, तो मुझे पता है कि आई एम वन मैन आर्मी, खत्म, नहीं मिल रहा कोई नहीं देता।
0: सफा यहां पे भी ना एक चीज होती है कि कुछ बच्चों के साथ एक तरीके से पेश आया जाता है और कुछ बच्चों के साथ अलग तरीके से, मतलब अगर हम देखें आपको इक्वली सबको हाँ तो बहुत अच्छा करते थे, बहुत अच्छा करते थे। ये वाली जो चीज है ना ये होनी चाहिए कि आप सबको बराबर का,
1: हमारे अब्बा तो सबके ऊपर डंडे सोते थे,
0: बड़ा

0: भाई है बड़ी बहन है बस तुम बड़े भाई तुम बड़ी बहन हो ये तुम्हें जिंदगी भर बताया जाएगा कि तुमने करना है बाकी जो सारे हैं ना वो बस आपका मुंह ही देखते रहेंगे पूरी जिंदगी भर
1: ऐसा मुझे याद है छोटा भाई मेरा उधर गया था क्या कहते हैं मॉरिशस गया था उसने 2-3 साल पढ़ना था जब अपनी मास्टर्स डिग्री के लिए होता है बच्चों का तो वहां पर जाकर जबकि वो मेरे अब्बा से थोड़ा कट ऑफ रहता था क्योंकि हमारे अब्बा थोड़े सख्त मिजाज हैं लेकिन वहां जाकर अब्बा को फोन करके उसने कहा था रो रहा था कह रहा था अब्बा मुझे आपकी याद आती है मैंने आज जो है ना पूरा अपना दरवाजा खोल के वापस से लगाया है बाल खुद काट लेता हूँ कहता है अब जाके समझ में आता है कि अब्बा ने क्या
0: नहीं ये ट्रेनिंग वाकई होनी चाहिए बच्चों की आपको उनको नाजुक मिजाज नहीं बनाना चाहिए आपको उनको हर चीज के लिए तैयार करना चाहिए फिर जी मैसेज हाँ जी लेंगे लेकिन उससे पहले कॉल है और वेट भी कर रहे हैं वो काफी
1: कॉल कर रहे हैं
2: हेलो वालेकुम अस्सलाम अच्छा डिस्कशन चल रहा है आप लोगों का आपस में और कैसी हैं
1: मैं हमें तो मौका मिले ना आप आपस में डिस्कस कर रही हैं
2: और मैं काफी बड़ा इख्तलाफ करूंगा अपनी सफा बहन से
0: किस बात पे
2: ये जो आपको सिम्टम्स या जिसका पता नहीं चलता तो आप सरवाइव इतना कर जाते हैं सडनली सम टाइम वही आपने कभी ड्रामो फिल्मों में देखा होगा कि आपने देर कर दी वरना आप पहले आते तो ये इलाज था वो इलाज था हमेशा अप टू डेट रखें और ये जो इशू या बीमारी या कोई चीज है अल्लाह की रहमत है कि अगर आपको अर्ली पता चल जाए
1: हाँ, वो एक आपकी बात सही है
2: तो इसको इग्नोरेंस अभी 2 दिन पहले मेरे चचा का इंतकाल हो गया है अल्लाह ताला उनको अपने जवारे रहमत में जगह दे और वो इत्तफाक से हमारे सबसे छोटे चचा थे और उनको शुगर की वजह से सारे ये मसले जो है ना पैदा
1: हुए सही।
2: तो इसलिए और ये जो आप बंदों का भी कह रही है ना बंदे बेचारे सही कह रही हैं इतनी वो अपनी फिजिकल फिटनेस का ख्याल नहीं रखते जो काम वाले हैं पहले कमाएं फिर आगे कहाँ से कमाएं और आगे से कुछ हो गया तो दिमाग में उनका बीवी बच्चों का ही हिसाब किताब चलता रहता है इस वजह से वाकई और अल्लाह ताला ने नेचुरली औरतों को इम्यूनिटी उनकी ज्यादा रखी है ये अल्लाह की ब्लेसिंग है कि उनकी इम्यूनिटी उनकी ज्यादा है फिजिकली स्ट्रेंथ तो अल्लाह ताला कहते हैं ना अर्रयालो कव्वामूना मिनन निसा बंदों को अल्लाह ने मजबूत बनाया इसलिए जंगों पे लड़ते हैं सारा कुछ है लेकिन नेचर वाइज अल्लाह ताला ने आप लोगों को ज्यादा मजबूत रखा है आप ज्यादा मुकाबला कर लेती हैं और हमारी जो
1: अच्छा ये
2: कैसी है तबीयत
0: जी जी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है काफी
1: ये जो बीमारी का मसला था ना इसके तो मैं ये नहीं कह रही थी कि डॉक्टर के पास जाना नहीं चाहिए ऐसा नहीं है और मैं आपको एक मिसाल देती हूँ मुझे जब तक नहीं पता था ना कि मुझे क्या मसले मसाइल चल रहे हैं हेल्थ में तब तक मैं लक्कड़ जब पता मैं कहती अच्छा ऐसा ही है सफ़ा उठो और चलो जब टेस्ट वगैरह कराए जो भी रिपोर्ट आई जो भी अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह जो भी मसले मसाइल थे जब वो पता चले ना तो दिल नाजुक सा हो जाता है फिर जो लक्कड़ जम पत्थर जम वाला मसला होता है ना वो थोड़ा सा डगमगाने लगता है तो मैंने कहा इंसान अपने आप को मेंटली इतना स्ट्रांग करे कि डायग्नोसिस के बाद भी मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं अल्लाह ताला सबको खैर आफियत से रखे मेरी बहन की मदर इन लॉ थी उनको कैंसर डायग्नोस हुआ था उनका ट्रीटमेंट यहीं पर कतर में चला है तो माशाल्लाह वो बहुत स्ट्रांग थी कुछ लोग तो ये हाथ छोड़ देते हैं कि अगर हमें कैंसर डायग्नोसिस हुआ है तो हमने कीमो नहीं करवानी हमने थेरेपी नहीं करवानी बट शी वॉज सो स्ट्रांग इनफ माशाल्लाह वो इतने साल इतनी अच्छी उन्होंने ट्रीटमेंट वो की और उनका जो है ना कैंसर क्योर भी हो गया था माशाल्लाह से तो मेरा कहने का मकसद ये था कि कुछ लोग बैठ जाते हैं क्योंकि वो इमोशनली स्ट्रांग होते ही नहीं हैं और कुछ लोग इमोशनली इतने स्ट्रांग होते हैं कि वो अपने आप को डिक्टेट करते हैं कि नहीं उठो खड़े हो चलना है दुनिया है करने है काम फिर भी करना है तो मेरा मकसद ये था कहने का
2: नहीं बड़ी अच्छी आपने एक्सप्लेनेशन दी उसके अलावा हमारे एक माशर्ती एदवार में ड्रामों में सोसाइटी में इसको ये हो गया अब ये इस तरह है वो मेंटली अफेक्ट भी रहता है लेकिन कि आपने स्ट्रॉन्ग अल्लाह ताला ने ये दिया है तो इंशाल्लाह शिफा देगा और वाकई ये बड़े मेडिकल केसेस हैं कि एक कुछ लोगों को डॉक्टरों ने जवाब दे दिया लेकिन जब उन्होंने कहा कि नहीं मैंने इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी है या सेहतमंद होना है तो उसकी बॉडी रिएक्ट करना शुरू हो गई ऐसे मिरेकल्स हैं कि आपकी बॉडी अल्लाह ताला ने ऐसी मशीन बनाई है जो आपसे पूछ के अमल ही नहीं करती वो उसके अंदर स्ट्रेंथ और वो कुव्वत और इस तरह आने लग जाती है बहरहाल वीकेंड्स हैं ये एक बात वो हमारी सिस्टर मैम से करनी थी हमारी एक बड़ी बेटी की तरह ही होगी वो कॉल कर रही थी तो वो बात चल रही थी मुख्तलिफ आराम की

0: वो मैंने एक पॉइंट, क्योंकि उस वक्त रवा रवा में ना उसको शायद, वरना क्योंकि माशाल्लाह महविश की बड़ी अच्छी है इन इन, इन चीज़ों पे गिरफ्त है कि वो उसको करेक्शन कर देती कि हमारे पाँव और जिस्म जो ये टांगे हैं ना, ये बेआरामी हैं उसकी वजह से, ये शिकायत नहीं करेंगे, ये हमारे अमाल की गवाही देंगे। ऐसे तो दिल भी कंप्लेन करने लग जाए, दिमाग करने लग जाए, नहीं ये हमारे कंट्रोल में है इन, ये नहीं होंगे मेरे पाँव ने या मैं थक गया था या मुझे लेके जा रहा था, दिस इज पार्ट ऑफ माय डिसीजन, या मेरा हाथ था इस तरह था। हाँ, ये जब कहेंगे ना या अल्लाह हमने नहीं किया, वो बोलेंगे नहीं ये तूने किया था, यहाँ तो चल के गया
1: था। वो वर्ड शिकायत नहीं, गवाही। ओके ओके,
0: गवाही होगी, शिकायत नहीं।
1: सही।
0: तो बाकी मेरा भी जब इसका ऑपरेशन हुआ था थायराइड का, तो आप समझ लें जैसे गले में तकबीर फेरी जाती है ना, ऐसी तकबीर फेरी थी। देखो जब उन्होंने बताया जी आप मर भी सकते हैं, ठीक है, सारे घर में बैठ के इस चीज को, ये इस तरह है, फिर देखते हैं जब अल्लाह ताला ने दिया है तो आप हिम्मत करें, यानी आप इससे ना गुजरे तो मर सकते हैं, इससे गुजरे तो बच सकते हैं।
1: ये इमोशनल स्ट्रेंथ होती है, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है हाथ उठा लेते हैं, कहते हैं जितनी जिंदगी बची। फॉर एग्जांपल मेरी एक बहुत माशाल्लाह यंग दोस्त है मेरी, हमारी एज की है, 30-32 साल की, तो वो उसका अभी ट्यूमर, ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी हुई है। मैंने कहा मारिया ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी, और वो माशाल्लाह इतनी एथलीट और इतनी अच्छी बंदी, तो मैंने कहा इस उम्र में ब्रेन ट्यूमर की, कहती है डॉक्टर्स ने कहा था कुछ परसेंट चांस है कि आप बच जाओ, कुछ परसेंट चांस है आप ना बचो। अब वो मुझे उसकी मेंटालिटी समझ में आया कि कितनी स्ट्रेंथ होगी इंसान के अंदर, मेंटल और इमोशनल, कि उसने ये सोचा बजाय ये सोचने के कि चार दिन तो रह गए, डॉक्टर्स ने कहा ना कुछ ही अरसा है आपके पास, चार दिन रह गए, वो हंसी खुशी घर वालों के साथ गुजार लूं। और दूसरा ऑप्शन उसके पास ये था कि जो 10% का चांस वो बोल रहे हैं उसको आजमा लो, तो वो जो 10% का चांस वो बोल रहे थे वो काम कर गया अल्हम्दुलिल्लाह।
0: पहले मिली बाद में
1: मेरी वो स्कूल की दोस्ती मेरी
0: नहीं वो बात सही है, लेकिन ये जो प्रोसीजर होने के बाद आपको पता चला या पहले?
1: नहीं मुझे बाद में पता चला, जब इतने सालों बाद बात
0: ना आप ये तो उसने वैसे बैठ जाना
1: सही बात है
0: ये स्टार्टिंग में होता है
1: सही जो है ना, मैं इस चीज़ को अग्री करती हूँ कि दो टाइप के लोग होते हैं दुनिया में, एक जो बहुत पॉजिटिव होते हैं और एक जो हर चीज़ में नेगेटिविटी ढूंढ लेते हैं या हार मान के बैठ जाते हैं, हार मानने वाला नहीं बनता।
0: और लास्ट वर्ड्स, मोटापा अलहदा एक चीज़ है लेकिन मसल्स, ये जो मेरे चचा की डेथ हुई है, ही लूज ऑल द मसल्स, बॉडी में नहीं था तो उनका एनर्जी लेवल बहुत लूज हो जाता था। अपने प्रोटीन लेवल 40-50 के बाद आप जरूर रखें, ऑयली चीज़ें ना खाएं, लेकिन आपकी जो लेग्स के मसल है ना और ये आपके जो पीठ के हैं ये सबसे बड़े हैं और ये आपको जिंदा रखने में बड़ी मदद करते हैं और ये आपकी बैटरी है, तो आप एक्सरसाइज रखें और देखें वार्निंग साइन, अगर ये आदमी यहाँ से ज्यादा स्लिम हो रहा है, ये बॉडी आपको खा रही है, इसका मतलब है यू हैव
1: और शुगर के पेशेंट्स में तो ये लाजमी होता है, वो अंदर से ना उनका बॉडी वीक होना शुरू हो जाती
0: मसल है, मसल जो है जी, ना होना शुरू हो जाता है, तो मसल में ही तो हमारी एनर्जी स्टोर होती है। बस ये हमारे सुनने वाले दोस्तों के लिए यही था, मोटापा एक डिफरेंट चीज है लेकिन मसल मास इज डिफरेंट।
1: बिल्कुल,
0: अपने आप को सेहतमंद रखें और आपको कॉल करें, एंजॉय करें। अल्लाह हाफिज़।
2: थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, तो हमारे साथ ज़ुल्करनैन साहब थे और इसके साथ ही मेरा ख्याल है एक म्यूजिकल ब्रेक की तरफ हमें मूव करना है, तो हम चलते हैं, गाना सुनते हैं, वापस आते हैं।

0: आप सुन रहे हैं यू मैटर
1: आरजे सफा और आरजे महविश के साथ
0: एफएम 107 पर दिल से देसी।
2: वेलकम बैक। हम आ गए एक दफा फिर से और बहुत से ये लोग हैं जो मुसलसल कॉल कर रहे हैं, तो वो अब हमें कॉल कर सकते हैं क्योंकि अभी

0: उसको बहुत वेज से अपने आप को नहीं उसको बहुत वेज से हाँ अपने आप को संभालने की कोशिश करता हूँ किसी पर भी जाहिर ना हो कोशिश करता हूँ. हाँ एक जगह है मेरे ऑफिस में प्रेयर रूम, वहाँ जाके अल्लाह ताला के सजदे में गिर जाता हूँ, थोड़ा रो लेता हूँ अकेले में. और क्या बोल रहे हैं दूर दूर अच्छा डोर बंद करके बस परवार दीगर है दीगर के
1: दुआ करता हूँ वही हमारे हक में बेहतर करने वाला है. तो जबरदस्त बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए भाई, मतलब और किसी का कोई फायदा नहीं है. मुबीन बुखारी जो है वो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम गुड मॉर्निंग वरहमतुल्लाहि वबरकातहु, गुड मॉर्निंग वरहमतुल्लाहि वबरकातहु नहीं अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहु. और इमोशनल स्ट्रेंथ डज नॉट मीन हैविंग नो इमोशंस, इट मींस हैविंग इमोशंस विदाउट अलाउइंग देम कंप्लीटली कंट्रोल योर एक्शंस. और ये थे अज्जू, अज्जू अज्जू ने अच्छा उर्दू में भी लिख के भेजा है, उर्दू में भी. हाँ और अस्सलाम वालेकुम मैम, मैम मैं जब बीमारी का नाम भी सुनता हूँ ना तो बस मेरी रूह कांप जाती है. तो मैं अपने कैंसर का आपने नाम लिया ना तो मेरी तबीयत खराब होने लगी. अच्छा ये मेरे साथ ना पता होता था, ये जब मेरी अम्मी की तबीयत खराब होती थी ना तो उन दिनों में डॉक्टर फौजी का प्रोग्राम जब चलता था तो मैं हमेशा ये होता था जैसे ही उनका शुरू होता था मैं बंद कर देती थी, यार ये कोई ना कोई सिम्टम ऐसा बताएंगी जो कि संगीन हो जाएगा और मुझसे उस वक्त नहीं सुना जाता था.
0: अच्छा मजे की बात पता है क्या, मैं वही बात कर रही हूँ ना, इसके लिए आपको इमोशनल स्ट्रेंथ इसे कहते हैं कि आपको इस माविश देखो एक सीधी सी बात है नोबडी एस्केप लाइफ वाला
1: कॉल ले लेते हैं क्योंकि कॉल
0: ओके ओके ओके
1: ठीक है. हेलो
2: अस्सलाम वालेकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम
2: जी, खैरियत
0: जी? बिल्कुल
2: आप दोनों की
0: अल्हम्दुलिल्लाह. कौन है हमारे साथ?
2: आसिफ अंसारी.
0: आसिफ भाई कैसे हैं?
2: अल्हम्दुलिल्लाह बस जस्ट अभी एफएम ऑन किया हुआ है. मैं क्या टॉपिक चल रहा है आज
0: भाई? आज टॉपिक ये चल रहा है इमोशनल स्ट्रेंथ के बारे में बात कर रहे हैं. आप बताएं आप इमोशनल स्ट्रेंथ किस चीज को कहते हैं? कुछ लोग होते हैं ये कहते हैं कि भाई किसी के सामने रो लेना जो है ना वो इमोशनल स्ट्रेंथ की वीक, आप वीक हैं इमोशनल स्ट्रेंथ नहीं है आपके अंदर. कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई खामोश रहना भी एक इमोशनल स्ट्रेंथ है. कुछ लोग ये कहते हैं अपने आप को जाहिर कर देना वीकनेस है. कुछ कहते हैं नहीं अपने आप को जाहिर कर देना स्ट्रेंथ है. तो आप क्या कहते हैं?
2: किसी के सामने रोने से तो बेहतर है कि इंसान अपने रब के सामने रो ले.
0: हाँ सही,
2: सबसे बेहतर वही है. मेरी मतलब मेरी मेरा जो ओपिनियन है वो यही है कि किसी इमोशनल होने का मतलब क्या है? इमोशनल वक्ती तौर के लिए होता है बंदा एक वक्त के लिए कि थोड़ा सा किसी चीज पे
0: अटैचमेंट
2: काम नहीं हुआ तो हाँ, या फिर कोई अटैचमेंट है बंदा जा रहा है तो उसको तो जाने ही जाना है ना. ठीक है उसको तो हम रोक नहीं सकते हैं. तो बस थोड़ा सा ये दिल का
0: क्या बात कर दी, देखो जरा दुनिया चल रहा है. आसिफ भाई कुदरत है, अल्लाह ताला का निजाम है, दफना कर आ जाते हैं हम जुम्मा जुम्मा 8 दिन रोते हैं चाहे किसी की माँ हो चाहे बाप हो. दुनिया तो चलती है
1: ऐसे ही है,
2: दुनिया चलती है. इमोशनल होने से कोई फायदा थोड़ी ना इंसान का.
0: मैं इस चीज को लेकर बॉर्डर लगता है मुझे.
2: एक दुख जरूर होता है इंसान को, हर इंसान को कोई भी चीज हो. और दुनिया रुकती तो नहीं है किसी के इमोशनल होने से या किसी के जाने से या कुछ भी है, उसको तो चल रही है यार हर तरह से.
1: बिल्कुल ऐसे ही
2: तो सबसे बेहतर ये है इमोशनल होने से अच्छा सब प्यार करें और अल्लाह से दुआ करते रहे अपने हक में भी लोगों के हक में भी.
1: बिल्कुल जी बिल्कुल.
2: किसी के सामने रोने से या जैसे अब हम लोग जाते हैं इमोशनल होके वापस आते हैं इंडिया से तो थोड़ा सा इमोशनल होता है बच्चों को देख के, फिर उसके बाद दो तीन दिन के बाद सारा कुछ सही हो जाता है. वक्ती तौर का सारी चीजें
0: इमोशन तो ये भी होता है आसिफ भाई कि हम लोग अपने आप को पकड़ते हैं और कहते हैं कि नहीं भाई कमाना है और बच्चों के लिए कमाना है. इमोशन तो ये भी है,
2: ये भी है क्योंकि हमारे वालिद ने हमारे वालदेन ने हमारे लिए जो कुछ किया. ठीक है अब मेरे वालिद साहब है उनको 35 ईयर्स हो गए सऊदी अरब के अंदर.
0: सही
2: ठीक है उन्होंने हमारे लिए किया, अब हमें हमारा क्या फर्ज है कि हम अपने बच्चों के लिए भी तो करें अपने वालदेन के लिए भी करें. ठीक है
0: सही.
2: तो उन्होंने तो अपनी जवानी कुर्बान कर दी, अपने शौक सारे जो है वो किनारे रख दिए सिर्फ किसके लिए? हमारे लिए. लेकिन हम लोग उन 1% भी एक जरा बराबर भी उनके उनका हक नहीं अदा कर सकते. सारी उम्र भी अगर जो भी उम्र उनकी बची हुई है करते रहें एक जरा बराबर

0: भी नहीं हो सकता
1: उसका तो उनके, बदल नहीं है ना उसका उन, तो कर ही नहीं सकते
0: क्योंकि उनके इमोशनल भी हैं, उनके साथ में जो है उन्होंने बहुत सारी चीजें मिस कर दी तो थोड़ा सा इमोशनल वो भी हो जाते हैं कभी कभी आते टाइम पे, तो खैर इमोशनल होने से कोई फायदा नहीं फिर बाकी सारी चीजें
2: आसिफ भाई ना हो रही इमोशनल लेकिन कह रहे फायदा नहीं है
1: अपने दिल को बहलाने को
2: इसी बात के दौरान हो रहे हैं मुसलसल इमोशनल।
0: सच बात बताऊं मैं आपको कि दिल अपने दिल को जो झूठ बोलना पड़ता है
1: आसिफ भाई कभी कभी ऐसा होता है ना कि इंसान इतना यूं कह लें कि थक सा जाता है कि कहता है कि क्या ही बोलूं भाई चलेगा तो वैसे ही सब कुछ मेरे बोलने से क्या ही कोई फर्क पड़ेगा वो गाड़ी नहीं होती पुरानी वाली इसको धक्का देकर चला रहे होते हैं हम सबका वही हाल है
0: चलना है चलाना है किसी तरह से भी
1: हाँ जी ऑप्शन नहीं है ना अपने पास
0: ऑप्शन नहीं है कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है कमाना है लाइफ चलानी है तो कमाना है और मेहनत से सारी चीजें जो है अपनी ख्वाहिशें अपनी
1: भाई अल्लाह ताला को भी जाके मुंह दिखाना है कि अल्लाह ताला मैंने जो मेरा फर्ज था मैंने पूरा किया मैंने हार नहीं मानी तूने मुझसे कहा कि उम्मीद पे दुनिया कायम है मैंने कहा ठीक है उम्मीद मैं खुद भी अपने लिए भी उम्मीद बना रहा हूँ दूसरों के लिए भी उम्मीद बना रहा हूँ
2: सही हो गया आसिफ भाई चलें बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का थैंक यू जी थैंक यू अल्लाह हाफिज। अच्छा ये मेरा फिर मामला ना मुझे लगता है मैं बहुत ही कोई अनोखा नमूना पैदा हुई हूँ दुनिया में क्योंकि मेरे साथ ऐसा नहीं होता मतलब ये होता है ना ये फेक करना और ये वो जब शादी हो रही होती है तो तुमने देखा होगा तमाम दुल्हनें रोती हैं
1: मैं नहीं रोती
2: मैं भी नहीं रोती थी मैं भी आराम से बड़ी भी
1: मुझे सब कह रहे थे
2: मतलब होनी है
1: तुम दुल्हन हो तुम दुल्हन हो
2: सबको पता है ना कि शादी होनी थी मतलब खुद भी इंतजार था तो क्यों रोए मतलब एंजॉय करें भाई लिव द
1: मोमेंट पिछली गली में तो अम्मा रह रही
2: नहीं कहीं पर भी हुआ फिर जब हम लोग कतर आ रहे थे तो मैं बिल्कुल मूड नहीं था बिल्कुल नहीं था मम्मी को छोड़कर आने का और पूरी मैंने मतलब जितनी मैं कोशिश कर सकती थी ना मैंने कन्विंस करने में लगाई अपने हस्बैंड को कि नहीं मतलब क्या है जो हमें यहाँ मिल रहा है वही वहाँ पे मिलेगा क्या ज़रूरत है यहीं रहते हैं घर पर ना मतलब यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है फिर उसके बाद वो चले गए फिर मैं 3 महीने के बाद यहाँ पर आई हूँ तो उन 3 महीने में मैंने पूरा जोर लगाया कि किसी तरीके से ऐसा हो कि ये ना
1: वापस आ जाए
2: लेकिन फिर वो अंदाज़ा हो गया कि नहीं है ऐसा तो जैसे जब ये बात बिल्कुल क्लियर हुई ना कि नहीं भाई आना ही और अभी आना है मतलब कुछ महीने रुक कर भी नहीं आना अभी फॉरेन के फॉरेन जाना है तो मैंने शॉपिंग शुरू कर दी थी इंजॉइंग फिर उसके बाद जब एयरपोर्ट पे भी आ रही हूँ तो सब रोध हो रहे हैं मैंने कहा यार चले ओके अल्लाह हाफिज़ निकल गई मैं भाई आप एक्सेप्ट कर लो कि ये होना है करना है तो करना है खत्म हाँ। फिर उसके बाद फिर ना रोने धोने का कोई फायदा नहीं होता
1: था उससे लाइफ इजी हो जाती है
2: जो चीज करनी है ना तो उसको आप एक्सेप्ट करो और फिर उस चीज को सिर्फ एक्सेप्ट ना करो उस चीज को एंजॉय करो अल्लाह ताला की तरफ से कोई भी चीज आपको मिल रही है तो एंजॉय इट मतलब जो शादियों पे भी होता है ना रोना धोना दुल्हनों का बहुत ज्यादा तो मुझे वो समझ में नहीं आता मैं यार खुद ही इन लड़कियों को इतना शौक होता है शादी का
1: फिर जब इमोशनल गाने चलते हैं ना मैंने कहा खबरदार जो किसी ने एक भी इमोशनल गाना
2: मम्मी का तो ये हाल था सफा कि वो दूसरों की रुखसतियां देख के ना मतलब ड्रामों में रुखसतियां देख के फिल्मों में रुखसतियां देख के रो रही होती थी और मेरा अपना ये हाल था कि मैं बैठ के स्टेज पे बकायदा खाना खा रही थी तो मेरे मामू ने आके बोला था कि मैंने पहली दुल्हन देखी जो अपनी शादी पे इतनी मुतमईन बैठ के खाना खा रही है तो ये वाले जो है ना हमारे तो वही हालात है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो
3: The call me please I don't have many talent please call to me
1: call me कह रहे हैं call me
2: okay call hey, me कौन
1: ये ही नहीं पता चला ना मैसेजेस में देखें अगर भाई मैसेज कर दें मैसेज अच्छा। मैसेज करें कॉल
2: और
1: मी का।
2: नाजुक होने की बात जो है ना जब मैं पाकिस्तान में था जब मेरे सर में भी दर्द होता था ना तो इतना मैं 10-10 बार डॉक्टर के पास जाता था लेकिन यहाँ पे आके मैं बदल गया हूँ ये अरबाज खान है।
1: अच्छा अरबाज खान बता महावेश एक और चीज है इसके अंदर बड़ी इमोशनल इंटेलिजेंस आती है और इसके अंदर हमारे कल्चर का बहुत बड़ा ड्रॉबैक है मैं कहूंगी क्योंकि जितना मैंने पढ़ा जितना मैंने समझा एक और चीज आती है
2: तुम पे नहीं हंसी मैं आसिफ के मैसेज पे हंसी हूं।
1: अच्छा एक और चीज पता है कौन सी आती है ये जो माँ बाप का और औलाद का सीन हो जाता है ना शादी के बाद वाला ये बड़ा टॉक्सिक हो जाता है हमारी कल्चर में हमारे दीन में ये है कि आप एक निजाम चलता है ना अब उससे हटकर जो कल्चर आता है ना वो ये कहता है कि नहीं बेटा जो है ना वो इमोशनली अटैच रह जाता है अम्मा अब्बा से जो कि रहना चाहिए लेकिन वो अपनी बाउंड्रीज सेट नहीं कर पाते ना अम्मा अब्बा ना औलाद। बेटियों का तो शुरू से बोला जाता है ना कि भाई उनकी क्या बाउंड्री सेट कर दी जाती है उनके दिमाग माविश कि भाई आपने तो अगले घर जाना है तो बेटों के दिमाग में ये बात क्यों नहीं डालते इमोशनल बाउंड्री कि आपने अपना घर बनाना है. मैं फिजिकल घर के बारे में नहीं बोल रही, मैं कह रही हूँ आपका एक अपना सेटअप होना है. बेटों के दिमाग में ये बात नहीं डालते. अब मैं हूं ना, मैं ये सोचूंगी, मैं अपने बच्चों से बोलूंगी, हाँ भाई बेटा तुमने तो अपनी बेगम संभालनी है.
2: क्या रहा है कि एक कॉलर है होल्ड पर और ये वो मैं समझ गई ये शहजादा सलीम थे. अब मैं उनको कॉल करने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन जैसे ही मैं कॉल मिलाना शुरू करती हूँ दूसरी कोई कॉल आ जाती है, तो मैं आपका नंबर मिला ही नहीं पा रही. मैं मिलाने की कोशिश करती हूँ, पहले इनको ले लेते हैं. हेलो अस्सलाम वालेकुम, सॉरी मैं तुम्हारी बात कर दी सफ़ा, लेकिन ये कि कॉल लेना पड़ेगी.
1: चल लेते हैं कॉल. अस्सलाम वालेकुम.
4: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह.
1: नसीम भाई, नसीम भाई ये जो टॉर्चर मिला है मुझे आपकी आवाज़ सुनकर ऐसी वाली, थोड़ा थोड़ा मतलब वीकेंड है, थोड़ा नाश्ता वाश्ता कर आए तो कुछ कुछ जोर आया ना आवाज़ में.
2: या अल्लाह शहजादा सलीम सो सॉरी, मैं नहीं मिला पा रही हूँ. जैसे ही मैं मिलाना शुरू करती हूँ कोई ना कोई और कॉल करना शुरू कर देता है, तो सो सॉरी.
1: नसीम भाई थोड़ा थोड़ा जोश में बोलें.
2: हलवा
1: पूरी शलवा पूरी खा कर आए तो आवाज निकले कोई. कैसे है नसीम भाई?
4: ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह. शादी करा रहे थे किसी के.
1: शादी
2: अल्लाह ना करे
1: आपकी हो गई.
2: हम ये वाले काम क्यों करें?
1: नहीं नहीं आपकी तो हो गई, आप क्यों टेंशन ले रहे आपकी तो हो गई.
4: रोने धोने की बात हो रही थी सुना.
1: हाँ अच्छा वो मावेश वो ये हमारे वाली बात.
2: रोने धोने की बात नहीं हो रही थी, हम कह रहे थे कि हम जब भी नहीं रोए.
4: अच्छा आपको मालूम था काबू कैसे करना है.
1: इन्होंने तो सांस वाली बात कर ली.
2: ये बताओ जरा मतलब इनसे होते हुए किसी संगीन किस्म की सांस की जरूरत नहीं है, ये काफी है.
1: मैं अभी यही बोलने वाली
2: काफी है.
1: मैंने कहा आप जिसके जो है ना हिस्से आए होंगे उसको सांस की जरूरत नहीं. सांस की जरूरत नहीं
2: बल्कि ये तो सांस भी नहीं लेने देंगे. जी भाई जी जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र बिल्कुल ठीक
1: था. तो क्या कहना चाहेंगे भाई इमोशनल इंटेलिजेंस पर? इंटेलिजेंस नहीं सॉरी इमोशनल स्ट्रेंथ पर.
4: इमोशनल तो आदमी ना चाहते हुए भी हो जाता है.
1: नहीं वो वाला इमोशनल. अच्छा इमोशनल को हर कोई ये क्यों समझता है कि रोना धोना और वीक होना?
4: इमोशनल
1: तो फिर हंसना भी है मुस्कुराना भी है.
2: इमोशनल स्ट्रेंथ एक अलग चीज होती है. इमोशनल वीकनेस जो इमोशनल वीकनेस होती है ना उसी को हम समझ रहे होते हैं कि वो रोना धोना.
1: टेंट्रम
2: वीकनेस तो ये है ना कि आपको आप चीजों को फेस कर सको सही तरह से.
1: वीकनेस स्ट्रेंथ.
2: हाँ स्ट्रेंथ. हाँ सॉरी क्या बोल रही
1: हूँ. मामले रिकवर नहीं हुई अभी तक.
2: हाँ बिल्कुल. तो स्ट्रेंथ तो ये है भाई कि आप जो ना चीज़ों को फेस कर सको उनसे रिकवर कर सको और वो अपने ऊपर हावी ना होने दो. कोई भी चीज़ पैनिक में ना हो. गुजारा करते हैं. चले जी भाई तो ये वाला था. एक हमारे साथ कॉलर है उनको हमने 2 मिनट का टाइम देना है तो जल्दी से हम उनसे बात कर लेते हैं. ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया नसीम भाई. अच्छा जी हमारे साथ कॉलर. हेलो
5: वालेकुम
2: सलाम. शहजादा सलीम मैंने जो ये जान की बाजी लगा के आपका नंबर मिलाया ना आपको अंदाजा नहीं इस बात
1: बहुत कुछ हुए टुक से वापस.
5: बिल्कुल एक्चुअली क्या है ना मैं सुन रहा था और मोमेंट ऐसा था ना कि मैं बोला मैं मैसेज डालता हूँ और असल से ना इससे पहले आपको एक कॉलर ने ना एक्सप्लेन किया था कुछ अंग्रेजी में शायद.
2: कौन सा कॉलर?
5: हाँ
2: वो तो हम समझ गए ना भाई. क्या आई डोंट हैव बैलेंस प्लीज कॉल मी वो वाले ना.
1: उर्दू स्टेशन में आकर अंग्रेजी बात कर रहे हो.
2: वही तो हमने कहा ये कौन आ गया भाई हम पहचान ही नहीं पाए. हमने कहा ये कौन है.
1: हमने कहा ये कौन सा गोरा आ गया इतना इतना परफेक्ट एक्सेंट.
2: हाँ
1: यूएसए से कॉल आई है.
5: मैं एक्चुअली वो अभी कराऊंगा जब भी कराऊंगा वो अभी जब भी मेरा है ही नहीं जबकि पास ही से गुजरा हूँ और फिर है ना फिर कोई लंबी टूर पे निकल गया कहीं लंबा लॉन्ग.
1: अरे आपने तो मुझे याद दिला दिया मेरा दूसरा वाला नंबर रिचार्ज कराना है मैंने.
2: अब तो भाई 1 महीने के बाद नंबर सस्पेंड हो जाता है.
1: वाह
5: तो बहरहाल अपना बहुत अच्छी टॉपिक है तो उसमें क्या सलूशन क्या है. मैं तो यही हूँ ना हर मोमेंट में हर सिचुएशन पर ना अपने आप को फिट एंड फ्रेश हिट एंड हिट ऑलवेज मी बस ऐसे ही।
2: ओए होए होए होए आज तो भाई इंग्लिश जो है ना ऐसी टपक रही है शहर सलीम के ऊपर की कोई इंतहा नहीं है।
6: कटोरा लेता
5: बिल्कुल क्योंकि मेरे मैं जहाँ तक जहाँ मेरा एक्सपीरियंस है ना मेरे पे जो पहाड़ टूटे और बहुत बहुत कुछ हुआ लेकिन मतलब है ना लोग जब सुनते थे ना अगर किसी के साथ शेयर भी करता था कोई खास मतलब उनके साथ अगर मैंने शेयर भी किया ना तो वो करते थे यार ये किस हिसाब का बंदा है वो करते थे यार इतना सब सह गया और जो होता नहीं किया मैं बोला
2: हाय हाय हाय क्या बात है
5: वो तो होते रहता
2: है लेकिन
5: बस हम जैसे हैं वैसे हैं
2: इंशाल्लाह और अल्लाह आपको ऐसे ही रखे शहर सलीम। अब हमारे बिल्कुल हो गया अल्लाह हाफिज कहने का वक्त तो आपसे इजाजत लेंगे ठीक है।
5: एक मिनट को मेरा है ना पैगाम पहुंचा देना आप रिक्वेस्ट टाइम के प्रोग्राम कर रहे हो रिक्वेस्ट डाल रहे तो आप रिप्लाई भी नहीं कर रहे हो रिक्वेस्ट बजा भी नहीं रहे एटलीस्ट कम से कम ये बोल दो ना कि भाई वो गाना नहीं मिला कुछ तो और इतने कल मैंने मैसेज भी किया मुझे मेरा गाना सुनना था नहीं सुनने मिला मुझे।
2: चले ठीक है चले हम पहुंचा देंगे बिल्कुल जी बिल्कुल शहर सलीम अल्लाह हाफिज। आई एम सो सॉरी लेकिन कॉल काटना पड़ेगी मुझे। अच्छा जी ये जो आसिफ है ना ये काफ़ी सारे मैसेजेस कर रहे हैं कह रहे हैं मैम सब लोग दुख लेकर आ जाते हैं मुझे हंसी आ रही होती है और मुझे समझ में नहीं आता लोग इतने दुखी क्यों होते हैं हर बात के ऊपर। आसिफ
6: चिल बंदा है भाई चिल
2: चिल बिल्कुल चिल। चलें जी इसके साथ ही हमें लेनी इजाजत हैप्पी वीकेंड टू ऑल ऑफ यू। और वक्त मतलब हमारा शो शुरू होता है
6: और खत्म हो जाता है
2: तो हमें टाइम मिलता नहीं और आप लोगों से भी प्रॉपरली बात करने का टाइम नहीं मिल रहा होता इसके लिए माजरत लेकिन ये कि क्या कर सकते हैं
6: भाई जो है वो इट इज व्हाट इट इज इसी में खुश रहोगे भाई
2: बिल्कुल जी। और इसी के साथ आप सब लोगों को हमारी तरफ से हैप्पी वीकेंड इंशाल्लाह संडे को मिलते हैं आप लोगों से अपना ख्याल रखिएगा
6: और सुनते रहिएगा FM 107
2: दिल से देसी अल्लाह हाफिज़ बाय बाय।

0: लोगों को एक दूसरे से मामला करने दें। अगर मैं मगलूब हो गया तो कुरैश को खुद कुछ करने की जरूरत नहीं, और अगर मुझे गलबा मिला तो फिर वो चाहे तो इस दीन में दाखिल हो जाए, और अगर न चाहे तो उस वक्त उनकी कुव्वत भी महफूज होगी। लेकिन अमन की ख्वाहिश को कमजोरी समझने की गुंजाइश भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं छोड़ी। वाज़ह कर दिया कि अगर इस माकूल पेशकश को रद्द करके अल्लाह के दीन का रास्ता ताकत से रोकने ही पर इसरार किया गया तो मैं इस अमर पर कायम रहूंगा जिसके साथ अल्लाह ने मुझे भेजा है, यहाँ तक कि अल्लाह उसे गालिब फरमा दे या मेरी जान चली जाए। सबने कराम देखिए कितना मुतवाजन मौकफ है कि जहाँ सुलह मुमकिन है वहाँ सुलह, जहाँ हिकमत मतलूब है वहाँ हिकमत, लेकिन उसूलों पर कोई सौदा नहीं। बुदैल इब्न वरका ये पैगाम लेकर कुरैश के पास आता है। उन्होंने कहा कि हम उस शख्स के पास से एक बात लेकर आए हैं, अगर चाहो तो सुनो। कुरैश में जो जज्बाती और कम फहम लोग थे उन्होंने कहा हमें उसकी बात सुनने की जरूरत नहीं। लेकिन अहले राय ने कहा बताओ वो क्या कहते हैं। बुदैल ने उन्हें समझाया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमसे लड़ने नहीं आए, वो सिर्फ उमरे के लिए आए हैं, यानी न इस कदर फौजी तैयारी की जरूरत है, न रास्ता रोकने की, न जंग का माहौल बनाने की। अब यहाँ कुरैश की असल उलझन सामने आ गई। मामला तो सिर्फ ये नहीं था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों आए हैं, मसला ये था कि अरब क्या कहेंगे। उन्होंने कहा कि खा वो उमरे ही के लिए आए हों, अल्लाह की कसम हम ये नहीं होने देंगे कि अरब ये कहें कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताकत के जोर पर मक्के में दाखिल हो गए। यानी हक एक तरफ था मगर कौमी वक़ार, समाजी दबाव और लोगों की जबान दूसरी तरफ। कभी इंसान जानता है कि सामने वाले की बात माकूल है, लेकिन सिर्फ ये ख्याल कि लोग क्या कहेंगे उसे दुरुस्त फैसला करने नहीं देता। उसी मजलिस में उरवा इब्न मसूद सकफी उठे। वो सकीफ के बड़े सरदारों में से थे और अपनी वालदा की तरफ से कुरैश से भी खानदानी नस्बत रखते थे। उन्होंने कुरैश से कहा क्या तुम मेरे लिए वालिद की मानिंद नहीं। उन्होंने कहा क्यों नहीं। फिर पूछा और क्या मैं तुम्हारे लिए बेटे की तरह नहीं। उन्होंने कहा यकीनन। उरवा ने पूछा क्या तुम्हें मेरी खैरख्वाही पर कोई शुबा है। जवाब मिला नहीं। तब उन्होंने कहा कि उस शख्स ने तुम्हारे सामने एक माकूल और भलाई की तजवीज रखी है, उसे कबूल कर लो और मुझे इजाजत दो कि मैं खुद उसके पास जाकर बात करूं। कुरैश ने इजाजत दे दी और उरवा इब्न मसूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे। लेकिन उनकी गुफ्तगू में उस जमाने की कबाइली ज़हनियत पूरी तरह नुमाया थी। उन्होंने कहा ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने मुख्तलिफ कबाइल और लोगों का एक मिला जुला ग्रोह जमा किया है और अब अपनी ही कौम के मुकाबले ले आए हैं। क्या अरब में आपने कभी किसी ऐसे शख्स के बारे में सुना है जिसने अपनी ही कौम को जड़ से उखाड़ दिया हो। सबने कराम उस जमाने में कबीले से वाबस्तगी महज शनाख्त न थी, एक पूरी ज़हनियत थी। इंसान समझता था कि मेरा कबीला गलत हो या सही, मैं उसी के साथ हूँ। इसी तस्वुर को अरबी शायरी के मारूफ मफहूम में यूँ बयान किया जाता था कि अगर मेरा कबीला गुमराह होगा तो मैं भी उसी के साथ, और अगर वो राह रास्त पर होगा तो मैं भी उसी के साथ। और वह अभी उसी जाविये से मंजर को देख रहे थे। उन्हें हैरत थी कि कोई शख्स हक की खातिर अपनी कौम के गलत मौकफ से अलग कैसे खड़ा हो सकता है। और यही वो मकाम है जहाँ हुदैबिया का वाकया इंसानी नफसियात का आयना बन जाता है। एक तरफ कुरैश हैं जो जानते हैं कि सामने वाला जंग के लिए नहीं आया मगर उन्हें अपनी साख का खौफ है, दूसरी तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं जो अपने ही शहर के दरवाजे पर रोके गए हैं मगर जज्बात के बजाय हिकमत से बात कर रहे हैं। अब हुदैबिया के उस मंजर में अब गुफ्तगू एक नहायत अहम मोड़ पर पहुँचती है। उरवा इब्न मसूद सकफी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठे हैं। अभी कुछ देर पहले वो ये अंदेशा जाहिर कर चुके थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुख्तलिफ कबाइल के लोग हैं और अदब के उस दौर के रिवाज के मुताबिक ऐसा लश्कर अगर दबाव में आ जाए तो उसके बिखर जाने का इम्कान ज्यादा होता है। चुनांचे उरवा ने उसी मारूफ कबाइली तजुर्बे की बुनियाद पर ये गुमान कर लिया कि अगर हालात पलटे तो ये लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर मुंतशर हो सकते हैं। ये बात अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के कानों तक पहुंची तो वो खामोश न रह सके। उन्होंने उरवा को नहायत सख्त और उस दौर के अरबी उसलूब में जवाब दिया कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर भाग जाएंगे, हरगिज़ नहीं। उरवा ने चौंक कर पूछा ये कौन है। बताया गया अबू बकर। यहाँ उरवा का जवाब उस जमाने के अरबी मुआशरे की अहम अखलाकी कदर सामने लाता है। वो उस वक्त मुसलमान नहीं था मगर उसने कहा अबू बकर, अगर तुम्हारा मुझ पर एक साबिक एहसान न होता जिसका बदला मैं अभी तक नहीं चुका सका तो मैं तुम्हारी बात का जवाब जरूर देता। غور کیجئے سخت جملہ سنا اس نے جواب دینے کی قدرت بھی تھی مگر ایک پرانا حسان درمیان میں آ گیا اور پھر زبان رک گئی اختلاف اپنی جگہ دشمنی اپنی جگہ لیکن احسان کا حق اپنی جگہ یہی وہ اخلاقی سرمایہ تھا جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مفہوم یوں بیان کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے تشریف لائے یعنی اسلام نے انسانی فطرت پر موجود ہر اچھی قدر کو پروموٹ کیا ہے اسے پاک کیا ہے سوارا اور وحی کی روشنی میں بلند مقام عطا کیا اور شاید اسی پس منظر میں یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ عرب کے اس معاشرے میں مروت وعدے کی پاسداری مہمان نوازی احسان شناسی اور عزت نفس جیسی صفات کیوں اتنی گہری تھی اللہ بہتر جانتا ہے کہ اپنے آخری رسالت کے لیے کس سرزمین اور کن انسانوں کو منتخب فرماتا ہے اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ
1: آئیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ سنیے پرلز آف دا قرآن صرف ایف ایم 107 پر FM 107 پر اپنا بزنس ایڈورٹائز کرنے کے لیے آج ہی رابطہ کریں ہماری قطر میڈیا کارپوریشن کی مارکیٹنگ ٹیم سے کال کریں 448888806 پر یا ای میل کریں marketing@qmc.qa

0: इस दुनिया में दो चीजें ऐसी हैं जो इंसान की शख्सियत की अक्कासी करती हैं। इनमें से एक है सब्र करना जब आपके पास कुछ भी ना हो, और दूसरी चीज है आपका बिहेवियर, आपका सुलूक, कि जब आपके पास सब कुछ हो। मत भूलिए कि यह दुनियावी जिंदगी इंतहाई मुख्तसर है जो तेजी से बीत जाती है, इसलिए दूसरों के मामले में अपना दिल साफ रखिए, माफ करने की आदत डालिए, क्योंकि माफ करना अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। ये बात याद रखिए कि अगर ताल्लुक में अदाकारी ना हो बल्कि वफादारी हो तो हर रिश्ता अनमोल बन जाता है। देखने में आया है कि लोग जिन्हें गरीब होने की वजह से शादी ब्याह या अपने किसी दीगर खुशी के मौके पर नहीं बुलाते, उनके जनाजे में शरीक होते हैं। अपने से कम हैसियत वाले अजीज व अकारब और दोस्त अहबाब को फरामोश न कीजिए, और तीन बातें कभी मत भूलिए, अल्लाह को, अल्लाह की मखलूक को और अपनी औकात को।
1: पैगाम ऑन FM 107।
2: आइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ सुनिए पर्ल्स ऑफ द कुरान सिर्फ FM 107 पर।
3: इसी अखलाकी मिजाज की एक और तस्वीर हमें अबू सुफियान के वाक़े में भी नज़र आती है, जब वो अभी मुसलमान नहीं हुए थे और रूमी बादशाह हिरकल ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उनसे सवालात किए, तो उनके साथियों को पीछे खड़ा करके कहा गया कि अगर अबू सुफियान झूठ बोले तो उसकी तरदीद करना। अबू सुफियान खुद कहते हैं कि अगर मुझे ये शर्म न होती कि मेरे साथी मेरे बारे में ये बात नकल करेंगे कि अबू सुफियान ने झूठ बोला था, तो मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में झूठ कह देता। सोचिए, उस वक्त वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफ थे, उनके साथी भी मुसलमान नहीं थे, लेकिन फिर भी अपने नाम के साथ झूठा का लफ्ज लग जाना उन्हें गवारा न था। समझने के नाम एक गैर मुस्लिम अरब अपने माशरे में झूठा कहलाने से शर्माता था, तो वो मुसलमान जो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता है उसकी जबान झूठ से कितनी दूर होनी चाहिए। अफसोस ये है कि कभी झूठ इस कदर आदत बन जाता है कि आदमी सोचने से पहले जबान से गलत बात निकाल देता है। तो ईमान का तकाजा ये है कि सच को सच मानकर जबान को भी सच का आदि बनाना है। अब वापस हुदैबिया के मंजर में आइए, और उरवा ने अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के जिस एहसान का जिक्र किया था वो एक माली मदद से मुतालिक था। जाहिलियत के ज़माने में उरवा ने कुछ दियतों की जिम्मेदारी उठाई थी और अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस सिलसिले में उसकी अच्छी खासी मदद की। उरवा इस एहसान का बदला नहीं दे सका था, इसलिए उसने कहा, आज तुम्हारी उस सख्त बात को मैं उसी एहसान के मुकाबिल रखता हूँ, अब तुम्हारा वो हक मुझ पर बाकी नहीं रहा। गुफ्तगु आगे बढ़ी तो उरवा इब्न मसूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करते हुए बार बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक की तरफ हाथ बढ़ाते। अरबों में उस जमाने में हम मर्तबा लोगों के दरमियान गुफ्तगु और बेतकल्लुफी के दौरान इस तरह दाढ़ी को छूना मारूफ अंदाज था, और वह शायद उसी माशरती आदत के मुताबिक ऐसा कर रहे थे। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर अकदस के करीब एक सहाबी पूरी तैयारी के साथ मुस्तैदी से खड़े थे, मुगीरा इब्न शुबा रज़ियल्लाहु अन्हु। दिलचस्प बात यह कि उरवा मुगीरा के चचा थे। मुगीरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने खुद को पहचाने जाने से बचाने के लिए खुद को ढांप रखा था। जब भी उरवा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक की तरफ हाथ बढ़ाते, मुगीरा तलवार के दस्ते या नियाम के हिस्से से उनका हाथ हटाते और तंबीह करते, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी से अपना हाथ दूर रखो इससे पहले कि यह हाथ तुम्हारी तरफ वापस न लौटे। उरवा ने बार बार ये सख्ती देखी तो कहा, यह कौन है, बड़ा सख्त और दुरुस्त आदमी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, बताया गया ये तुम्हारा भतीजा मुगीरा इब्न शुबा है। उरवा ने फौरन अपने भतीजे को उसके माजी के एक वाकया याद दिलाया। मुगीरा रज़ियल्लाहु अन्हु इस्लाम लाने से पहले सकीफ के कुछ लोगों के साथ मिस्र की तरफ गए थे। वापसी के सफर में एक संगीन वाकया पेश आया, उन्होंने अपने साथियों को कत्ल कर दिया, उनका माल ले लिया और फिर मदीना आकर इस्लाम कबूल कर लिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ भी हक और बातिल की लकीर कितनी साफ खींच दी। आपने फरमाया, तुम्हारा इस्लाम हम कबूल करते हैं, लेकिन ये माल जो गदर और खयानत से हासिल किया गया है उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं। यानी इस्लाम कबूल कर लेने का मतलब ये नहीं कि माजी की खयानत अचानक जायज़ माल बन जाए। दीन इंसान को कबूल करता है मगर जुल्म को सनद नहीं देता। इसी वाक़े के बाद मक्तूलीन के कबाइल में कशीदगी पैदा हुई, तो खुद उरवा इब्न मसूद ने मामला सुलझाने के लिए कोशिश की और मक्तूलीन की दियतों की जिम्मेदारी उठाई, और इसीलिए अब वो मुगीरा से कह रहे थे कि तुम्हारी उस पुरानी कार्रवाई के नतायज समेटने में अभी कल तक में लगा हुआ था और आज तुम ही मेरे हाथ में जर्ब लगा रहे हो। तो सभी ने कराम, उरवा इब्न मसूद यहाँ सिर्फ मुजाकरात के लिए नहीं आए थे, उनका इरादा दरअसल परखना था, देखना था और अपने जहन में एक मंजर महफूज करना था। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम के ताल्लुक को बहुत करीब से देखा। वो ये जानना चाहते थे कि क्या वाकई ये वही लोग हैं जो मुश्किल पड़ने पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ जाएंगे और फिर उरवा वापस कुरैश के पास पहुंचे। अब वो शख्स बोल रहा था जो दुनिया के बड़े बड़े दरबार देख चुका था। उसने कहा, ए कुरैश, मैं बादशाहों के दरबारों में गया हूँ, कैसर का दरबार देखा, किसरा का दरबार देखा, नजाशी का दरबार भी देखा, लेकिन अल्लाह की कसम मैंने किसी बादशाह को नहीं देखा कि उसके साथी उसकी इतनी ताज़ीम करते हों जितनी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करते हैं। उसने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई हुक्म देते हैं तो उनके साथी फौरन उसे वजह लाने के लिए आगे बढ़ते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजू करते हैं तो वजू के बचे हुए पानी को हासिल करने के लिए सहाबा में शौक की कैफियत पैदा हो जाती है। आप गुफ्तगु फरमाते हैं तो उनके सामने आवाज़ें पस्त हो जाती हैं। अदब का ये आलम है कि एहतराम के बायस आपकी तरफ मुसलसल तेज निकाह से नहीं देखते। रुआ ने चंद घंटों में वो हकीकत देख ली थी जिसे वो बाहर खड़े होकर समझ नहीं पाया था। अभी कुछ देर पहले वो कह रहा था, ये मुख्तलिफ कबाइल के लोग हैं, मुश्किल आई तो शायद तुम्हें छोड़ जाए। अब वही उरवा कुरैश के सामने कह रहा था, मैंने ऐसे लोग देखे जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी कीमत पर दुश्मन के हवाले नहीं करेंगे। तो यहाँ उरवा का मुशाहदा बोल रहा था और फिर उसने कुरैश को वही नसीहत दी जिसके लिए वो इब्तिदा में उठा था। मोहम्मद ने तुम्हारे सामने भलाई और समझदारी की एक राह पेश की है, उसे कबूल कर लो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ओवरऑल सामने किराम सुलह हुदैबिया के वाक़ में अल्लाह ताला के लुत्फ़ का एक ऐसा मंजर दिखाता है जिसे समझने के लिए हमें अंजाम पर निगाह रखना ज़रूरी है। तो आप सब जानते हैं कि मुज़ाकरात आगे बढ़े, यहाँ तक कि कुरैश ने सुहैल इब्न आमर को भेजा, सुलह की शरायत लिखी जाने लगी और इसमें भी कई सारे दिलचस्प वाक़ात हैं। लेकिन ये प्रोग्राम चूँकि वाक़ात का नहीं, यहाँ हमें दरअसल पल्स ऑफ द कुरान, कुरान की एक ख़ास मोती पर हमारी गुफ्तगू हो रही है और वह है लुत्फुल्लाह, अल्लाह की मेहरबानी। तो सामने किराम, आज के हलके का सबक यही है कि अल्लाह सुबहानहु व तआला कभी वो मंजिल देकर नवाजता है, कभी मंजिल से रोककर, कभी दरवाज़ा खुलना रहमत होता है और कभी उसी दरवाजे का बंद हो जाना। आप सब जानते हैं कि सुलह हुदैबिया में जब वो काफिला वापस चला, बैतुल्लाह सामने आए बगैर पीछे रह गया था। बज़ाहिर सवाल यही था कि फतह कहाँ है, लेकिन तब आसमान से फैसला आया, इन्ना फतहना लका फतहा मुबीना, बेशक हमने आपकी खुली फतह अता फरमाई, और सुलह हुदैबिया को फतह मुबीन करार दिया गया। इस वाक़े को ज़मीन पर खड़े इंसान की निगाह महरूमी समझ रही थी, जब भी आसमान ने उसे फतह मुबीन करार दिया है। हुदैबिया हमें यही सिखाती है कि हर ताखीर महरूमी नहीं होती, कभी कभी फतह फतह की सूरत में नहीं आती, वो पहले सब्र बनकर आती है, फिर वक्त उसका नाम फतह रख देता है। प्रोग्राम कुरान के मोती के आज के हलके से तकनीकी मुआविन नदीम अंसारी और मुझे तलहा अशरफुज़्ज़मान को आइंदा मुलाकात तक के लिए दीजिए इजाजत। मा सलामा।
4: Qatar's most heard radio station FM 107 FM 107 Dil Se Desi

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se Desi.
1: Your health matters.
2: अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आपकी सेहत अहम है, बीमारी का इंतजार ना कीजिए। हम अक्सर अपनी सेहत के बारे में इस वक्त सोचते हैं जब कोई मसला सामने आ जाता है, बुखार हो तो डॉक्टर, दर्द हो तो दवा, तबीयत ज़्यादा ख़राब हो तो फिर चेकअप। लेकिन आज हम सेहत के एक बहुत ही अहम उसूल की बात करेंगे कि बीमारी का इंतज़ार क्यों करें, सेहत का ख्याल पहले से

क्यों ना रखा जाए। इसे हम कहते हैं प्रिवेंशन, यानी बीमारी से बचाओ। जरा हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी के बारे में सोचें, तो अगर गाड़ी में वार्निंग लाइट्स जल जाएं तो हम इसे इग्नोर नहीं करते, हम अपनी जो गाड़ी है उसे चेक करवाते हैं। लेकिन जब हमारे जिसमें वार्निंग साइंस जो हैं वो नज़र आते हैं या वो हमें देता है, तो हम अक्सर ये कहते हैं कि कुछ नहीं, खुद ही ठीक हो जाएगा। कभी वाकई मामूली मसला होता है, लेकिन बाज़ोकात तवज्जो देना बेहद ज़रूरी भी होता है और फ़ायदेमंद साबित भी हो सकती है। बेसिक जो रिकॉर्ड है हेल्थ का, वो होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमारी जो बुनियादी हेल्थ है कैसी है। मसलन आपका ब्लड प्रेशर कैसा रहता है, आपका वजन आपके लिए मुनासिब है, यानी आपकी जो BMI है वो आपकी कद और वजन के मुताबिक है या नहीं, क्या आपकी ब्लड शुगर या कोलेस्ट्रॉल के बारे में कभी चेकअप हुआ है, क्या आपकी वैक्सीनेशन जो है उसकी तमाम ज़रूरियात पूरी हैं, आपकी आँखों और दांतों का आखिरी चेकअप कब हुआ था। हर शख्स को हर टेस्ट की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अपनी उम्र, फैमिली हिस्ट्री और हेल्थ कंडीशंस के मुताबिक डॉक्टर से पूछना ज़रूर चाहिए कि कौन से चेकअप जो हैं वो हमारे लिए मुनासिब हैं। ख्वातीन अपनी सेहत को नज़रअंदाज कर देती हैं, उन्हें नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना। और अक्सर यह होता है कि घर, बच्चों और ख़ानदान की जिम्मेदारियों में अपनी सेहत को आखिर में रखती हैं। अगर सर दर्द है तो काम जो है वो जारी रखती हैं, थकन है तो फिर ये सोचती हैं कि अच्छा आराम बाद में कर लेंगे, और कोई अगर हेल्थ चेकअप ड्यू है तो फिर ये कि अगले हफ्ते जो है उस पर डाल दिया जाता है। लेकिन याद रखिए, घर की जिम्मेदारियां निभाने के लिए भी आपका सेहतमंद होना बेहद ज़रूरी है। ख्वातीन को अपनी उम्र और पर्सनल रिस्क के मुताबिक रिकमेंडेड स्क्रीनिंग्स के बारे में अपनी हेल्थ केयर प्रोवाइडर से बात जरूर करनी चाहिए। मर्द हज़रात भी हेल्थ चेकअप को इग्नोर ना करें, क्योंकि मर्द हज़रात में भी एक आम सोच पाई जाती है कि मुझे कुछ नहीं है, बिल्कुल ठीक हूँ। ख़ास तौर पर जो कोलेस्ट्रॉल है, ब्लड प्रेशर है, ब्लड शुगर जैसे मसाइल बाज़ोकात शुरू में वाज़े सिम्टम्स नहीं देते, उनकी अलामात जो हैं वो सामने नहीं आती। इसलिए सिर्फ इस बुनियाद पे कि मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, कोई ख़ास मुश्किल नहीं है, तो हर हेल्थ चेकअप को गैर ज़रूरी नहीं समझना। प्रिवेंशन जो है वो भी बेहद ज़रूरी है, और वैक्सीनेशन भी प्रिवेंशन ही है। वैक्सीनेशन का एक अहम हिस्सा प्रिवेंशन, जैसे हमने कहा है, सिर्फ बच्चों की वैक्सीनेशन ही अहम नहीं है, बाज़ वैक्सीन जो हैं बालिग अफराद के लिए भी उम्र, काम, सफ़र और हेल्थ कंडीशंस के मुताबिक ज़रूरी हो सकती हैं। अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर, अपने डॉक्टर से ज़रूर आप पूछिए कि आपके लिए कौन सी जो वैक्सीनेशन हैं वो ज़रूरी हैं। लाइफ स्टाइल उस पर भी बेहद तवज्जो देने की ज़रूरत है, और ये भी एक प्रिवेंशन है। और ये जो प्रिवेंशन है वो सिर्फ लाइफस्टाइल पर ही महदूद नहीं है। लेबॉर्ट्री और हॉस्पिटल, हम समझते हैं कि सिर्फ वहाँ टेस्ट करवा के हम किसी भी चीज़ से हम जो है वो बच सकते हैं, ये ऐसा नहीं है। आपकी जो रोज़ाना की आदत भी प्रिवेंशन का या बीमारी से बचाव का एक हिस्सा है, जिसमें बैलेंस डाइट, मुनासिब जिस्मानी सरगर्मी, अच्छी नींद, स्मोकिंग से परहेज़, मुनासिब हाइड्रेशन यानी पानी का पीना और स्ट्रेस को मैनेज करना, ये सब सेहत की हिफाजत में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। और यहाँ एक अहम बात कि आपको, हमें अपनी पूरी ज़िंदगी एक दिन में तब्दील करने की ज़रूरत नहीं है, छोटी तब्दीली से शुरू कीजिए। मसलन अगर आप रोज़ाना सॉफ्ट ड्रिंक लेते हैं तो उसकी जगह आप पानी लेना शुरू कर दीजिए। अगर बहुत देर तक बैठते हैं तो हर कुछ देर के बाद उठकर आप चलिए। और अगर नींद की रूटीन ख़राब है तो सोने और जागने का वक्त बेहतर करने की कोशिश कीजिए। आज जब ये हम बात कर रहे हैं तो उसमें तीन सवाल अपने आप से करना बेहद ज़रूरी है कि मेरा आखिरी चेकअप कब हुआ था, क्या मेरी कोई रिकमेंडेड स्क्रीनिंग या वैक्सीनेशन ड्यू है, और तीसरा ये कि मैं अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कौन सी एक हेल्थ हैबिट बेहतर कर सकता हूँ। सिर्फ एक चीज़ मुंतखब कीजिए, क्योंकि सेहत की हिफाजत बड़े फैसलों से नहीं, अक्सर छोटे छोटे रोज़ाना के फैसलों से शुरू होती है। लिसनर्स, बीमारी आने का इंतज़ार न कीजिए, अपनी सेहत को समझिए, और इस तरह की सेहत सिर्फ बीमारी ना होने का नाम नहीं है।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: दोस्तों, ट्रैफिक के रेगुलेशंस की पाबंदी करना हर ड्राइवर की जिम्मेदारी है, खासतौर पर स्कूल जोन्स के आसपास। ड्राइवर्स को रोड मार्किंग्स जैसे लेन्स और स्टॉप लेन्स और पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग्स का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। ये रूल्स ना सिर्फ आपकी सेफ्टी के लिए हैं, बल्कि हमारे स्टूडेंट्स की हिफाजत के लिए भी बुनियादी अहमियत रखते हैं। स्कूल्स के आसपास ट्रैफिक स्लो होना चाहिए और ड्राइवर्स को स्टूडेंट्स के क्रॉसिंग के वक्त रुकना चाहिए। पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग्स और स्कूल साइंस की रेस्पेक्ट करना और स्पीड लिमिट का ख्याल रखना एक्सीडेंट्स और चोटों से बचाता है। हर एक शख्स का फर्ज है कि वो इन रूल्स की पाबंदी करे। पेरेंट्स, टीचर और लोकल कम्युनिटी सब मिलकर स्टूडेंट्स की सेफ्टी को बढ़ावा दे सकते हैं। वजारत दाखिला का कहना है कि अगर हम ट्रैफिक रेगुलेशंस फॉलो करें तो स्कूल के आसपास का माहौल ज्यादा सिक्योर और स्टूडेंट्स के लिए सेफ बन जाता है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की दुआ करता है। सेफ रहें और खुश रहें।
1: म्यूजिक सिर्फ आवाज नहीं, एक एहसास है। कभी हमें पुरानी यादों में ले जाता है।
3: मुस्कुराना, नजर यूं झुकाना, मेरे लिए है बस, मेरे लिए है।
1: तो कभी नए सपने दिखाता है। मैं हूँ आपकी ए फॉर अमिता और मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ द रिक्वेस्ट शो। चाहे वो किसी की याद में एक दर्द भरा गाना हो, या दोस्तों के लिए एक मस्ती भरा ट्रैक, हम बनेंगे आपकी आवाज। डेडिकेट कीजिए अपनी फेवरेट हिट सॉन्ग्स अपने अपनों को और बनाइए हर पल को खास।

0: सिर्फ आपके लिए संडे टू थर्सडे शाम 4 बजे से ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
1: आप सुन रहे हैं एफएम 107
2: दिल से देसी।
3: FM 107 presents Tech Update.
0: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। मैं दुहा वाला कबीर FM 107 पे एंड वेलकम टू अनदर टेक अपडेट। तो भाई साहब, हमने एप्पल को बहुत जम के रिव्यू कर लिया है, हम देखो क्या होता। अभी फिलहाल जो मैं कुछ क्रेजी वेबसाइट्स आपको बताने वाला हूँ, उसके बाद एक मेजर रिव्यू। गेमिंग की दुनिया में बहुत ज्यादा ही हलचल हो रही है। सबसे पहले एक बहुत ही क्रेजी वेबसाइट जिसका नाम है cleverhumanizer.ai cleverhumanizer क्लेवर, चालाक वाला क्लेवर, ह्यूमनाइजर, ह्यूमन लिखिएगा फिर आइजर, IZER.AI। अभी वेबसाइट पे जाके आपको क्या मिलेगा, आपको ये पता लग जाएगा कि किसी ने आपको जो टेक्स्ट भेजा है, वो जो टेक्स्ट है, क्या वो टेक्स्ट AI से लिखवाया है या खुद लिखा है। कितनी अच्छी चीज है ना चोरी पकड़ने के लिए। तो आपके पास अगर कोई भी मैसेज आता है जो आपको लगता है यार ये इस शख्स की तो लैंग्वेज नहीं लग रही है भाई, इस बंदी की भाषा नहीं है, तो आप वो चेक कर सकते हैं। सिंपली आप वेबसाइट पे जाएंगे, इस पे जाके आप पेस्ट करेंगे और ये आपको बता देगा कि ये तो हमारी बिरादरी का है मैडम, ये ह्यूमंस ने नहीं लिखा है। एंड दिस वे यू कैन फिगर इट आउट कि सामने वाला तेज है कि आप उससे दो कदम आगे हैं। अगली वेबसाइट की तरफ बढ़ते हैं। ये भी बहुत लोगों के काम आ सकती है। ओके, नोट डाउन कीजिएगा, वेबसाइट का नाम है TrustMRR, ट्रस्ट भरोसे वाला ट्रस्ट, फिर MRR.com, ठीक है। तो TrustMRR.com पे जाके आपको दुनिया भर के वो स्टार्टअप्स की लिस्ट मिल जाएगी जो कामयाब हैं, उनके ओनर्स के बारे में पता लगेगा, उस कंपनी के बारे में पता लगेगा, स्टार्टअप कब शुरू हुआ वो पता लगेगा, आपको एक एक ढांचा मिल जाएगा कि भाई कौन सा स्टार्टअप जो है दुनिया भर में काम कर रहा है। इसमें बहुत कमाल के स्टार्टअप्स हैं, मैं सच बता रहा हूँ, जो आपने सोचे भी नहीं होंगे वो आइडियाज आपको यहाँ से मिल जाएंगे। एंड एग्जीक्यूशन भी मिलेगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ आइडिया दे दिया कि भाई ये काम करो, ये खोल लो तुम, ये बढ़िया स्टार्टअप है, नहीं। यहाँ पर आपको उन स्टार्टअप्स के बारे में जो कामयाब हैं, जो काफी बढ़िया चल रहे हैं, जिससे लोग इंगेज करें, उनके बारे में पता लगेगा और साथ में ये भी जान पाएंगे कि उन्होंने एग्जीक्यूशन कैसा किया है, क्या चीज उस स्टार्टअप की सबसे ज्यादा लोगों को पसंद आई है और जो सेलिंग पॉइंट है वो आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो जब आप जरा नजर रखिएगा। अब तीसरी वेबसाइट की तरफ बढ़ते हैं। तीसरी वेबसाइट जो है इसका नाम है motionbgs.com, motion MOTION, motion b like basket, g like in gorilla, s like salman, motionbgs.com। जब आप इस वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको कई सारे मोशन लाइव वॉलपेपर्स यहाँ पर मिल जाएंगे कैटेगरी वाइज। अब एनिमे चाहते हैं, गेमिंग चाहते हैं, नॉर्मल चाहते हैं, एस्थेटिक चाहते हैं, नेचर चाहते हैं, एनिमल चाहते हैं, व्हिच एवर टाइप ऑफ वॉलपेपर यू लुकिंग फॉर यहाँ पर आपको मिल जाएगा। बहुत बढ़िया हुआ है, मैं तो ऐसे एक्सप्लोर कर करके ना जाने कितनी मरतबा दिन में वॉलपेपर चेंज कर चुका हूँ इस वेबसाइट की वजह से। गो ऑन विद इट। अब बढ़ते हैं जरा खबरों की तरफ, क्योंकि खबर जो है तगड़ी है भाई। तो इनटेक न्यूज में बताना चाहूंगा आपको, पहली खबर जो है गेमिंग की दुनिया से है, बहुत ज्यादा हलचल मची है। सोनी वर्सेस एक्सबॉक्स की जो जंग है वो वापस सामने आई है। भाई मैं खुद प्लेस्टेशन को ओन करता हूँ, मतलब उनका कंसोल ओन करता हूँ, वो कहाँ से ओन करूँगा। और मैं हाल फिलहाल में सोच रहा हूँ कि क्या हो गया है सोनी को, कोई घमंड शमंड आ गया है क्या, क्या दिक्कत है, बिकॉज क्लियरली एक्सबॉक्स धीरे धीरे रेजिस्ट

0: एक्सपीरियंस दिखा रहा है और जंग को और बड़ा करता चला जा रहा है. वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर्स इन द गेमिंग वर्ल्ड हिडेओ कोजिमा, उन्होंने उनका रिश्ता खराब हुआ सोनी के साथ और अब वो एक्सबॉक्स की तरफ चले गए हैं जहां पे उनके एक्सक्लूसिव लॉन्च होने वाले हैं एक्सबॉक्स के साथ. नॉट जस्ट दैट, प्लेस्टेशन का रीसेंट गेम, एक्सक्लूसिव गेम वुल्वरीन, भाई मुझे ट्रेलर देख के लगा नहीं था कि ये इसके साथ कुछ गलत हो सकता है, मगर वुल्वरीन फेल्ड सो बैडली कि मुझे नहीं लगता कि सोनी रिकवर कर पाएगा. इंसोम्नियक का एक लौता अगर कोई बुरा गेम है तो वो यही है, और इंसोम्नियक इस धब्बे को मिटा नहीं पाएगा. वो लोग जिन्होंने मेजर स्पाइडरमैन गेम्स बनाए, उन्होंने वुल्वरीन बनाया, ये देख के बहुत तकलीफ हुआ भाई. तो ये थी टैक अपडेट्स, मैं दुहा वाला कबीर एफएम 107 पे, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर टैक अपडेट.
1: इस दुनिया में हमें मुख्तलिफ रिश्ते और ताल्लुकात जोड़ते हैं, मुख्तलिफ लोगों के साथ मेल जोल रखते हैं, जिनमें से कई अफराद को हम दोस्त भी बना लेते हैं. ये सोहबतें हमारी जिंदगी का एक नुमाया रंग बन जाती हैं. कुरान करीम में भी अल्लाह ताला ने कई अस्हाब के वाकियात बयान किए हैं ताकि हम इबरत हासिल करें और राह रास्त पर आ जाएं.
2: सुनिए प्रोग्राम कससुल कुरान आरजे तलहा और आरजे सरवर के साथ हर जुम्मा दोपहर 1 बजे से सिर्फ FM 107 पर.
3: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से. कॉल करें 4488886 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa.
4: इंसान आसमान से इस दुनिया में उतारा गया है और उसे दोबारा आसमान की तरफ ही लौटना है, इसलिए इंसान के रब ने आसमान से एक रस्सी लटकाई और फरमाया, सब मिलकर इस रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में तफर्रका ना डालो. यह रस्सी, यह हबले मतीन है कुरान करीम. आइए तलहा अशरफुल जमान के साथ सुनिए एक खास प्रोग्राम पर्ल्स ऑफ द कुरान, जहां हम तलाश करेंगे कुरान के वो मोती जो हमारी जिंदगी को सवार दे. हर हफ्ते इतवार से जुमेरात सुबह 11 बजे से सिर्फ FM 107 पर.
2: FM 107 पर हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट.

0: आप सुन रहे हैं FM 107 दिल से देसी
1: स्कैम अलर्ट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। FM 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का। मेरा नाम है फजील और ये शो है फ्रॉड अवेयरनेस, जहां हर रोज एक नए जमाने के नए फ्रॉड के बारे में मैं आपको इतला करता रहता हूं। चाहे वो मिसिंग डिलीवरी का एड्रेस अपडेट का स्कैम हो, चाहे वो फेक ग्रोसरी कूपन का स्कैम हो, या फिर दुनिया के तमाम कोई ऐसे स्कैम जो लगातार लोगों के साथ हो रहे हैं, जो बहुत ज्यादा वायरल है। आज एक ऐसे स्कैम के बारे में बात करने वाला हूं जिसका नाम है सेकंड हैंड डिपॉजिट फर्स्ट स्कैम। इससे बचना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि स्कैमर्स ऑनलाइन मार्केट प्लेस का इस्तेमाल करते हैं और उस पे यानी कि ऑनलाइन फेक एड्स भी डालते हैं और कोशिश करते हैं कि किसी तरह एक ऐसे मासूम बंदे को फंसाया जा सके जिसके अकाउंट से पैसा चुराया जा सके। ये स्कैम काम कैसे करता है उस पर बात करते हैं क्योंकि ये है सेकंड हैंड डिपॉजिट फर्स्ट स्कैम। स्कैमर्स सोशल मीडिया मार्केट प्लेस या फिर ऐसे प्लेटफॉर्म पर जहां पर सेकंड हैंड आइटम्स मिलते हैं, जैसे कि लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक्स, सस्ते काउचेस यानी कि सोफा वगैरह, इन सब की फोटोज पोस्ट करते हैं। बायर्स को अट्रैक्ट करने के लिए ये प्राइसेस को बहुत ही ज्यादा कम करके रखते हैं या फिर सोशल मीडिया पर डालते हैं। जब आप सेलर को मैसेज करते हैं तो वो झूठ बोलता है कि बहुत सारे लोग इसको खरीदना चाहते हैं, और यहाँ पर ही आपके साथ स्कैम हो सकता है क्योंकि जब आपको जल्दबाजी दिखाई जाती है तो एक्चुअली में आपको स्कैम करने की कोशिश की जाती है। जब आप सेलर को मैसेज करते हैं तो कहता है हाँ ये तो अवेलेबल है लेकिन बहुत सारे लोगों ने खरीदने के लिए इसमें चाहत दिखाई है। आइटम को आपके लिए होल्ड करने के बहाने वो आपसे किसी डिजिटल पेमेंट के थ्रू एडवांस डिपॉजिट मांगता है। जैसे ही आप पैसा भेजते हैं सेलर अपना प्रोफाइल डिलीट कर देता है, आपका नंबर ब्लॉक कर देता है और आपको या आपके कैश के साथ वो शख्स गायब हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता कि उस शख्स को ट्रेस कैसे करें, वो बंदा रहता कहाँ है, ये जो डिटेल्स हैं ये डिटेल्स कैसे, क्योंकि उसमें जो अपडेटेड या उसमें जो एड्रेस भी रहता है ना, उस एड्रेस पर जब आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वहां पर कोई ऐसे ही रैंडम स्टोर है या फिर किसी के घर का रैंडम एड्रेस है, आप पकड़ ही नहीं पाएंगे। कई बार ये एड्रेस ऐसे डाल देते हैं कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। लेकिन इन स्कैम से बचने के सॉल्यूशंस भी हैं। कैसे बचा जा सकता है इन स्कैम से? सबसे पहला तरीका है नो एडवांस डिपॉजिट। जब तक आप खुद सेलर से मिल ना लें और आइटम को फिजिकली चेक ना कर लें, तब तक एक रुपया भी एडवांस पेमेंट ना करें। कोई भी जेन्युइन सेलर डील फाइनल होने से पहले एडवांस होल्ड मनी नहीं मांगता है और आमतौर पर नहीं मांग सकता है, ये भी आप कह सकते हैं। पब्लिक प्लेस में मिले ऐसे लोगों से डील करने के लिए हमेशा किसी पब्लिक और सेफ जगह जैसे कि मॉल या फिर पेट्रोल पंप पे या फिर बाहर किसी नॉर्मल जगहों पे, वहां पर आप उनसे मिले। किसी के घर अकेले जाने से बचना चाहिए। सेलर की प्रोफाइल को खास तौर पे बहुत डिटेल में चेक करें। अगर सोशल मीडिया मार्केट प्लेस पर खरीदारी करने से पहले आप सही से चेक कर लेंगे, प्रोफाइल सही से चेक कर लेंगे, उनकी रेटिंग, रिव्यूज, अकाउंट या एज चेक कर लेंगे ना, तो आपको बहुत ही ज्यादा या बहुत हद तक आपको डिटेल्स पता चल जाएंगी उस शख्स के बारे में। अगर अकाउंट नया है और कोई रिव्यू नहीं है तो अलर्ट हो जाइए क्योंकि हो सकता है ये एक स्कैम हो। कैश ऑन डिलीवरी या हैंड टू हैंड कैश, हमेशा कोशिश करें कि पेमेंट तभी करें जब आइटम आपके हाथ में हो। किसी भी ऑनलाइन ऐप से या पहले

0: किसी लिंक के थ्रू पैसा बिल्कुल ना भेजें, क्योंकि हो सकता है ये जो लिंक है या फिर किसी वाउचर के थ्रू या गिफ्ट कार्ड के थ्रू आपको स्कैम किया जा सकता है। लेकिन फिर भी अगर आपके साथ इन सब के बावजूद, इन सब सॉल्यूशन के बावजूद स्कैम हो गया है, तो बचने के सिर्फ दो तरीके हैं। प्लेटफॉर्म पर रिपोर्ट करें, फौरन उस सेलर की प्रोफाइल और एड को फेसबुक पर या फिर जहां पर वो एड आपको दिखा है वहां पर रिपोर्ट करें। उसके अलावा बैंक में जाकर या फिर एप्लीकेशन के थ्रू, बैंक एप्लीकेशन के थ्रू, जो ऑफिशियल एप्लीकेशन है उसके थ्रू अपना कार्ड ब्लॉक करवाएं, या फिर आप बैंक में डायरेक्ट कॉल करके अपना कार्ड ब्लॉक करवा सकते हैं। और अगर आपने पेमेंट कर दी तो जल्दी से जल्दी साइबर क्राइम में जाकर रिपोर्ट करें, हो सकता है कि आपका पैसा वापस भी आ जाए। तो दोस्तों, ये था नए जमाने का नया स्कैम जो हम रेगुलर बेसिस पे आपको डेली इत्तला कर रहे हैं, बता रहे हैं, आगाह कर रहे हैं। उम्मीद है कि ये शो यानी कि ये फ्रॉड अवेयरनेस आपके लिए काफी फायदेमंद रहा होगा। इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत, मुलाकात होगी आपसे कल एक नए जमाने के नए फ्रॉड के बारे में बात करते हुए। दिल से देसी
1: स्कैम अलर्ट, मैक्सिमम म्यूजिक, मैक्सिमम फन
2: ऑन FM 107। दिल से देसी।

अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के स्पोर्ट्स हाइलाइट्स में हम बात एक ऐसे पाकिस्तानी हॉकी लेजेंड की करेंगे जिन्होंने अपनी स्पीड, स्किल, गोल स्कोरिंग एबिलिटी और अटैकिंग स्टाइल से दुनिया भर में अपना नाम बनाया। एक ऐसा खिलाड़ी जो पाकिस्तान हॉकी के गोल्डन एरा की पहचान बना और वो नाम है हसन सरदार। 22 अक्टूबर 1957 को कराची में पैदा होने वाले हसन सरदार को पाकिस्तान के ग्रेटेस्ट सेंटर फॉरवर्ड्स में शुमार किया जाता है। उनका इंटरनेशनल करियर 1979 में शुरू हुआ और 1987 तक जारी रहा। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान के लिए 148 इंटरनेशनल मैचेस खेले और 150 गोल स्कोर किए, यानी उनका स्कोरिंग एवरेज एक मैच से भी ज्यादा गोल कर रहा है, जो अपने आप में उनकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी गोल स्कोरिंग एबिलिटी का सबूत है। हॉकी में हसन सरदार इज अ लेजेंड। आज भी कोई भी चर्चा हो, हसन सरदार इज अ रेफरल पॉइंट। हसन सरदार का नाम सबसे ज्यादा पाकिस्तान के हॉकी के गोल्डन एरा के साथ जुड़ा हुआ है। उनकी सबसे यादगार परफॉर्मेंसेस में 1982 हॉकी वर्ल्ड कप शामिल है, जो बॉम्बे यानी आज के मुंबई शहर में खेला गया था। पाकिस्तान ने टूर्नामेंट जीता और हसन सरदार ने जबरदस्त परफॉर्मेंस देते हुए टूर्नामेंट के लीडिंग गोल स्कोरर का मकाम हासिल किया और उन्होंने वर्ल्ड कप में 11 गोल स्कोर किए और उन्हें मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी करार दिया गया। जहां हसन सरदार 1982 के लिए खास तौर पर कामयाब रहा, अगर देखा जाए पाकिस्तान ने इसी दौर में वर्ल्ड कप और एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीते, और स्पेशली जो दिल्ली में हुआ था 1982 का एशियन गेम्स फाइनल, हॉकी फाइनल की बात करो दोस्तों, और इंडिया को एक के मुकाबले में 7 गोल से पाकिस्तान की टीम ने मात दी थी, एंड दैट वाज अ क्लासिकल मैच। हसन सरदार पाकिस्तान की लेजेंडरी फॉरवर्ड लाइन का अहम हिस्सा थे और जहां उनके साथ समीउल्लाह खान, कलीमुल्लाह खान ये दोनों भाई थे, हनीफ खान और मंजूर हुसैन जैसे ऐसे मशहूर मारूफ खिलाड़ी मौजूद थे। पाकिस्तान हॉकी वाज ट्रूली ग्रेट टीम ड्यूरिंग दैट एरा, एंड पाकिस्तान टीम वाज अ ट्रूली ग्रेट टीम ड्यूरिंग दैट एरा। एंड हसन सरदार की सबसे बड़ी कामयाबी 1984 लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में सामने आई। पाकिस्तान ने हॉकी में गोल्ड मेडल जीता और हसन सरदार

और इस हिस्टोरिक टीम का हिस्सा थे। ओलंपिक्स में उन्होंने 7 मैचेस में 10 गोल स्कोर किए, जो उनकी अटैकिंग क्वालिटी को जाहिर करता है। और इसके बाद 1984 ओलंपिक्स में पाकिस्तान का सफर भी शानदार रहा। टीम ने केनिया को 3-0, कनाडा को 1 के मुकाबले में 7 गोल से और ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से हराया, जबकि फाइनल स्टेजेस में जर्मनी को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दी। हसन सरदार ने टूर्नामेंट के दौरान पाकिस्तान के अटैक को लीड करने में हसन सरदार ने टूर्नामेंट के दौरान पाकिस्तान के अटैक को लीड करने में अहम किरदार अदा किया। अच्छा, उनके खास बात यह थी कि उनके खास बात यह थी कि बिग मैच परफॉर्मेंसेस उनमें नजर आती। वो सिर्फ ग्रुप मैचेस में गोल करने वाले खिलाड़ी नहीं थे, बल्कि बड़े टूर्नामेंट्स के फाइनल्स में भी अपनी टीम के लिए परफॉर्म करते थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने 1982 वर्ल्ड कप, 1982 एशिया कप, 1982 एशियन गेम्स और 1984 ओलंपिक्स के फाइनल्स में भी गोल स्कोर किया। एंड दैट्स अ रिकॉर्ड। 1985 एशियन कप में भी हसन सरदार पाकिस्तान के टॉप स्कोरर्स में शामिल रहे और उन्होंने टूर्नामेंट में 10 गोल्स स्कोर किए और पाकिस्तान को टाइटल जीतने में अहम कंट्रीब्यूशन दिया। और अगर सिर्फ नंबर्स की बात करें तो हसन सरदार के करियर के आंकड़े वाकई हैरान कुन है। 148 इंटरनेशनल अपीयरेंसेस और 150 गोल्स। पाकिस्तान के इंटरनेशनल हॉकी गोल स्कोरर्स की लिस्ट में वो हिस्टोरिकली टॉप प्लेयर्स में शुमार होते हैं। लेकिन दोस्तों, हमेशा मैं यही कहता हूं कि किसी भी खिलाड़ी की ग्रेटनेस सिर्फ स्टैटिस्टिक्स तक महदूद नहीं है, और बात यहां पर हसन सरदार की हो रही है। एंड डेफिनेटली स्टैटिस्टिक्स कैन नॉट इवन इवैल्यूएट कि क्या ग्रेट प्लेयर रहे हैं अपने जमाने में। उनकी असली पहचान उनका ग्रेसफुल प्लेइंग स्टाइल, बॉल कंट्रोल, स्पीड, फिनिशिंग और गोल के सामने बेहतरीन पोजीशन थी। जिन्होंने देखा वो वाह वाह करते रहे हैं, और जिन्होंने नहीं देखा वो कहते होंगे कि यार हसन सरदार क्या खिलाड़ी थे। आज वो सोशल मीडिया पर बैठ के, हो सकता है कि इस प्रोग्राम को सुनने के बाद आप लोग भी सोशल मीडिया पे हसन सरदार का नाम को सर्च मारिए और आपको पता चलेगा कि व्हाट अ क्लासी हॉकी प्लेयर ही वॉज। अगर यू नो आप स्पोर्ट्स लाइक करते हैं, नॉट जस्ट क्रिकेट की बात होती है, हॉकी की बात होती है। एक जमाना पहले हॉकी एंड इंडिया और पाकिस्तान, ये एक सिनोनिमस रहा है। हॉकी इंडिया और पाकिस्तान, दे डोमिनेटेड द वर्ल्ड हॉकी। और हसन सरदार, जफर इकबाल, मोहम्मद शाहिद, ये जितने भी खिलाड़ी थे, दे वेर आर्टिस्ट ऑन द फील्ड। एंड उनको देखने के लिए भरपूर दर्शक या ऑडियंस, फैंस जो है वो स्टेडियम पर उमड़ पड़ते थे। एंड दैट वॉज द मैजिक दैट दीज गाइज क्रिएटेड। और हसन सरदार वॉज वन ऑफ द लीडिंग स्टार्स ड्यूरिंग दैट एरा। अच्छा, रिटायरमेंट के बाद हसन सरदार ने पाकिस्तान हॉकी में एडमिनिस्ट्रेटिव और कोचिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी संभाली और नेशनल टीम के कप्तान और चीफ सेलेक्टर के तौर पर भी अपना किरदार अदा किया। दोस्तों, पाकिस्तान हॉकी की तारीख में कुछ नाम ऐसे हैं जो सिर्फ प्लेयर्स नहीं बल्कि एक पूरे दौर की पहचान बन जाते हैं। हसन सरदार भी उन्हीं लेजेंड्स में से एक है। उम्मीद है आपको हमारा आज का ये स्पोर्ट्स सेगमेंट पसंद आया होगा। अगली बार एक और स्पोर्ट्स लेजेंड, एक और अपकमिंग स्टार्स के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीर और साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।

0: जेंजी की डिक्शनरी में एक वर्ड होता है फोमो, फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट, यानी एहसास कि कुछ तो छूट गया है, पर हम है ना 2026 का पूरा कैलेंडर, उसमें जो भी इवेंट्स आएंगे आप अपडेटेड रहेंगे. सो नो फोमो एवर अगेन. सुनिए कतर 2026 आरजे फजील के साथ, रहिए अपडेटेड हर ट्यूसडे रात 9 बजे से सिर्फ एफएम 107 पर. दिल से देसी.
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर. दिल से देसी.

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se Desi.
1: Assalamu alaikum. Aap sun rahe hain Culture Moment. Main hoon aapki RJ Mahavish. इस पांच मिनट के सफर में हम बात करेंगे कतर की खूबसूरत सकाफत, रिवायत और विरसे की। यहाँ हर रसम, हर लिबास, हर खाने और हर मेहमान नवाजी के पीछे एक प्यारी सी कहानी होती है। आइए मिलकर कतर की सकाफत को समझें, महसूस करें और इस विरसे को अगली नस्लों तक पहुँचाने का अहद करें। कतरी शादियों की खूबसूरत रिवायत में मेहंदी की रात को खास अहमियत हासिल है। ये खुशी, तैयारी और अपनों के साथ मिल बैठने का प्यारा मौका होता है। इस महफिल में खवातीन और बच्चियां जमा होती हैं, एक दूसरे से बात करती हैं और दुल्हन की खुशी में शरीक होती हैं। मेहंदी का रंग सदियों से खवातीन के लिबास और जीनत का हिस्सा रहा है। कतरी शादी में मेहंदी लगाना सिर्फ सजावट का अमल नहीं बल्कि खुसूसी जज्बाती लम्हा भी होता है। दुल्हन के हाथों में नक्श बनाए जाते हैं और घर की खवातीन उसके लिए दुआएं और नेक ख्वाहिशात करती हैं। मेहंदी रिवायती तौर पर महफिल की सूरत में होती है। घर को खूबसूरत तरीके से सजाया जाता है और मेहमानों के लिए आराम का इंतजाम किया जाता है। सजावट में रंग, रोशनी और फूलों का इस्तेमाल किया जा सकता है। मकसद एक ऐसा पुरखुशिश माहौल बनाना होता है जहां सब लोग सुकून और अपनाइत महसूस करें। दुल्हन इस मौके के लिए खास लिबास का इंतखाब करती है। लिबास के रंग, कढ़ाई और लवाजमात को अक्सर मेहंदी की खुशगवार फिजा के मुताबिक मुंतखब किया जाता है। खूबसूरत लिबास और नफीस जीनत महफिल की रौनक बढ़ाते हैं। मेहंदी लगाने वाली खवातीन, जिन्हें आमतौर पर मेहंदी आर्टिस्ट कहा जाता है, बारीक नक्श बनाती हैं। ये नक्श फूलों, पत्तियों और मुख्तलिफ सजावटी शक्लों में होते हैं। हर नक्श अपनी खूबसूरती और हुनरमंदी की वजह से

खास नजर आता है। इस महफिल की सबसे बड़ी खूबसूरती अपनों का साथ होता है। माँ, बहने, खाला, फुफियाँ और दोस्त दुल्हन के साथ वक्त गुजारते हैं। बातचीत, मुस्कुराहट और खुशी के लम्हात मेहंदी की रात को यादगार बना देते हैं। बुजुर्ग खवातीन इस मौके पर अपने तजुर्बात और यादें शेयर करती हैं। वो नई नस्ल को शादी के आदाब और खानदानी रिवायत के बारे में बताती हैं। इसी तरह मेहंदी की महफिल सिर्फ खुशी का मौका नहीं रहती बल्कि खानदानी राब्तों और वर्से को आगे बढ़ाने का मौका भी बन जाती है। मेहंदी की महफिल में मेहमानों के लिए खाने और मशरूबात का इंतजाम किया जाता है। मिठाई, खजूर, कहवा और दूसरी पसंदीदा चीजें पेश की जा सकती हैं। खाना और खुशबू महफिल के एहसास को और दिलकश बना देते हैं। मेहमानों को खुशी से खाना पेश करना और उनकी राहत का ख्याल रखना कतरी मेहमान नवाजी का हिस्सा है। जरूरी नहीं कि पेशकश बहुत ज्यादा हो, दिल से की गई तवज्जो और खुलूस ही महफिल की असल खूबसूरती होता है। कुछ मेहंदी की महफिलों में रिवायती गीत या खुशी के तराने भी शामिल होते हैं। आवाज, ताल और तकरीब के आदाब मिलकर महफिल में रौनक पैदा कर देते हैं। ऐसी सरगर्मियों का मकसद खुशी का इजहार करना, सबको एक साथ शामिल करना होता है। महफिल में हर शख्स की राहत और पसंद का ख्याल रखना अहम है। एक दूसरे के एहतराम को हमेशा तरजीह दी जाती है। आज के कतर में मेहंदी की महफिलें रिवायती और जदीद दोनों अंदाज में देखी जा सकती हैं। कुछ खानदान सादा और खानदानी अंदाज पसंद करते हैं जबकि कुछ लोग सजावट और इंतजाम में नए तरीके शामिल करते हैं। दोनों अंदाज में असल अहमियत मोहब्बत, खानदानी शिरकत और खुशी बांटने की होती है। जदीद मेहंदी में पेशावर डिजाइनर्स और मुख्तलिफ सकाफती अंदाज शामिल हो सकते हैं लेकिन दुल्हन और खानदान के लिए इस मौके की जज्बाती अहमियत कायम रहती है। मेहंदी की रिवायत नई नस्ल को सिखाती है कि सकाफत सिर्फ चीजों का नाम नहीं होती बल्कि उन लम्हात का भी नाम होती है जो लोग मिलकर पैदा करते हैं। किसी बुजुर्ग से नक्श का मतलब पूछना, मेहंदी के हुनर को समझना या खानदानी कहानियाँ सुनना वर्से से जुड़ने का खूबसूरत तरीका है। मेहंदी की रात हमें ये भी याद दिलाती है कि खुशी तब ज्यादा हसीन होती है जब अपनों के साथ शेयर की जाए। इसमें खानदानी मोहब्बत, दुआएं, मुस्कुराहट और नई जिंदगी के लिए उम्मीद शामिल होती है। आज के कल्चर मोमेंट का पैगाम यह है कि कतरी मेहंदी की महफिल सिर्फ हाथों को सजाने का मौका नहीं बल्कि रिश्तों को मजबूत करने और खुशी को मिलजुल कर मनाने की खूबसूरत रिवायत है। मेहंदी का रंग चंद दिन रहता है लेकिन उससे जुड़ी यादें अक्सर जिंदगी भर साथ रहती हैं। तो लिस्टनर्स, आज के कल्चर मोमेंट को यही मुकम्मल करते हैं। याद रखिए, सकाफत सिर्फ गुजरे हुए वक्त का नाम नहीं बल्कि हमारी रोजमर्रा जिंदगी का खूबसूरत हिस्सा है। मैं हूँ आपकी आरजे महाविश। अगली मुलाकात तक अपना ख्याल रखिए और कतर की खूबसूरत सकाफत को हमेशा इज्जत और मोहब्बत के साथ याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।

सितारे उतरेंगे मैदान में अजमत की जुस्तजू में टीमें टकराएंगी टॉप पोजीशन के लिए और जोश ऐसा जो आखिरी सीटी तक थमने ना पाए

0: ना पाए। दोहा बैंक स्टार्स लीग सिर्फ अलकास के इनक्रिप्टेड चैनल्स और शूव प्लेटफॉर्म पर।
1: आप सुन रहे हैं इट्स अ गोल्ड शो विद मोहम्मद अमीज, ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
2: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इट्स अ गोल्ड शो में आप सभी का इस्तकबाल है। स्टूडियो की घड़ी पर 1:02 और आप सुन रहे हैं FM 107 और ये स्पेशल खास स्पोर्ट्स प्रोग्राम है। स्पोर्ट्स हर तरफ, स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स, एशियन गेम्स, खलीज कप आज शुरू हो रहा है फॉर कतार, यस्टरडे मैच शुरू हो गया था। एंड इसके साथ साथ क्रिकेट भी है, फुटबॉल तो मैंने कह दिया है, फुटबॉल के साथ साथ यूरोपा भी है। यूरोपा यूरोपियन लीग में एक और टूर्नामेंट है जिसको हम यूरोपा लीग कहते हैं, वो भी है। ओलंपिक्स, टेनिस के स्पोर्ट्स तो काफ़ी हैं और जो भी कुछ हो रहा है और आप लोगों के सामने मैं पेश करता हूं इसी प्रोग्राम के जरिए जिसका नाम है इट्स अ गोल्ड शो। सो लेट्स स्टार्ट विथ पहले आज का सवाल, एक सवाल क्रिकेट से, और सवाल यह है कि इंडिया का हाईएस्ट रन गेटर इन टेस्ट क्रिकेट में कौन है। टेस्ट क्रिकेट की तारीख में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाला इंडियन खिलाड़ी, भारतीय खिलाड़ी का नाम क्या है, आपको बताना है 6622107 पर। लेट्स मूव ऑन टू द स्पोर्ट्स हाईलाइट ऑफ द वीक। और एशियन गेम जारी है जापान में, नागोया और आईची, इस दोनों शहरों में एशियन गेम्स जारी है। ये 20th एशियन गेम्स हैं और इस एशियन गेम्स में काफ़ी कुछ कतर की अगर बात करूं तो कतर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण और अहम दिन रहा है यस्टरडे, दैट वाज वेनसडे, जहां कतर ने दो गोल्ड मेडल्स जीते हैं दोस्तों। और पहले मैंने आप लोगों से बताया था कि कतर नॉट ओनली जस्ट पावरफुल इन फुटबॉल और हैंडबॉल, शूटिंग में They are really good. अगर आपने कभी शूटिंग फॉलो किया हो, शूटिंग मीन्स राइफल शूटिंग की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, लुसेल शूटिंग रेंज, अगर आप लोगों ने आप कभी गए हो तो आप लोगों को पता चलेगा कि वहाँ पे जिस तादाद में शूटर्स मौजूद होते हैं, एंड खतर शूटर्स एंड प्योर, आई मीन दे आर वेरी प्रोफेशनल, और जिनमें एक नाम आप लोगों को पता होगा, नासिर सोलह अलातिया शूटर भी हैं। आप लोगों ने सोचा होगा कि अरे मोटर रेसिंग से शूटिंग क्या कर रहे हैं भाई साहब, नासिर सोलह अलातिया कतरी आइकन हैं, वो दोनों ही स्पोर्ट्स में हिस्सा लेते हैं और कल टीम में गोल्ड मेडल, यानी स्कीट। देयर आर टू इवेंट्स होते हैं राइफल शूटिंग में, आपको बता दूं कि एक ट्रैप इवेंट है और एक स्कीट इवेंट है। स्कीट में दोनों तरफ से जो पिजन, जो टारगेट्स हैं वो आते हैं, उड़ते हैं और आपको मारना होता है। तो जितने टारगेट्स आप मारेंगे आपके पॉइंट्स उतने बढ़ते जाएंगे और इसी को कहते हैं स्कीट शूटिंग। और स्कीट शूटिंग में कतर हैज वन अ टीम गोल्ड, और इसके अलावा इंडिविजुअल गोल्ड, पहला गोल्ड फॉर कतर इंडिविजुअल एथलीट राशिद अल अतबा। राशिद अल अतबा बहुत ही एक माहिर शूटर हैं, हालांकि ज़्यादातर न्यूज़ के जो हेडलाइंस है वो नासिर सोलह अलातिया ले जाते हैं, लेकिन राशिद अल अतबा इज़ अ वेरी एक्सपीरियंस, इज़ एन एक्सपीरियंस शूटर, और वर्ल्ड चैम्पियनशिप कह लीजिए, वर्ल्ड कप कह लीजिए, एशियन गेम्स कह लीजिए, वहाँ पर इनका परफॉर्मेंस काफ़ी लोगों को मुतासिर किया है। एंड इज़ नॉट अ यंगस्टर, काफ़ी मजे हुए हैं एंड काफ़ी मारूफ शूटर रहे हैं, और कल यस्टरडे यानी बुध के रोज़ उन्होंने गोल्ड मेडल, द फर्स्ट गोल्ड मेडल फॉर कतर टीम एट द एशियन गेम्स इन नागोया एंड आईची। सो कतर के पास अभी जो है, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि हाउ मेनी मेडल्स कतर हैज वन, कतर के पास अभी दो गोल्ड, और जिसमें जैसे मैंने बताया शूटिंग में एक सिल्वर अब्दुल रहमान मुस्तफ़ा, जो कि कराटे में कुमीते कैटेगरी में अंडर 60 किलोग्राम के ये कैटेगरी में उन्होंने जीता था। सबसे पहला मेडल अब्दुल रहमान मुस्तफ़ा का था और उसके बाद अब्दुल्ला रशद, उन्होंने भी कराटे में अंडर 84 कुमीटे कैटेगरी में। सो ओवरऑल कतर इज डूइंग वेल, और भी बहुत सारे इवेंट्स बाकी हैं दोस्तों, और जिसमें कतर को मेडल प्रॉस्पेक्ट कहा जाता है या मेडल प्रॉस्पेक्ट बताया जा रहा है, जैसे कि 3x3 बास्केटबॉल है, बीच वॉलीबॉल है, इसमें कतर के पास हो सकता है कि मेडल आ जाए, और वो मेडल जो है गोल्ड अगर हो जाए तो क्या बात है। अच्छा, स्क्वाश में भी कतर के अब्दुल्ला अल तमीमी लेजेंडरी प्लेयर है, लेजेंडरी स्क्वाश प्लेयर है, उन्होंने जापान में जो एशियन गेम्स है उसमें राउंड ऑफ 16 में जगह बना लिया। यहाँ पे बता दूं कि राउंड ऑफ 16 से अगर आप सेमीफाइनल तक पहुंच जाते हैं तो यू कैन इंश्योर अ ब्रॉन्ज मेडल, लेकिन ब्रॉन्ज इज नॉट द टारगेट फॉर तमीमी। उन्होंने अपने ओपनिंग मेन सिंगल्स मैच में मंगोलिया के यसोन को

तीन सिफर से मात दी और अब्दुल्ला तमीमी आज राउंड ऑफ 16 में जापान के रियोनोसुको सुकोए का मुकाबला करेंगे। अब्दुल्ला तमीमी बहुत ही एक्सपीरियंस्ड हैं और कतर क्लासिक्स में वो खेलते रहते हैं और इंटरनेशनल लेवल पर भी उनका कुछ बहुत सारा नाम भी है। और अगर रीजन की बात करें अब्दुल्ला तमीमी इज डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट। और अगर बीच वॉलीबॉल की बात करूं तो कतर का नंबर टू टीम कतर यहां पे दे हैव प्लेस्ड टू टीम्स कतर टू जिसमें मूसा अल खैर और एबाब मोहम्मद शामिल हैं। इन्होंने ग्रुप डी के एक मैच में इम्पॉर्टेंट मैच था श्रीलंका को हरा दिया और इस ये दूसरा मैच था और कतर को मुसलसल दूसरे मैच में जीत के बाद कतर इज नाउ टॉपिंग दिस ग्रुप। सो मेडल प्रॉस्पेक्ट इसमें भी है। अच्छा बास्केटबॉल फेडरेशन के माफ कीजिएगा एक बास्केटबॉल की बात कर रहा था 3x3 जो बास्केटबॉल है 3x3 में कतर इज रियली स्ट्रॉन्ग और बहरीन को हरा दिया है कतर की टीम ने 15 के मुकाबले में 21 पॉइंट्स हराकर क्वार्टर फाइनल्स के लिए क्वालिफाई किया। जैसे मैंने बताया कि अगर आप सेमीफाइनल तक जगह बना लेते हैं तो यू इंश्योर अ ब्रॉन्ज मेडल ऑन द पोडियम फिनिश। सो यहां पर भी एक मेडल प्रॉस्पेक्ट है और कतर का अगला मुकाबला जो है मंगोलिया और सिंगापुर में जो मैचेस हैं उस मैच में मंगोलिया और सिंगापुर के दरमियान जो मैच है जो विनर हैं उनके अगेंस्ट में कतर का अगला मुकाबला होने जा रहा है दोस्तों। सो ये थे ओवरऑल कतर की अगर जानी बात करूं कतर इज रियली रियली डूइंग वेल इन द एशियन गेम्स व्हिच इज करेंटली अंडरवे इन जापान नागोया आईची सिटीज में। सो यहां पर एक ब्रेक लूंगा लेकिन क्वेश्चन जो आज का जो सवाल था कि क्रिकेट से मुतालिक है इंडिया का हाईएस्ट रन स्कोरर इन टेस्ट क्रिकेट आपको बता रहा है 666-2107 पर। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन और आप सुन रहे हैं इट्स अ गोल शो एक्सक्लूसिवली। ऑल द स्पोर्ट्स अपडेट्स इसी रेडियो स्टेशन से आपको मिलता रहता है जिसका नाम है FM 107। कीप लिसनिंग टू FM 107। टिल देन आई टेक अ ब्रेक ओवर हियर आई विल बी बैक राइट सून।

0: आप सुन रहे हैं इट्स अ गोल्ड शो विद मोहम्मद अमीज ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
1: वेलकम बैक, दोबारा इस्तकबाल है इट्स अ गोल्ड शो में। स्पोर्ट्स शो है, आप लोग जुड़ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और ब्रेक से पहले

पे मैंने क्वेश्चन पूछा था, क्रिकेट से मुतालिक एक सवाल था, इंडिया का हाईएस्ट रन गेटर इन टेस्ट क्रिकेट आपको बताना है और आप लोग जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। और देखिए, स्पोर्ट्स इज अ वे ऑफ लाइफ, मैं हमेशा कहते आता हूँ कि स्पोर्ट्स इज फिटनेस, स्पोर्ट्स इज लाइफ, स्पोर्ट्स शुड बी योर वे ऑफ लाइफ। और स्पोर्ट्स को अगर आपने इन्वॉल्व किया आपकी जिंदगी में, आप बहुत ही डिसिप्लिन इंडिविजुअल बन जाते हैं। तो लेट्स विद डिसिप्लिन के साथ ही आज बात करते हैं फुटबॉल के बारे में। और आपको पता है कि इस खत्ते का सबसे इंपॉर्टेंट फुटबॉल टूर्नामेंट क्या है? जी हाँ दोस्तों, खलीज कप यानी गल्फ कप, जो कि कल शुरू हो गया है जद्दा शहर में। और यस्टरडे देयर वर टू मैचेस, सऊदी अरब की जीत हुई है अगेंस्ट कुवैत और बहुत ही उसे अ वेरी लकी विन फॉर सऊदी अरब, बिकॉज कुवैत के एक खिलाड़ी ने अपने ही जाल में बॉल, अपने ही गोल पर बॉल डालकर, आई मीन कंसीडेड अ गोल दैट इज अ सुसाइड, सेम साइड गोल जिसको हम कहते हैं, और सऊदी की जीत हुई है। सऊदी इज अ मेजबान टीम और सऊदी इज राइट नाउ ऑन द टॉप ऑफ द टेबल विद द 3 points। और वहीं अगर इराक की बात करूं, इराक और मैच था ओमान के साथ और ये मैच गोललेस नहीं बल्कि एक एक गोल पर ड्रॉ रहा, एंड दैट वाज अ फैंटास्टिक मैच। एंड बिकॉज वन ऑल ड्रॉ मैच से हमें ये समझ लेना चाहिए कि द मैच वाज फॉट ऑन द इक्वल कील, यानी बराबरी पर रहा है। सो आज इंपॉर्टेंट मैच इसलिए क्योंकि टीम कतार इज गोइंग टू ओपन द कैंपेन अगेंस्ट डिफेंडिंग चैंपियन यानी दिफाई चैंपियन बहरेन के अगेंस्ट में कतर का आज सामना है। दोस्तों यही सऊदी अरब में ही 2014 में कतर वन द लास्ट गल्फ कप यानी खलीज कप में फतेह हासिल की थी, दैट वाज इन 2014 यानी सन 2014 में इन रियाद। और मैं थोड़ा सा इसमें पर्सनल अटैचमेंट है, पर्सनली आई वाज प्रेजेंट इन रियाद एंड उस टूर्नामेंट को मैंने देखा था, कतर को विन करते हुए देखा था। बोअलेम खोकी उस टाइम नए आए थे एंड उस जमाने में देयर वर लॉट ऑफ यंगस्टर्स, और वही यंगस्टर्स आज के मॉडर्न एरा के सुपरस्टार्स बन गए हैं, जैसे हसन अल हैदोस है, अलमोइज अली है, ये सारे खिलाड़ी उस टाइम थे, अकरम अफीफ वाज नॉट देयर। लेकिन बोअलेम खोकी उस टीम के और हसन अल हैदोस उस टीम के दो ऐसे मेंबर्स हैं जो आज उतरेंगे मैदान पर और इसी सोच के साथ कि ओमन बहरेन को हराना है एंड इस टूर्नामेंट में फतेह हासिल करनी है। बिकॉज अगर मैं पूरे अगर आप लोगों को एक पिक्चर बता दूं कि वाई कतर शुड बी द फेवरेट और इज द फेवरेट अगेंस्ट बहरीन, कतर की यही टीम स्क्वाड वर्ल्ड कप 2026 फीफा वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने के बाद दे आर वेरी मच एक्सपीरियंस्ड, बहुत तजुर्बा है, एंड उस कॉन्फिडेंस के साथ दे आर गोइंग टू फेस बहरेन इन द फर्स्ट मैच। और इस गोलकीपर को जरा याद रखिएगा जिसको आपने देखा होगा 2026 के वर्ल्ड कप में इन कनाडा में, अबुनादा। और ये बहुत ही फाइटिंग गोलकीपर हैं और बहुत ही तेज तरीन उनका जो मूव्स हैं इनसाइड द बॉक्स, वो काफ़ी कुछ कर सकते हैं और बहरीन के प्लेयर्स को रोक सकने में उनका एक जो सलाहियत है। आई एम प्रीटी मच श्योर कि ये मैच विल गो टू द कतर वे इंशाल्लाह और कतर की जीत होगी इंशाल्लाह। अच्छा अब चलते हैं एक क्रिकेट के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। फुटबॉल से यही टूर्नामेंट जो मेजर टूर्नामेंट है अभी फुटबॉल के आगे, अगर मैं बात करूं तो क्रिकेट की बात करता हूं। और क्रिकेट में अभी पिछले दिनों एशियन गेम्स में क्रिकेट का फाइनल हुआ था एंड थर्ड प्लेस मैच भी हो गया था और फर्स्ट टाइम एवर क्रिकेट को रखा गया है T20 फॉर्मेट में, जहां इंडिया की जीत हुई है, इंडिया की जीत इस अगेंस्ट श्रीलंका हुई है। और ये बहुत ही वन साइडेड मैच रहा है फॉर इंडिया, बिकॉज इंडिया द T20 वर्ल्ड चैंपियन, एशियन चैंपियंस भी हैं वीमेंस क्रिकेट की बात करूं दोस्तों हा? और यहां पर इंडियन टीम की जीत, मुसलसल दो मरतबा, आई वुड से कि पिछले हफ्ते दे वॉन द एशिया कप और परसों दे वॉन द एशियन गेम्स गोल्ड। सो इंडिया का वाहिद गोल्ड मेडल जो है वो क्रिकेट टीम से उनको मिला है। और वहीं पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान बांग्लादेश को हराने के बाद ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। कॉन्ग्रेचुलेशन टू बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान टीम एंड हार्ड लक टू श्रीलंका एंड बांग्लादेश। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो अब मेंस क्रिकेट टीम की बात करूं तो मेंस क्रिकेट टीम में आज मैच जो होने जा रहा है दोस्तों, आज क्रिकेट का मैच है और क्रिकेट में आमना सामना हो रहा है, किस किस का मैं आपको बता दूं, अफगानिस्तान इज गोइंग टू प्ले टुडे और अफगानिस्तान का मैच इंपॉर्टेंट है इसलिए कि अफगानिस्तान इज अ न्यू कमर इन क्रिकेट। और एशियन गेम्स क्रिकेट का जो ये मेंस फॉर्मेट है ये थोड़ा सा आई वुड से कि थोड़ा लंबा है एंड इंडिया इज द डिफेंडिंग T20 वर्ल्ड चैंपियन यही है, तो ऑब्वियसली इंडिया के लिए ये मैच बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा।
और जी मैच तो खत्म हो गया, ये अफगानिस्तान जापान को हराकर

कर एक बहुत ही शानदार आगाज किया है एशियन गेम्स में। एंड ये मैच का डिटेल्स थोड़ा आप लोगों को बता देता हूँ। अफगानिस्तान 1/48 रन अगेंस्ट जापान। जापान इज़ अ न्यू कमर इन द एशियन गेम्स और क्रिकेट में भी, और बहुत ही मॉडेस्ट टारगेट था जीत के लिए 130 रन इन निशीन में। ये मैच हो रहा था निशीन में। जापान वर ऑल आउट फॉर 81 इन द ओपनिंग मैच ऑफ द, ये अफगानिस्तान के लिए इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विक्ट्री। अफगानिस्तान पहले बल्लेबाजी करने के बाद 6 विकेट के नुकसान पर 129 रन बना के जापान को टारगेट दिया था, बट जापान फेल्ड इन दैट। और काफ़ी अगर देखा जाए कि इस मैच में हमें कुछ नए प्लेयर्स के नाम नज़र आ रहे हैं। अरब गुल, जिन्होंने 8 रन देकर 4 विकेट लिए हैं और इनका डेब्यू मैच था। और वहीं लेफ्ट आर्म स्पिनर नंगेलिया खरोटे, इन्होंने 19 रन देकर 3 विकेट लिए फॉर अफगानिस्तान। एंड अफगानिस्तान सक्सेसफुली डिफेंडेड अ मॉडेस्ट 129 रन अगेंस्ट जापान टू ओपन द कॉम्पिटिशन ऑन अ ग्रैंड नोट। कॉन्ग्रेचुलेशंस अफगानिस्तान टीम को। और अगला बहुत सारे मैचेस आप लोगों को देखना है कि क्या क्या, इंडिया का मैच है, पाकिस्तान का मैच है, बांग्लादेश का मैच है, और मेंस कंपटीशन विल बी वेरी इंटरेस्टिंग आई एम प्रीटी मच श्योर अबाउट इट। वहीं पे मलेशिया की जीत हुई है अगेंस्ट हांगकांग, 8 विकेट्स पे जीत हुई है। और कई मैचेस होंगे, और कल मैच है हांगकांग वर्सेस ओमान, अफगानिस्तान वर्सेस नेपाल, मलेशिया ओमान, और पाकिस्तान डायरेक्ट क्वार्टर फाइनल में रखा गया है इंडिया और पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान का फर्स्ट क्वार्टर फाइनल मैच जो है 28 सितंबर यानी पीर के रोज़ है। इंडिया का फर्स्ट मैच वो है 28 सितंबर यानी पीर के रोज़ ही है। और श्रीलंका को भी डायरेक्ट और बांग्लादेश को भी डायरेक्ट क्वार्टर फाइनल सीट, बिकॉज ये लोग टेस्ट प्लेइंग नेशंस हैं, ये लोग ICC के जो टॉप टीमें हैं उनमें से ये शामिल हैं, तो इसलिए इन लोगों को डायरेक्ट क्वार्टर फाइनल में जगह दे दी गई। और वहाँ से जितने भी दोज टीम्स वो आर नॉट प्रॉपर फुल मेंबर ऑफ ICC, उनको इस क्वालिफिकेशन मैचेस के जरिए दे हैव टू रीच द क्वार्टर फाइनल। सो दैट्स द बेस्ट थिंग आई हैव टू लुक फॉरवर्ड टू, कि 28 और 29 तारीख को आप लोग याद रखिएगा कि पाकिस्तान का मैच है और इंडिया का मैच है, 29 को श्रीलंका का मैच है और बांग्लादेश का मैच है। तो दोस्तों जो अपने अपने टीमें हैं आप संभाल लीजिए, यानी आप लोग फॉलो करते रहिए उन लोगों का, उन लोगों को, टीमों को आप फॉलो करिए जिनका आप उस कंट्री से बिलोंग करते हैं। कतर में मुकीम है बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान। सवाल मेरा ये था आज का दोस्तों, एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर लेता हूँ कि टेस्ट क्रिकेट की तारीख में इंडिया का सबसे ज़्यादा रन बनाने वाला बैट्समैन बल्लेबाज कौन है, आपको बताना है। एंड प्लीज़ आप अपना नाम के साथ 6622107 पर आप भेज सकते हैं, जिन्होंने भी रेडियो को ट्यून इन किया अभी, FM 107 को ट्यून इन किया। सो प्लीज़ यू कैन पार्टिसिपेट इन दिस, एंड देर इज़ नो प्राइज फॉर एनीथिंग, बट आपका नाम मैं ले लूँगा इस प्रोग्राम में। और दोस्तों आज इंग्लैंड वर्सेस श्रीलंका के दरमियान ODI मैच है, और इसमें श्रीलंका जो है 1-0 से पीछे है, और ये सेकंड मैच है। एंड इंग्लैंड इज गोइंग ग्रेट गन्स, एंड इंग्लैंड को रोकना थोड़ा नामुमकिन और मुश्किल लग रहा है फॉर श्रीलंका, बिकॉज हाल ही में T20 सीरीज में इंग्लैंड हैज वन एंड विद अ क्लीन स्वीप अगेंस्ट श्रीलंका, एंड दैट्स अ मैसिव विक्ट्री फॉर द इंग्लिश टीम। और इंग्लिश टीम, इंग्लैंड की जो टीम है, क्रिकेट की टीम है, काफ़ी मजबूत नजर आ रही है दोस्तों। और आज एक फुटबॉल मैच की बात कर लेते हैं। आज एक फ्रेंडली मैच है जापान वर्सेस उरुग्वे का मैच है आज। एंड ये ऑलरेडी अगर हमारे टाइम देखें तो आज है 1:05 पर ऑलरेडी शुरू हो चुका है, एंड अभी तक इसके रिजल्ट्स हमें पता नहीं है। सो दैट इज़ द मेन अपडेट्स आप लोगों के साथ मैंने आप लोगों के सामने। अच्छा, एक क्रिकेट मैच के बारे में बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के दरमियान ये मुकाबला चल रहा है, ODI, द फर्स्ट ODI 3 मैचों की सीरीज में पहला मैच आज चल रहा है। एंड साउथ अफ्रीका 4 विकेट के नुकसान पर 138 रन बना चुके 28 ओवर में, और ऑस्ट्रेलिया टॉस जीतकर साउथ अफ्रीका को कहा कि भाई आप बैट करिए। और आज स्कोर कार्ड पर थोड़ा नज़र डाल लेते हैं, पता चलेगा कि क्या है साउथ अफ्रीका के लिए, किसने ज़्यादा रन बना रहे हैं। अभी फिलहाल जो देखने में आ रहा है, ब्रिट्स के जो है 54 गेंदों पर साउथ अफ्रीका के लिए 50 रन नॉट आउट है, और ऑस्ट्रेलिया के लिए आदम जाम्पा जो स्पिन बॉलर है, उन्होंने 23 रन देकर 2 विकेट लिए। सो दिस मैच इज जस्ट स्टार्टेड, 28 ओवर हो चुके हैं, अभी आगे देखना बाकी है कि कौन क्या करता है। क्विंटन डिकॉक बहुत ज़्यादा रन्स ने बनाया, 28 गेंदों पर 14 रन्स। टी डे जॉर्जी 7 गेंदों खेले लेकिन 0 पर आउट हो चुके हैं। बवूमा जो कप्तान है वो 30 रन बनाकर आउट हो चुके हैं 48 गेंदों पर। और दिस मैच इज गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग मैच फॉर बोथ द टीम्स। तो दोस्तों

आज के जो अपडेट्स के साथ ये जो मैंने आप लोगों को दिया है इसमें आप लोग फॉलो करते रहेंगे, स्पेशली कतर की बात करूं तो एशियन गेम्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टीम कतर, बिकॉज आप लोगों को पता है कि 2030 यानी 2030 ईयर में कतर इज गोइंग टू होस्ट द नेक्स्ट एशियन गेम्स। सो ये एशियन गेम्स कतर के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर कतर की परफॉर्मेंस पे सबकी नज़र है, स्पेशली कि जो मेन जो इवेंट्स हैं, जो मेन इवेंट्स से मुराद जो फुटबॉल है, बास्केटबॉल है, जो वॉलीबॉल है, बीच वॉलीबॉल एंड जैसे कि मैंने बताया कि शूटिंग, ये कतर की कुछ मुख्तलिफ यू नो कैटेगरीज ऑफ स्पोर्ट्स डिसिप्लिन है जिस पे कतर ऑलवेज फोकसेस। हालांकि कतर बहुत सारे स्पोर्ट्स में प्रिंस में पार्टिसिपेट करते हैं जैसे स्विमिंग है, टेबल टेनिस भी है, लेकिन ये जो कतर की प्राइम स्पोर्ट्स हैं जिस पे कतर इज ऑलवेज फोकसेस और इसमें मेडल प्रॉस्पेक्ट्स मानते हैं, तो यहाँ पर कतर हैज़ डन रियली वेल और कतर की शूटिंग में स्पेशली जो मेडल्स कतर को मिले हैं ना, इससे साफ जाहिर होता है कि शूटिंग पे बहुत ज़्यादा काम होता है। एंड आई मीन फुटबॉल के मुकाबले में अगर देखें शूटिंग को बहुत ज़्यादा यू नो लिसनर्स या रीडर्स ज़्यादा पढ़ते नहीं है ना, बस ठीक है। अगर आप लुसेल शूटिंग रेंज पे कभी जाएंगे ना तो आप लोगों को पता चलेगा कि किस लेवल पे कतर पार्टिसिपेट्स इन द शूटिंग कॉम्पिटिशंस, स्पेशली वर्ल्ड चैंपियनशिप्स हैं, वर्ल्ड कप्स हैं, इसमें कतर ऑलवेज पार्टिसिपेट। एंड इसी वजह से राशिद अल अदबा या नासिर सालेह अल अतिया जैसे मारूफ शूटर्स जो है उनको ट्रेनिंग मिलती रहती है, उनको ट्रेनिंग एंड यू नो दे गेट सो मच ऑफ ट्रेनिंग दैट दे गेट यूज टू की एक्सपीरियंस हो चुके हैं और इंटरनेशनल लेवल पर। अच्छा वुमेन शूटर की बात करूं, रीम अल शरशानी जो है वो भी एक मारूफ शूटर है कतर के लिए और रेगुलर मैं देखता हूं न्यूज़ पर रीम अल शरशानी जो है वो इज अ कॉन्स्टेंट एक जो कहते हैं ना कि एक फिक्स्ड मेंबर है ऑफ द कतरी वुमेन शूटिंग स्क्वाड में। रीम अल शरशानी इज वन नेम Always win something. अगर खत्ते की बात करें, regional competitions की बात करें, Asian competitions की बात करें, so women and men दोनों ही कतर के जो shooters हैं, they are really really good and exceptionally they are really well. World level पर भी, Asian level पर भी और इस खत्ते में भी। So दोस्तों आप लोग focus रखिएगा, इसलिए कि आज football है कतर against Bahrain with our best wishes to the Qatar national team. और वहीं कतर के जितने भी एथलीट्स अभी इन दिनों जापान के नागोया और आईची में जो एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उस पर सब लोगों के लिए हमारे तरफ से भी यू नो बेस्ट विशेस और आप लोग अपना बेस्ट विशेस आप लोग भी दे सकते हैं एंड फॉलो टीम कतर बिकॉज नेक्स्ट एशियन गेम्स इज गोइंग टू हैपन इन कतर जो स्पोर्ट्स कैपिटल कहें दोहा को। तो ये मैं कुछ कम नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि एक्सपर्ट्स ऑलरेडी हैव सेड दैट पिछले 20 सालों में व्हाट कतर हैज शोन टू द स्पोर्टिंग वर्ल्ड हाउ टू ऑर्गेनाइज अ टूर्नामेंट कतर हैज शोन। तो अगला एशियन गेम्स में हमें बहुत सारे और चीज़ें देखने को मिलेंगी जैसे 2006 में व्हेन कतर होस्टेड द एशियन गेम्स पहली मरतबा उसमें हमें कुछ और देखने को मिला था। अब 2030 आते आते द टेक्नोलॉजी हैज इम्प्रूव, एवरीथिंग हैज गॉन चेंज और अब बेहतर से बेहतरीन चीज़ें कतर के पास है। जैसे कि 2022 वर्ल्ड कप में द ओपनिंग सेरेमनी वॉज सो धांसू एंड 2022 की जो क्लोजिंग सेरेमनी दैट वॉज ऑल्सो सो गुड, सो एवरी ईयर दैट इज़ एन इम्प्रूवमेंट। सो उम्मीद है कि 2030 का जो एशियन गेम्स है उसमें हमें I will say कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ चीज़ें हमें देखने को मिलेगा। सो एनीवे आप लोगों के जो आप लोगों के जो जवाब हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अवैज खान ने सही जवाब दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया। तौफीक साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस मैसेज का, आपने भी सही जवाब दिया है। नौशाद अली आपने भी सही जवाब दिया फ्रॉम नेपाल नौशाद अली, और कौन है नाम आप लोग थोड़ा लिख देंगे, अरमान खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस जवाब का। बहुत अच्छा लगता है आप लोग जब इस मैसेज डालते हैं, मैसेज करते हैं विद क्रिकेट। शोएब सिद्धू आपको भी बहुत बहुत मुबारक, आपका जवाब भी बहुत ही सही है। सो दोस्तों द हाईएस्ट रन गेटर फॉर इंडिया इन टेस्ट क्रिकेट इज नन अदर दैन सचिन रमेश तेंदुलकर, आज भी अटूट है, अनब्रोकन है। सो उम्मीद है कि सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड कोई तोड़ेगा। हाँ, इंग्लैंड के एक बल्लेबाज हैं, बहुत नज़दीक हैं सचिन के इस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए, उनका नाम है जो रूट जो कि कप्तान है। सो एनीवे अगले दबाव अगले प्रोग्राम में अगले स्पोर्ट्स प्रोग्राम में इट्स अ गोल्ड शो में दोबारा आप लोगों से मुलाकात होती है। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और खुश रहिए, सेहतमंद रहिए और स्पोर्ट्स को अपनाते रहिए। कीप लिसनिंग टू FM 107 दिल से देसी।

हर हफ्ते की सबसे जरूरी अपडेट लेकर आ रहे हैं आरजे सर्वर एमओआई वीकली अपडेट प्रोग्राम में। एमओआई वीकली अपडेट प्रोग्राम में वजारती दाखिला की हर एक एक्टिविटी, जरूरी खबरें और आपकी फैमिली के लिए इम्पोर्टेंट अवेयरनेस, सब कुछ मिलेगा यहाँ, कुछ मिलेगा यहाँ। ट्यून करें हर वेंसडे शाम 7:15 FM 107 और जानिए वो सब जो आपके लिए मैटर करता है। एमओआई वीकली अपडेट, आपका वीकली डोज ऑफ न्यूज एंड मच मोर विद आरजे सर्वर। Don't miss it.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक।
2: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडियो की घड़ी में 1:31।
3: आप सुन रहे हैं एनर्जी आर आरजे नाजिया और आरजे सर्वर के साथ सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
4: हाँ जी दोस्तों, सलाम आदाब, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। उम्मीद करें आप सभी लोग खैरियत से होंगे। हम दोनों आ चुके हैं, एक घंटा आपके साथ रहने वाले हैं और आज है एकदम बिल्कुल सेट वाला दिन वीकेंड का। सो हैप्पी वीकेंड आप सभी को, जिनका वीकेंड होता है और जिनका नहीं उनको बाद में विश करेंगे जब वापस हम आपके साथ जुड़ेंगे। वेल, आज हमारा जो टॉपिक वॉपिक होता ही नहीं है, आज हम सिंपली आपके साथ इंटरेक्ट करते हैं और आपके साथ आज का हमारा जो गेम है वो अब थोड़ी देर में सर्वर भाई अनाउंस करने वाले हैं। बट बिफोर दैट आपको क्या करना है, आपको हमारे साथ जुड़ना है। हमारे नंबर्स हैं 666

0: 8022107 यहाँ पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं. और अगर वहीं आपका चलते चलते जहन में ख्याल आ जाए कि क्यों नहीं बात ही कर ले हम सीधे सीधे, तो बात करने के लिए एक और नंबर है, वो नंबर है 4434377.
1: क्या बात है भाई, यौम अल खमीस थर्सडे आ चुका है और अब जो ये दो दिन है सब तैयारी में लग चुके होंगे. वैसे थर्सडे भी हाफ डे होता है काफी लोगों का. नाजिया कभी हुआ आपका, आपका हाफ डे हुआ है कभी थर्सडे में? कभी नहीं हुआ है. एक्चुअली हाफ दूसरी चीजें हैं ना, तो इसलिए हाफ डे थर्सडे में नहीं मिला मुझे ऐसा लगता है. समझना मुश्किल होगा.
0: सही
1: क्या कहती है नादिया, यहाँ पर मैसेजेस भी आ रहे हैं, कॉल्स भी आ रही हैं और वेदर का हालचाल भी जानना था शुरुआत में.
0: पहले ये बता दीजिए कि आज हम कौन सा गेम खेलने वाले हैं.
1: अभी अभी अभी, अभी अभी अभी अभी पता चलेगा. देखिए तो आइए पहले कॉलर का वेलकम कर लेते हैं, उनसे हालचाल जानते हैं. और जैसा कि नादिया ने बताया कि भाई आज सिर्फ आपसे बातचीत, आपके दिल की बात, मेरे दिल की बात, नादिया के दिल की बात और आपकी वो बातों में बात जो क्या ही है उसकी बात. आइए इनसे करते हैं बात. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. हाय. हेलो, नसीम भाई है हमारे साथ.
0: मैं नहीं कुछ बोलूंगा, मैं आज चुप रहूंगा.
1: कैसे हैं नसीम भाई, क्या हाल चाल है और कैसा गुजरा अभी तक का दिन आपका और आगे कैसा गुजरने वाला है?
0: भाई आप क्या उसमें आते हैं मेले में इस तरह से आप जो चीखते चिल्लाते?
1: अरे उठाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिए कैसे बताइए.
0: अरे
1: मैं भी ऐसी करने लगूं अभी.
0: इरशाद करने वाले हैं वो, माहौल सेट कर रहे हैं.
1: एक सेकंड में आदमी की गाड़ी के अंदर उंगली जो है वो दूसरी तरफ भी जा सकती है कि भाई ये क्या हो रहा है. तो मैं चाहता हूँ वो उंगली जो है वो सिर्फ स्टीयरिंग पर है.
0: मुझे लगता है वो आपके मुंह पर है.
1: हाँ चलिए फिर क्या फायदा होगा उसका. हाँ कह रहे मैं रुका रहूँ, चले जाऊँ?
0: नहीं नहीं रुके रहिए आप
1: नसीम भाई,
0: अब आइए अब आइए. इरशाद
1: है
0: फरमाइए, आपसे कह रहे हैं फरमाइए.
2: नाम हो गए,
1: आवाज कट रही थी आपकी, अब आ रही है थोड़ी.
2: अच्छा अच्छा अच्छा, मैं बोलना था कि प्यार किए
1: प्यार के
2: तो बदनाम हो गए,
1: पैर के
0: प्यार किया तो बदनाम हो गए,
1: प्यार किया तो बदनाम हो गए.
0: भैया सरवर भाई सुना कीजिए.
1: अच्छा प्यार किया तो बदनाम. हाँ
2: प्यार किया तो बदनाम हो गए, चर्चे हमारे सरेआम हो गए.
1: वाह.
2: जालिम ने दिल भी उसी वक्त तोड़ा.
1: हाँ?
2: जालिम ने दिल भी उसी वक्त तोड़ा जब हम उसके प्यार के गुलाम हो गए.
1: आए हाय हाय हाय हाय हाय हाय हाय हाय हाय हाय हाय हाय.
0: वीकेंड में ये वाली शायरी,
1: दिल टूट गया है.
0: हाँ कुछ जोड़ने वाली, कुछ अच्छी मतलब
1: कुछ जोड़ना.
0: हाँ,
1: मैं भी कहने वाला था, जोड़ने के लिए कुछ है,
0: कोई फिक्स है कुछ?
1: कुछ है नहीं है नसीम.
0: मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं चुप रहूंगा.
1: लाइन पे मैं बोली okay, क्या करूं मैं, वहां चला जाऊं उनके पास? किधर है, लोकेशन शेयर करिए लाइव, उधर ही आ रहा हूं.
0: सामने सामने ही मिलना पड़ेगा.
1: भाई क्या शायरी सुनाई है नसीम भाई और
0: बहुत ही अच्छी, बहुत जबरदस्त. अब इन्हें गेम खेलना है, गेम खेलना है.
1: वहीं आ रहा हूं मैं. कैसा रहा अभी तक का दिन आपका नसीम भाई?
0: अभी तो अच्छा रहा, अब पूछेंगे खेलने के बाद कैसा रहा.
2: अभी तक तो ठीक है, आगे का पता नहीं. लाइन
0: अब बहुत अच्छा होने वाला है. अभी देखिए सरवर भाई आपको कितना बेहतर से बेहतरीन बनाने वाले हैं दिन. तो इरशाद आप भी कर दीजिए इसी बात पे.
1: भाई इरशाद ये किया है कि आपने कुछ दोहराना है जो मैं आपको बताऊंगा और
2: अभी, अभी, अभी मैं नहीं कर सकता.
1: नहीं नहीं अभी करना पड़ेगा. ना ना ना ना ना ना ना ना ना है कौन है बातचीत करके जाओ यार, कहाँ जा रहे हो आज जुमेरात है, वैसे भी काम नहीं है कुछ.
0: मेरा काम हो गया क्या? मेरा तो हो गया काम, आप अपना देख ले.
1: चलिए ठीक है ठीक है नसीम भाई.
0: अच्छा ठीक है ओके, अल्लाह हाफिज़.
1: सलाम से हम फिर बात करते हैं. तो भाई ये थे नसीम भाई हमारे साथ और देखिए आज इसी तरीके से हल्की फुल्की बातचीत रहने वाली है और खैरियत मालूम करने वाले हैं एक दूसरे की. हेलो.
3: हाँ जी
1: आइए आइए आइए,
0: आपका इंतजार.
1: आइए क्या क्या लाए भाई, क्या क्या है आज
0: खाने में? कुछ नहीं,
3: आधा किलो अंगूर,
1: हाँ
3: पाइया सेवैया, 100 ग्राम लड्डू.
0: सरवर भाई कह रहे हैं मेरा तो इसमें मेरी दाढ़ तक गीली नहीं
1: नहीं एटलीस्ट एटलीस्ट हो तो रही है कुछ तो लेके आ रहा है आदमी गायबाना ही सही

0: आप अपने बारे में क्या कहना चाहेंगे?
1: मैं कभी आपको मालूम है गुरु ने नहीं किया अपनी चीजों पे
0: गौर कीजिए गौर
1: गौर भाई
0: क्या आपने अभी तक
1: कैसे हैं और कैसा गुजरा अभी तक का दिन?
2: बढ़िया बढ़िया सर्वर भाई, एक रिक्वेस्ट थी यार आपसे।
1: दो कर लीजिए।
2: ठीक है दो कर लेता हूँ। आज ना थोड़ा सा डांस करने का मन था सर्वर भाई, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप और कबीर भाई शाम को यार ज्वाइन करो मेरे को, चलते हैं
0: डांस फ्लोर पे।
1: कोई बिल्डिंग करवानी है? आदमी नहीं मिले आपको? आज जो रात में कम पड़ गए लोग, कुछ
0: कम पड़ नहीं गए, इन्हें किसी से बदला लेना है आपका डांस दिखाएंगे,
1: किसी के घर पे लेके जाना चाह रहे हैं डांस। नहीं वो तो दिखा के वो आई थी ना राम गोपाल वर्मा की आग, देखी थी काबा भाई?
0: आग
2: भाई आग का पता है।
1: तो कबीर भाई के डांस में तो वही वाला होगा शॉट, और बाकी हमारे डांस में फिर दूसरा होगा। तो समझ रहे हैं आप, किसी ना किसी तरीके से पकने वाले
0: आपकी वाले डांस पे अग्निपथ।
1: तो ऐसा क्यों, मतलब क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब दिल आपका और नाचू मैं, मतलब आप गब्बर और मैं हेमा मालिनी, क्या चाह रहे हो?
2: ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना
1: ना ना ना ना ना मेरी बेरी के बेर मत तोड़ो।
2: तीनों ही डांस करेंगे सर्वर भाई।
1: अच्छा मतलब ऐसे ही खड़े हुए और डांस कर रहे हैं बिना किसी बात के, बिना म्यूजिक के?
0: अरे तो मैं कह रही हूँ वही आप बता रहे थे ना, वो मेंटल हॉस्पिटल लोकेशन
1: करीबी है,
0: करीबी है, वही आसपास कर लीजिएगा तीनों खड़े होकर।
2: करीब नहीं है, 40 मिनट लगते हैं दो
0: घंटे। अरे ये तो बगल में रहते हैं।
1: आदमी सीरियस है भाई, कहीं लेके जाने वाला मुझे इस वक्त क्रूज रूम
0: गाबा जी। अरे क्रूज रूम छोड़िए गाबा जी, उसके बगल में ये रहते भी है, डांस भी करेंगे फिर वही चले जाएंगे।
1: मैं सीरियस हो गया बिल्कुल, मुझे बताना कि क्या होने वाला है। ठीक है
0: मैं बताती हूँ, रात के 1 बजे आपको।
1: आपकी बात हुई थी कबीर से, बात हुई थी इस बारे में क्या?
2: भाई कबीर भाई तो एग्री हो जाएगा अगर आप एग्री हो गए तो।
0: उन्होंने कहा कि पहला ठुमका सर्वर भाई लगाएंगे,
1: उन्होंने शर्त ये रखी है मेरा पहला ठुमका अगर उनको लग गया तो हम सोचिए कि वो फिर तो लंदन ठुमकता हो जाएगा उनके साथ सीधा।
2: नाजिया जी ठुमके से याद आया, पैसे भी खुले करवाने पड़ेंगे मेरे को।
1: हाँ वो सब मैं ही लूटूंगा, कुछ तो कमाई करो।
0: वो मुझे लगता है कबीर लूट लेगा। आप जो है
1: टाइम तो होगा,
0: आप जो है घूम घूम घूम घूम जब तक घूमे होने बढ़ गए।
1: भाई गॉड यार
0: हो गया हमारा,
1: क्या क्या हो रहा
2: यार। सर्वर भाई एक सवाल आ गया निकल के।
1: अच्छा पूछिए।
2: आपने कभी शादी में लूटे हैं सर्वर भाई पैसे?
1: यार
0: ये जाते ही इसीलिए,
1: ये कोई पूछने वाली बात है? वाकई कुछ शादियों में तो अल्हम्दुलिल्लाह शिरकत इसीलिए करी गई निछावर जो है उसको पकड़ के और अपने काम में ले सके, ऐसे काम सारे करें।
0: अरे ये तो बगल में दूल्हे के बैठे रहते हैं, एक एक नोट निकालते निकालते देखा उससे
1: ढोला कह रहा खाली धागा ही धागा रहेगा, ये नोट कहाँ चले गए यहाँ से,
0: ये निकाल ले गए,
1: कौन लेके गया
0: भैया?
2: तो इसीलिए सर्वर भाई आपका दर्जी बता रहा था, आपने कपड़ों में जेबें भी एक्स्ट्रा इसीलिए लगवा रखी है।
0: हाँ जहाँ जहाँ आपने सोची लगवाए हुए हैं जेब,
2: जहाँ जहाँ सूट आया वहाँ वहाँ पे पैसे रखते जाओ।
1: आज तो भाई सेट करके लेके आया गावा भाई सारी जेबें और सारे कुर्ते, क्या बात है यार। चलिए इसको भी एंजॉय करेंगे,
2: बात निकलती है देखते, सर्वर देखेंगे बातों में से बात निकल जाती है।
1: गावा भाई सुनो यार जल्दी से, हम खेल रहे हैं गेम, मना मत करना है ना, शुरुआत करनी तुमसे ही और ताकि आगे पब्लिक जुमेरात अच्छी बना सके। और अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ नाजिया, आप घड़ी रेडी कर लीजिए।
0: अच्छा
1: मोबाइल के अंदर
2: भाई क्या करना, क्या है सर्वर भाई?
1: टंग ट्विस्टर है यार, इट्स सो इजी, वेरी इजी आपके लिए। क्या
0: आप चाहे तो मना करते हैं?
1: नहीं नहीं मना करने ही नहीं देंगे हम इनको। तो ठीक है रेडी है गावा भाई?
2: हाँ बताओ तो सही, करना क्या है गेम में?
1: टंग ट्विस्टर है, टंग ट्विस्टर है, मैं कुछ बोल रहा हूँ उसको दोहराना है, दैट्स इट। ठीक है?
2: अच्छा टंग ट्विस्टर,
1: आई वाह बहुत इजी है यार। ठीक है तो ये होने वाला है मार्केट में के साहब, टीटू ने टोटो को तोते के लिए टिप थमाई।
2: यार सर्वर भाई यार ये कहाँ टीटू कहाँ तोता कहाँ पे टिप आ गई यार सर्वर भाई।
1: बहुत आसान बहुत आसान बहुत आसान है, टीटू ने टोटो को तोते के लिए टिप थमाई।
2: टीटू ने नहीं सर्वर भाई, मेरे से ना प्रोनाउंस करने में थोड़ा सा गलत हो जाएगा, इसीलिए मैं सॉरी मांगता हूँ सर्वर भाई।
1: थोड़ा सा गलत क्यों होगा यार?
2: क्योंकि नहीं नहीं पंजाबी में थोड़ा सा फिर ना मैं करूंगा ना प्रोनाउंस, थोड़ा सा हो सकता है गलत हो जाए।
1: तो दूसरा
2: जी जी जी वही
0: दूसरा बता दीजिए।
1: अच्छा टीटू ने ताजे टमाटर टोकरी में,
2: सर भाई टीटू आ गया।
0: अरे भैया टीटू को छोड़, टीटू ही की गड़बड़ है, कुछ और लाइए नहीं कुछ और
2: ला। बहुत आसान बहुत शुरुआत
1: शुरुआत
2: ये मैं नहीं,
1: चलिए
0: बहुत अच्छा किया।
1: तो बिलाल ने नीली नीम के नीचे नर्म नारियल निपटाए, ये तो बहुत इजी है।
2: बिलाल ने
1: नीले
2: नीम के
1: नीचे नर्म नारियल
2: निपटाए।
0: अरे सर भाई आपसे भी आगे निकल गए निपटाने के मामले में।
1: ठीक है आ गया पकड़ में, चलिए ठीक है
2: जी।
1: तो आपका टाइम

0: से गुजार सके, और उम्मीद करते हैं कि वीकेंड आपका अच्छा गुजरेगा। बाय बाय।
1: बाकी सर्वर भाई उनसे टच करना कबीर भाई से है शाम को।
0: अच्छा
2: लो रुपए।
0: ठीक है भाई। ओके ओके
1: ओके जी।
0: ओके बाय। तो ये थे गावा भाई हमारे साथ, और ये हो रहा है आज के भाई टंग ट्विस्टर खेला जा रहा है, आपकी बात सुनी जा रही है, आपका प्रोग्राम जाना जा रहा है, और वो इसलिए क्योंकि नाजिया इंशाल्लाह ताला तशरीफ लेके आएंगी प्रोग्राम के अंदर मेरे साथ। हेलो सलाम अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप कैसे हैं, कैसा गुजरा अभी तक का दिन, और आगे के क्या प्रोग्राम है जासिम भाई?
3: बस अभी सो के उठे हैं, गाड़ी में आके बैठे हैं, क्या है?
0: वाह
3: और बताइए कैप्टन साहब, आपके क्या हाल चाल
0: है? वाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है भाई। तो रेडी हैं गेम खेलने के लिए जसीम भाई?
3: अरे पहले भाई साहब गेम तो हो जाएगा, पहले ये बताओ बोट छोड़ के आप जो शिप छोड़ के भाई साहब आइलैंड पे क्यों भागे थे?
0: अच्छा ये कोई नया शोशा है, ये आज
2: मार्केट में नया,
0: ये आज का नया शोशा होगा, ये सुबह से ही उठा के लाए, वही स्टोरी से ही कहीं ना कहीं मुतालिक होगा ये जासिम साहब?
3: जी जी बिल्कुल जी जी साहब।
0: क्या चलिए ठीक है, मैं अब ये
2: मैं जानने एक बार फुल एंड फाइनल अच्छा जवाब क्यों नहीं दे देते आप, बता दीजिए यहाँ से यहाँ यहाँ यहाँ बस।
0: कितना खुश हुआ मेरा भाई। चलिए जानेंगे ये भी कि क्या है इस स्टोरी का राज।
2: अरे आप अपना राज खोलिए।
0: अच्छा क्या मुझे क्या बताना था?
2: सच बता दीजिए
0: क्या?
2: हाँ कहाँ से कहाँ
0: मतलब मेरे समझ से बाहर हो रही है। चलो जैसे भाई जल्दी से गेम खेल लेते हैं यार, ठीक है? क्या कहते हो? टंग ट्विस्टर बहुत आसान है, टंग ट्विस्टर है, और वो आपने हमारे साथ खेलना है, ठीक है? मैं आपको बताने जा रहा हूँ
3: भाई साहब, नहीं हुआ तो हम तो गिव अप कर रहे
0: हैं। हाँ अरे यार कोशिश ही तो करनी है, वही तफरी है बस, ठीक है? बड़ी बोतल बार बार भरती बड़ी,
3: बड़ी बोतल बार बार भरती
0: बड़ी।
2: अरे ये तो बहुत सिंपल हो गया,
0: अभी तो सिंपल था यार, मैं मुश्किल देता ही नहीं हूँ। बड़ी बोतल बार बार भरती बड़ी।
2: जसीम जी कहते हैं हमको तो कुछ टफ दो,
0: ऐसे ही
2: मेरा मतलब है आपको
0: कुछ मुश्किल दूं थोड़ा?
3: ना ना भाई साहब।
0: अच्छा तो चलिए शुरू हो जाइए जल्दी से मेरे दी के ऊपर।
2: ना ना भाई साहब,
0: बड़ी बोतल बार बार भरती बड़ी,
3: एक बार और रिपीट कर दो, एक बार और रिपीट कर दो।
0: बड़ी बोतल बार बार भरती बड़ी,
3: बड़ी बोतल बार बार भरती बड़ी। और भी आके क्या?
0: बस यही है, बहुत आसान है।
2: मैं कह रही हूँ इतना कम दिया है।
0: हाँ जल्दी से शुरू हो जाइए।
2: चलिए आपका टाइम, हाँ नहीं बताइए आप तैयार हैं?
3: कितने कितने सेकंड तक बोलना है?
2: अब जितना बोल पाए मैक्सिमम।
0: नाजिया रोक देंगी आपको।
3: अच्छा चलो ठीक है,
2: 10 seconds 11 जितनी बार जहाँ आपने गलत किया फिर वहीं पे आप स्टॉप होंगे, ठीक है? चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है अब।
3: बड़ी बोतल बार बार भरती बड़ी, बड़ी बोतल बार बार भरती बड़ी, बड़ी बोतल बार बार भरती बड़ी, बड़ी बोतल बार बार भरती बड़ी, बार बड़ी बोतल बार बार भरती बड़ी। हो गया भाई, हो गया,
2: हो गया। इन्होंने 15 seconds में 5 बार किया,
0: 15 seconds में 5 बार किया, 10 seconds ही देने चाहिए थे नाजिया, तो 3 बार होता। देखेंगे कि आगे और कौन क्या कर सकता है भाई। जैसे भाई क्या प्रोग्राम फिर आज का?
3: देखो भाई अब 5 बजे के बाद में पता चलेगा किधर निकलते हैं किधर नहीं।
0: अच्छा अभी डिसाइड नहीं हुआ है प्रोग्राम शाम का।
2: थैंक गॉड इन्होंने ये नहीं कहा मेरा बिरयानी का प्रोग्राम है, सर्वर भाई भी सेट हो जाते हैं।
0: वो तो इंशाल्लाह रहता ही है, उसमें कहने की जरूरत नहीं, बिरयानी तो है ही है प्रोग्राम में, प्रोग्राम कुछ भी हो बिरयानी तो होगी ही होगी, उसमें तो मेंशन करने की जरूरत।
2: जहाँ फ्लोर पे जा रहे वहाँ भी बिरयानी,
0: हाँ और
2: बिरयानी ऑन द फ्लोर,
0: वहाँ फ्लोर पे ही होगी, और उसके बाद कुछ बचेगा ही नहीं, फ्लोर ही फ्लोर
2: बचेगा।
0: यार अभी मुझे ही मिल जाए, मैं इंतजार में हूँ कौन सी लोकेशन आ रही किधर की आ रही, अल्लाह रहम करे। चलिए भाई जैसे भाई बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच, हैप्पी वीकेंड, अपना ख्याल
2: रखिए।
0: नाजिया कुछ मैसेजेस ले लेते हैं और फिर कॉल की तरफ बढ़ जाते हैं जल्दी से।
2: चलिए ठीक है जरूर, यहाँ पे कुछ मैसेजेस हैं, और सबसे पहले हमें मैसेज किया मोहम्मद यूसुफ जी ने, हम दोनों को सलाम कहते हैं, गुड आफ्टरनून कहते हैं, कैसे हैं आप दोनों, होप वेल, वेलकम टू एनर्जी आर, दिल से देसी, हैप्पी वाला वीकेंड भी कहा उन्होंने, और थर्सडे गुड आफ्टरनून भी कहा, आपसे आगे निकल गए निपटाने में। ये तो कुछ गया. प्लीज कोई नहीं खेलेगा ये गेम, सभी लिसनर्स भाग रहे हैं.
0: यूसुफ भाई तो सबसे पहले भाग रहे हैं यार गेम से. नहीं, खाली बॉलीवुड गाने चला दिए आप देखिए यूसुफ भाई कैसे आते हैं.
2: हाँ ये वैसे उसमें तो बहुत अच्छा खेलते हैं.

0: मतलब अच्छे का भी बहुत
1: चाचा,
0: अच्छा
1: चाचा तुम
0: चाचा अच्छा यहां पे मैसेज है मोहम्मद अब्दुल करीम जी का हम सलाम कहते हैं और कहते हैं जहाज छोड़कर भागे थे सरवर भाई ये अलग कहानी चल रही है ये तो स्टोरी अलग कर रही है बिल्कुल ही यहां पर सलाम कहते हैं हैप्पी वीकेंड
1: कूद गए
0: छोड़ के पानी का जहाज भी अच्छा, हो सकता अच्छा, है पानी में भी आप कूद सकते हैं छत से कूदेंगे तो
1: पानी में ही कूद रहे हैं
0: जिस पे गिरेंगे तो
1: उधर से हवा में कूद रहे हैं इधर से पानी में कूद रहे हैं
0: मछलियां तो फिर भी बर्दाश्त कर लेंगे आपको इंसान पे गिर गए आप तो
1: आगे क्या है
0: वो कहाँ गिरेगा ये सोचने वाली बात
1: आगे
0: आगे सलाम है यहाँ पर और ये सलाम भेजा है मैं आसिफ जी ने
1: आसिफ भाई
0: और कहते हैं हैप्पी वाला वीकेंड भाई इतनी एनर्जी लेट खासे हो लाते कहाँ से हो
1: लेट के खांसते हो अल्लाह अल्लाह करे भाई मुझे खांसी हो जाए मैसेज थोड़े से रोकते हैं क्योंकि बहुत देर से कॉल आ रही है इनकी हेलो अस्सलाम वालेकुम
0: वालेकुम अस्सलाम
2: वालेकुम अस्सलाम जनाब कैसे हैं आप
1: अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बिल्कुल ठीक है और कौन है हमारे साथ
2: जी मैं शोएब बात कर रहा हूँ
1: शोएब भाई ओह शोएब भाई दी शोएब भाई
2: देखा मैंने कुछ दिन कॉल नहीं किया
1: भूले नहीं है भूले नहीं है भाई क्या बात है शोएब भाई कैसे हैं और कहाँ रहे इतने दिन खैरियत से हैं
2: जी अल्लाह का शुक्र है सब बढ़िया मैं घर पे ही हूँ मैं इतने दिन से
1: नहीं वो तो आप रहते ही मुझे पता है उसमें नया क्या है घर और किचन दो ही चीजें आपकी लाइफ में उसके अलावा क्या कर रहे थे तो जो हमारे पास नहीं आया
2: गाड़ी घर पे ही था
1: उसके अलावा अच्छा ओहो अलावा में भी घर पे थे तो आप सोचिए कितने अलावा ओहो
2: अभी क्या है ना
1: मेरे ख्याल में जिम्मेदारी झाड़ू पोछे की भी बढ़ गई है मुझे लग रहा है
2: नहीं अभी बात पूरी सुनी नहीं आपने
1: हाँ ओके
0: ये सुनते हैं
2: मेरी जॉब छोड़ रखी है और बीवी ने भी जॉब छोड़ रखी है तो दोनों घर पे ही है फिलहाल
1: ओह
0: दोनों ने जॉब छोड़ के घर पे बैठना प्लान किया है
2: हाँ थोड़ा सा रिलैक्स
0: बहुत अच्छा किया अच्छा ब्रेक लिया
1: खुद अपनी पसंद से
0: और अपनी चॉइस से लोग लेते हैं
2: मेरी पसंद है नहीं दरअसल मैंने आपको बताया था ना मेरा कहीं पे इंटरव्यू होने वाला था वो
1: राइट
2: सब कुछ मेरा हो गया है लेकिन वो जॉइनिंग डेट जो है वो थोड़ी सी लंबी है
1: माशाल्लाह इंशाल्लाह ताला भाई इंशाल्लाह ताला और बिल्कुल अल्लाह ताला इसमें कामयाबी दे आपको और ये नई मंजिल जो है आप बड़ी ही आसानी से तय करें और इसमें इंशाल्लाह बरकत ही बरकत हो यही दुआएं भाई हमारी और भाभी आपकी जो मिसेज हैं वो टीचर हैं गालबन जहां तक मुझे याद आ रहा है राइट
2: नहीं वो टीचर नहीं है वो ब्यूटीशियन है
0: अच्छा।
1: नादिया को बड़ी तसल्ली मिली सुन के नंबर आपसे थोड़ी देर में मांग लिया जाएगा बहुत ज्यादा जरूरी है चलिए साहब अल्लाह ताला दोनों
0: से भेज सकते
2: हैं आजकल फ्री बैठी हुई है
1: अच्छा
2: तो
1: ये आपने
2: तो
1: बता के और गलत कर दिया इस बार ये आपने दो चीजें ला दिया को
0: नहीं बताइए वो टच में है कि आउट ऑफ टच हो गए काम से
1: वो टच में
2: नहीं नहीं टच में काम के टच में है
0: टच अप पे टच अप पे
2: अगर मुझे रोज एक्सपेरिमेंट झेलने पड़ते हैं उसके
1: हाय हाय चालबाज वाली जो आंटी थी श्रीदेवी ने जो मेकअप किया था
0: अरे वो तो आपका भी रिक्वायर्ड
1: है मैं तो बहुत खुशी से करवाता हूँ बहुत खुशी से
0: करवाता हूँ मतलब ये है अवेलेबल
1: में सीन जो है मुझसे ही इंस्पायर होके लिया गया था
0: एक बार हम लोगों ने देखा था आपको
1: डायरेक्टर ने भी देख लिया
2: एक चीज है जब से मेरी लाइफ में आई है
1: वो जो
2: लाइफ में आई है नहीं जब से मतलब हमने अपने स्किन केयर पर बड़ा ध्यान देना स्टार्ट कर दिया भाई
0: सर भाई आपको सीखने की जरूरत है
1: जबकि ये तो मतलब सांप का काम होता है चमड़ी खाल बदल देना मगर आपने भी काम करना इसके ऊपर शुरू कर दिया ये
0: केयर कर रहे हैं
1: नहीं मैं कुछ और
0: आपकी तरह केयरलेस नहीं
1: चाहता है। था मतलब ये मैं समझ गया मतलब मैं समझाना चाह रहा हूँ और समझा नहीं पा रहा हूँ केयरलेस नहीं है मेरी तरह चलिए ठीक है शोएब भाई अल्लाह ताला भाई खैर आफियत का मामला करे और ये जो वक्त आप लोग गुजार रहे हैं ये अपने आप अपनी खुशी से गुजारना चाहें या बिना राजी खुशी के इस टाइम में आदमी बहुत कुछ सीखता है और रिलेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग भी होता है
0: बिल्कुल सच एक दूसरे को एक जो टाइम आप नहीं दे पाते बिजनेस के चलते वो आप दे पा रहे हैं तो ये प्लीज टाइम जो है भरपूर तरीके से एक दूसरे को दीजिए समझिए वो मोमेंट्स जो आपने सोचा था कि कभी हम प्लान करेंगे व्हेन वंस वी विल बी लाइक फ्री एंड ऑल तो ये वो मोमेंट्स ही हैं आपके लिए बस इनको अपनी मेमोरीज में तब्दील कीजिए
2: ये कोई प्लानिंग नहीं थी बस जो भी हुआ एकदम से अचानक
0: हाँ नहीं बता अल्लाह ताला ने आपको ये मौका दे ही दिया है तो उसे बेस्ट तरीके से आप अवेल कीजिए ना दिस इज समथिंग
1: अल्लाह ताला
0: ने आपको दिया है तो जरूर इसे बहुत अच्छी तरीके से अवेल करिए और बहुत अच्छी मेमोरी

0: टेस्ट बनाइएगा।
1: वाह वाह वाह, क्या बात है। तो भाई आइए शुभ भाई, हम जल्दी से गेम खेल लेते हैं। और आपने कहना है तेज तर्रार टमाटर तरबूज से टर टर टूटे।
0: अरे आपसे टकरा गए,
2: इतना ज्यादा लंबा दिया है, थोड़ा सा कम देते हैं।
1: बहुत आसान है यार, तेज तर्रार टमाटर तरबूज से टर टर टूटे।
0: तेज तर्रार टमाटर
1: तरबूज से टर टर
2: टूटे।
1: चैंपियन है, मैं बता दूं आपको, ये चैंपियन है शुभ भाई, मुझे याद आ रहा है पहले।
0: कह रहे तेज तर्रार टमाटर सर्वर से टकरा के टूटे। अरे वाह,
1: तेज तर्रार टमाटर तरबूज से टर टर
2: टर टर
1: टूटे।
2: ठीक है,
1: टूटे। हाँ टूटे भाई, चलिए
0: टूटे
2: टूटे टूटे।
1: 10 सेकंड का टाइम है आपके पास, घड़ी रेडी हो रही है नाजिया के साथ, और नाजिया कहेंगी अब, तो आप शुरू हो जाइएगा।
0: ठीक है, चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है अब।
2: तेज तर्रार टमाटर तरबूज से टर टर टूटे, तेज तर्रार टमाटर तरबूज से टर टर टूटे, तेज तर्रार टमाटर तरबूज से टर टर टूटे, टर टर्रार टमाटर तरबूज से टर टर टूटे। बड़ी मुश्किल से स्टार्ट किया, बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी भाई। अब ये है कि टै का इसमें फास्ट लैंग्वेज
0: हो गया,
1: मुझे ये काम करने के, तो इसलिए मुझे कमाई भी तो करनी है भाई, ऐसी बात
0: नहीं। मैंने तो कहा टर टर टूटे पहले,
1: टूटेगा भाई।
0: नहीं नहीं, आपने बहुत अच्छी कोशिश की, आपने 5 बार बोला।
1: 5 बार बोला है, बताइए यार, कम से कम कहीं तो बोला आदमी, घर में बेचारा नहीं बोल पाता, यहाँ के 5 बार तो बोल रहा है, ये खुशी की बात है।
2: सड़क पे जाए ना, मेरे को बोलते ये वही है क्या, ये रेडियो वाला शो है।
1: अल्लाह ताला आसानी करे। चलिए भाई देखिए, एक दूसरे को लोग पहचान रहे,
0: इंस्पायर कर रहे हैं, देखिए।
1: हाँ बिल्कुल भाई,
0: है ना, मर्दों को खास कर।
1: हाँ बिल्कुल, मर्द बेचारे एक्सपायर हो रहे हैं, आप उनको इंस्पायर कर रहे हैं, इस चीज से बता बता के, तो कहीं ना कहीं बच भी रहे हैं।
2: मुझे लग रहा है कि अब मुझे कोई एजेंसी खोलनी पड़ेगी इस तरह की, लोगों को आके भाई आ जाओ मेरे पास, मतलब मैं
1: ट्रेनिंग दे देता हूँ, मैं ट्रेनिंग दे देता
2: हूँ, कैसे सोने हैं कपड़े, कैसे सोने।
1: चलिए साहब, बहुत बहुत शुक्रिया शुभ भाई, हैप्पी वीकेंड, और हमारी तरफ से आपकी पूरी फैमिली को, सह परिवार, हैप्पी वीकेंड, एंजॉय कीजिए संडे, इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। और दिनों हजरात, बच्चों, बुजुर्गों, दोस्तों, आज है थर्सडे, और उम्मीद करते हैं कि आप
0: अच्छा
1: होगा। और क्या कहती ना दिया, एक कॉलर या मैसेज,
0: आप कॉल ले लीजिए, हम
1: कॉल ले लेते हैं,
0: फिर मैसेजेस भी बहुत सारे हैं हमारे पास।
1: एक गाना तो बनता ही है, चलाना। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि बरकात।
1: खादिम भाई, खादिम भाई, कैफल हाल?
3: हाल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। इतना तक दिया मैं, सुबह भी नहीं मिल रहा था फोन, और अभी भी नहीं मिल रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह।
1: सुबह नहीं मिल रहा था, सुबह हम कब थे, मतलब कबीर भाई के शो में,
3: सुबह 10 बजे, नहीं सुबह 10 बजे से 11 बजे,
1: और सफा के साथ।
3: हाँ बिल्कुल, 24-25 बार तो उनको ट्राई कर दी, ये भी तकरीबन 20 तक पहुंच गए।
1: यार आपकी आमद हमारे लिए बहुत मायने रखती है। खादिम भाई कैसे हैं, और कैसा गुजरा अभी तक का दिन आपका?
3: अल्हम्दुलिल्लाह।
1: क्या नई ताजे है, और क्या प्रोग्राम है आज का?
3: बस कुछ भी नहीं, अभी इंशाल्लाह बस जाने का, तो वीकेंड तो मेरा आपको मालूम है कि एक ही जगह, और वो तेरी बस वो छोड़ते नहीं है, प्यार मोहब्बत है ये, वो कहते हैं ना दिल्ली वाले दिल वाले होते हैं।
1: वाह वाह,
3: हाँ
1: ऐसा खास क्या,
0: आपके तो वावा क्यों निकल रहा है? ये एक दर्द वाला वावा तो नहीं? वाह
3: नहीं नहीं नहीं नहीं, ये उनको मालूम है, जैसे आपको मालूम है, सरवर भाई को भी मालूम है,
1: चलिए।
3: बस मेरा प्रोग्राम तो यही वीकेंड पे होता है, वो एक भाई साहब है, बस उनके साथ
1: वक्त गुजरेगा, क्या बात है यार, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। तो क्या कहते हैं, जल्दी से गेम खेलने खादिम भाई?
3: मैं तो अभी कुछ सुना भी नहीं है कि क्या कैसे गेम है और क्या।
1: हम टंग ट्विस्टर खेल रहे हैं, मैं आपको एक सेंटेंस बताऊंगा, वो बस आपने 10 सेकंड के अंदर ज्यादा से ज्यादा रिपीट करना है।
3: जी
1: ठीक है,
3: अल्लाह
0: बेचारे।
1: तो साहब नहीं, बहुत आसान देने वाला हूँ मैं। गोलू ने ठंडी गली में गरम गोलगप्पे गिरा दिए।
0: गोलगप्पे?
1: हाँ
0: गोलगप्पे बोल।
1: गोलू ने

0: ठंडी गली में गरम गोलगप्पे गिरा दिए।
1: ये तो आसान है,
0: देखो सभी आसान
2: देते हैं। गोलू ने क्या गली में,
0: ठंडी गली में,
1: गली ठंडी, गोलगप्पे गरम,
0: गरम गोलगप्पे
1: गिरे।
2: टुलू ने ठंडी गली में गरम गोलगप्पे गिरा दिए।
0: आए हाय क्या गिराए खादिम भाई, वाह वाह वाह। चलिए बस यही है
1: सर भाई, आपने उठा लिए,
0: यही है यही है,
1: आपने उठा लिए
0: यही है। दादिया खड़ी रेडी?
1: हाँ रेडी रेडी।
0: चलिए खादिम भाई रेडी,
2: चलो बिस्मिल्लाह खेलते हैं इसे।
1: चलिए आपका टाइम,
2: तो अभी मैं बस हार तो मानूंगा नहीं।
1: नहीं नहीं नहीं हार मानिए कभी नहीं। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब।
2: ओके, गुलू ने ठंडी गली में गरम गोलगप्पे गिरा दिए। गुलू ने ठंडी गली में गरम गोलगप्पे गिरा दिए। गुलू ने ठंडी गली में गरम गोलगप्पे गिरा दिए।
0: भाई क्या गुलू है, भाई क्या गुलू है। गोलू खुद इतना गोल नहीं था जितना वो ग्लू हो गया इस सेंटेंस के बाद। गुलू ने आया है क्या बात है यार।
2: असल में ये है ना, असल में ये सर्वर भाई, मैं या हारा या जीता, लेकिन ये जो गेम होता है ना, कोई भी गेम हो, नहीं नहीं कोई भी गेम होता है या जो भी होता है, बंदा हारने के लिए नहीं, वो हमेशा जीतने के लिए खेलता है।
0: और हार के जीतने वाले को पाजी घर कहते हैं।
2: अगर हार भी जाए तो समझो जीत गया, इसलिए कि हिम्मत करनी चाहिए। हिम्मत
0: क्या बात है यार, बाजीगर में खादिम भाई को लेना चाहिए था शाहरुख खान की जगह। मैं दूसरी बनाऊंगा बाजीगर और खादिम भाई को लूंगा उसके अंदर,
1: और मैं शिल्पा शेट्टी के रोल में आपको रखूंगी।
0: जी खादिम भाई,
1: एक बार से काम नहीं चला दो बार
2: करूंगी। हां सरवर भाई, एक्चुअली ये है कि मैं पश्तो स्पीकिंग हूं और हमारी जुबान जो है वो पश्तो है, तो उर्दू हमारी जुबान जो उर्दू नहीं है, यानी मादरी जुबान पश्तो है, तो उर्दू बोलना हमारे लिए पश्तो स्पीकिंग वालों के लिए बहुत मुश्किल होता है। अगर वो उर्दू में पीएचडी भी
0: करें, इतनी मीठी लगती है ना जब कोई बोल रहा होता है, हमारे पठान भाई बोल रहे होते हैं उर्दू, और भी ज्यादा उसके अंदर चाशनी और भी बढ़ जाती
1: जैसे
0: है।
1: आपने गोलू इतना अच्छा बोला,
0: मतलब गोलू अच्छा लग ही नहीं रहा था जब तक वो गुलू नहीं हुआ, वो और प्यारा हो गया। गोलू नो नो नो नो करते
1: वो गुलूकंद हो गया।
2: मैं छोटा था, एक बात शेयर करता हूँ जल्दी से, इसलिए कि प्रोग्राम का टाइम आगे बढ़ना है। एक मेरे हमारे उस्ताद मुहतरम साहब थे उर्दू के, अल्लाह जन्नत नसीब फरमाए, अभी हयात नहीं है, तो मैं छोटा था और वो मुझे बोला सुबह सुबह, तो वो मैं सुबह को सुबह बोलता था।
0: ओ
2: तो उसने मुझे बोला कि नहीं सुबह नहीं है, सुबह सुबह, ऐसे ऐसे ज्यादा जोर मत दो। तो वो मुझे इतना मुश्किल पड़ गया, वो एक दो थप्पड़ भी खाए मैंने और फिर बोले कि 100 बार। तो जब भी मैं तकरीबन 30-40 तक पहुंचा तो मैं रोने लगा, इसके आगे मुझे मैं बोल ही नहीं सकता था। फिर बाद में मुझे पता चला कि ये जो उर्दू ग्रामर है, उर्दू बोल चाल है, ये जरूरी है, सीखना जरूरी है। इसलिए कि मैंने बहुत कोशिश की उर्दू सीखने में, बहुत ज्यादा मुझे बहुत शौक भी था कि मैं उर्दू, लेकिन मुझे मालूम है कि मेरी उर्दू अभी सही नहीं है।
0: नहीं बिल्कुल सही है, कहाँ सही नहीं यार, आपकी शायरी आपके शेर होए होए होए होए होए होए।
2: अरे बस कर रहे
0: क्या, बस कर पगले, अब क्या रुलाएगा भाई। वाह खादिम भाई, खुश रहिए और हैप्पी वीकेंड, और इंशाल्लाह ताला जब हंडिया तैयार हो जाए तो जरूर बताइएगा कहाँ।
2: इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर फोटो भेज दूंगा आपको, इंशाल्लाह
0: फोटो मैं आके खुद देखूंगा, मैं फोटो नहीं देखूंगा, मैं लोकेशन
1: देखूंगा,
0: मैं लोकेशन देखूंगा,
2: मैं फोटो दोनों को मैं इंशाल्लाह कल फोटो भेज दूंगा।
0: क्यों भेजूंगा भाई, फोटो नहीं चाहिए हमें, हमें लोकेशन चाहिए,
1: हमें तो फोटो ही चाहिए।
0: हम लोकेशन चाहिए,
2: कल मैं फोटोज भेज रहा हूँ,
1: बहुत अच्छा है।
2: मैंने एक फोटो अभी भेजा हुआ है,
0: ठीक है,
2: अब एक फोटो मैंने भेजा हुआ है,
1: कल भेज दूंगा,
2: आप चेक करो व्हाट्सएप, मैंने एक फोटो भेजा हुआ है भैया।
0: चलिए ठीक है खादिम भाई, ओके हैप्पी वीकेंड,
1: हैप्पी वीकेंड,
2: अल्लाह।
0: तो भाई ये था अभी तक का बेहतरीन,
1: हाँ
0: ब्रेक ले लेते हैं, छोटा सा एक ब्रेक ले रहे हैं, यूं गए और यूं वापस आए, हमारे साथ जुड़े रहिए, सुनते रहिए 7 दिल।

0: मुकाबले के दरवाजे खुल चुके हैं, पॉइंट्स की दौड़ का आगाज हो चुका है, मुकाबले फिर सजेंगे और हर राउंड लेकर आएगा एक नई कहानी। यतूर लीग सिर्फ और सिर्फ अलकास चैनल और शूफ प्लेटफॉर्म पर।
1: FM 107 टाइम चेक।
2: भाई 2:03 हो रहे हैं और फिलहाल अब आ रहा है पहला नगमा आपकी तरफ।

0: Ja, भाई हैप्पी वीकेंड सभी को। ऐसी इस गाने की वाइब्स हैं, अल्लाह करे आपके वीकेंड की वाइब्स जो हैं इससे भी ज्यादा अच्छी और बेहतरीन हो भाई।
1: आप सुन रहे हैं एनर्जी आर, एनर्जी आर आरजे नाजिया और आरजे सर्वर के साथ सिर्फ एफएम 107 पर। दिल से देसी, देसी।
2: वेदर का हाल 107 देनाल।
3: राइट दोस्तों, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं शो एनर्जी आर, सर्वर और नाजिया हम दोनों आपके साथ हैं। और चलिए सबसे पहले अब बात कर लेते हैं मौसम की। आज मौसम कैसा रहने वाला है? तो आज भी मौसम कल ही जैसा है, मतलब धूप भी है गर्मी भी है, लेकिन हाँ बेहतर है, थोड़ा बेहतर है। मैक्सिमम टेम्परेचर की अगर मैं बात करूँ तो मैक्सिमम टेम्परेचर है 39 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर है 31 डिग्री सेल्सियस। वहीं पर ह्यूमिडिटी की बात की जाए तो तकरीबन 50 से 55% के दरमियान रहेगी। और आज ज्यादातर साफ और धूप ही रहेगी, मतलब आसमान साफ रहेगा, धूप रहेगी, बारिश के दूर दूर तक कोई चांसेस ही नहीं है। वहीं अगर विजिबिलिटी की मैं बात करूं तो तकरीबन 9 माइल यानी 14 किलोमीटर या उससे ज्यादा की विजिबिलिटी। वहीं पर आज सनराइज हुआ 5:23 AM पर और सनसेट होगा 5:28 PM पर। तो इस तरह से ऑलमोस्ट इस तरह से, हाँ जी हाँ जी, तो मौसम ठीक ठाक है और ह्यूमिडिटी की वजह से थोड़ी सी आपको गर्मी लगेगी, लेकिन अच्छी बात यह है कि अब मौसम धीरे धीरे बेहतर हो रहा है। यानी कल भी थोड़ा सा बेहतर है, शाम में तो बहुत ही अच्छा मौसम दिखा रहा है, मतलब टेम्परेचर जो है वो ठीक ठाक वाला हो जाएगा, आप 30-30-29 के आसपास। तो आराम से आप सारी एक्टिविटीज अब धीरे धीरे प्लान करना स्टार्ट कर ही सकते हैं।
0: क्या बात है भाई, तो अब और भी ज्यादा ठंड जो है वो आने वाली है, तो उम्मीद पे दुनिया कायम है। यहाँ पर एक और साहब हमारे साथ, हेलो,
4: अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
3: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कौन है हमारे साथ?
4: मुदस्सिर बात कर रहा हूँ। कैसी है मेरी बहन नाजिया?
0: मुदस्सिर भाई,
3: अल्हम्दुलिल्लाह भाई, हम दोनों खैरियत से हैं।
4: आप भाई कैसे हैं? आप अल्लाह का शुक्र, आप दोनों खैरियत बातों से तो लग रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक और सलामत रहेंगे।
3: हाँ हम लोग बिल्कुल ठीक हैं, खैरियत से हैं, और हम उम्मीद करेंगे अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे, सलामत रखे, हंसता मुस्कुराता रखे और अच्छा वीकेंड करे आपका
4: इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जब तक आप लोग दोनों साथ में है और FM 107 है तो इंशाल्लाह हम ऐसे ही खुश और ठीक रहेंगे, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है।
3: इंशाल्लाह इंशाल्लाह बिल्कुल। तो आज है वीकेंड और आज कोई टॉपिक नहीं है, आज हम जो है वो गेम खेल रहे हैं। तो आप गेम खेलने के लिए तैयार हैं?
4: वैसे जो जिंदगी हमारे साथ गेम खेल रहे हैं वो काफी है मेरे ख्याल में। ठीक है ना जिंदगी जो हमारे साथ,
0: क्या शेर सुनाया मतलब सर भाई, क्या शेर
4: सुनाया? शेर तो अभी तक बाकी है, वो तभी सुना रहा हूँ ना।
0: अच्छा इरशाद, इरशाद
4: ये तो सिर्फ मेरे जी जी, वो कहते हैं सरो भाई आपके लिए मैं,
0: कौन कहते हैं
4: दोनों के लिए जी जी, ये हमारे
0: आप कह रहे हैं वो कहते हैं, कौन कहते हैं भाई, क्यों कहते हैं?
4: अच्छा अच्छा शायर कहते हैं, मैं नहीं कहता, मैं तो सिर्फ सुना रहा हूँ। शायर किस शायर का है लेकिन मैं आपको सुना रहा हूँ, लेकिन आपके लिए डेडिकेटेड है।
0: अच्छा
4: जी,

0: आने
1: दिए। कहते हैं क्या, हमारी घरवाली हमारी कामयाबी के मुंतजर है।
0: हमारे घर वाले हमारी कामयाबी के मुंतजर हैं,
1: मुंतजर है। हमारे दुख है जो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं।
0: हाय हाय हाय हाय
1: जी सर, ये वैसे इसी दिन की मुनासिब से तो नहीं है, लेकिन फिर भी शहर था बस
0: हालात। अल्लाह ताला सभी के लिए यार। मुदस्सिर भाई चलिए तो
1: एक और बात सर, आपको पता है जिस तरह खादिम भाई कह रहे हैं माशाल्लाह वो बहुत अच्छी बात ही कर रहा है, उसने एक बात बोली कि हम पश्तून है, हमारा जो कम्युनिटी है, हम जो हमारे जो लैंग्वेज है, हमारी जो फर्स्ट जुबान है वो है पश्तो। हम पश्तो घर में पैदा हुई, हमारी जो मादरी जुबान है वो पश्तो है। उर्दू जो
0: और वो बहुत ही खूबसूरत
1: है, वो हमारा दूसरा जुबान है, बिलीव मी ये हमारा दूसरा जुबान है। और हम कोशिश करते हैं, आप लोग हमें मौका देते हैं, टाइम देते हैं, हमें एक्सेप्ट करते हैं, तो आप लोगों का शुक्रिया, क्योंकि उर्दू हमारा सेकंड लैंग्वेज है, पश्तो हमारा मादरी जुबान है और पैदाइशी जो हमारा लैंग्वेज है।
0: बड़ी ही मीठी और बड़ी ही प्यारी जुबान है,
2: प्यारी जुबान है ये बात तो है। पश्तो में कुछ हमें भूल के बताइए।
1: मेरा सरोज भाई इंशाल्लाह मैं बोलूंगा, और मैं इस बात को कहने का मतलब ये है सर भाई कि मैं और खादिम भाई बाकी भी बहुत जो लोग हैं पश्तो बोलने वाले वो आप लोगों से प्यार करते हैं। मेरे ख्याल में मैं भी कुछ ना कुछ इस तरह जो बात करता हूँ, कभी कभार मैं भी गलत हो जाऊँ एक ना एक बात।
0: मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ यार।
1: कहने का मतलब है सर भाई हम लोग थोड़ा मतलब कबूल करें हमारी जो बात है, हमारी
0: कबूल है, कबूल है, कबूल है, हो गया भाई चलो। अब खाने की तरफ चलिए भाई। है मुदस्सिर भाई
1: जी
2: बेचारे,
0: चलिए तो आप गेम खेलने के लिए रेडी हैं?
1: जी जी सर भाई इंशाल्लाह।
0: क्या बात है यार, क्या बात है मेरे भाई की। तो साहब पिंकी ने प्याली में पीली चाय पीते पीते फेंक दी।
1: जी सर भाई पिंकी ने,
0: हाँ प्याली में,
1: प्याली में
0: पीली चाय,
1: पीली चाय
0: पीते पीते फेंक दी,
1: पीते पीते फेंक दी,
0: हाँ पीते पीते फेंक दी,
1: फेंक दी मतलब नीचे गिरा दिया,
0: हाँ फेंक दी।
1: ओके ओके ओके ओके
0: चलिए भाई,
1: कितने बार बोलने
2: हैं? 10 सेकंड में आप जितना बोल लें।
1: ओके जब स्टार्ट कर रहे हैं मुझे बोलो फिर मैं स्टार्ट कर लूंगा।
2: चलिए तो आप अब तैयार हैं और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब।
1: ओके पिंकी ने, पिंकी ने प्याले में पीली चाय पीती पीती फेंक दी, पिंकी ने, पिंकी ने प्याले में पीली पीली चाय पीनी। ओ गलत हो गया सर भाई, किधर गए चला गया, किधर की बात थी पिंकी वगैरह सब कुछ
0: तो कम से कम मैं ही पी लूं।
1: मुश्किल
0: है एक बार चैंपियन मुदस्सिर भाई चैंपियन,
1: कोशिश की थी
0: यही करनी है, यही करनी है, यही करनी है, हर बार यही करनी है मेरा भाई।
1: चलो आप दोनों को बहुत शुक्रिया, आप दोनों को सलामत रखे, बहुत
2: शुक्रिया, सलामत
0: रखे और आप हमारे साथ जुड़ते रहें। थैंक यू सो मच मुदस्सिर भाई,
2: हैप्पी वीकेंड, हैप्पी वीकेंड आपको भी, अल्लाह हाफिज़।
0: तो भाई ये थे हमारे साथ मुदस्सिर भाई, और आज वीकेंड मनाया जा रहा है, हम और नाजिया आपके साथ आपके वीकेंड को और भी ज्यादा बेहतर बनाने के लिए हाजिर खिदमत है। जहां आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, हमारा मोबाइल नंबर व्हाट्सएप के लिए है 666-22107, और वहीं कॉल करने के लिए नंबर है 443-443-77। यहां पर एक कॉलर और हमारे साथ, मैसेज भी है हमारे पास, कैसे लेंगे
2: अब बस थोड़ी देर
0: कब लेंगे ये समझ में नहीं आ रहा। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।
2: हमारे साथ कौन है?
0: आइए आइए आइए आइए भाई, ये पीले वाले सोफे पे बैठा लो इनको, नादी हटो, यहाँ बैठिए, यहाँ
2: नीले नीले
0: ये पहले बैठिए, पहले यहाँ तशरीफ रखिए,
2: नीले वाले पे,
0: पीले वाले पे,
2: नीला नीला
0: पीला,
2: नीला
0: मेरा भाई पीला
2: भाई,
0: मेरा भाई शहजादा था भाई, पीले सोफे पे
3: सरवर भाई
2: कह रहे मैं खड़े खड़े निकल जाऊँ क्या करूँ।
3: सरवर भाई ऐसी भी क्या बेवफाई,
2: क्या हमारी बात ना समझ में आई?
0: क्या बैतबाजी हो रही है?
3: बिल्कुल बिल्कुल बात समझ में आई, और आप सुबह सुबह वो कहाँ उस जहाज को लेके वहाँ खंडर में चले गए थे, ऐसा क्यों किया सरवर भाई आप?
0: इस बात पे मुझे शर्म आई, इस बात पे मुझे शर्म आई, कौन सा जहाज था, किधर था, एक तो अब मैं सुबह न्यूज छोड़ के कहानी ताकि इसका जवाब दिया करूँ, मैं क्या करूँ, मेरे समझ में नहीं आ रहा नादिया।
3: हाँ जी जी

0: मैं कह रही हूँ कि जहाज का रुख क्यों नहीं आप मोड़ देते।
1: 100% जहाज में कोई नीची और छोटी हरकत करी होगी जो छोड़ के भागा, मैं आपको बता दूं। पहले इतना तो मेरे समझ में आ गया है। ऐसे ही खादिम भाई,
2: आप जहाज लेकर गए और किसी आइलैंड पे शॉर्टकट के चक्कर में आपने टकरा दिया और आप है ना रेस्क्यू ऑपरेशन में थे, क्योंकि मैंने मन की आंखों से देखा था, इन लोगों ने नहीं देखा था। मैं बोला मैं मुखालिफत करता हूँ, मैं सरोवर भाई से वजाहत करूंगा इस बात की, क्या सरोवर भाई उसमें थे और रेस्क्यू ऑपरेशन में थे?
0: ये करेंगे, मुखालफत करेंगे, क्या करेंगे?
2: बिल्कुल बिल्कुल। और ये ना कभी भाई की किस्मत अच्छी थी क्या, उसमें सवार नहीं थे वो,
1: ये
2: सर्वर भाई कैप्टन थे।
1: नहीं मैं समझ तो नहीं, ये पूरा गेम जहाज पे हो रहा है ये सारी चीजें?
0: नहीं टकरा है जजीरे से।
2: आप जहाज के कप्तान थे सरवर भाई, आप जहाज के कप्तान।
1: ओए होए होए,
0: ये तो ख्वाब था आपका,
1: ये तो होना ही था जहाज के साथ, जब मुझे कप्तान रखेंगे तो ये तो होगा ही यार, और क्या एक्सपेक्ट कर रहा आदमी, ये तो होना ही था।
0: सही कहा, बिल्कुल सही कहा, ये होना था, जब कप्तान ये थे तो फिर तो कहीं टकराना था।
1: नहीं और वो खुद क्या कर रहे थे, जहाज के डेक पे चूहे पकड़ते घूम रहे थे कबीर भाई, क्या कर रहे थे वो खुद क्या कर रहा था वो चक्का,
0: सो रहे थे
2: भाई, उनको स्विमिंग आती थी, उन्होंने ठंडे पानी में छलांग लगा के किनारे हो गए।
0: अच्छा, पहले से ही पता
1: किनारे नहीं हुए, किनारे नहीं हुए,
0: ठिकाने लगे,
1: वो ठिकाने लग गए। जैक वाली हालत हुई टाइटैनिक में, जो जैक की हुई थी, जैक कम बैक, कम बैक ही नहीं हो रहा, अपना आदमी नीचे बर्फ पड़ा पड़ा है, जैक वो कह रही कम बैक, कहता है ये
0: आपने भी तो कबीर को हाथ देखे कम बैक कम बैक, उन्होंने
1: नहीं मेरा इशारा ये वाला
0: गो बैक गो बैक।
2: मैंने अपनी पूरी मन की आंखों से देखा,
0: देखा बेचारे ने, यही इकलौते हैं जो मन की आंख से देख के आपको बचा पाए, बचना हमसे बहुत मुश्किल।
2: कंडक्टर वाली टोपी सर पे,
0: कंडक्टर वाली, अरे भैया कैप्टन हो गए, कंडक्टर वाली टोपी लगाए घूम रहे हैं। अच्छा कल आपने औकात पहचान ली थी,
2: लेकिन मैंने देखा कि वो आप ना रेस्क्यू ऑपरेशन में थे और बड़े बिजी थे, ये लोग पता नहीं कहाँ इनको मिल गए, कहने सरोवर भाई छोड़ के चले गए।
1: चलो कोई तो था जो मेरा वहाँ पे समझ रहा था,
2: मैं पूरी तरह साथ हूँ,
1: मेरा भाई यार, मेरा भाई,
0: अब पूरी तरह साथ हूँ ख्वाब में,
1: ना ना मैं इनको जजीरे पे लेके ही जाऊंगा, पूरी तरह साथ है मेरा, ये अब जाएंगे, ये मेरे साथ हम जाएंगे वहाँ तक, जो सा भी था
0: और टकराएंगे।
1: खैर भाई, शहजादा सलीम साहब आपकी मोहब्बत का शुक्रिया कि आपने मेरा साथ दिया, और कबीर साहब अगर
0: दिल की आंख से ये सब हुआ है, अपनी असली आंखों पे इन्होंने
1: यकीन नहीं किया, क्योंकि असली आंखों में तो भाग गए थे, कह रहे चलो भाई दिल का सहारा लिया जाए,
0: कुछ तो करो,
1: कुछ तो करो।
2: असली असली कानों से मैंने ना कुछ,
0: शहजादा जी अब दिल की आंखों पे मत वो करिए, दिमाग की आंखें खोलिए
1: भाई, अपने सारे पार्ट के बारे में बता रहे हैं और वो भी कुछ ना कुछ है, कह रहे असली कानों, नकली कान भी इन पे,
0: असली कान अब दिल से नहीं फेफड़ों से काम लीजिए।
1: हाँ यार
0: फेफड़ों के
1: घंटा निकाल लूंगा अगर ये बिना खेले, क्या कह रहे हो, आवाज बहुत दब रही है, कोई बैठा हुआ ऊपर, मेरा मतलब ये
0: आवाज पे,
1: आवाज पे
2: अभी आ गई ना,
1: हाँ अभी आ गई
2: ना,
1: अभी आ गई, अभी चली गई,
2: आ गई है बिल्कुल, और पूरी तरह ये अच्छी तरह,
1: ये अच्छी तरह, ये इससे ज्यादा अच्छा मत करिएगा, आप माइक में से निकलना है इस तरफ स्टूडियो में,
2: बिल्कुल बिल्कुल,
1: ख्याल करिए,
2: जी आप फरमाइए, फरमाइए गेम का,
1: हाँ गेम पे आ रहा हूँ मैं, अभी गेम करता हूँ आपके साथ। टीटू ने टोटो को तोते के लिए टिप थमाई,
2: एक बार रिमाइंडिंग करो,
1: रिमाइंड करवा दो, टीटू ने,
2: हाँ हाँ
1: तो बोलो ना साथ में, टीटू ने,
2: हाँ तो बोला ना टीटू ने,
1: हाँ टोटो को
2: तोते
1: के लिए,
2: तोते के लिए
1: टिप थमाई,
0: लिख लीजिए कहीं
2: टिप थमाई,
0: हाँ अच्छा क्यों,
1: ये अब आपको बताना है 10 सेकंड के अंदर,
0: अच्छा क्यों, ये सही था पूछा वही,
1: ठीक है,
2: टीटू ने
1: टोटो को,
2: सही है ना, टीटू ने तोते को
0: टोटो,
2: अच्छा अच्छा, टीटी
0: ने तोते को,
1: ये टिकट अभी भी टिकट मांग रहे भैया, टीटी इधर दो टिकट दिए भैया चादरा तक के,
2: अच्छा टोटो ने टीटी को,
1: वही वो भी यही कह रहे थे, वो भी यही कह रहे थे, वो अपने स्टॉप पे पहुंच गए और खैरियत से उतरे, फिर
0: से
1: मेरे साथ रिपीट करिएगा, और यही बोलना है आज, वरना मैं 2 दिन छोड़

0: लूंगा नहीं भाई साहब, घर पे आऊंगा ये बुलवाने सोते में से उठा दूंगा, सोते में से सही बता रहा हूँ,
1: सोती हुई जबान से दिल की
2: सरोवर भाई कप्तान है, कोई टेंशन नहीं, असर आंखों पे हुकुम,
1: और जहाँ जहाँ लड़ा है वो तो आप जा नहीं रहे।
0: टीटू ने सुनिए,
2: टीटू ने जी जी
0: टोटो को,
2: टीटू ने
0: टोटो
2: को
0: तोते के लिए,
2: टोटो को तोते के लिए
0: टिप थमाई,
2: टिप थमाई। अच्छा तो टीटी ने, टीटू ने तोते के लिए टिप थमाई, अच्छा ये बात है क्या। अच्छा टीटू ने
1: ये टिकट पे फंसे है टिप,
2: हाँ टीटू ने टोटे को टिप थमाई है ना, तीन ही था कि चार थे
1: यही
2: है, नहीं नहीं मेरा ख्याल है, नहीं नहीं मेरा ख्याल है टीटू को टिप थमाई,
1: एक दो तोते रह गए।
2: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अभी आ गया, अभी आ गया,
1: टीटी
0: ने
2: टोटो को टोटे के लिए टिप थमाई, टीटी ने टोटो को टोटे के लिए टिप थमाई, टीटी ने टोटो को तोते के लिए टिप थमाई, क्यों
1: थमाई ने हमने नहीं
0: गिर मत जाना शहजादा भाई, कहाँ रोड पे हो, कहाँ हो घर पे हो, कोई है भी नहीं संभालने के लिए।
2: जी जी जी जी जी जी
1: अरे बिल्कुल सही बोल गए आप, लेकिन अभी आप स्टार्ट तो कर लेते,
0: कोई भी नहीं एक बार भी सही नहीं बोला,
1: अब स्टार्ट करो, नहीं बोले क्यों नहीं बोले आप।
2: टीटू ने टीटी को,
0: टीटी तो है नहीं बेचारी, वो घर पे आराम से बैठी हुई है, टीटी को लागू रहे बीच में, उसका कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे इस फैसले के अंदर,
1: टीटी मतलब टोटो पे रखी है,
0: टीटू ने
2: अच्छा टोटो को, टोटो को तोते के लिए टिप थमाई,
1: सही निकलेगा,
0: टीटू है यहाँ पे और टोटो है, दो है ये जो मतलब पैदा कर रहे हैं,
1: टीटी लाइएगा बीच में बाद में,
0: और वो जो टिप है जो दी गई है वो तोते साहब के लिए दी गई है,
1: तो सर्वर को मत दीजिए,
0: टीटू ने टोटो को तोते के लिए टिप थमाई,
2: अच्छा तो टीटी ने टोटो को तोते के लिए टिप थमाई,
0: वही है वही है
2: वही है
0: वही है वही है वही है, इनका टीटी से पुराना रिश्ता है एक्चुअली, कह रहे हैं कि आवाज उसका नाम आई गया है सरे बाजा,
2: टूटू ने टीटी को तोते के लिए
0: थ्री थ्री थ्री थ्री टूटू थ्री थ्री फोर फोर,
2: लेकिन ये भी बता देते कितने थमाई। जी जी जी
0: जी जी जी
1: जी जी मान गए आपको,
0: वो भी यही कह रहे थे,
2: लंबी कॉल हो
0: निकल ली है, हाँ कॉल लंबी हो गई, बहुत लंबी हो गई,
1: अरे माशाल्लाह बहुत अच्छा खेले,
0: घर पहुंचिए खैरियत से, देखिएगा इधर उधर साइड में से टोटो पोटो निकल ना जाए कोई, ख्याल करिएगा, ठीक है अल्लाह हाफिज़। बहुत ही प्यारे
1: हमने कितना समझाया, सही नहीं समझाया उस बंदे को बेचारे,
0: नहीं वो टीटी से पुराना रिश्ता निकला है, मैं समझ गया, याद आ गई टीटी की, और काफी करीबी दोस्त थे इनके तो इसलिए क्या कहती नाजिया मैसेज कर यार, कॉल नहीं
1: देते
0: यहाँ पे, नाराजगी ना हो जाए। अस्सलाम गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम सर भाई, अस्सलाम वालेकुम सर भाई, अबे कितनी बार अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, अस्सलाम अस्सलाम अस्सलाम, जहाज छोड़कर क्यों भाग गए थे, अच्छे दिल से सलाम दादा कर रहे हैं। अब्दुल करीम भाई हमारे साथ, इकराम हसन गुड आफ्टरनून सर एंड मैम, होप यू आर डूइंग वेल बोथ, हैप्पी वीकेंड फॉर सर भाई, फॉर होम वर्किंग स्टार्टेड फॉर यू, कपड़े वॉशिंग हंडिया घर की सफाई वगैरह, हैप्पी वीकेंड सर। अच्छा मुझे छेड़ रहे हैं एक्चुअली ग्राम भाई, गाव भाई आपने सरोवर भाई को शाहरुख खान समझा हुआ है जो डांस करवाएंगे,
1: नहीं ये तो संजय दत्त की तरह करते हैं।
0: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू, हाउ आर यू, व्हेन आर यू स्टार्टिंग किड शो, नूर लायन है बताइए नादिया,
1: इंशाल्लाह सून,
0: इंशाल्लाह सुन। अस्सलाम वालेकुम कहते हैं, वालेकुम सलाम, हमारे साथ हिशाम भाई हैं, आगे बढ़ते हैं, मुमताज भाई हैं, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सरोवर भाई, क्या हाल हैं आप दोनों के, गुड आफ्टरनून, जिंदगी मिली है तो कुछ करके दिखाओ, अगर वक्त खराब है तो उसे बदल कर दिखाओ, मुमताज भाई कहते हैं,
1: क्या बात है,
0: इसी को ही जीना कहते हैं। कैप्टन साहब उधर आपने जहाज छोड़ के चले गए और इधर क्या क्या बोल रहे हैं लोग, आसिफ आलम साहब हमारे साथ, आसिफ भाई, तौफीक भाई हैं अलवाकरा से, और यहाँ पर एक वीडियो भेजा है और नंबर भी मांग रहे हैं जैस साहब का, तो उनकी इजाज़त लेके हम ज़रूर देंगे। खादिम भाई ने यहाँ पर एक फ़ोटो शेयर, अस्सलाम वालेकुम नाजिया सरवर, और ये फ़ोटो शेयर किया है, कुछ एजाजात से नवाजा जा रहा है भाई को, जो भी है आपको बहुत बहुत मुबारक हो,
1: माशाल्लाह।
0: ओके कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सर भाई, नाजिया कैसी हैं आप,
1: वालेकुम सलाम
0: रहमतुल्लाह, मुशीर हैं हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया आपके मैसेज का। सरवर भाई शिप छोड़ के क्यों भागे थे, रियाज अहमद, रियाज जीते हैं 100 कतरी रियाल, तारिक भाई देंगे,
1: अच्छा
0: ये क्या हुआ, कुछ होगा होगा मेरे ख्याल में, शर्त लगी होगी। फलक अंसारी है हमारे साथ, तो आप

0: आपको कोई शर्त लगी होगी किसी बात पे। अस्सलाम वालेकुम।
1: अस्सलाम,
0: अच्छा इनका नाम नहीं है बट वालेकुम अस्सलाम। यूसुफ भाई, सरवर भाई, आप ओके, मैं तो मैंने पढ़ लिया यूसुफ भाई, मैंने पढ़ लिया और मैंने पढ़ लिया। ओके, कह रहे नहीं ये मुझसे नहीं होगा, खेल नहीं पाएंगे, कह रहे हैं। कादिर अब्दुल हादी हैं, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सरवर भाई। सरवर भाई, अच्छा आप क्यों जहाज छोड़ के भागे जा रहे हैं? नाजिया को सलाम कह रहे हैं।
1: वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम।
0: शहजाद सलीम की 2-3 मिस कॉल पड़ी हैं यहाँ पर, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ नाजिया, वेरी सॉरी। आपके लिए सर दिल से प्यार, आई लव यू सर जी। सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अरबाज हैं गालबन हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम सरवर भाई और नाजिया मैम, आई एम हारिस हयात, हैप्पी वीकेंड, आई एम योर बिग फैन फ्रॉम द पश्तून कम्युनिटी। अरे यार बिग फैन तो हम हैं आपके। भाई ने ट्रेन कराची पहुंचा दी, भाई से ना हो पाएगा। किसके बारे में याद आया? उसामा भाई कोई बोल रहे होंगे यहाँ पे अभी। थक गया, हा हा हा कहते हैं टू वाले, उस पे हंस रहे हैं। ग्रेट ब्रदर सिस्टर, आई लव यू कहते हैं गुलाम शरीफ खान।
1: वालेकुम अस्सलाम,
0: लव यू टू भाई। अय्यूब भाई और नाजिया जी को सलाम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्ला। मोहम्मद हुसैन हमारे साथ और आसिफ भाई किधर थे आप? कहते हैं मैं नाराज हूँ तुमसे। अरे सलाम, आपका खुला दुश्मन निकला, ये सुनते हैं बस अपनी सुनाते हैं। कहाँ से शुरू करूँ, बहुत सारे मैसेज आसिफ भाई, टाइम नहीं है, कॉल भी है हमारे पास, बट अब तो इजाजत लेने का टाइम हो गया नाजिया।
1: बिल्कुल, और इस बात के साथ कि इंशाल्लाह संडे आपकी हमारी मुलाकात होगी इसी शो में जिसका नाम है NGR 130 पे। तब तक के लिए अपने वीकेंड को एंजॉय कीजिए, अपने डे को एंजॉय कीजिए, अपनी फैमिली के साथ भरपूर तरीके से जो है वो अपनी मेमोरीज बनाइए, और हाँ हमें सुनते रहिए, याद रखिए, और इंशाल्लाह हम आपको मिलेंगे संडे 130।
0: आरिफ अंसारी और मोहम्मद अशफाक भी हमारे साथ हैं और यहाँ पर कॉल भी आ रही है।
1: थैंक यू सो मच,
0: मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया भाई। और जैसा कि नाजिया ने बताया कि अपना भी ख्याल रखिए, अपनों का भी ख्याल रखिए, गुस्से पे काबू पाने की कोशिश जरूर करिए। नाजिया भी कर रही है मेरे साथ साथ, और इंशाल्लाह
1: भाई आप जो है खाने पे
0: कामयाबी मिल गई तो कामयाब हो जाएंगे। सुनते देखते रहिए FM 107
1: दिल से देसी।

0: झुमका।
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी।
3: सामईन किराम, जिस तरह अहकाम खुदाबंदी से बेनियाजी नहीं हो सकती, उसी तरह उस्वे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी सुन्नत से बेपरवाही इख्तियार नहीं की जा सकती। सुन्नत रसूलुल्लाह की इताअत भी ऐसी ही जरूरी है जैसी किताबुल्लाह की, इसलिए कि दोनों की पैरवी हुक्म इलाही की पैरवी है। सामईन किराम, इन्हीं हिदायत की रोशनी में पेश किया जा रहा है प्रोग्राम रूह परवर सुन्नतें। इस प्रोग्राम के हर किस्त में हम एक सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करेंगे, उसके मानी पर गौर करेंगे और ये देखेंगे कि किस तरह ये सुन्नत हमारी रोजमर्रा जिंदगी में रोशनी और सुकून का जरिया बन सकती है। सामईन किराम, इब्तदाई में एक सवाल, ताकतवर कौन है? वो जो दूसरे को खामोश करा दे, वो जो बहस में अपनी आवाज सबसे ऊंची कर दे, वो जो गुस्से में फौरन जवाब दे, या वो जो बदला लेने की ताकत रखता हो मगर अपने आप को रोक ले? हम उमूमन ताकत को बाहर तलाश करते हैं, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकत का एक दूसरा मेयार बताया है कि अपने आप पर इख्तियार। दूसरे को काबू करना शायद कभी आसान हो, मगर गुस्से के वक्त अपने आप को काबू करना असल इम्तिहान है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अशज अब्दुल कैस रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाया, इन्ना फीका लखसलतैन युहिब्बुहुमुल्लाह, अल-हिल्म वल-अनाह। तुम्हारे अंदर दो ऐसी खसलतें हैं जिन्हें अल्लाह पसंद करता है, हिल्म और अनात। अब हिल्म और अनात कहें, अनाह कहें, तो इसका क्या मतलब है? हिल्म यह है कि इंसान गुस्से, इश्तियाल और बदला लेने की कुदरत के बावजूद अपने नखे, जिसे उर्दू में बुर्दबारी कहते हैं, किसी ने आपको बुरा कहा आप भी बुरा कह सकते हैं लेकिन नहीं कहते, किसी ने ज्यादती की आप फौरी बदला ले सकते हैं मगर जज्बात के बजाय अकल और इंसाफ से फैसला करते हैं। तो बुर्दबारी या हिल्म का मतलब ये हुआ कि ताकत मौजूद है, गुस्सा भी मौजूद है, मगर इख्तियार

0: इख्तियार गुस्से के हाथ में नहीं, इंसान के अपने हाथ में है। अब अनाथ का क्या मतलब है? अनाह इसका मतलब यह है कि जल्दबाजी न करना, ठहराव से काम लेना, फैसला करने से पहले मामला समझना। कभी चंद लम्हे रुकना इंसान को वो हकीकत दिखा देता है जो गुस्से के पहले लम्हे में नजर नहीं आती। गोया हिल्म जो है ना, ये हमें रद्दअमल पर काबू सिखाता है और अनाह यानी ठहराव हमें रद्दअमल से पहले ठहरना सिखाता है और अनाह हमें रद्दअमल से पहले ठहरना सिखाती है। यमलिकु नफ्सहु, हदीस के ये अल्फाज बहुत माना खेज हैं, यानी वो अपने नफ्स का मालिक रहे। गुस्सा आए लेकिन जबान का मालिक गुस्सा न बने, गुस्सा आए लेकिन हाथ का मालिक गुस्सा न बने, गुस्सा आए लेकिन फैसला गुस्सा न करे। ये नहीं कि मोमिन को गुस्सा कभी आता ही नहीं, गुस्सा इंसानी फितरत का हिस्सा है, लेकिन असल सवाल ये कि गुस्सा आने के बाद इख्तियार किसके पास रहता है, आपके पास या आपके गुस्से के पास? जबकि गुस्से में आप सब जानते हैं कि हम वो कह देते हैं जो कहना नहीं चाहते। गुस्से की एक बड़ी कीमत जबान अदा करती है। कभी गुस्से में बरसों पुरानी गलतियां निकाल दी जाती हैं, कभी शख्सियत पर हमला कर दिया जाता है, कभी ऐसे अल्फाज कह दिए जाते हैं जो मौजूदा मसले से ताल्लुक ही नहीं रखते। अब ठहराव और बुर्दबारी की जो बात आई है, इन दोनों की बच्चों की तरबियत में भी बेहद जरूरत है। बच्चे से गलती हुई, चीज टूट गई, वालिदैन फौरन गुस्से में रद्दअमल देते हैं। लेकिन अगर खुद आप अपने आप से सवाल करें कि आपका मकसद क्या है, गुस्सा निकालना या बच्चे की इसलाह करना, इस सिलसिले में हिल्म यानी बुर्दबारी हमें ये कहती है कि इंसान पहले अपने जज्बात संभाले फिर इसलाह करे, क्योंकि तरबियत गुस्से की तस्कीन का नाम नहीं, किरदार बनाने का नाम है। इस दवाजी जिंदगी में भी कितने इख्तिलाफ सिर्फ इसलिए बड़े हो जाते हैं कि दोनों में से कोई एक भी चंद लम्हे रुकने को तैयार नहीं होता। फिर आज गुस्से का एक नया मैदान हमारे हाथ में है, सोशल मीडिया, मोबाइल फोन पर सोशल मीडिया। कोई कमेंट पसंद नहीं आया, फौरन जवाब। हालांकि बाज़ औक़ात चंद मिनट बाद एहसास होता है कि बात बहुत आगे निकल गई है। तो सामिन इकराम, गुस्से के वक्त एक उसूल याद रखिए कि जज्बात फौरी हो सकते हैं, फैसला फौरी होना जरूरी नहीं। आपको गुस्सा फौरन आया ये फितरी है, मगर जवाब बाद में दिया जा सकता है, फैसला बाद में किया जा सकता है। कभी वक्त का एक मुख्तसर फासला गुस्से और हिकमत के दरमियान रास्ता बना देता है। अल्लाह सुबहाना व ताला हमें गुस्से के वक्त अपने नफ्स पर काबू रखने, जल्दबाजी से बचने, फैसलों में हिकमत और ठहराव इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। इसी दुआ के साथ प्रोग्राम रूपरवर सुन्नत के आज के इस हल्के से तकनीकी मुआविन शकील अहमद और मुझे तलहा अशरफुज़्ज़मान को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिए, सुन्नतों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाते रहिए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के स्पोर्ट्स हाइलाइट्स में हम बात एक ऐसे पाकिस्तानी हॉकी लेजेंड की करेंगे जिन्होंने अपनी स्पीड, स्किल, गोल स्कोरिंग एबिलिटी और अटैकिंग स्टाइल से दुनिया भर में अपना नाम बनाया। एक ऐसा खिलाड़ी जो पाकिस्तान हॉकी के गोल्डन एरा की पहचान बना और वो नाम है हसन सरदार। 22 अक्टूबर 1957 को कराची में पैदा होने वाले हसन सरदार को पाकिस्तान के ग्रेटेस्ट सेंटर फॉरवर्ड्स में शुमार किया जाता है। उनका इंटरनेशनल करियर 1979 में शुरू हुआ और 1987 तक जारी रहा। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान के लिए 148 इंटरनेशनल मैचेस खेले और 150 गोल स्कोर किए, यानी उनका स्कोरिंग एवरेज एक मैच से भी ज्यादा गोल कर रहा है, जो अपने आप में उनकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी गोल स्कोरिंग एबिलिटी का सबूत है। हॉकी में हसन सरदार इज अ लेजेंड। आज भी कोई भी चर्चा हो, हसन सरदार इज अ रेफरल पॉइंट। हसन सरदार का नाम सबसे ज्यादा पाकिस्तान के हॉकी के गोल्डन एरा के साथ जुड़ा हुआ है। उनकी सबसे यादगार परफॉर्मेंसेस में 1982 हॉकी वर्ल्ड कप शामिल है, जो बॉम्बे यानी आज के मुंबई शहर में खेला गया था। पाकिस्तान ने टूर्नामेंट जीता और हसन सरदार ने जबरदस्त परफॉर्मेंस देते हुए टूर्नामेंट के लीडिंग गोल स्कोरर का मकाम हासिल किया और उन्होंने वर्ल्ड कप में 11 गोल्स स्कोर

मजबूर किए और उन्हें मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी करार दिया गया। अच्छा, हसन सरदार 1982 के लिए खास तौर पर कामयाब रहा। अगर देखा जाए पाकिस्तान ने इसी दौर में वर्ल्ड कप और एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीते, और स्पेशली जो दिल्ली में हुआ था 1982 का एशियन गेम्स फाइनल, हॉकी फाइनल की बात करो दोस्तों, और इंडिया को एक के मुकाबले में 7 गोल से पाकिस्तान की टीम ने मात दी थी, एंड दैट वाज अ क्लासिकल मैच। हसन सरदार पाकिस्तान की लेजेंडरी फॉरवर्ड लाइन का अहम हिस्सा थे, और जहां उनके साथ समीउल्लाह खान, कलीमुल्लाह खान ये दोनों भाई थे, हनीफ खान और मंजूर हुसैन जैसे ऐसे मशहूर मारूफ खिलाड़ी मौजूद थे। पाकिस्तान टीम वाज अ ट्रूली ग्रेट टीम ड्यूरिंग दैट एरा, एंड हसन सरदार की सबसे बड़ी कामयाबी 1984 लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में सामने आई। पाकिस्तान ने हॉकी में गोल्ड मेडल जीता और हसन सरदार इस हिस्टोरिक टीम का हिस्सा थे। ओलंपिक्स में उन्होंने 7 मैचेस में 10 गोल स्कोर किए, जो उनकी अटैकिंग क्वालिटी को जाहिर करता है। और इसके बाद 1984 ओलंपिक्स में पाकिस्तान का सफर भी शानदार रहा। टीम ने केनिया को 3-0, कनाडा को 1-1 में 7 गोल से और ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से हराया, जबकि फाइनल स्टेजेस में जर्मनी को 1-1 में 2 गोल से शिकस्त दी। हसन सरदार ने टूर्नामेंट के दौरान पाकिस्तान के अटैक को लीड करने में अहम किरदार अदा किया। अच्छा, उनके खास बात यह थी कि बिग मैच परफॉर्मेंसेस उनमें नजर आती थी। वो सिर्फ ग्रुप मैचेस में गोल करने वाले खिलाड़ी नहीं थे, बल्कि बड़े टूर्नामेंट्स के फाइनल्स में भी अपनी टीम के लिए परफॉर्म करते थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने 1982 वर्ल्ड कप, 1982 एशिया कप, 1982 एशियन गेम्स और 1984 ओलंपिक्स के फाइनल्स में भी गोल स्कोर किया, एंड दैट्स अ रिकॉर्ड, दैट्स अ रिकॉर्ड। 1985 एशियन कप में भी हसन सरदार पाकिस्तान के टॉप स्कोरर्स में शामिल रहे और उन्होंने टूर्नामेंट में 10 गोल स्कोर किए और पाकिस्तान को टाइटल जीतने में अहम कंट्रीब्यूशन दिया। और अगर सिर्फ नंबर्स की बात करें तो हसन सरदार के करियर के आंकड़े वाकई हैरान कुन है। 148 इंटरनेशनल अपीयरेंसेस और 150 गोल्स, पाकिस्तान के इंटरनेशनल हॉकी गोल स्कोरर्स की लिस्ट में वो हिस्टोरिकली टॉप प्लेयर्स में शुमार होते हैं। लेकिन दोस्तों, हमेशा मैं यही कहता हूं कि किसी भी खिलाड़ी की ग्रेटनेस सिर्फ स्टैटिस्टिक्स तक महदूद नहीं है, और बात यहां पर हसन सरदार की हो रही है। एंड डेफिनेटली स्टैटिस्टिक्स कैन नॉट एनालाइज, कैन नॉट इवन इवेलुएट कि क्या ग्रेट प्लेयर रहे हैं अपने जमाने में। उनकी असली पहचान उनका ग्रेसफुल प्लेइंग स्टाइल, बॉल कंट्रोल, स्पीड, फिनिशिंग और गोल के सामने बेहतरीन पोजीशन थी। जिन्होंने देखा वो वाह वाह करते रहे हैं, और जिन्होंने नहीं देखा वो कहते होंगे कि यार हसन सरदार क्या खिलाड़ी थे। आज वो सोशल मीडिया पर बैठ के, हो सकता है कि इस प्रोग्राम को सुनने के बाद आप लोग भी सोशल मीडिया पे हसन सरदार का नाम को सर्च मारिए और आपको पता चलेगा कि व्हाट अ क्लासी हॉकी प्लेयर ही वाज। अगर यू नो आप स्पोर्ट्स लाइक करते हैं, नॉट जस्ट क्रिकेट की बात होती है, हॉकी की बात होती है, एक जमाना पहले हॉकी एंड इंडिया और पाकिस्तान ये एक सिनोनिमस रहा है। हॉकी इंडिया और पाकिस्तान, दे डोमिनेटेड द वर्ल्ड हॉकी। और हसन सरदार, जफर इकबाल, मोहम्मद शाहिद, ये जितने भी खिलाड़ी थे, दे वेर आर्टिस्ट ऑन द फील्ड, एंड उनको देखने के लिए भरपूर दर्शक या ऑडियंस, फैंस जो है वो स्टेडियम पर उमड़ पड़ते थे, एंड दैट वाज द मैजिक दैट दीज गाइस क्रिएटेड। और हसन सरदार वाज वन ऑफ द लीडिंग स्टार्स ड्यूरिंग दैट एरा। अच्छा, रिटायरमेंट के बाद हसन सरदार ने पाकिस्तान हॉकी में एडमिनिस्ट्रेटिव और कोचिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी संभाली और नेशनल टीम के कप्तान और चीफ सेलेक्टर के तौर पर भी अपना किरदार अदा किया। दोस्तों, पाकिस्तान हॉकी की तारीख में कुछ नाम ऐसे हैं जो सिर्फ प्लेयर्स नहीं बल्कि एक पूरे दौर की पहचान बन जाते हैं। हसन सरदार भी उन्हीं लेजेंड्स में से एक है। उम्मीद है आपको हमारा आज का ये स्पोर्ट्स सेगमेंट पसंद आया होगा। अगली बार एक और स्पोर्ट्स लेजेंड, एक और अपकमिंग स्टार्स के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीर और साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।

0: ही हलचल हो रही है। सबसे पहले एक बहुत ही क्रेजी वेबसाइट जिसका नाम है cleverhumanizer.ai cleverhumanizer clever, चालाक वाला clever humanizer, human लिखिएगा फिर izer izer.ai। अभी वेबसाइट पे जाके आपको क्या मिलेगा, आपको ये पता लग जाएगा कि किसी ने आपको जो टेक्स्ट भेजा है वो जो टेक्स्ट है क्या वो टेक्स्ट AI से लिखवाया है या खुद लिखा है। कितनी अच्छी चीज है ना चोरी पकड़ने के लिए। तो आपके पास अगर कोई भी मैसेज आता है जो आपको लगता है यार ये इस शख्स की तो लैंग्वेज नहीं लग रही है भाई, इस बंदी की भाषा नहीं है, इस बंदी की भाषा नहीं है, तो आप वो चेक कर सकते हैं। सिंपली आप वेबसाइट पे जाएंगे, इस पे जाके आप पेस्ट करेंगे और ये आपको बता देगा कि ये तो हमारी बिरादरी का है मैडम, ये ह्यूमंस ने नहीं लिखा है। एंड दिस वे यू कैन फिगर इट आउट कि सामने वाला तेज है कि आप उससे दो कदम आगे हैं। अगली वेबसाइट की तरफ बढ़ते हैं। ये भी बहुत लोगों के काम आ सकती है। ओके, नोट डाउन कीजिएगा, वेबसाइट का नाम है ट्रस्ट MRR, ट्रस्ट भरोसे वाला ट्रस्ट, फिर MRR.com, ठीक है। तो ट्रस्ट MRR.com पे जाके आपको दुनिया भर के वो स्टार्टअप्स की लिस्ट मिल जाएगी जो कामयाब हैं, उनके ओनर्स के बारे में पता लगेगा, उस कंपनी के बारे में पता लगेगा, स्टार्टअप कब शुरू हुआ वो पता लगेगा, आपको एक एक ढांचा मिल जाएगा कि भाई कौन सा स्टार्टअप जो है दुनिया भर में काम कर रहा है। इसमें बहुत कमाल के स्टार्टअप्स हैं, मैं सच बता रहा हूँ, जो आपने सोचे भी नहीं होंगे वो आइडियाज आपको यहाँ से मिल जाएंगे एंड एग्जीक्यूशन भी मिलेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ आइडिया दे दिया कि भाई ये काम करो ये खोल लो तुम ये बढ़िया स्टार्टअप है, नहीं, यहाँ पर आपको उन स्टार्टअप्स के बारे में जो कामयाब हैं, जो काफी बढ़िया चल रहे हैं, जिससे लोग इंगेज करें, उनके बारे में पता लगेगा और साथ में ये भी जान पाएंगे कि उन्होंने एग्जीक्यूशन कैसा किया है, क्या चीज उस स्टार्टअप की सबसे ज्यादा लोगों को पसंद आई है और जो सेलिंग पॉइंट है वो आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो जब आप जरा नजर रखिएगा। अब तीसरी वेबसाइट की तरफ बढ़ते हैं। तीसरी वेबसाइट जो है इसका नाम है motionbgs.com, motion motion motion b like basket, g like in gorilla, s like salman, motionbgs.com। जब आप इस वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको कई सारे मोशन लाइव वॉलपेपर्स यहाँ पर मिल जाएंगे कैटेगरी वाइज। अब एनिमे चाहते हैं, गेमिंग चाहते हैं, नॉर्मल चाहते हैं, एस्थेटिक चाहते हैं, नेचर चाहते हैं, एनिमल चाहते हैं, व्हिच एवर टाइप ऑफ वॉलपेपर यू आर लुकिंग फॉर यहाँ पर आपको मिल जाएगा। बहुत बढ़िया भाई, मैं तो ऐसे एक्सप्लोर कर करके ना जाने कितनी मरतबा दिन में वॉलपेपर चेंज कर चुका हूँ इस वेबसाइट की वजह से। गो ऑन विद इट। अब बढ़ते हैं जरा खबरों की तरफ, क्योंकि खबर जो है तगड़ी है भाई। तो इंटेक न्यूज में बताना चाहूंगा आपको, पहली खबर जो है गेमिंग की दुनिया से है, बहुत ज्यादा हलचल मची है। सोनी वर्सेस एक्सबॉक्स की जो जंग है वो वापस सामने आई है। भाई मैं खुद प्लेस्टेशन को ओन करता हूँ, मतलब उनका कंसोल ओन करता हूँ, वो कहाँ से ओन करता हूँ, और मैं हाल फिलहाल में सोच रहा हूँ कि क्या हो गया सोनी को, कोई घमंड शमंड आ गया क्या, क्या दिक्कत है, बिकॉज क्लियरली एक्सबॉक्स धीरे धीरे धीरे धीरे रेजिलियंस दिखा रहा है और जंग को और बड़ा करता चला जा रहा है। वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर्स इन द गेमिंग वर्ल्ड हिडेओ कोजिमा, उन्होंने उनका रिश्ता खराब हुआ सोनी के साथ और अब वो एक्सबॉक्स की तरफ चले गए हैं जहां पे उनके एक्सक्लूसिव लॉन्च होने वाले हैं एक्सबॉक्स के साथ। नॉट जस्ट दैट, प्लेस्टेशन का रिसेंट गेम, एक्सक्लूसिव गेम वुल्वरीन, भाई मुझे ट्रेलर देख के लगा नहीं था कि ये इसके साथ कुछ गलत हो सकता है, मगर वुल्वरीन फेल्ड सो बैडली कि मुझे नहीं लगता कि सोनी रिकवर कर पाएगा। इंसोमनियक का एक लौता अगर कोई बुरा गेम है तो वो यही है, और इंसोमनियक इस धब्बे को मिटा नहीं पाएगा। वो लोग जिन्होंने मेजर स्पाइडरमैन गेम्स बनाए, उन्होंने वुल्वरीन बनाया, ये देख के बहुत तकलीफ हुआ भाई। तो ये थी टेक अपडेट्स, मैं दुहा वाला कबीर एफएम 107 पे, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर टेक अपडेट।
1: आप सुन रहे हैं FM 107,
2: दिल से देसी।
3: स्कैम अलर्ट।
0: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एफएम 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों, आप सभी का। मेरा नाम है फजील और ये शो है फ्रॉड अवेयरनेस, जहां हर रोज एक नए जमाने के नए फ्रॉड के बारे में मैं आपको इतला करता रहता हूं। चाहे वो मिसिंग डिलीवरी का एड्रेस अपडेट का स्कैम हो, चाहे वो फेक ग्रोसरी कूपन

0: फन का स्कैम हो या फिर दुनिया के तमाम कोई ऐसे स्कैम जो लगातार लोगों के साथ हो रहे हैं, जो बहुत ज्यादा वायरल है। वेल, आज एक ऐसे स्कैम के बारे में बात करने वाला हूं जिसका नाम है सेकंड हैंड डिपॉजिट फर्स्ट स्कैम। इससे बचना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि स्कैमर्स ऑनलाइन मार्केट प्लेस का इस्तेमाल करते हैं और उस पे यानी कि ऑनलाइन फेक एड्स भी डालते हैं और कोशिश करते हैं कि किसी तरह एक ऐसे मासूम बंदे को फंसाया जा सके जिसके अकाउंट से पैसा चुराया जा सके। वेल, ये स्कैम काम कैसे करता है उस पर बात करते हैं क्योंकि ये है सेकेंड हैंड डिपॉजिट फर्स्ट स्कैम। स्कैमर्स सोशल मीडिया मार्केट प्लेस या फिर ऐसे प्लेटफॉर्म पर जहां पर सेकेंड हैंड आइटम्स मिलते हैं जैसे कि लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक्स, सस्ते काउचेस यानी कि सोफा वगैरह, इन सब की फोटोज पोस्ट करते हैं। बायर्स को अट्रैक्ट करने के लिए ये प्राइसेस को बहुत ही ज्यादा कम करके रखते हैं या फिर सोशल मीडिया पर डालते हैं। जब आप सेलर को मैसेज करते हैं तो वो झूठ बोलता है कि बहुत सारे लोग इसको खरीदना चाहते हैं और यहाँ पर ही आपके साथ स्कैम हो सकता है क्योंकि जब आपको जल्दबाजी दिखाई जाती है तो एक्चुअली में आपको स्कैम करने की कोशिश की जाती है। जब आप सेलर को मैसेज करते हैं तो कहता है हाँ ये तो अवेलेबल है लेकिन बहुत सारे लोगों ने खरीदने के लिए इसमें चाहत दिखाई है। आइटम को आपके लिए होल्ड करने के बहाने वो आपसे किसी डिजिटल पेमेंट के थ्रू एडवांस डिपॉजिट मांगता है। जैसे ही आप पैसा भेजते हैं सेलर अपना प्रोफाइल डिलीट कर देता है, आपका नंबर ब्लॉक कर देता है और आपको या आपके कैश के साथ वो शख्स गायब हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता कि उस शख्स को ट्रेस कैसे करें, वो बंदा रहता कहाँ है, ये जो डिटेल्स हैं ये डिटेल्स कैसे, क्योंकि उसमें जो अपडेट या उसमें जो एड्रेस भी रहता है ना उस एड्रेस पर जब आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वहां पर कोई ऐसे ही रैंडम स्टोर है या फिर किसी के घर का रैंडम एड्रेस है, आप पकड़ ही नहीं पाएंगे। कई बार ये एड्रेस ऐसे डाल देते हैं कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। लेकिन इन स्कैम से बचने के सॉल्यूशंस भी हैं। कैसे बचा जा सकता है इन स्कैम से? सबसे पहला तरीका है नो एडवांस डिपॉजिट। जब तक आप खुद सेलर से मिल ना लें और आइटम को फिजिकली चेक ना कर लें तब तक एक रुपया भी एडवांस पेमेंट ना करें। कोई भी जेन्युइन सेलर डील फाइनल होने से पहले एडवांस होल्ड मनी नहीं मांगता है और आमतौर पर नहीं मांग सकता है, ये भी आप कह सकते हैं। पब्लिक प्लेस में मिले ऐसे लोगों से डील करने के लिए हमेशा किसी पब्लिक और सेफ जगह जैसे कि मॉल या फिर पेट्रोल पंप पे या फिर बाहर किसी नॉर्मल जगहों पे, वहां पर आप उनसे मिले। किसी के घर अकेले जाने से बचना चाहिए। सेलर की प्रोफाइल को खास तौर पे बहुत डिटेल में चेक करें। अगर सोशल मीडिया मार्केट प्लेस पर खरीदारी करने से पहले आप सही से चेक कर लेंगे, प्रोफाइल सही से चेक कर लेंगे, उनकी रेटिंग, रिव्यूज, अकाउंट या एज चेक कर लेंगे ना, तो आपको बहुत ही ज्यादा या बहुत हद तक आपको डिटेल्स पता चल जाएंगी उस शख्स के बारे में। अगर अकाउंट नया है और कोई रिव्यू नहीं है तो अलर्ट हो जाइए क्योंकि हो सकता है ये एक स्कैम हो। कैश ऑन डिलीवरी या हैंड टू हैंड कैश, हमेशा कोशिश करें कि पेमेंट तभी करें जब आइटम आपके हाथ में हो। किसी भी ऑनलाइन ऐप से या पहले किसी लिंक के थ्रू पैसा बिल्कुल ना भेजें क्योंकि हो सकता है ये जो लिंक है या फिर किसी वाउचर के थ्रू या गिफ्ट कार्ड के थ्रू आपको स्कैम किया जा सकता है। लेकिन फिर भी अगर आपके साथ इन सब के बावजूद, इन सब सॉल्यूशन के बावजूद स्कैम हो गया है तो बचने के सिर्फ दो तरीके हैं। प्लेटफॉर्म पर रिपोर्ट करें, फौरन उस सेलर की प्रोफाइल और एड को फेसबुक पर या फिर जहां पर वो एड आपको दिखा है वहां पर रिपोर्ट करें। उसके अलावा बैंक में जाकर या फिर एप्लीकेशन के थ्रू, बैंक एप्लीकेशन के थ्रू जो ऑफिशियल एप्लीकेशन है उसके थ्रू अपना कार्ड ब्लॉक करवाएं या फिर आप बैंक में डायरेक्ट कॉल करके अपना कार्ड ब्लॉक करवा सकते हैं। और अगर आपने पेमेंट कर दी तो जल्दी से जल्दी साइबर क्राइम में जाकर रिपोर्ट करें, हो सकता है कि आपका पैसा वापस भी आ जाए। तो दोस्तों, ये था नए जमाने का नया स्कैम जो हम रेगुलर बेसिस पे आपको डेली इत्तला कर रहे हैं, बता रहे हैं, आगाह कर रहे हैं। उम्मीद है कि ये शो यानी कि ये फ्रॉड अवेयरनेस आपके लिए काफी फायदेमंद रहा होगा। इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत। मुलाकात होगी आपसे कल एक नए जमाने के नए फ्रॉड के बारे में बात करते हुए। दिल से देसी स्कैम अलर्ट।
1: नंबर 1 हिट म्यूजिक स्टेशन। एनी टाइम
2: एनीवेयर। यस, एनी टाइम एनीवेयर।
1: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107। लॉग इन टू आवर वेबसाइट urduradio.qa और डाउनलोड द ऐप QMC नाउ।

है पैसों का इंतजाम। अब ये सवाल जो है इसका जवाब हमें ढूंढना है इमरजेंसी फंड्स के थ्रू। देखिए इमरजेंसी फंड्स होते क्या है? इमरजेंसी फंड वो पैसा होता है जो खास तौर पर अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस के लिए अलग रखा जाता है। ये पैसा आपके वेकेशन, शॉपिंग या अननेसेसरी एक्सपीरियंसेस के लिए या अननेसेसरी एक्सपेंसेस के लिए नहीं होते। ये सिर्फ उन सिचुएशंस के लिए होते हैं जब जिंदगी अचानक कोई चैलेंज सामने ले आए। इसलिए आप फाइनेंशियल फर्स्ट एड बॉक्स भी कह सकते हैं। जिस तरह घर में इमरजेंसी मेडिसिन रखी जाती है, उसी तरह फाइनेंशियल इमरजेंसीज के लिए इमरजेंसी फंड रखे जाते हैं। अब इमरजेंसी फंड्स की अहमियत पे बात करते हैं, और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि फाइनेंशियल स्ट्रेस को ये कम कर देता है। जब अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस सामने आए और आपके पास रिजर्व पैसा मौजूद हो, तो आप पैनिक और टेंशन कम करते हैं या कम होती है। बहुत से लोग आपने देखा है कि इमरजेंसी की सूरत में लोन लेते हैं या फिर क्रेडिट कार्ड्स पर डिपेंड करते हैं। इससे फाइनेंशियल प्रेशर और बढ़ सकता है, लेकिन इमरजेंसी फंड आपको इसकी ज़रूरत से बचाते हैं या आपको फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस देते हैं। आज की दुनिया में जॉब्स और इंडस्ट्रीज तेज़ी से चेंज हो रही हैं। कभी कंपनी रीस्ट्रक्चरिंग करती है, कभी रोल चेंज हो जाता है, कभी इंसान खुद बेहतर अपॉर्चुनिटी के लिए ट्रांजिशन करता है। ऐसे वक्त में इमरजेंसी फंड एक सेफ्टी कुशन का काम करता है। यह आपको वक्त देता है कि आप बेहतरीन डिसीजंस ले सकें, सिर्फ मजबूरी की बुनियाद पर नहीं। वहीं इमरजेंसी फंड सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि पूरी फैमिली के लिए सिक्योरिटी का सोर्स होते हैं। अगर घर में किसी को हेल्थ इशू हो या कोई ज़रूरी एक्सपेंस आ जाए, तो फाइनेंशियल प्रिपरेशन फैमिली को बहुत सी परेशानियों से बचा सकती है। कि हर बड़ी चीज़ की

तरफ बढ़ जाते हैं। बस आखिर में दोस्तों मैं यही कहना चाहूंगी कि जिंदगी में हम हर कोई चैलेंजेस जो है उनका सामना करते हैं, वो चैलेंजेस सामने आते हैं और हम उन्हें रोक नहीं सकते, लेकिन उसके लिए खुद को तैयार जरूर कर सकते हैं। इमरजेंसी फंड हमें ये यकीन दिलाते हैं कि अगर कोई कल अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन हमारे सामने आ जाए तो हम घबराने की बजाय उसका सामना करें। लग्जरी चीजें हमें खुशी दे सकती हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट्स हमें ग्रोथ देती है, इन्वेस्टमेंट्स हमें सिक्योरिटी देती है। और अक्सर जिंदगी में सिक्योरिटी वो बुनियाद है जिस पर कॉन्फिडेंस, स्टेबिलिटी और कामयाबी की इमारत खड़ी होती है। तो बस जाते जाते आपसे यही कहूंगी कि इमरजेंसी फंड अमीर बनने के लिए नहीं है, बल्कि मुश्किल वक्त में मजबूती से खड़े रहने के लिए है। जब आपके पास फाइनेंशियल बैकअप होता है तो आप सिर्फ पैसे नहीं बचाते बल्कि अपने पीस ऑफ माइंड को भी महफूज करते हैं। बस मैं उम्मीद कर रही हूँ कि अल्लाह ना करे हम में से किसी को भी इस तरह के अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन का सामना करना पड़े, लेकिन फिर भी तैयारी तो हमें करनी चाहिए। बाकी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आज नहीं, कल करेंगे। अभी के लिए मुझे यानी नासिया और शकीब अहमद, हम दोनों को इजाजत दीजिए। देखते हो सुनते रहिए FM 107।

0: सितारे उतरेंगे मैदान में अजमत की जुस्तजू में, टीमें टकराएंगी टॉप पोजीशन के लिए और जोश ऐसा जो आखिरी सीटी तक थमने ना पाए, थमने ना पाए। दोहा बैंक स्टार्स लीग सिर्फ अलकास के इनक्रिप्टेड चैनल्स और शू प्लेटफॉर्म पर।
1: आप सुन रहे हैं FM 107,
2: FM 107, दिल से देसी।
3: जब नई सोच और नए जज्बात टकराते हैं तो बनता है एक नया नजरिया, द डिबेटेबल टेबल, एक ऐसा शो जहां यंग डिबेटर्स अपने पर्सपेक्टिव से इंस्पायर करते हैं और हर डिस्कशन बन जाता है एक थॉट प्रोवोकिंग जर्नी। द डिबेटेबल टेबल, आरजे फजील और आरजे कबीर के साथ, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
4: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं दोहा वाला कबीर एफएम 107 पे, एंड आज की इस डिबेटेबल टेबल में जो डिबेट है उससे मैं बहुत वाकिफ हूँ, क्योंकि इसके बारे में अक्सर बात होती है। इसके बहुत सारे सब जॉनराज हैं, सब ब्रांचेज हैं, इसमें अलग अलग तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। ये जो इंटर्नशिप की दुनिया है आज की तारीख में, इसको लेके भी अलग अलग किस्मों की डिबेट्स हैं, अलग अलग फील्ड में अलग अलग तरीके से इंटर्नशिप होती है। और फिर आ जाती है आपकी वो पढ़ाई जो एक्चुअली में पढ़ाई होती है, मतलब जहाँ पर आप क्लासरूम से बैठे होते हैं या कहीं पर जाते हैं, कहीं पर जाके प्रॉपर थियोरेटिकल ट्रेनिंग लेते हैं, सब कुछ करते हैं। पर आज यही सवाल है कि क्या क्लासरूम वाली जो पढ़ाई है वो सुपीरियर हो जाती है, इंटर्नशिप टीचेस यू वे बेटर। तो कौन फॉर है, कौन अगेंस्ट है, जरा ये बता दो एक बार।
5: मैं फॉर हूँ।
4: ओके, एंड यू आर अगेंस्ट इट, राइट?
6: यस।
4: ओके, तो सबसे पहले कौन शुरू करना चाहेगा? देखो, मैं सिक्का नहीं उछाल सकता बच्चों, तो प्लीज अपना एक बार नाम बता दो माइक पे प्लीज।
5: मेरा नाम है सैंडिली अकोली पाका।
4: ओके, एंड आपका नाम?
6: मेरा नाम सिंचल।
4: ठीक है, तो कौन पहले शुरू करने वाला
5: है? नहीं,
4: आप ही शुरू करेंगे।
5: होश नहीं है।
4: अच्छा, बताओ क्या कहना चाहते हो?
5: This house believes that internships are more valuable than traditional classroom education in preparing students for high-paying careers.
4: Okay. तो high-paying careers हम समझते हो कि internship ही helpful है।
5: जी।
4: Can you elaborate that? हाँ।
5: हाँ जी। जो भी for जो internships में है, उधर जाके आप practically वो कर सकते हो। For example, say you're learning about automobiles and वो सब कैसे बनता है, जो car है वो कैसे होता है। If you read in a book, you will know, but even though you go there and you will do part open करके check करना, वो सब आपके mind में आ जाता है।
4: Practicality
5: is important.
4: Okay. And what do you have to say? बताओ।
6: Like वो हर field में like वो apply नहीं होता है, क्योंकि like अगर doctors को हम देखें, तो doctors जाके direct surgery तो नहीं कर सकते हैं ना, तो like they need theoretical knowledge as well, क्योंकि कुछ careers options होते हैं, जैसे अगर आपको like for example architect लिया, तो architect में आप जाके वैसे बिल्डिंग डिजाइन नहीं बना सकते हो, आपको पहले सीखना पड़ेगा कि बनाते कैसे हैं, कौन से मटेरियल्स की इस्तेमाल होती है। अगर आप आईटी में हो फॉर एग्जांपल, तो आप जाके डायरेक्टली अगर कुछ काम करने लगे, तो उतना मतलब बेसिक्स भी तो लाइक अंडरस्टैंड होनी चाहिए, बेसिक्स के बिना तो कुछ कर नहीं सकते।
4: Okay.
6: तो थियोरेटिकल नॉलेज, और उन्होंने बोला कि प्रैक्टिकल भी अप्लाई करना पड़ता है, पर लाइक स्कूल्स में अब जैसे हमारे स्कूल में अब 9th grade या 8th grade के छोटे बच्चों को भी लैब में लेकर जाते हैं और हमें ऑलरेडी कोडिंग सिखा रहे हैं।
4: Okay,
6: तो बेसिकली जो वो इंटर्नशिप्स में होता है वो नेसेसरी नहीं कि सिर्फ इंटर्नशिप्स में ही होती है, लाइक इट हैपेंस इवन एट स्कूल लर्निंग। सो क्लासरूम लर्निंग इज लाइक इट टीचेस यू द सेम थिंग एनीवेज, तो इंटर्नशिप्स की जरूरत उतनी नहीं है।
4: ओके, क्या कहना है? उन्होंने बहुत सारे एग्जांपल दिए डॉक्टर्स के, आईटी सेक्टर के बहुत सारे एग्जांपल दिए, व्हाट इज योर काउंटर टू दैट?
5: In today's fast-paced world, competitive jobs market and employers value practical experience more than theoretical knowledge. Internships provide that exactly that real-world exposure and professional networking and employable skills that classrooms alone cannot deliver. But still, people may think traditional learning and internship learning have the same value.
4: Okay.
5: But the thing is, the traditional learning is not just important, but internship learning in, for example, in a place, they do tell you what to do.
4: Mm-hmm.
5: So, for example, what happens in my

0: is cool is that we have a subject called DMT, which is design technology. Alright? Wo school mein hai jo we use between a wood or kuch bhi. So they teachers explain it before what to do.
1: Okay, kya hota hai isme?
0: Isme sab kuch hota hai. For example, architect mein wo sab jaane ka hai. So you have to take DMT.
1: Okay.
0: Usme wood hota hai before, like you can.
1: So basically matching what is written to technology. Is that
0: exactly
1: what you're trying to
0: say? Exactly. Okay. Coding, wo sab, that everything comes under that. So if you want to build a robot in like for a factory example, you can't just go and build a robot. Wo dar batayenge ki kya karna hai. That the teachers or whatever is there, the lecturers for example, they will tell you what to do and they will also show you for examples and all.
1: Okay, ठीक है. So classroom learning पे he's talking about robotics and all, क्योंकि अभी जैसे तुमने बात करी coding वगैरह की. So do you have a counter to that and what do you think about that?
2: Like he said that they will be teaching step by step.
1: Yeah.
2: वो सब theory, that theory is also taught even in classrooms.
1: Yeah.
2: And mostly in internships. Like what I have noticed, I have spoken to my uncle and even my father.
1: Yeah.
2: They take internships for new interns who just joined the company.
1: Okay.
2: So what they have noticed is like sometimes they don't really have the time to teach you that well.
1: Yeah.
2: Because like people ka, like they have their own work to do. Like if they have time, tab aake sikhayenge.
1: Har bar internship mein you don't get the attention. Okay.
2: Aur like wo jo sikhate hai, like unka kaam karne ke baad wo aake sikhate hai. Aur wo jo hum karte hai internship, wo just 2 to 3 weeks ka hota hai.
1: Yeah.
2: So within 2 to 3 weeks utna seekhna, I'm not sure, because classroom learning matlab aap grade 1 se lekar grade 12 tak seekhte hai aur baad mein college bhi jaate hai na. So like 14 years of experience if 2 weeks mein kuch dikha nahi sakte.
1: Okay. So that is her point. Because basically she's saying ke internship mein jab jate bhi hai, toh not necessarily aapko attention mile. And most of the time aisa hi hota hai ke until and unless kisi intern ko koi buddy nahi milta. Like that is a term they use, right? So agar koi buddy nahi milega toh problem hoti hai. You can't really have somebody to tell you anything. What is your take on this?
0: Ye, main bhi ye bolna chahta hu ki jaise Benjamin Franklin ji ne kaha tha,
1: okay,
0: ki tell me and I forget, teach me and I may remember,
1: okay,
0: involve me and I may learn, do all I may teach. Uska matlab hai ki ek bar bolo main bhool ja sakta hu. Aur aise jo teacher bolte hai bar bar bar bar wahi wo yaad karte rehte hain aur involve me jo likhte hain sab kuch karte hain tech mein aise hi laptop mein aise use karte hain wo sab kuch seekh jate hain aur sab kuch ऑल टुगेदर करो वो टीचर बन जा सकते हैं.
1: Okay.
0: ऐसे ही उन्होंने भी कहा था कि एक एक पर्सन को उतना टाइम नहीं मिलता है लेकिन बट इंटर्नशिप्स इज अबाउट ऑल अबाउट एजुकेशन. For example, you go to a company, the company must have a person who might teach you. That is their job. They don't have other jobs. जो कि ऐसे मोस्टली अभी देखो दुनिया में बहुत सारे कंपनीज है एंड दे आर ऑल पावरफुल, बहुत सारे एम्प्लॉयज है, वो सब सिखाते हैं लोगों को. ऐसे नॉट लाइक अ पर्सन फॉर एग्जांपल लेक्चरर इन एन कंपनी डज नॉट हैव अदर वर्क टू डू अनलेस लाइक एक्सेप्ट फॉर टीचिंग यू
1: ओके
0: द जॉब.
1: ओके सो दैट इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू से. क्या कुछ है इसका पॉइंट?
2: लाइक पॉइंट तो सही है पर लाइक वो हर केस में इंटर्नशिप की जरूरत भी नहीं होती है ना.
1: ओके.
2: क्योंकि लाइक व्हाटएवर लाइक एडवांटेजेस जो आपको इंटर्नशिप में मिलते हैं वो तो स्कूल्स और लाइक क्लासरूम लर्निंग में भी मिल सकती है. जैसे उसने बताया कि बोल के और करके दोनों एक साथ करने पे लाइक इंसान को याद होता है. तो वैसे भी लाइक हमारे टीचर्स लाइक हमें एआई में लैब लेके जाते हैं.
1: ओके.
2: तो वहाँ हमें कोडिंग का लाइक बेसिक टर्म सब कुछ सिखाते भी हैं और लाइक हमें करवाते भी हैं. तो लाइक वो सिखाते हैं और हमें करने के भी लिए देते हैं. तो लाइक इंटर्नशिप जाने की इतनी जरूरत नहीं है जब आपको वो दूसरे जगह में भी मिल रही है. बिकॉज लाइक यूजुअली स्टूडेंट्स के पास उतना टाइम नहीं होता कि स्कूल खत्म करने के बाद वहाँ जाओ और वहाँ का काम भी करो और यहाँ का काम भी करो.
1: राइट.
2: क्योंकि लाइक कभी कभी अगर आप इंटर्नशिप में गए तो मोस्टली मॉर्निंग शिफ्ट होती है मोस्टली जॉब्स, अगर नाइट शिफ्ट है तो कर सकते हैं, पर लाइक मॉर्निंग शिफ्ट में तो स्कूल का टाइम भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा और एग्जाम्स भी होते हैं स्कूल्स और कॉलेजेस में, तो उसके लिए भी पढ़ाई करनी पड़ती है. और इंटर्नशिप्स में ना उतना कभी कभी अनपेड रहते हैं, कभी कभी कम पगार देते हैं, अगर दिए तो भी लाइक उतना, कुछ कंपनीज में ऐसे होती है कि यू हैव टू पे फॉर द इंटर्नशिप, तो जिसके पास पैसे नहीं है, जिसके पास रिसोर्सेज नहीं है, वो तो जा नहीं सकते.
1: वेरी वैलिड पॉइंट. क्या कहोगे तू?
0: मैं इसमें 5 पॉइंट्स करूंगा.
1: ओके प्लीज गो अहेड.
0: फर्स्ट पॉइंट इज दैट जो भी है दैट इंटर्नशिप वी आर टॉकिंग अबाउट, सम स्कूल्स एक्चुअली प्रोवाइड इट, जैसे कि नॉर्मल इंडियन स्कूल्स या कतार पे हैं, वो सब उतना ज्यादा इंटर्नशिप नहीं देते हैं जो कि अदर करिकुलम्स देते हैं. फॉर एग्जांपल मैं ब्रिटिश करिकुलम में हूँ, वो दे वैल्यू इंटर्नशिप एंड ट्रेडिशनल टीचिंग बोथ एट द सेम टाइम.
1: ओके,
0: सो पहले सिखाते हैं फिर करने देते हैं, बट अदर स्कूल्स माइट जस्ट टीच. Yes, it is a problem amount of money, but paise hai, you can do internship. That is how today's fast-paced world is. So if we go on to the next point, hands-on learning. Students apply their knowledge in actual work situations to make them job ready when they have opportunity. Networking opportunities. Internships connect students to professionals who can actually open door to high paying jobs. Jaise ki, for example, your essay internship mein aaye aur you become friends with bolo ki lecturer.
1: Okay, networking.
0: Yes. Se upar chale ja sakte easy se.
1: Okay.
0: Direct employment pipeline. Many companies hire their interns full time, bypass the traditional recruitment. वही ऐसे होते हैं, but they learn difference between internship and traditional learning. जैसे सिर्फ traditional में आते हो, you are not valued the same with the person who has the both or just has internship.
1: Okay, that kind of bypasses the hiring part of it, right?
0: Part of it.
1: Okay, okay.
0: Knowledge, knowing in experience, leading. Many people know things because of their experience. They don't know just, you see the book and, you know, that's it. You can't know it because you have experience on it. That is one of the reasons why teachers tell us that mistake is the first step in learning.
1: Okay, that is the bottom line that he's trying to say, the mistake is the first step to learning. You have anything to say to him?
2: Yeah, like he spoke about making like connections with people and networking wagera.
1: Yeah.
2: So networking wagera, like every person has like their own, you know, like personality. Har ek ka different hota hai, and like not everyone has to like go around meet with.
1: Not everybody is good in PR. And
2: stuff. Yeah.
1: Okay.
2: So because like he said that different curriculums do not really emphasize much on all that.
1: Yeah.
2: Like networking. Yeah. Like, okay, हमारे स्कूल में वी गेट सर्कुलर्स रेगुलरली एंड वी पार्टिसिपेट इन एमबीएनस डिबेट्स इन क्यूपीएसई एंड ऑल दैट.
1: ओके,
2: एंड लाइक यू सी, इफ यू आर हैविंग द टैलेंट इन यू एंड इफ यू वांट टू शो इट, द स्कूल इज विलिंग टू गिव यू हंड्रेड्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज. लाइक टीचर्स कम इन द क्लासरूम्स, नाउ दे हैव टेकन मी फॉर अ स्किट इन हिंदी दिवस. लाइक आई हैव बीन टू सो मेनी एमयूएनस, नॉट जस्ट इन इंडियन स्कूल्स बट इन इंटरनेशनल स्कूल्स एज़ वेल.
1: नाइस. ओके,
2: एंड देयर दे कॉल मेनी गेस्ट स्पीकर्स हु हैव इवन स्पोकन टू लाइक मल्टीपल टाइम्स. हमारे स्कूल्स में भी कतर गवर्नमेंट से लोग आते हैं एंड दे कंडक्ट सेमिनार्स.
1: ओके,
2: जाके लोगों को सिखाते हैं, जो नेटवर्किंग करते हैं, ताकि यू नो पीपल एंड लाइक हु टू रेफर टू इफ यू नीड समथिंग.
1: ओके,
2: अगर आपको किसी हेल्प चाहिए तो आप जाके उनसे बोल सकते हैं कि हाँ मुझे लाइक, अगर दोस्ती होती है लोगों के बीच में तो वो जाके आसानी से मांग सकते हैं. उतना कुछ लंबा प्रोसीजर कुछ नहीं होता है ना, तो नेटवर्किंग हैपेंस लाइक

0: कि हर बे हूँ म्यूजिकल्स बोलो कि हमारे स्कूल में जो भी है MUN
1: म्यूजिकल्स as well?
0: हाँ, मैं म्यूजिक में, आपको हाई स्कूल म्यूजिकल पता है?
1: Yes, of course पता है.
0: हाँ, मैं उसमें था मेरे स्कूल में, of course I was also part of Matilda a bit मेरे स्कूल में.
1: क्या बात है यार, हासा हो गया
2: सच में.
1: एंड व्हाट यू वांट टू बिकम, मतलब आगे जाके सोचा है?
0: आगे हां सोचा है कि आई वांट टू बिकम अ बिजनेस पर्सन, अ रियली अ बिजनेसमैन.
1: व्हाट सॉर्ट ऑफ अ बिजनेस यू यू
0: हैव? सब में अपना हाथ डालने का, सब में अपना हाथ डालने का.
1: अच्छा, ऐसा है. एंड हॉबीज क्या है तुम दोनों की, मतलब क्या करते हो पढ़ाई-वढ़ाई के अलावा, ये सोच के अलावा, बिजनेस के अलावा, कोई कुछ ऐसा है जो यू लाइक टू डू इन योर फ्री टाइम, इन योर मी टाइम, जैसे आजकल बोलते हैं? What do? You play games or something?
0: कल तक तो Roblox खेलता था, आज तो बैन ने. कोई ऐसे ही normal, just I just love but not like that kind of games, like lead your nation, ऐसे political games kind of stuff.
1: भाई तुम्हें थोड़ा सा, तुम इतना upgraded चल रहे हो ना, थोड़ा सा chill करो हैं. Chilling, chill के लिए क्या scene है तुम्हारा?
0: हाँ.
1: What is your chill time looks like? What do you do? You watch stuff, you like movies?
0: I don't like to watch TV. Okay. In my chill time, I go down, I cycle around, like very about 10 to 12 thingies, thinking, reflecting on myself.
1: What do you watch? Do you watch anything at all?
0: Yeah, I do.
1: What?
0: If the remote is with me,
1: in
0: my brothers, huh?
1: It happens?
0: No. Sometimes.
1: Good for you.
0: Remote is with me, my brother commands me.
1: Okay.
0: I have to keep it, or he's going to come, he's going to
1: बैट लगे थे.
0: yeah.
1: Okay.
0: और जो भी वही anything in the TV, I have to see it. That is it. I have no option. मैं घर में बड़ा भाई हूँ, फिर भी उसका ही राज चलता है.
1: कितने साल का तुम्हारा छोटा भाई?
0: 10.
1: अच्छा, ओके, ठीक है, अभी बैटल चलता रहेगा भाई, ये तो तुम्हारा अभी तो लंबा बैटल है. एंड व्हाट डू यू वॉच एनीथिंग यू लाइक, आई मीन कोई सजेशन वगैरह तो तुम्हारे?
3: ऑनेस्टली मैं भी जो चलता है टीवी में वही देख लेती हूँ, वरना उतना कुछ नहीं.
1: कुछ स्पेसिफिकेशन नहीं है ऐसी?
3: उतना स्पेसिफिक नहीं, क्योंकि जब मैं लाइक 7th या 8th, आई यूज टू हैव लाइक हंड्रेड्स ऑफ क्लासेस. लाइक मैं पियानो में जाती थी, स्केटिंग जाती थी, स्विमिंग जाती थी, तो उसमें सारा टाइम चला जाता था और होमवर्क भी होता था. और वैसे भी लाइक जब मैं कुछ करती हूँ तो अच्छा लगता है, तो जाती थी.
1: हाँ, ऐसा नहीं है कि कोई प्रेशर है, एडिट प्रेशर नहीं, शौक के लिए सब कुछ चल रहा है. ओके,
0: हम जाने के पहले एक क्वेश्चन है.
1: पूछो.
0: Do you read books?
1: No, I'm not a reader at all, bro.
0: अच्छा, ठीक.
1: Yeah. वरना मैं भी साइंस और उस फील्ड में रहता, बिकॉज आर्ट्स की फील्ड, आई डोंट नो हाउ डू यू पीपल टेक इट, बिकॉज पहले होता था कि आर्ट्स की फील्ड होता है, कहाँ जा रहे आर्ट्स की फील्ड, क्या सीन है, यू नो. बट ग्रेजुअली लोग अभी आने लगे हैं, मास कम्युनिकेशन की तरफ भी आने लगे हैं. सो हमारे में कुछ, जैसे हमारा काम थोड़ा सा अलग है ना, वी कैन कंज्यूम इधर बुक्स और वी हैव टू वॉच. लाइक तुम्हारे लिए वो जरूरी नहीं है वॉच करना, कि देखना ही देखना है. बट पीपल इन आर फील्ड, स्पेशली किड्स हु आर परसुइंग मास कम्युनिकेशन, लाइक दे हैव टू डू समथिंग.
0: एग्जैक्टली,
1: हैव टू.
0: ये बुक है, वो भी मूवी है. फॉर एग्जांपल, हॉबिट बुक है, हॉबिट मूवी भी है. आधे के आधे लोग मूवी देखते हैं.
1: And then there is audio version of every book which has come up. So लोग क्या करते हैं, लोग audio books भी सुन लेते हैं कि चलो ठीक है. I'm one of that. मैं पढ़ता अच्छा पढ़ reader नहीं हूँ यार मैं. I'm very bad at it. Do you people read, both of you?
3: Reader मतलब like,
1: I'm not an avid reader, but you read.
0: Average reader, हाँ. हमारे स्कूल में competition चलता है कितने words read करते हो. Last year I read 1 million words.
1: What? Is there a competition like that?
0: Yeah, होता है.
1: Okay.
3: एक रीडिंग चैलेंज का एक कंपटीशन होता है. दे ब्रिंग लाइक वन पेज एंड देन दे सी हाउ मेनी वर्ड्स यू कैन रीड एज फास्ट एज पॉसिबल. लाइक हमारे स्कूल में होता है, CBSE से आता है वो.
1: Apparently that's a challenge.
0: नहीं, हमारे स्कूल में हाउ मेनी वर्ड्स यू रीड एट द एंड ऑफ द ईयर, वही है. 1 million words, that's it.
1: Okay, guys, so before we sign off, how was your experience here? कैसा लगा यहाँ पर आके, एक एक करके बता दो. कोई भी पहले, अभी भैंस नहीं है कोई है ऐसे.
3: It was good, first time in a radio station, like such me, like I've come and seen like the tours. और जब आजिस के साथ आराम से बात करती थी, but like सच में आके लाइव बोलने का वो कभी नहीं एक्सपीरियंस किया.
1: चलो बढ़िया, तो मतलब.
0: और मेरा तो this is my first experience coming to radio. और बहुत सारे लोग सुनते होंगे अभी. I was shivering at first. मैं बैठा था when I said at the start of the show I'm a bit nervous. I was shivering, but when we went through I felt like a bit comfortable in that.
1: चलो, I'm really glad.

0: Glad that it happened, and thank you so much, you guys are wonderful. This was one of the best episodes we had, and lots of love to you. Now we are signing off. Apna khayal rakhiye, ab behad behad zaruri hai. Maasalam.
1: Aapne suna hume on air. Now follow us on Facebook and Instagram at FM 107 Qatar. Dil se desi.
2: Har nabi ki zindagi ek sabak hai, ek roshni jo hume raah dikhati hai. Unki qurbaniyan, sabr aur Allah par yaqeen hume sikhata hai ki mushkilein aati hain, magar iman hamesha jeetta hai. Stories of Prophets. Stories of Prophets. Jisme aap sunenge nabiyon ki dilchasp kahaniyan, unki mehnat, unke imtihan aur unke paighamat jo dil ko chhu lete hain. Aap bhi is safar mein shamil hon aur in paak kahaniyon se apne dil ko roshan kare.
1: Suniye show RJ Mehvish Khan ke saath har budh dopahar 1 baje se only on FM 107 Dil Se Desi.
2: Is duniya mein hame mukhtalif rishte aur taluqaat jodte hain, mukhtalif logon ke saath mel jol rakhte hain, jinme se kai afraad ko hum dost bhi bana lete hain. ये सोहबतें हमारी जिंदगी का एक नुमाया रंग बन जाती हैं. कुरान करीम में भी अल्लाह ताला ने कई अस्हाब के वाकियात बयान किए हैं ताकि हम इबरत हासिल करें और राहे रास्त पर आ जाएं.
3: सुनिए प्रोग्राम कससुल कुरान आरजे तलहा और आरजे सरवर के साथ हर जुम्मा दोपहर 1 बजे से सिर्फ एफएम 107 पर.
4: दोस्तों, फायरवर्क्स या फायर क्रैकर्स को लाइसेंस के बगैर यूज करना या अपनी कस्टडी में रखना कानूनन मना है और ये एक जुर्म है जो आर्टिकल नंबर 18 ऑफ लॉ नंबर 7 ऑफ 2020 ऑन फायरवर्क्स के तहत पनिशेबल है. इस कानून के मुताबिक अगर कोई शख्स फायरवर्क्स को बिना इजाजत इस्तेमाल करता है तो उस पर जुर्माना हत्ता के जेल तक की सजा लग सकती है. आपकी अवेयरनेस और कानून की अंडरस्टैंडिंग सिर्फ आपकी नहीं बल्कि आसपास के लोगों की सेफ्टी के लिए भी बेहद अहम है. फायरवर्क्स जाहिरी तौर पर फन लगते हैं लेकिन बिना कंट्रोल के वो पब्लिक सेफ्टी रिस्क भी बन सकते हैं, इसलिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से प्रॉपर लाइसेंस लेना लाजमी है. वजारत दाखिला का कहना है कि कानून का एहतराम करना हम सब की जिम्मेदारी है ताकि हम अपनी कम्युनिटी को सेफ और रिस्पॉन्सिबल बना सकें. FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है.
5: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी.

0: मुकाबले के दरवाजे खुल चुके हैं पॉइंट्स की दौड़ का आगाज हो चुका है मुकाबले फिर सजेंगे और हर राउंड लेकर आएगा एक नई कहानी यतूर लीग सिर्फ और सिर्फ अलकास चैनल और शूफ प्लेटफॉर्म पर
1: FM 107 टाइम चेक चेक चेक चेक टाइम चेक इस वक्त हमारी स्टूडियो क्लॉक पे हुए शाम के 4:01 यानी इट्स टाइम फॉर
2: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी
1: हाँ जनाब तो वेलकम है आप सभी का द रिक्वेस्ट शो पर तो कैसे हैं आप सब वैसे हैप्पी वाला वीकेंड क्या हाल चाल है क्या प्लानिंग्स है आज किस गैदरिंग की तरफ जा रहे हो कौन सा बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हो कौन सी रोड ट्रिप का प्लान कर रहे हो वैसे वेदर अब पहले से थोड़ा बेहतर हो रहा है हमारे कतर का तो अब तो बीच आउटिंग्स भी थोड़ी थोड़ी शुरू हो ही गई हैं और हमारा जो ग्रुप है ना वो तो ऐसे मौसम की तलाश में रहता है अब तो बारबेक्यू करने जा रहे हैं वाह क्या बात है तो आपके क्या वीकेंड प्लान्स हैं बताओ ना तो जल्दी से मैसेज कर दो 666-22-107 पर मैं भी एक नज़र मार लेती हूँ लेकिन द रिक्वेस्ट शो पर आज की थीम क्या है देखो वीकेंड का टाइम होता है ना तो हम बिल्कुल ऐसे सोतलू टाइप की चीज़ें नहीं करते मतलब क्या करते हैं ऐसे गाने बजाते हैं जिससे आंखें एकदम खुल जाए पैर एकदम थिरकने लगे जोश चार गुना ज़्यादा हो जाए Absolutely. तो ऐसे कमाल के पार्टी पॉपर्स हम प्ले करने वाले हैं तो आपके वो कौन से गाने हैं जो आपकी एनर्जी को बिल्कुल बढ़ा देते हैं यूं कहें आपकी एनर्जी को बरकरार रखते हैं व्हाट आर दो सॉन्ग्स जो आपके फेवरेट हैं और आप हमेशा फुल वॉल्यूम पे सुनना चाहते हैं या किसी खास को डेडिकेट करना चाहते हैं और गानों के पीछे की कहानी भी आप शेयर कर सकते हैं कि क्यों आपको वो गाना बहुत पसंद है सो 666-22-107 इज आर नंबर उस पर अपने नाम के साथ मैसेज करो और आज के शो का आगाज हम करने वाले इस गाने के साथ

क्या बात है, की एंड का मूवी का ये गाना कमाल. और मुझे सबसे बेस्ट पार्ट लगा कि अर्जुन कपूर जो 4 इंच की हील्स पे नाचे ना, उफ, सल्यूट टू हिम. लेट्स एंजॉय, स्टे ट्यून्ड.

0: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी.
1: यस माय देसी ऑडियंस वेलकम वंस अगेन. FM 107 सुन रहे हैं आप. तो जनाब द रिक्वेस्ट शो पर अपनी प्लेलिस्ट को सुनने के लिए तैयार हो या नहीं? तो कौन कौन से वो हिट गाने हैं, स्पेशली मैं कहूंगी पार्टी सॉन्ग्स, फुल एनर्जी वाले गाने जिन्हें सुनकर मजा आ जाए. हाँ जी, तो वो कौन से गाने हैं जो आप अक्सर सुनना पसंद करते हैं? 666-22-107 पर बता दो. और अभी हमें मैसेज आया मोहम्मद हुसैन का, जिन्होंने बड़े शानदार से गाने की रिक्वेस्ट की है. एंड आई शुड टेल यू, ये मुझे गाना बहुत अच्छा लगता है, आदत, यू यू हनी सिंह एंड एपी ढिल्लन का. एंड स्पेशली जो एपी ढिल्लन की जो स्टाइल है ना, जिस तरीके से ही सिंग्स, एकदम कम मुंह खोले हुए, आई रियली लव दैट. सो यस, तो आदत ये गाना आपकी राहों में पूरा पूरा आएगा. उसके बाद मोहम्मद अशफाक ने रिक्वेस्ट किया है कि अमिता ये चॉइस मुझ पर छोड़ दी है, तो उन्हें मैं ये गाना सुनाने वाली हूँ. I'm sure आपको जरूर पसंद आएगा. सो बादशाह एंड शर्वी यादव का ग्रेट कॉम्बिनेशन. सो लेट्स एंजॉय. ये दोनों ही गाने पूरे पूरे आपकी राहों में आने वाले हैं. और आप क्या करने वाले हैं? आप अपने हिट हिट गाने, स्पेशली वो पारी सॉन्ग्स जो आपको बहुत पसंद है, वही थीम है इस वीकेंड की.

0: यार लेवल मेकअप कल जो ख्वाब थे आज चेज अब दुनिया जो बोले साइड में करके आंखों को खोलो वेक अप ए दोहा वाला मैं कबीर
1: यही कहूंगा सुबह सुबह
0: वेक अप
2: हर हफ्ते संडे टू थर्सडे सुबह 6 बजे से सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी
3: कुछ ऐसी हस्तियां होती हैं जिनका काम बोलता है उनकी मेहनत उनकी लगन हजारों लाखों को इंस्पायर करती है पर ऊंची कुर्सी ये पोजीशन के पीछे एक शख्स होता है जिसकी कहानी लोग जानना चाहते हैं और वही कहानी हम पहुंचाएंगे आप ये बातें होंगी थोड़ी सी प्रोफेशनल और बहुत सारी पर्सनल तो सुनिएगा जरूर एम्बेसडर ऑफ द मंथ आरजे नाजिया के साथ हर महीने के पहले जुमेरात को शाम 5 बजे से सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी
4: यस वेलकम वंस अगेन FM 107 सुन रहे हैं आप द रिक्वेस्ट शो पर आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है तो क्या हो रहा है क्या चल रहा है आई कैन सी योर प्लेलिस्ट क्या कमाल की रिक्वेस्ट भेज रहे हो भाई मतलब मजे ही आ गए वैसे अभी जो रिक्वेस्ट मैं प्ले करने वाली हूँ बेसिकली इसको मैंने थोड़ा सा ना ट्विस्ट कर दिया है तो हमारे वन ऑफ द रेगुलर लिसनर हैं सैयद हुसैन साहब और उनके परिचित हैं सुहिला उनका हैप्पी बर्थडे है और मैं कहना चाहूँगी हुसैन साहब आपने ना जिस गाने की रिक्वेस्ट की वो थोड़ा सा ना स्लो हो जाएगा और जब बर्थडे की बात हो तो गाने थोड़े से ना अप अप अप होने चाहिए यानी कि ऐसे कि जिनकी बीट्स में मजा आए है कि नहीं तो मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट किया है लेकिन फिल्म वही है एंड द सॉन्ग इज ओ जाना तेरे नाम फिल्म का ये गाना और हम डेडिकेट कर रहे हैं सोहिला जी को जिनका आज हैप्पी वाला बर्थडे है सो विशिंग यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे हमारे FM 107 की एंटायर टीम की तरफ से और आप बस यूं ही खुश रहें और अपनी लाइफ में तरक्की करें यही दुआ करते हैं ठीक है सो हैप्पी बर्थडे ये गाना आपको हम पूरा पूरा सुनाएंगे और उसके बाद उफ किस गाने की रिक्वेस्ट आ गई भाई ये तो अली मकसूद साहब ने रिक्वेस्ट कर दी है ओ हो हिमेश रेशमिया की आवाज उन्हीं का म्यूजिक आई सो लव दिस सॉन्ग जल्दी बताओ इस गाने को

को सुनकर कौन कौन खुश हो रहा है? अगर ड्राइव कर रहे हो तो अपने रेडियो सेट्स का वॉल्यूम बढ़ा लो, बिकॉज मेरे स्टूडियो का वॉल्यूम ना बढ़ने वाला है. सो डेफिनेटली ये गाने आपकी राहों में आ रहे हैं. और आप कौन सा पार्टी पॉपर सुनना चाहते हैं? कौन सा वो गाना जो आपको झूमने पर मजबूर कर देता है, थिरकने पर मजबूर कर देता है? उसकी रिक्वेस्ट भेजो. क्यों पसंद है वो भी बता सकते हो. किसी खास को रिक्वेस्ट करना है वो भी बता सकते हो. सो 666-2107 पर शेयर करो. और अभी बने रहो FM 107 पर दिल से देसी.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।
2: हर प्रोफेशनल शख्स इतना मसरूफ है जिंदगी में कि अगर उसे वक्त मिले और कोई उससे पूछे कि बैठिए जरा बताइए क्या चल रहा है, कहानी सुनने को मिलेगी जो सीधा आपके दिल पे जा लगेगी। इसलिए हम आपको इनवाइट करते हैं हमारे कैफे में, जहां आप में से ही एक शख्स हमारे साथ होगा कैफे 107 पर।
3: हर फ्राइडे शाम 7:15 बजे से FM 107 पर दोहा वाले कबीर के साथ।
4: स्ट्रेस या टेंशन फील कर रहे हैं, चाहते हैं लाइफ में बैलेंस और ग्रोथ, तो सुनिए यू मैटर। आपके लिए प्रैक्टिकल टिप्स और स्ट्रेटजीज ताकि आप खुश, हेल्दी और फुलफिल्ड लाइफ जी सके, क्योंकि आप मैटर करते हैं।
5: सुनिए हर संडे टू थर्सडे सुबह 10 से 11 बजे यू मैटर। आरजे सफा और आरजे महविश के साथ, जहां वो शेयर करेंगी प्रैक्टिकल टिप्स, इमोशनल इंटेलिजेंस टेक्निक्स और पर्सनल ग्रोथ हैक्स, जो आपके स्ट्रेस को मैनेज करने में हेल्पफुल हो सकता है। ट्यून इन टू FM 107, दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
1: तो यस माय देसी ऑडियंस, क्या हाल चाल है। वेलकम आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है एफएम 107 पर। द रिक्वेस्ट शो इज ऑन और मैं हूँ आपकी ए फॉर अमिता। और यहाँ पर हमारी जो आज की थीम है बड़ी सिंपल सी है, वो गाने जो हमारे जोश को और ज़्यादा बरकरार रखें, बढ़ा दें, हमें और खुशी दें, बस वही गाने हम इंजॉय कर रहे हैं सिंपल शब्दों में, ठीक है। तो कौन से वो गाने जो आपको बहुत अजीज़ हैं और जो आपके एनर्जी लेवल्स को ना 4 गुना ज़्यादा बढ़ा देते हैं, बताओ बताओ। 6622107 पर, 6622107 पर अपने नाम के साथ अपने डेडिकेशन भेजो। और अभी अगली रिक्वेस्ट है रिजवान जी की, और वो सुनना चाहते हैं वो गाना जो 2011 में ग्लोबल पार्टी एंथम बन चुका था। गेस करो गाना कौन सा है। एकॉन एंड हम सिक्का अय्यर की आवाज, ओहो चमक चलो, क्या ब्यूटीफुल ट्रैक है सच में। ये गाना हम आपको आगे सुनाने वाले हैं पूरा पूरा। और उसके बाद अच्छा ये बताओ, इस गाने को पहचान सकते हो, बताओ कौन सा गाना है। दिलजीत दोसांझ का लवर। एंड ये गाना एक्चुअली जो दिलजीत दोसांझ ने इसको इंडी पॉप वर्जन सिंगल गाया था, उसके बाद फेमस फिल्मी डायरेक्टर करण जौहर को उन्होंने गिफ्ट कर दिया कि भाई आप अपनी फिल्म रॉकी और रानी में, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी जो मूवी थी ना, उसमें प्ले कर लो। एंड दिस इज हाउ ये गाना और भी ज्यादा पॉपुलर हो गया। तो ये दोनों ही गाने आपकी राहों में आ रहे हैं, गेट रेडी एंजॉय कीजिए। और आप कौन सा गाना सुनना चाहते हैं शेयर करो 6622107 पर। स्टे ट्यून्ड।

0: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी.
1: वेलकम वेलकम वेलकम.

और आज वीकेंड वाइब्स को हम पूरी तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं और सिंपल सी आज की थीम है कि भाई आज फुल एनर्जेटिक गाने बजेंगे, यानी कि आपके लिए जो पार्टी सॉन्ग्स है ना, बस वही आज पार्टी एंथम्स बनकर हमारे एफएम 107 के द रिक्वेस्ट शो पर प्ले होने वाले हैं। ठीक है, तो अब अगली रिक्वेस्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। ये रिक्वेस्ट आई है आमिर की और वो चाहते हैं कि अमिता ये गाना प्ले कर दो। कौन सा गाना है बताओ जल्दी से, गैस कर लिया तो फिर सोचो इनाम मिलेगा गाने का तुमसे मिलके दिल का। हाँ हाँ, मुझे समझ में आ गया था, मैसेजेस देख रही हूँ मैं। मैं हूँ ना फिल्म का ये गाना है भाई, बड़ा शानदार गाना। और इस गाने के पीछे की एक बड़ी कमाल की कहानी है कि इस गाने के जो बोल है वो लिखे हैं जावेद अख्तर साहब ने, और 30 सेकंड्स में, मतलब सोच रहे हैं इतने जल्दी उन्होंने सोचा और इस गाने को लिख दिया, लेकिन फिल्म के बीच से ना नाराज होकर निकल गए थे। बट देन इस फिल्म की जो डायरेक्टर साहिबा है फराह खान, काफ़ी दिन तक पीछे पड़ी रही और फिर कोशिश करके वो जावेद अख्तर जी को वापस लेकर आई। सो बड़ी ब्यूटीफुल सी स्टोरी है, डिटेल में कभी और सुनाएंगे। अगली रिक्वेस्ट की तरफ बढ़ते हैं और इसके बाद जिन्होंने रिक्वेस्ट की उनका नाम है मलिक और वो सुनना चाहते हैं, क्या बात है, फैंटम फिल्म का ये गाना जिसमें बिल्कुल मतलब वो कैची देसी बीट्स है, हाँ एनर्जेटिक मिडल ईस्टर्न वाइब्स है, हाँ असरार की आवाज़। तो ये दोनों ही गाने तुमसे मिलके दिल का और अफगान जलेबी आपकी राहों में आ रहे हैं, सो गेट रेडी फॉर इट। और आप कौन सा गाना सुनना चाहते हैं शेयर कीजिए 666-22-107 पर। कुछ ही देर में क्विज टाइम भी हम आपके लिए लेकर आएंगे, सो स्टे ट्यून्ड।

0: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
1: हां जी, वेलकम वंस अगेन FM 107 सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी ए फॉर अमिता। क्या बात है, क्या बात है। द रिक्वेस्ट शो पर मुझे लग रहा है हमारे सारे लिसनर्स जो है ना वो बिल्कुल डीजे वाले बाबू बन चुके हैं, मतलब एक से बढ़कर एक गानों की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आई एम सो लविंग इट। वेल, कुछ बातें हैं जो मुझे अभी आपसे करनी है, लेकिन उसके पहले जरा क्विज टाइम पर फोकस कर लेते हैं।
0: क्विज टाइम,
1: चलो आ जाओ जल्दी से। एक गाने को पहचानना है, बीच से सुनाने वाली हूँ। और बता दूं कि कैटरीना कैफ और सिद्धार्थ मल्होत्रा की बड़ी शानदार जोड़ी है इसमें। गैस तो कर लिया होगा कौन सा गाना है। चलो चलो जल्दी से बता दो ये गाना कौन सा है। 666-22-107 पर, 666-22-107 पर अपने नाम के साथ, क्योंकि थोड़ी देर में ये गाना पूरा पूरा मैं आपको सुनाने वाली हूँ। और अभी जो रिक्वेस्ट आई है जरा उनकी तरफ चल लेते हैं। तो हनीफ सिकदर की रिक्वेस्ट है, और आज तो मतलब मुझे लग रहा है कि पूरा पार्टी वाला मूड उनका बन चुका है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। बादशाह नास्था, क्या राइमिंग हुई भाई नामों की। हाँ तो चलिए, ये गाना आपकी राहों में आएगा पूरा पूरा। और उसके बाद, वैसे आज तो थर्सडे है, लेकिन कोई सुनना चाहता है सैटरडे। ये जनाब है आरिफ भाई। ओके, तो ये दोनों ही पारी सॉन्ग्स आपकी राहों में आ रहे हैं। सो गेट रेडी, और अपनी रिक्वेस्ट भी भेजो भाई 666-22-107 पर। स्टे ट्यून्ड।

0: इसको डांस नहीं करना, वो जाके अपनी भैंस चराए।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
1: क्या बात है, वेलकम वंस अगेन एफएम 107 सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी ए फॉर अमिता। मतलब क्या कमाल कमाल की रिक्वेस्ट आई हुई है हमारे लिसनर्स की, मतलब मजा आ गया। चलिए हम उन रिक्वेस्ट की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन अभी पहले क्विज टाइम पर मैंने एक गाना आपको बीच से सुनाया, कहा जल्दी से गाना पहचान लो। बताओ बताओ कौन सा गाना है, गैस करो। काला चश्मा, एग्जैक्टली। और जिन्होंने हमें सही जवाब दिए हैं, आइए जरा बातें की जाए, उनके नाम क्या क्या है। एक आरिफ भाई ने हमें सही जवाब दिया है, रियाज ने सही जवाब दिया है, यहाँ पर असलम है उन्होंने सही जवाब दिया है, ये है मुशद्दर रहमान, उन्होंने भी सही जवाब दिया है। और कौन हमें बताते जा रहा है कि अमिता ये गाना सही है, शाफी ने भी सही जवाब दिया है, नाहिद ने भी हमें सही जवाब दिया है, इसके साथ काफ़ी सारे हमारे लिसनर्स हैं जिन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया, सो थैंक यू सो मच। और ये गाना पूरा पूरा अब हम आपको आगे सुनाएंगे, लेकिन बहुत सारे हमारे लिसनर्स हैं जिन्होंने यो यो हनी सिंह का एक गाना रिक्वेस्ट किया है, जो कि हम अनफॉर्चुनेटली नहीं चला सकते, तो परेशान ना हो, हम आपके लिए ये वाला गाना प्ले करेंगे जो आप ज़रूर इंजॉय करेंगे, काला स्टार। सो जरूर इंजॉय करें और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, अब आपकी मेरी मुलाकात होगी अगले हफ्ते सेम टाइम सेम प्लेस, तब तक बने रहे एफएम 107 पर। जाते जाते ये कहना तो बनता है, हमें राही प्यार के फिर मिलेंगे, चलते चलते स्टे ट्यून।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: दिन भर की मसरूफियात और थकन के बाद जब कोई शाम को अजगार का एहतमाम करता है तो ये महज जिक्र के चंद अल्फाज नहीं होते, बल्कि अल्लाह ताला से ताल्लुक को मजबूत करने और रूहानी व नफ्सियाती तवानाई को ताज़ा करने का जरिया बनते हैं। आइए समाअत कीजिए शाम के अजगार FM 107 पर।

0: करते हैं, जबकि कुछ लोग सजावट और इंतजाम में नए तरीके शामिल करते हैं। दोनों अंदाज में असल अहमियत मोहब्बत, खानदानी शिरकत और खुशी बांटने की होती है। जदीद मेहंदी में पेशावर डिजाइनर्स और मुख्तलिफ सकाफती अंदाज शामिल हो सकते हैं, लेकिन दुल्हन और खानदान के लिए इस मौके की जज्बाती अहमियत कायम रहती है। मेहंदी की रिवायत नई नस्ल को सिखाती है कि सकाफत सिर्फ चीजों का नाम नहीं होती, बल्कि उन लम्हात का भी नाम होती है जो लोग मिलकर पैदा करते हैं। किसी बुजुर्ग से नक्श का मतलब पूछना, मेहंदी के हुनर को समझना या खानदानी कहानियां सुनना वर्से से जुड़ने का खूबसूरत तरीका है। मेहंदी की रात हमें ये भी याद दिलाती है कि खुशी तब ज्यादा हसीन होती है जब अपनों के साथ शेयर की जाए। इसमें खानदानी मोहब्बत, दुआएं, मुस्कुराहट और नई जिंदगी के लिए उम्मीद शामिल होती है। आज के कल्चर मोमेंट का पैगाम यह है कि कतरी मेहंदी की महफिल सिर्फ हाथों को सजाने का मौका नहीं, बल्कि रिश्तों को मजबूत करने और खुशी को मिलजुल कर मनाने की खूबसूरत रिवायत है। मेहंदी का रंग चंद दिन रहता है, लेकिन उससे जुड़ी यादें अक्सर जिंदगी भर साथ रहती हैं। तो लिस्टनर्स, आज के कल्चर मोमेंट को यही मुकम्मल करते हैं। याद रखिए, सकाफत सिर्फ गुजरे हुए वक्त का नाम नहीं, बल्कि हमारी रोजमर्रा जिंदगी का खूबसूरत हिस्सा है। मैं हूँ आपकी आरजे महाविश। अगली मुलाकात तक अपना ख्याल रखिए और कतर की खूबसूरत सकाफत को हमेशा इज्जत और मोहब्बत के साथ याद रखिए। अल्लाह हाफिज।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Main Duha wala Kabir FM 107 pe, and welcome to another tech update. तो भाई साहब, हमने एप्पल को बहुत जम के रिव्यू कर लिया है, देखो क्या होता। अभी फिलहाल जो मैं कुछ क्रेजी वेबसाइट्स आपको बताने वाला हूँ, उसके बाद एक मेजर रिव्यू। गेमिंग की दुनिया में बहुत ज्यादा ही हलचल हो रही है। सबसे पहले एक बहुत ही क्रेजी वेबसाइट जिसका नाम है cleverhumanizer.ai, cleverhumanizer, क्लेवर चालाक वाला क्लेवर, ह्यूमनाइजर, ह्यूमन लिखिएगा फिर आइजर, IZER.AI। अभी वेबसाइट पे जाके आपको क्या मिलेगा, आपको ये पता लग जाएगा कि किसी ने आपको जो टेक्स्ट भेजा है, वो जो टेक्स्ट है, क्या वो टेक्स्ट AI से लिखवाया है या खुद लिखा है। कितनी अच्छी चीज है ना चोरी पकड़ने के लिए। तो आपके पास अगर कोई भी मैसेज आता है जो आपको लगता है यार ये इस शख्स की तो लैंग्वेज नहीं लग रही है भाई, इस बंदी की भाषा नहीं है, तो आप वो चेक कर सकते हैं। सिंपली आप वेबसाइट पे जाएंगे, इस पे जाके आप पेस्ट करेंगे और ये आपको बता देगा कि ये तो हमारी बिरादरी का है मैडम, ये ह्यूमंस ने नहीं लिखा है। एंड दिस वे यू कैन फिगर इट आउट कि सामने वाला तेज है कि आप उससे दो कदम आगे हैं। अगली वेबसाइट की तरफ बढ़ते हैं। ये भी बहुत लोगों के काम आ सकती है। ओके, नोट डाउन कीजिएगा, वेबसाइट का नाम है ट्रस्ट MRR, ट्रस्ट भरोसे वाला ट्रस्ट, फिर MRR.com, ठीक है। तो ट्रस्ट MRR.com पे जाके आपको दुनिया भर के वो स्टार्टअप्स की लिस्ट मिल जाएगी जो कामयाब हैं, उनके ओनर्स के बारे में पता लगेगा, उस कंपनी के बारे में पता लगेगा, स्टार्टअप कब शुरू हुआ वो पता लगेगा, आपको एक एक ढांचा मिल जाएगा कि भाई कौन सा स्टार्टअप जो है दुनिया भर में काम कर रहा है। इसमें बहुत कमाल के स्टार्टअप्स हैं, मैं सच बता रहा हूँ, जो आपने सोचे भी नहीं होंगे वो आइडियाज आपको यहाँ से मिल जाएंगे। एंड एग्जीक्यूशन भी मिलेगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ आइडिया दे दे कि भाई ये काम करो, ये खोल लो तुम, ये बढ़िया स्टार्टअप है, नहीं। यहाँ पर आपको उन स्टार्टअप्स के बारे में जो कामयाब हैं, जो काफी बढ़िया चल रहे हैं, जिससे लोग इंगेज करें, उनके बारे में पता लगेगा और साथ में ये भी जान पाएंगे कि उन्होंने एग्जीक्यूशन कैसा किया है, क्या चीज उस स्टार्टअप की सबसे ज्यादा लोगों को पसंद आई है और जो सेलिंग पॉइंट है वो आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो जवाब पे जरा नजर रखिएगा। अब तीसरी वेबसाइट की तरफ बढ़ते हैं। तीसरी वेबसाइट जो है इसका नाम है motionbgs.com, motion MOTION, motion b like basket, g like in gorilla, s like salman, motionbgs.com। जब आप इस वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको कई सारे मोशन लाइव वॉलपेपर्स यहां पर मिल जाएंगे कैटेगरी वाइज। अब एनिमे जाते हैं, गेमिंग

0: चाहते हैं, नॉर्मल चाहते हैं, एस्थेटिक चाहते हैं, नेचर चाहते हैं, एनिमल चाहते हैं, व्हिच एवर टाइप ऑफ वॉलपेपर यू लुकिंग फॉर यहाँ पर आपको मिल जाएगा। बहुत बढ़िया भाई, मैं तो ऐसे एक्सप्लोर कर करके ना जाने कितनी मरतबा दिन में वॉलपेपर चेंज कर चुका हूँ इस वेबसाइट की वजह से। गो ऑन विद इट। अब बढ़ते हैं जरा खबरों की तरफ, क्योंकि खबर जो है तगड़ी है भाई। तो इनटेक न्यूज में बताना चाहूंगा आपको, पहली खबर जो है गेमिंग की दुनिया से है, बहुत ज्यादा हलचल मची है। सोनी वर्सेस एक्सबॉक्स की जो जंग है वो वापस सामने आई है। भाई मैं खुद प्लेस्टेशन को ओन करता हूँ, मतलब उनका कंसोल ओन करता हूँ, वो कहाँ से ओन करूँगा। और मैं हाल फिलहाल में सोच रहा हूँ कि क्या हो गया है सोनी को, कोई घमंड शमंड आ गया है क्या, क्या दिक्कत है? बिकॉज क्लियरली एक्सबॉक्स धीरे धीरे धीरे धीरे रेजिलियंस दिखा रहा है और जंग को और बड़ा करता चला जा रहा है। वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर्स इन द गेमिंग वर्ल्ड हिडेओ कोजिमा, उन्होंने उनका रिश्ता खराब हुआ सोनी के साथ और अब वो एक्सबॉक्स की तरफ चले गए हैं, जहां पे उनके एक्सक्लूसिव्स लॉन्च होने वाले हैं एक्सबॉक्स के साथ। नॉट जस्ट दैट, प्लेस्टेशन का रिसेंट गेम, एक्सक्लूसिव गेम वुल्वरीन, भाई मुझे ट्रेलर देख के लगा नहीं था कि ये इसके साथ कुछ गलत हो सकता है, मगर वुल्वरीन फेल्ड सो बैडली कि मुझे नहीं लगता कि सोनी रिकवर कर पाएगा। इंसोम्नियक का एक लौता अगर कोई बुरा गेम है तो वो यही है, और इंसोम्नियक इस धब्बे को मिटा नहीं पाएगा। वो लोग जिन्होंने मेजर स्पाइडरमैन गेम्स बनाए, उन्होंने वुल्वरीन बनाया, ये देख के बहुत तकलीफ हुआ भाई। तो ये थी टेक अपडेट्स, मैं दुहा वाला कबीर एफएम 107 पे, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर टेक अपडेट।
1: आप सुन रहे हैं FM 107, FM 107,
2: दिल से देसी।
3: ऐ बनी आदम, क्या तुम दुआ का मजाक उड़ाते हो, दुआ को हकीर समझते हो, हालांकि तुम्हें खबर ही नहीं कि दुआ क्या कुछ करती है। ये रात के तीर हैं जो सीधे अपने निशाने पर जा लगते हैं, खता नहीं करते, अलबत्ता उनका एक वक्त मुकर्रर है जिसके बाद उनका असर जाहिर होता है। दोस्तों, प्रोग्राम आज की दुआ, इसका मकसद हमें याद दिलाना है कि दुआ बंदे का सबसे कीमती हथियार है, दिल का सुकून है और रब से ताल्लुक का सबसे मजबूत रिश्ता है। आइए चंद लम्हों के लिए हम अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगे। सामिन किराम, आज एक अजीम दुआ हम आपके साथ शेयर करेंगे, इसे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजाना सोना चांदी के बराबर करार दिया, बल्कि इससे भी ज़्यादा कीमती बताया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शद्दाद इब्न औस रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाया, ए शद्दाद, जब तुम देखो कि लोग सोना और चांदी जमा कर रहे हैं तो तुम इन कलिमात को जमा कर लो और ये दुआ सिखाई, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका थबात फिल अम्र, ए अल्लाह मैं तुझसे दीन पर उमूर पर साबित कदमी का तालिब हूँ, तलबगार हूँ, वल अज़ीम तआला रुश्द, सीधी राह पर चलने का मजबूत इरादा, व मुजीबात रहमतिक, वो आमाल जो तेरी रहमत के मुस्तहिक बना दे, व अज़ाइम मग़फ़िरतिक, व तौफीक जो तेरी मग़फ़िरत का ज़रिया बने, व शुक्र निअमतिक, तेरी नेमतों पर शुक्र का तलबगार हूँ, का सवाल करता हूँ, वहसन इबादत एक बेहतरीन इबादत, कलबन सलीमा पाकीज़ा दिल, व लिसानन सादिका सच्ची ज़बान, व असअलुका मिन खैरि मा तअलम, और वो सारी भलाइयाँ जो तू जानता है वो भी मैं तुझसे मांगता हूँ, व अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा तअलम, और हर उस चीज़ के शर से मैं पनाह मांगता हूँ जो तू जानता है, وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ, मैं तुझसे गुनाहों की माफ़ी इस्तग़फ़ार करता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ जिन्हें तू जानता है, इन्नका अंता अल्लामुल ग़ुयूब, बेशक तू गैब का सबसे बड़ा जानने वाला है। आमीन किराम, ये दुआ दरअसल एक मोमिन की मुकम्मल ज़िंदगी का नक्शा है, इसमें कई सारे पहलू एक ही दुआ में आ गए, ईमान, अमल, अखलाक, मुस्तकबिल, हिफाजत और आखिरत। तो ये दुआ दरअसल एक मुकम्मल इस्लामी ज़िंदगी का खाका है। अब इस दुआ को ख़जाना कहा गया, क्यों? क्योंकि सोना चांदी सिर्फ दुनिया संवारता है, ये दुआ दुनिया कब्र और आखिरत तीनों को संवारती है। ये दुआ ईमान को महफूज रखती है, दिल को साफ करती है।

0: मुकाबले के दरवाजे खुल चुके हैं, पॉइंट्स की दौड़ का आगाज हो चुका है, मुकाबले फिर सजेंगे और हर राउंड लेकर आएगा एक नई कहानी। यतूर लीग सिर्फ और सिर्फ अलकास चैनल और शूफ प्लेटफॉर्म पर।
1: FM 107 टाइम चेक।
2: भाई साहब, ख्वातीनें इसी दिन का इंतजार करती हैं, इसी टाइम का इंतजार करती हैं कि आ जाए, और वो है थर्सडे का दिन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। FM 107 पे इस्तकबाल है आप सभी का, 6:02 हमारे स्टूडियो की घड़ी में।
3: आप सुन रहे हैं अनप्लग्ड इवनिंग विद आरजे फजील,
4: ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
2: हाँ जी, एक बार फिर से इस्तकबाल आप सभी का, और अभी से लेकर 7 तक हमारा और आपका साथ रहने वाला है, और इस बीच सवाल भी होगा, मजे की बातें भी होंगी, और आपके अपने बेहतरीन गाने भी, अपने मर्जी के नहीं, अपने बेहतरीन गाने आपके, बाकी वो डिसाइड तो अपन ही करेंगे। सो 7 तक ये जो बातें हैं ना वो तो होती रहेंगी, लेकिन इन सबके बीच आज का दिन ही तो है जिसका इंतजार होता है। भाई साहब, पूरे 4 हाथ पैर मारते हैं और 5वें दिन तो बस खुशी होती है हाथ पैर मारने की, और आज का दिन ऐसा होता है थर्सडे का दिन कि पूरी रात जो है वो आबाद हो जाती है भाई साहब। और सबसे बड़ी बात तो ख्वातीन इस दिन का खास तौर पे इंतजार करती हैं कि भाई साहब 4 में बहुत रह ली किचन में, जितना तुमने बनवाना था बनवा लिया है, अब मेरी बारी है बाकियों के, यानी कि दूसरे की किचन की जो है जिम्मेदारी, दूसरे की किचन में कितना नमक पड़ रहा है कितना नहीं, मैं जिम्मेदारी लेती हूँ। अब चाहे दावत से हो, चाहे वो रेस्टोरेंट की किचन के बारे में बात करना हो, ये तो फिर खवातीन करेंगी ना भाई। और आज ही का दिन है जब जेब जो है वो हल्की होती है, लेकिन ये तो देखो होना भी चाहिए। अब यार बेहतरीन खाने का लुत्फ अगर ना उठाया जाए तो फिर क्या फ़ायदा, घर के तो खाने आप लोग खाते रहते हैं। और आजकल तो वो मीम भी चल रहा है ना कि कुछ भी हो यार, बाहर का कितना भी खाना खा लो, लेकिन माँ के हाथ में वो खाने का जो लजीजपन था ना वो अब नहीं रहा। इस तरह के मीम चल रहे हैं कि मतलब आप बाहर के खाने की तारीफ ज़्यादा कर रहे हैं कि बाहर का खाना खाने के बाद माँ पता चल गया कि तेरे हाथ से अब वो टेस्ट जा चुका है। ये बात तो काफ़ी हद तक सही भी है कि बाहर के खाने की जो लज्जत है ना वो थोड़ी सी ज़्यादा अपने को लग चुकी है, मज़ा आने लगा है भाई। खैर, इन सब के बीच आज के सवाल पर भी आते हैं क्योंकि थर्सडे का दिन है, घूमने फिरने का दिन है, हो सकता है कई लोग सीलैंड की तरफ जाए, कोई अजरबैजानी की तरफ जाए, कोई गर्राफा बीच की तरफ जाए, कोई 974 बीच जाए, व्हाटएवर, जिस जगह भी जाने का दिल है, दुखान हो, वकरा बीच भी, वकरा फैमिली बीच भी काफ़ी यू नो आबाद रहता है आज के दिन, और मौसम भी अब सही होने लगा है, अगर हवा सही तरफ से चल रही है तो आपको ये मौसम जो है ना बहुत बेहतरीन लगने वाला है, ये लेकिन आपको शहर में नहीं बीच की तरफ लगेगा, बट हवा भी अच्छी होनी चाहिए, समंदर की तरफ से आ रही है हवा तो भाई मत जाना, बट समंदर की तरफ से नहीं आ रही, अगर सऊदी अरब की तरफ से आ रही है पीछे अगर रेत है उधर से तो ठीक है, मामला फिर बेहतर है। तो कई लोग घूमने फिरने जाएंगे, आज रज जगह होगा, लेकिन इस रज जगह में आज का सवाल भी मेरे जहन में आया कि इसी पर आज का सवाल होना चाहिए, रज जगह पे है। अच्छा, कई लोग ऐसे हैं कि

0: यू नो ऐसे वीक डेज में वो बहुत जल्दी सो जाते हैं, लेकिन वीकेंड में वो रात के उल्लू बन आई मीन नाइट आउल बनना चाहते हैं वो, और फिर वो 2-3 बजे तक उनकी पार्टी चलती रहती है, चाहे वो बीच पे हो, चाहे वो कॉर्निश में हो, चाहे वो यू नो ऐसे इलाकों में हो जैसे मतार कदीम। भाई साहब 1-2 बजे तक तो लगता ही नहीं है यार यहाँ पर कुछ, और ऐसा लगता है 9 बज रहे हैं अभी। मतार कदीम तो एकदम ही रंगारंग कार्यक्रम जो है वहीं पर चल रहा होता है लोगों का। फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा भीड़ जो मुझे लगती है, लेकिन वो 10-11 बजे तक ख़त्म होने लगती है, और वो है सूक वाकिफ़। और सूक वाकिफ़ का जो क्राउड है, जो वाइब है, वो गज़ब का है। तो भाई आज के दिन सूक वाकिफ, फिर उसके बाद मतार कदीम, सी लाइन बीच, ये सब भरा रहता है। लोग करते क्या हैं, जो नए लोग हैं उनको बता दें कि सूक वाकिफ़ से होते हुए लोग मतार कदीम जाते हैं। अगर सूक वाकिफ़ से ख़रीदारी करनी होती है तो वो ख़रीदारी करते हैं, और फिर मतार कदीम में बढ़िया खाना खाते हैं, सूक वाकिफ़ में भी है, फिर उसके बाद सी लाइन की तरफ जाते हैं। तो अगर आप भी यही करना चाहें तो बिल्कुल करें। और आज का सवाल भी इसी पर है, रात को लेकर और सुबह को लेकर। तो सवाल ये कि आप एक्चुअली में किस तरह के शख्स हैं, मतलब आप नाइट आउल हैं यानी कि रात को देर तक जगते हैं, या अर्ली बर्ड कि जल्दी सुबह उठ जाते हैं भाई साहब रात में इसलिए हमें जल्दी सोना होता है, इनमें से आप क्या हैं, अर्ली बर्ड या नाइट आउल? थर्सडे के दिन तो देखो मैं समझता हूँ नाइट आउल है, लेकिन बाकी के दिनों के बारे में अगर हम बात करें तो भाई सबसे मज़ेदार होता है वो रात को 10 बजे सो जाना, सुबह मीठी नींद के साथ 7 बजे उठ जाना। वीकेंड पे जो आवारागर्दी करने मज़ा आता है भाई साहब, वो मज़ा कहीं नहीं, उसका एक अलग चस्का है, लग गया है बस अब।
1: आप सुन रहे हैं अनप्लग्ड इवनिंग विद आरजे फजील,
2: ओनली ऑन एफएम 107, दिल से देसी।
0: क्या करूं भाई, जिस मिडिल क्लास से आते हैं वहां पर 10 बजे हमें घर के अंदर बंद कर दिया जाता था, अब हमें मौका मिला है आजादी का, अब हमारे कदम रुकते नहीं है, हमको जितना मौका, जितना ज्यादा हमको यू नो मौका दोगे, जितना ज्यादा हमें जगह दोगे, हम फैल जाएंगे, हम पानी की तरह तो हैं। बाकी मैसेज की तरफ बढ़ते हैं, और मैसेज किस भाई का सलाम से शुरू किया है, वालेकुम अस्सलाम आसिफ भाई का, वालेकुम अस्सलाम मेरा भाई, प्रेजेंट लगाया उन्होंने। फिर उसके बाद यूसुफ भाई का मैसेज है, सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, हैप्पी थर्सडे इवनिंग, हैप्पी वीकेंड। हाँ यार, ये तो ऐसा होता कि हफ्ते में एक बार ईद अपनी हो जाती है, तो ये हैप्पी थर्सडे वाला ना ईद एकदम ऐसा लगता है कोई कह रहा है हैप्पी ईद, बस 3 बार गले नहीं लग रहे हैं। बाकी हमारे घर सेवाई नहीं बन रही है, बस एक फ़र्क और है, बाकी बाहर खाने तो ज़रूर होते हैं, खाना हो रहा है, कोई खाना लेकर आ रहा है, कोई दावत दे रहा है, तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं इन सब के बीच में, घूमना फिरना तो हो ही रहा है। फिर एक और ये मैसेज है, सलाम अलैकुम भाई, अपन रात के शिकारी, ओफो रात के शिकारी है, क्या नाम है इनका, सलाम, नाम यार हमें ढूंढवाते बहुत यार तुम लोग, वलीद साहब इनका नाम है, बहुत ही उम्दा। हाय माय नेम इज़ फायका क्वीन, नाइट लवर, हैप्पी वीकेंड। क्या बात है, नाम में ही जो रानी आपने डाला है फायका क्वीन, बहुत ही उम्दा। लेकिन हाँ ये है कि रात का मज़ा थर्सडे का है, कि जो घूमने फिरने में आवारागर्दी करने में मज़ा आता भाई वो कहीं और नहीं है, अब तो छूट मिली है। अच्छा मर्दों के साथ ये होता है क्योंकि अपन लोग जो मोस्टली जो यहाँ पर हैं वो है मिडिल क्लास, और मोस्टली छोटे शहरों से भी हैं, और फिर जब छोटे शहर में आप रहते हैं तो 9-10 बजे या गांव की अगर बात है तो 8-9 बजे घर बंद हो जाता है, आप अपने घर के अंदर ही ताला लगा लेते हैं और घर के अंदर रहते हैं, फिर टीवी वी अगर देखना तो उधर ही देखो, 10 बजे के बाद शहर भी इतना नहीं खुलता। लेकिन अगर आप बड़े शहर में रहते हैं, मेट्रो शहर में हैं, मेट्रो सिटी में क्या होता है कि देर तक कोई एक जगह जो है, जैसे मतार कदीम की जगह दिल्ली में अगर है तो चांदनी चौक है ना, वो सब जगह खुली रहती है, लेकिन छोटे शहर में तो रहता नहीं है, मर्दों को भी छोटे शहर में नहीं मिल रहा है, और फिर महिलाओं के लिए क्या होता है कि उनका ये हो जाता है कि बेटा शादी के बाद घूमना तुम उनके हम तो फिर भी भाई 9 बजे तक बाहर रहते हैं, उनको 7 बजे घर के अंदर बंद कर दिया जाता है, तो अब उनको मौका मिल गया है, तो वो इसी तरह से अपने मौके को भुनाती हैं कि अब तो मौका मिल गया, अब रात रात भर जो है जितना घूम पाऊंगी वो घूमूंगी। और ये मुझे बड़े अभी लगता है कि यार जिंदगी भर बंद होकर रहे, अब तो हमारी जवानी जो है इतनी आ गई है कि हाथ पैर निकाल कर हम घूम टहल सके। फजील भाई क्या होता है ना, मतलब जब वीकेंड आता है तो तुम्हारा भाई रात के 2:30 बजे तक सोता है, क्या बात है भाई, अपना भाई भी रात का राजा है रात का राजा, फ्लो फ्लो में निकल गया, बढ़िया निकला। जब वीकेंड खत्म हो जाता है तो तुम्हारा भाई 10:30 बजे लपट जाता है। हाँ, वीकेंड खत्म होने के बाद वीकडे में आपको जल्दी उठना पड़ेगा, लेकिन आपके लफ्ज में जो खूबसूरती है ना कि भाई 10:30 बजे लपट जाता, आहा, आप लपट जाए चाहे निपट जाए दोनों ही बढ़िया लफ्ज है भाई। वीकडे पे आप लपटते ही रहे। और आगे लिखा है, इंडिया में कहो तो तुम्हारा भाई रात का राजा है, यहाँ दिन के गुलाम। ओह माय गॉड, ये बहुत भारी लाइन है भाई, दिन के गुलाम। आय हाय, हसद चेहरे ना मतलब है नहीं होता, उन्होंने अंदर कोई तकलीफ नहीं होंदी। अरे भाई साहब, भाई इनने बहुत सोच के लिखा है ये, या तो इनके दिल में बहुत ज्यादा दर्द है और ये दर्द मेरे तक पहुंचा है, समझ में आ रहा है। मैं इस बात को समझाऊं यार कि दिन के गुलाम है, काम तो करना ही है। मर्द के साथ तो एक बद्दुआ चल रही है भाई कि बाबू कुछ भी कर लो, पेट पालना है, घर को पालना है, माँ बाप को पालना है, बच्चों को पालना है, बीवी को पालना है, तो घर के बाहर निकलना है। कोई बात नहीं, वीकेंड में तो मजे करेंगे। हम भी नहीं मानेंगे, बहुत जिद्दी आदमी। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। हमारा एक भी सॉन्ग प्ले नहीं हुआ, आप की थीम अच्छी थी, क्यों सॉन्ग प्ले होता था अभी का? ठीक, देखो शेख साहब, सही टाइम पे रिक्वेस्ट करने पे गाना प्ले हो जाता है आपका, 4 से 5 इज द करेक्ट टाइम। ठीक है, अब उसमें सबसे पहले आप गाना अगर रिक्वेस्ट कर देंगे और बेहतरीन गाना अकॉर्डिंग टू द थीम, तो आपके गाने प्ले हो जाएंगे शेख इरफान अल कासमी साहब। बाकी एक और मैसेज है, यूसुफ साहब कहते हैं, फजील मैं उस कैटेगरी में नहीं हूँ, रात में जागने वाले कबीर की तरह हम लोग जल्दी सो जाते हैं, जल्दी उठते हैं, ऑफिस और बच्ची का स्कूल होता है। हाँ, वीकेंड पे थोड़ा देर से सोते हैं और थर्सडे को थोड़ा बाहर जाते हैं। मतलब वो शादी वाली लाइफ है जो आम तौर पे पब्लिक जीती है ना। देखो क्या है कि जिनका रात का काम है ना, मेरे ऐसे कई दोस्त हैं, मैं क्रिकेट खेलता हूँ ना, तो ऐसे कई हैं, जैसे मेरे एक भाई हैं वो कैप्टन है, वो ऐसे एरोप्लेन वाले नहीं, वो हैं ऐसा शिप चलाने वाले, तो उनका रात का काम होता है अक्सर, उनका भी स्केड्यूलिंग है अपने हिसाब से, तो वो रात का काम करते हैं। तो कहते हैं भाई 12 बजे तक जो सोने मज़ा आता है ना, मैं कहा बढ़िया तो है, अगर आप बेड पर लाश बने 12 बजे तक पड़े हैं तो भाई ज़िंदगी तो आपकी सेट है। कहते हैं भाई रात के 12 दोपहर के 12 बजे तक तो पड़ रहते हैं, लेकिन रात को जगना पड़ता है उनको, तो वो दिन के गुलाम तो नहीं है, लेकिन वो ये कह रहे थे कि यार ऐसा लगता है कि रात का सिक्योरिटी गार्ड हूँ मैं। सोचो बड़ा आदमी, कैप्टन आदमी अगर ये कहे तो कितनी तकलीफ की बात हो जाती है। भाई साहब शिप चलाते, रात को चला रहे कोई है भी नहीं कि मतलब सुबह का अगर वक्त है तो आप नज़ारे भी ले पाएं कि अरे हाँ समंदर में चल रहे हैं, खूबसूरत नज़ारे भी आ रहे हैं, लेकिन उनका काम ऐसा ही है। आगे फिर मुबीन भाई ने इतने सारे सामान जो है वो भेज दिए हैं मेरे पास। कुछ नहीं समझ में आ रहा, इनकी लैंग्वेज बहुत कम समझ में आती है, सिर्फ एक लैंग्वेज समझ में आती है, वो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, आपको और तमाम लिसनर्स को गुड इवनिंग कतर वेलकम शो। बस रोना आ जाएगा साहब, बस थोड़े थोड़े लैंग्वेज समझ में आने लगे हैं वैसे मुबीन भाई के, बहुत ही उम्दा। फिर एक और मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं रात का क्या हूँ, रात के खिलाड़ी हैं, मैं ये समझ लेता हूँ भाई, पता नहीं क्या लिखा है इन्होंने, मैं मान सकता हूँ कि मिस हो गया होगा कुछ लिखने विखने में, लेकिन ठीक है। आपका नाम क्या है? भाई का नाम है अजमी नाम है, ओके बहुत ही उम्दा। लेकिन मुबीन भाई फिर कुछ लिख रहे हैं, वाह साहब रहम करो पूरे कतर में कर दिया एफएम वालों, नहीं मेरा भाई आप तो सबसे अच्छे आदमी हैं यार, गलत बातें नहीं पढ़ूंगा मैं आपके लिए, आपके बारे में ही क्यों ना हो। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं और स्टेमिन बन समीरा की आवाज़ में लाइल में ये गाना 6:13 हमारे स्टूडियो भी घड़ी में, और आज का सवाल रिपीट करते हैं। सवाल बड़ा सिंपल सा है, सवाल ये है कि आप रात के राजा हैं या फिर अगर कहें आसिफ भाई की तरह कि दिन के गुलाम, वो बताइए आप 666-22-107 पे, क्योंकि आज है वीकेंड, आज ही तो आप घूमेंगे फिरेंगे मौज मस्ती करेंगे, तो आज देर रात का हिसाब है या फिर जल्दी सो जाने का हिसाब है? मेरा जल्दी सो जाने का, क्योंकि कल सुबह सुबह मैच है, उस हिसाब से प्लानिंग करनी पड़ती है। बाकी नाइट आउल या फिर अर्ली बर्ड आप क्या हैं? नंबर 666-22-107 जहां पर आप भेज सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं अपना जवाब।

0: आप सुन रहे हैं अनप्लग्ड इवनिंग विद आरजे फजील
1: ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।

0: 6:27 हमारे स्टूडियो की घड़ी में आप सुन रहे हैं शो,
1: आप सुन रहे हैं अनप्लग्ड इवनिंग विद आरजे फजील
2: ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
0: हां जी हबीबी, दिल से देसी। और आज का सवाल था कि क्योंकि थर्सडे है, मैंने सोचा ये सवाल सबसे परफेक्ट है कि आप नाइट आउल यानी कि रात के राजा हैं या फिर दिन के गुलाम। मतलब यानी कि अर्ली बर्ड, अगर आप जल्दी उठते हैं तो आपका काम आपको इजाजत देता है, या फिर आप ऐसे कि नहीं भाई सुबह उठ के देखिए थोड़ी सी दौड़ अगर हो जाए तो मज़ा ही आ जाए। हैं तो वो लोग भी हैं जो योगा करते हैं या फिर रनिंग करते हैं या फिटनेस के लिए कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करने के लिए सुबह जल्दी उठ जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यू नो रात के शिकारी और रात भर जागना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, चाहे वो चिल करना हो OTT प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो मूवी देखना हो या फिर बाहर घूमना फिरना हो या बाहर सिर्फ चाय के लिए निकलना तो बनता है, या फिर अपने फैमिली मेंबर को, क्योंकि वो दिन भर घर पे रहते हैं तो आपका मानना है कि यार कितना भी काम हो थोड़ा निकलना तो बनता है। आप किस कैटेगरी में आते हैं आप ये जरूर बताइएगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6:27। वेल कुछ लोगों ने जवाब भी दिया है और मुझे नहीं पता था कि इस तरह के लोग भी हैं, क्योंकि कुछ लोग ना उल्टा उन लोगों को कह रहेंगे जो रात के लोग हैं वो सुबह वाले रात को भी कह रहे हैं कुछ। जैसे एक मैसेज है किस भाई का, कांगे, हाँ ये अब्दुल भाई हैं। अब्दुल भाई कह रहे थे कि भाई मैं रात वालों को कहना चाहूँगा तुम रात में बर्बाद कर रहे हो, कतर की खूबसूरती असली दिन में। यार ये भी एक डिबेट रही है कि कतर की खूबसूरती दिन की है या रात की है, ये सबसे बड़ी डिबेट है। और मुझे नहीं लगता इस डिबेट में कोई भी जीत रहा है। और अब्दुल भाई ने क्या मतलब कर्री बात कही है, इनने टोका है उल्टा कि यार असली खूब ये रात वालों को बताओ कि रात में जग के क्या तुम चाय पीने जा रहे हो, क्या तुम दुनिया देख रहे हो, रात में लाइटें जल रही हैं, चीजें बिल्डिंग खूबसूरत लग रही दूर से, लेकिन आप समंदर के किनारे रहते हुए आप रात की रोशनी में देखना चाहते हैं कतर को, कैसी बात कर रहे हैं यार आप। आपको अगर घूमना है, आपको कतर की खूबसूरती देखनी, आप दिन में निकलिए मेरा भाई, रात के जो उल्लू है वो उल्लू ही बने पड़े, ये मेरा कहना नहीं है, इनने कहा है, मेरा अजम्पशन है शायद ये ऐसा कह रहेंगे। लेकिन एक और कैटेगरी है जो ये कहती है हम आज दिन में निकल रहे हो, क्या अजीब आदमी हो यार तुम, इतनी तेज तर्रार धूप में दिन में निकल के समंदर को देखना, समंदर के बगल खड़े होना बेवकूफी है, तुम रात को निकलो बीच पे जाओ, रात को समंदर की रेत पे अपना पैर तो जमाओ, तब तो असली मजा है कतर की खूबसूरती देखने का। और कतर की खूबसूरती दो जगह से बहुत ही आला दिखती है, एक आप जब 974 बीच पे रहते हैं तो वहां से वेस्ट बे खूबसूरत दिखता है, बीच पे जब रेत पे ठंडे रेत पे आपका पैर पड़ता है तब भी, और उसके अलावा रात में जब आप कॉर्निश पे घूमते हैं तब भी वो बड़ा खूबसूरत लगता है कि वो रोशनी जो है समंदर में पड़ रही है, तो असल खूबसूरती तो वो दिन के धूप में कौन निकलता है मेरा भाई। तो हर तरह की ये दो एक्चुअली हर तरह की भी नहीं, ये दो कैटेगरी जो है आपस में लड़ रही है और ये एक बड़ी डिबेट है, और मुझे लगता है इसका हल इसका जवाब है ही नहीं। अब्दुल भाई ने अपनी बात भले कह दी हो लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसका कोई जवाब है असली, मतलब ऐसा होता है ना कि हाँ इस मुद्दे पे आकर यहाँ ये टॉपिक क्लोज होता है, ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि कतर दिन में भी अच्छा लग रहा है और रात अगर आपने छोड़ दी तो फिर तो रात की खूबसूरती हल्की ठंडी हवा है ना वो आप गवा देंगे, अनलेस अगर आप जून जुलाई अगस्त में निकलना तब तो बहुत ही गर्म होता है रात का माहौल, तो ये डिबेट तो कभी सेटल होने ही वाली नहीं है। बाकी एक और ये मैसेज है किस भाई का है, सलाम लिखा, वालेकुम अस्सलाम जीशान साहब, कहते हैं कि भाई असली मज़ा तो रात का ही है, और चाहे वो खाना हो, घूमना, खाना और कॉर्निश पर दोस्तों के साथ पैदल चलना, आए हाय। अच्छा मैंने ये देखा है कि जो दोस्त यार है ना वो कॉर्निश पे ज़्यादा नहीं, कॉर्निश से थोड़ा जो पर्ल वाली जगह है ना वो पर्ल नहीं जहाँ पर पर्ल बना है, जहाँ पर अरे यार वो पर्ल की डिज़ाइन है ना वो इस्लामिक आर्ट से पहले, वहाँ पर मैंने बहुत भीड़ देखी है भाई, तो नेपाली भाई लोग, बांग्लादेशी भाई लोग, कितने भी मतलब ऐसा लोग सारे उधर ही पहुंच जाते हैं, एक अलग ही वहां पर सुकून है लोगों का। फिर आगे सलमान साहब का मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, भाई कतर दिन और रात दोनों अच्छा लगता है लेकिन मेरे हिसाब से रात को ज़्यादा बेहतर है। हाँ मैं भी ये बात मानता हूँ कि रात को ज्यादा बेहतर है, और दिन में आप अगर निकलना चाहते हैं, दिन में अगर आप कतर की खूबसूरती देखना चाहते हैं, तो वो फिर अक्टूबर के एंड से शुरू होती है या 15 के बाद, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, ये 5 महीने होते हैं काइट फेस्टिवल से लेकर फूड फेस्टिवल तक का मजा क्या गजब का होता है। और उसके अलावा ईद, अब तो ईद और बकरी जो पड़ेगी वो थोड़े थोड़े हल्के मौसम में पड़ेगी, तो ये और बेस्ट बात हो जाएगी, चाहे वो दिन का वक्त हो चाहे वो शाम का वक्त हो, दोनों वक्त जो है वो मजा आने वाला है। फिर एक और ये मैसेज है और नाम है इनका, सलाम लिखा, वालेकुम अस्सलाम भाई, मेरे को ढूंढना क्यों पड़ रहा है, सारे नाम ढूंढने पड़ रहे हैं मेरे को, नाम साद, साद साहब क्या कह रहे हैं, भाई दिन को, हाँ ये मैं डर भी रहा था लेकिन बहुत सही बात लिखी एक्चुअली इन्होंने, कह रहे दिन को अगर बाहर निकलो तो सन्नाटा मिलता है, कहीं कहीं होता है भाई, कहीं ऐसा ना हो कि मैं गलत पढ़ जाऊं, और गलत मैं नहीं पढ़ जाऊं, लोग कुछ गलत लिखें और मैं पढ़ जाऊं तो, लेकिन साथ भाई ने सही लिखा है कि दिन में आप निकलते हैं ना तो थोड़ी भीड़ जो है ना वो आपको कम मिलती है, और जब भीड़ कम मिलती है तो मजा नहीं रहता, कुछ लोगों को भीड़ से मजा आता है भाई। ये बात काफ़ी हद तक से दिलबर अली का, सलाम आया, वालेकुम अस्सलाम मेरा भाई। और फिर फजल भाई, ईद बकरा ईद की बात बहुत मुश्किल कर रहे हो भाई आप, बहुत टाइम बाकी है अभी से बोलकर हमारे मन में खुजली क्यों मचा आपके दिल में कलेजा आ गया क्या कलेजी का चक्कर बाबू भैया, कलेजी का चक्कर बड़ा ही खराब है ओके फिर बाकी मुबीन भाई का मैसेज है और बहुत लंबा ऑडियो है, ये ऑडियो कुछ देर बाद हम सुनेंगे फिर हम इस पर बात करेंगे। एक और ही मैसेज है, सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम मेरा भाई, नाम आपने लिखा नहीं, अगर नाम लिखा होता तो बढ़िया होता। फिर एक और ही मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु, असलम अली क्या कहते हैं, लंबा मैसेज है, फजील भाई कैसे हैं आप, मैं बहुत अच्छा हूँ भाई, आप सुनाएं आप कैसे हैं। फजील भाई, अक्टूबर के बाद एंड में सुबह का एक अलग ही मज़ा है और रात का एक अलग ही मज़ा है। हाँ देखो ना, मैं वही कह रहा हूँ कि ये दोनों, चाहे वो रात का वक्त हो चाहे वो दिन का है, आप डिबेट वाले बंदे बैठा दें, एक जो दिन को बहुत पसंद करते हैं एक जो रात को बहुत पसंद करते हैं, कोई जवाब निकलेगा नहीं, ये वही हो जाएगा टीवी में दो पॉलिटिशियन आए दोनों बहस कर रहे हैं लेकिन उसका कोई हल नहीं निकला, मुद्दे का कोई हल नहीं निकला, उल्टा एक दूसरे को उल्टी सीधी बात सुना कर गए आगे लिखा है भाई ने, एवरी टाइम हर वक्त मजा है, और गर्मियों में इतनी सिर्फ रात में थोड़ा अच्छा लगता है, वरना तो कोई भी प्लेस इतनी अच्छी न लगती गर्मियों में, और सर्दियों में छोटे सी छोटी जगह भी बहुत खूबसूरत लगती है, ये मैं फील किया है इतने सालों में। हाँ ये काफ़ी सही बात है, आप मतलब दिन में मुझे लगता है सिर्फ दो ही लोग निकल रहे हैं बाहर यार, जब एक्सट्रीम हीट होती है, एक जो सही में बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम के लिए निकल रहा हो, है ना, दिन में अनलेस कार वाले तो निकल रहे हैं वो अलग बात है, उसके अलावा जो पैदल चलने वाले कि उनको बहुत ज़रूरी काम है तो निकल रहे हैं, या फिर अगर कोई घूमने निकल रहा है तो मैं उसको एक कैटेगरी है उसमें रखना चाहूँगा, वो थोड़ा थोड़ा बोलने में अजीब लगता है बट बेवकूफ़ टाइप का नाम है उसका कुछ तो ये दो लोग हैं जो बाहर निकलना, एक तो ज़रूरी है और एक तो बड़ा अजीब। फिर उसके बाद एक और मैसेज है, जेब में अगर पैसा हो तो दिन भी अच्छा लगता है रात भी। फजील भाई रहमान साहब क्या बात है मेरा भाई, जो आपने एक आंख मारी हुई है ना अपने प्रोफाइल में, ऐसा लग रहा है कि आपने आंख दबाते हुए ये बात कही है, जब जेब में पैसा हो। हाँ ये भी सही है, जेब में पैसा हो तो आप गर्मी में दिन में निकल जाए एक अच्छे से बढ़िया रेस्टोरेंट जो बहुत ऊपर से खूबसूरत व्यू देता हो। मेरे को एक ऐसा रेस्टोरेंट का नाम याद है लेकिन बोलूंगा नहीं भाई बाहर कोड़े वाला आदमी बैठा हुआ है, चिपका देगा चटाक से, तुम लोगों के चक्कर में हमारी हो जाएगी। फिर उसके बाद एक और ये मैसेज है रिजवान भाई का, फजल भाई हम दोनों टाइम के बादशाह हैं, कभी भी उठा लो। अरे ये कौन सी बात है यार, और कैसे लिखा हुआ है इन्होंने कि कभी भी उठा लो, क्या आपको मैं कोई गुंडा लग रहा हूँ यार क्या इनको ऐसा लग रहा है कि फजील को पैसे दो तो ये उठवा लेगा कि भाई इसको रकम दो ये फजील उठवा लेता है, फजील का काम यही है उठाने का ये भाई इतना ही उठने का शौक है तो शादी कर लो भाई जा बजा उठते ही दिखोगे हर जगह भाई। रिजवान साहब, बाकी सलाम अलैकुम। फिर उसके बाद आसिफ भाई कुछ टाइप कर रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक का वक्त आ गया है और काफ़ी लोगों ने दिन और काफ़ी लोगों ने रात के बारे में बात करी है और अब वक्त है कुछ कहने का। और कहना क्या है आपको वो आप डिसाइड करिए। खत अगर लिखना हो या एक दूसरे को, चाहे वो रात का कोई शौकीन, अगर आप दिन के हैं तो रात वालों को लिखो कि भाई रात को निकलना क्यों सही है या क्यों सही नहीं है, और अगर आप रात के शौकीन हैं तो दिन वालों को लिखो कि क्यों शौकीन लोग जो दिन के हैं उनको क्यों निकलना चाहिए और क्यों नहीं निकलना चाहिए। ठीक है, तो आप कुछ भी सजेशन देना चाहें तो क्या देंगे, या अपनी तरफ से अगर आप नाइट आउल हैं तो क्या तारीफ करना चाहेंगे रात की, और अगर आप दिन के शहंशाह हैं तो दिन की क्या तारीफ करना चाहेंगे वो आप बताएं। नंबर है 666-22-107। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपके बाकी मैसेज की तरफ बढ़ेंगे। आसिफ भाई लिख रहे हैं, फजील भाई क्या मजनू उदय शट्टी समझा है? हाँ नहीं तो भाई बताओ, कह रहे हैं मेरे को कभी भी उठवा लो। ये कोई, ये क्या लैंग्वेज है? बड़ी खराब लैंग्वेज है भाई साहब आपकी। बाकी ये लाजवाब गाने सुनो FM 107 पे फजील के साथ दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: कंसिस्टेंसी इज द की, ये तो सुना ही होगा आपने। और इसी कंसिस्टेंसी के साथ अगर हमने हमारी दुनिया का ख्याल किया और एनर्जी को सस्टेन करने में आगे हाथ बढ़ाया तो यूं समझिए कि हमने हमारे कल को एक तोहफा दे दिया। सो सस्टेन द फ्यूचर हर फ्राइडे दोपहर 2 बजे से आरजे सफा के साथ छोटे छोटे कदम उठाएं एक बेहतर और सस्टेनेबल मुस्तकबिल के लिए। ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
3: म्यूजिक सिर्फ आवाज नहीं एक एहसास है। कभी हमें पुरानी यादों में ले जाता है, कभी नए सपने दिखाता है। मैं हूं आपकी ए फॉर अमिता और मैं आपके लिए लेकर आ रही हूं द रिक्वेस्ट शो। चाहे वो किसी की याद में एक दर्द भरा गाना हो या दोस्तों के लिए एक मस्ती भरा ट्रैक, हम बनेंगे आपकी आवाज। डेडिकेट कीजिए अपनी फेवरेट हिट सॉन्ग्स अपने अपनों को और बनाइए हर पल को खास।

0: सिर्फ आपके लिए संडे टू थर्सडे शाम 4 बजे से ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी। इंसान आसमान से इस दुनिया में उतारा गया है और उसे दोबारा आसमान की तरफ ही लौटना है, इसलिए इंसान के रब ने आसमान से एक रस्सी लटकाई और फरमाया, सब मिलकर इस रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में तफर्रका ना डालो। यह रस्सी ये हबले मतीन है कुरान करीम। आइए तलहा अशरफुल जमान के साथ सुनिए एक खास प्रोग्राम पर्ल्स ऑफ द कुरान, जहां हम तलाश करेंगे कुरान के वो मोती जो हमारी जिंदगी को सवार दें। हर हफ्ते इतवार से जुमेरात सुबह 11 बजे से सिर्फ एफएम 107 पर।
1: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please?
0: गानों की पीछे की कहानी, लेटेस्ट ट्रेंड्स और ढेर सारी मस्ती आपका पसंद

0: सुनिए टॉप 10 विद ए फॉर अमिता हर फ्राइडे शाम 6 बजे से सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी।
1: कहते हैं जिंदगी एक रेस है, लेकिन क्या आप इस रेस में भागने के लिए तैयार हैं?
2: आपका करियर सिर्फ एक जॉब नहीं, आपके फ्यूचर की डायरेक्शन है। तो फिर सवाल ये है कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं?
1: नए करियर्स, फ्यूचर स्किल्स, चेंजिंग जॉब मार्केट और वो अपॉर्चुनिटीज जो आपके मुस्तकबिल को नई राह दे सकती हैं। सुनिए प्रोग्राम फ्यूचर करियर, फ्यूचर करियर आरजे महविश खान के साथ हर मंडे शाम 7:15 बजे से ओनली ऑन FM 107। अपने करियर का अगला कदम सोच समझ कर उठाइए। दोस्तों, हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ई गेट सर्विस सफर करने वालों के लिए एक मॉडर्न और फास्ट फैसिलिटी फराहम करती है। इस सिस्टम के जरिए आपको लंबी लाइंस में वेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि आप अपने पासपोर्ट, आईडी कार्ड या कतर डिजिटल आईडी एप्लीकेशन से यूज करके ट्रेवल प्रोसीजर्स कुछ ही सेकंड्स में कंप्लीट कर सकते हैं। ये फैसिलिटी सिर्फ सिटीजन्स और रेसिडेंट्स ही नहीं बल्कि उन बच्चों के लिए भी अवेलेबल है जिनकी हाइट 130 सेंटीमीटर से ज्यादा है। साथ ही व्हीलचेयर यूजर्स, सीनियर सिटीजन्स और पर्सन विद डिसेबिलिटीज भी इस सर्विस का आसानी से फायदा उठा सकते हैं। इस सर्विस का मकसद सफर करने वालों के लिए प्रोसेस को ज्यादा कन्वीनियंट, क्विक और यूजर फ्रेंडली बनाना है। वजारत दाखिला का कहना है कि ई गेट सर्विस की वजह से एयरपोर्ट पर भीड़ कम होती है, क्यूज छोटी होती हैं और हर एक मुसाफिर का एक्सपीरियंस स्मूथ और स्ट्रेस फ्री बन जाता है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की दुआ करता है। सेफ रहें और खुश रहें।
0: आप सुन रहे हैं अनप्लग्ड इवनिंग विद आरजे फजील
2: ओनली ऑन
3: FM
2: 107 दिल से देसी।
3: FM 107 दिल से देसी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। FM 107 पे इस्तकबाल है आप सभी का। 6:48 हमारे स्टूडियो की घड़ी में और वक्त आ गया कि लोगों के मैसेज पढ़ लिए जाएं बाकी के। और ये मैसेज एक्चुअली मैसेज वो वाले हैं कि खत है एक तरह से। तो दिन वाले रात को बता रहे हैं कि रात अच्छी की होती है, सॉरी दिन वाले रात वाले को बता रहे हैं कि दिन क्यों अच्छा होता है और रात वाले दिन को बता रहे हैं दिन वाले रात को नहीं नहीं रात वाले दिन को बता रहे हैं कि दिन अच्छा क्यों है। नहीं नहीं नहीं रात वाले दिन को बता रात वाले दिन वालों को बता रहे हैं कि रात अच्छी क्यों है और दिन वाले रात वालों को बता रहे हैं कि दिन अच्छा क्यों है। ठीक है, हो गया क्लियर? अब थोड़ा थोड़ा मेरे को नहीं हुआ लेकिन हो गया क्लियर। 6:48 और मैसेज की तरफ अगर हम बढ़े तो एक भाई का मैसेज है, क्या कहते हैं, भाई ड्यूटी ऐसी है कभी सुबह की और कभी रात की, टिक नहीं पाते, क्या करें यार। ये भी एक मसला चल रहा है। और हाँ, ये भी है ना कि आपका बॉस डिसाइड करते हैं। और असल में ये बात कितनी सच है कि आप दिन और रात के सौदागर हो ही नहीं सकते भाई। रात के राजा वही हो सकते हैं जिनके पास दिन का टाइम है। और एक भाई ने ये बात लिखी भी नहीं है लेकिन रिजवान साहब बहुत ही उम्दा, क्या कर सकते, ये तो मजबूरी वाली बात है। फिर आमिर भाई ने लिखा है कुछ, कहते हैं दिन वाले लोगों को रेस्टो भी बंद मिलेगा, इनको बोलो रात के राजा बने। ये तो जो आपने साफ धमकी दी है लॉजिक के साथ, वो मुझे काफ़ी अच्छी बात लगी। क्योंकि सच बात तो ये है कि आप कितने भी रात के हिसाब से टहले घूमें या दिन के हिसाब से, लेकिन आपको देखना भी पड़ेगा ना कि दिन में मिल क्या रहा है। आमतौर पर अगर आप बाहर निकलते हैं तो खाने पीने का तो सोचते ही हैं। अब दिन में आपको सिर्फ शौरमा मिल सकता है बढ़िया प्रॉपर, अगर आप खाना खाना चाहें तो। वो वाली जो बात है ना रात वाली, ना ना ना वो नहीं आती है। पता नहीं क्यों ऐसा होता भी है कि आप रात को खाना खाने जाएं तो टेस्टी लगता है, सेम प्लेस पे दिन में खाना खाने जाएं तो मजा नहीं आता यार। पता नहीं आपके साथ हुआ है कि नहीं, मेरे साथ तो मेरे को ऐसा लगता है कि दिन में यार वो मजा नहीं आता है। फिर एक और मैसेज है और नाम है साजिद साहब, और साजिद भाई ने कहा है भाई कतर तो दिन में ही अच्छा लगता है, वेदर रात को अलाउ करता है, बस ये डिफरेंट है, ये डिफरेंस है। हाँ, ये देखो ये वही वाली बात है जो मैं कह रहा था कि इतनी गर्मी होती है कि आप चाहकर भी दिन में निकल नहीं सकते भले आप दिन के राजा हो। तो ये एक्चुअली अपने ऊपर नहीं है, ये बस बात है कि क्या बात है यार।

0: इतनी गर्मी है, निकल ही नहीं सकते। फिर एक और मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड वन काहे बात को लेकर गुड वन कह रहे हैं, आधे अधूरे में छोड़कर चले जाते हैं लोग, मेरे को समझ नहीं आता क्यों कहते हैं। फिर उसके बाद आदिल भाई का मैसेज है, ये कहते हैं नाइट आउल होना डिसाइडेड करता है ड्यूटी पे, डिसाइड करता है ड्यूटी पे, नाइट आउल होना डिसाइड करता है ड्यूटी पे। हाँ, दैट्स नॉट अ चॉइस, डेज इज ईजी टू कम्यूट एज वेल, दिन सही है कम्यूट करने के लिए। भाई यार क्या लिखा है। फिर देर रात को जिनको कार नहीं है वो दिन को लाइक करते हैं। थोड़ा रुक जाओ, मैं एक मिनट समझ लूं। देर रात को जिनको कार नहीं है, जिनके पास कार नहीं है वो दिन को लाइक करते। ओहो भाई साहब, बफरिंग मोड में चला जाता हूं मैं। पता है ये लेटर पढ़ने के बाद मेरे को जैसी शो खत्म होता है मुझे पानी की जरूरत पड़ती है, इतना ज्यादा दिमाग गर्म हो जाता है भाई, मेरे अंदर का पानी एकदम गल जाता है, सूख जाता है। देखा, नाइट आउल होना डिसाइड करता है ड्यूटी पे। ऑब्वियसली अगर आपकी ड्यूटी सुबह की है तो आपको नाइट आउल होना पड़ता है, और रात की है तो दिन। फिर दैट्स नॉट अ चॉइस, हाँ नाइट आउल होना चॉइस नहीं है, ये डिपेंड करता है चाहे नाइट हो चाहे वो दिन की बात हो। दिन में आप कम्यूट भी कर लेते हैं, काफ़ी हद तक बात सही है। देर रात को जिनके पास कार नहीं है, हाँ यार ये तो इनने काफ़ी दर्द भरी बात कह दी है कि कार अगर आपके पास नहीं है तो आप रात के राजा बन ही नहीं सकते। फिर रशफाक भाई का मैसेज है, जो सुबह जल्दी उठने का मज़ा है ना वो मुझे नहीं चाहिए। ये वही वाली लाइन है जो शुरुआत में मैंने आके अभी मारी थी कि बाहर खाने में इतना मज़ा आने लगा है कि अब अम्मी के स्वाद में भी, अम्मी के हाथ में भी वो मज़ा नहीं रहा। मीम की लाइन अगर लिखी जाए तो वो कुछ ऐसी होगी कि बाहर खाना खाने के बाद एहसास हुआ कि माँ तेरे हाथ से जायका जा चुका है। ओके, फाइटर भाई ने गुड नाइट लिख दिया, गुड नाइट मेरा भाई, सो जाओ अब तुम, ड्यूटी करके आए लग रहा है। आसिफ भाई क्या लिखते हैं, आसिफ भाई ने लिखा है, मैं भी वही बोल रहा हूँ भाई, ये अलग लेवल का बंदा है जिसको दिन में कतर पसंद आता है,
1: मेरे को भी आता है।
0: फिर भाई से मैं एक सवाल पूछता हूँ, तो इसमें ग्रेविटी कहाँ गई, कतर सिर्फ नाइट में अच्छा लगता है, दिन में सिर्फ काम अच्छा लगता है। एक्सेप्टेड। मैंने जिंदगी में एक बहुत बढ़िया चीज निकाल के रखी है, आप दूसरों की कही बात पे एक्सेप्ट कर ले, बहस करने की जरूरत ही नहीं है, हर इंसान का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है भाई। मोमिन भाई ने खूब सारा लिख दिया है माशाल्लाह, बाद में पढ़ के हम रिप्लाई करेंगे। कुछ हो साहब, दिन का राजा 8 बजे ही खत्म हो जाता है। थोड़ी थोड़ी बात समझ में आती है। खैर अब जो हमारे पास मैसेज खत्म हो चुके हैं और मेरे पास एनर्जी और पानी दोनों खत्म हो चुके हैं, इसके बाद जब जाके ऐसा पानी पीऊंगा मैं, थक गया भाई मैं। 6:53 भी हो रहा है स्टूडियो की घड़ी में, और मेरा भी तो वीकेंड शुरू होने दो। दर्शन रावल की आवाज में इस गाने के साथ आपका साथ होने वाला है, आपका सफर होने वाला है, और मुझे इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह मुलाकात होगी संडे को शाम 6 बजे, और ये 2 दिन जम के मजे करना। अगर कहीं मैं मिलूंगा तो हो सकता है बीच पे मिल जाऊं, मैं रात को ही मिलूंगा, दिन को ठेंगा मेरा निकले, मेरा कदम भी बाहर ना पड़े यार दिन को। तो चोगाड़ा ये गाना दर्शन रावल की आवाज में FM 107 पे, दिल से दही से।

0: का नाम भी है, इमोशंस का नाम भी है, और स्पोर्ट इंसानी वीकनेस का भी नाम है। जिदान ने उस रात एक गलत डिसीजन लिया, लेकिन उनकी कहानी उस डिसीजन पर खत्म नहीं हुई। उन्होंने रियल मद्रिद के साथ अपने कोचिंग करियर में एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस हासिल की। 25 सितंबर को तुर्की के खिलाफ जब जिदान पहली मर्तबा फ्रांस के डगआउट में कॉम्पिटिटिव मैच के लिए खड़े होंगे, तो फुटबॉल की दुनिया एक बार फिर उनकी तरफ देखेगी। इस बार सवाल ये नहीं होगा कि जिदान अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं या नहीं, सवाल ये होगा क्या जिदान फ्रांस को दोबारा दुनिया के टॉप पर ले जा सकते हैं, क्या वो 1998 की यादों को 2030 की रियलिटी में बदल सकते हैं, क्या वो डेशॉम्प के सक्सेसफुल एरा के बाद फ्रांस को एक नई आइडेंटिटी दे सकते हैं, और क्या वो अपनी कहानी का सबसे खूबसूरत चैप्टर अब कोच के तौर पर लिखेंगे। जवाब अभी बाकी है, लेकिन एक बात तय है दोस्तों, जिनेदिन जिदान की कहानी 2006 के हेडबर्ट पर खत्म नहीं हुई, वो कहानी अभी भी जारी है और शायद असल गेम चेंजर अब शुरू हुआ है। गेम चेंजर सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शहबाज अंसारी को दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।
1: गेम चेंजर सीजन 2
2: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।

वेलकम टू अ सेगमेंट कॉल स्मार्ट मनी. मैं हूं आपकी दोस्त आपकी होस्ट नासिया. आज दोस्तों इस सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं इमरजेंसी फंड की, यानी मुश्किल वक्त का सबसे बड़ा आपका सहारा. वैसे तो अल्लाह ही है, लेकिन हाँ फाइनेंशियली अगर सहारा देखा ढूंढा जाए तो ये वही फंड है. आज हम एक ऐसे फाइनेंशियल टॉपिक पर बात कर रहे हैं जो शायद इन्वेस्टमेंट बिजनेस या फिर लग्जरी स्पेंडिंग जितना एक्साइटिंग ना लगे, लेकिन असल में ये हर घर और हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है. इमरजेंसी फंड. जिंदगी में बहुत सी चीज़ों की प्लानिंग की जा सकती है, लेकिन हर चीज़ को प्रेडिक्ट करना नामुमकिन है. कभी कुछ भी अचानक हो सकता है, गाड़ी खराब हो गई, जॉब चली गई या कोई और सिचुएशन. उसका सामना करने के लिए क्या हम तैयार हैं? ऐसे वक्त में वैसे तो तैयारी होती ही होगी, लेकिन एक जो बड़ी तैयारी है वो है पैसों का इंतजाम. अब ये सवाल जो है इसका जवाब हमें ढूंढना है इमरजेंसी फंड्स के थ्रू. देखिए इमरजेंसी फंड्स होते क्या है? इमरजेंसी फंड वो पैसा होता है जो खास तौर पर अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस के लिए अलग रखा जाता है. ये पैसा आपके वेकेशन, शॉपिंग या अननेसेसरी एक्सपीरियंसेस के लिए या अननेसेसरी एक्सपेंसेस के लिए नहीं होते. ये सिर्फ उन सिचुएशंस के लिए होते हैं जब जिंदगी अचानक कोई चैलेंज सामने ले आए. इसलिए आप फाइनेंशियल फर्स्ट एड बॉक्स भी कह सकते हैं. जिस तरह घर में इमरजेंसी मेडिसिन रखी जाती है, उसी तरह फाइनेंशियल इमरजेंसीज के लिए इमरजेंसी फंड रखे जाते हैं. अब इमरजेंसी फंड्स की अहमियत पे बात करते हैं, और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि फाइनेंशियल स्ट्रेस को ये कम कर देता है. जब अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस सामने आए और आपके पास रिजर्व पैसा मौजूद हो, तो आप पैनिक और टेंशन कम करते हैं या कम होती है. बहुत से लोग आपने देखा है कि इमरजेंसी की सूरत में लोन लेते हैं या फिर क्रेडिट कार्ड्स पर डिपेंड करते हैं. इससे फाइनेंशियल प्रेशर और बढ़ सकता है, लेकिन इमरजेंसी फंड आपको इसकी ज़रूरत से बचाते हैं या आपको फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस देते हैं. आज की दुनिया में जॉब्स और इंडस्ट्रीज तेज़ी से चेंज हो रही हैं. कभी कंपनी रीस्ट्रक्चरिंग करती है, कभी रोल चेंज हो जाता है, कभी इंसान खुद बेहतर अपॉर्चुनिटी के लिए ट्रांजिशन करता है. ऐसे वक्त में इमरजेंसी फंड एक सेफ्टी कुशन का काम करता है. यह आपको वक्त देता है कि आप बेहतरीन डिसीशंस ले सकें, सिर्फ मजबूरी की बुनियाद पर नहीं. वहीं इमरजेंसी फंड सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि पूरी फैमिली के लिए सिक्योरिटी का सोर्स होते हैं. अगर घर में किसी को हेल्थ इशू हो या कोई ज़रूरी एक्सपेंस आ जाए, तो फाइनेंशियल प्रिपरेशन फैमिली को बहुत सी परेशानियों से बचा सकती है. कि हर बड़ी चीज़ की शुरुआत छोटे कदम से होती है. रेगुलर

फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ जाते हैं। बस आखिर में दोस्तों मैं यही कहना चाहूंगी कि जिंदगी में हम हर कोई चैलेंजेस जो है उनका सामना करते हैं, वो चैलेंजेस सामने आते हैं और हम उन्हें रोक नहीं सकते, लेकिन उसके लिए खुद को तैयार जरूर कर सकते हैं। इमरजेंसी फंड हमें ये यकीन दिलाते हैं कि अगर कोई कल अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन हमारे सामने आ जाए तो हम घबराने की बजाय उसका सामना करें। लग्जरी चीजें हमें खुशी दे सकती हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट्स हमें ग्रोथ देती है, इन्वेस्टमेंट्स हमें सिक्योरिटी देती है। और अक्सर जिंदगी में सिक्योरिटी वो बुनियाद है जिस पर कॉन्फिडेंस, स्टेबिलिटी और कामयाबी की इमारत खड़ी होती है। तो बस जाते जाते आपसे यही कहूंगी कि इमरजेंसी फंड अमीर बनने के लिए नहीं है, बल्कि मुश्किल वक्त में मजबूती से खड़े रहने के लिए है। जब आपके पास फाइनेंशियल बैकअप होता है तो आप सिर्फ पैसे नहीं बचाते बल्कि अपने पीस ऑफ माइंड को भी महफूज करते हैं। बस मैं उम्मीद कर रही हूँ कि अल्लाह ना करे हम में से किसी को भी इस तरह के अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन का सामना करना पड़े, लेकिन फिर भी तैयारी तो हमें करनी चाहिए। बाकी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आज नहीं, कल करेंगे। अभी के लिए मुझे यानी नासिया और शकीब अहमद, हम दोनों को इजाजत दीजिए। देखते हो सुनते रहिए FM 107।

Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Main Duha wala Kabir FM 107 pe and welcome to another tech update. तो भाई साहब हमने एप्पल को बहुत जम के रिव्यू कर लिया है, हम देखो क्या होता है. अभी फिलहाल जो मैं कुछ क्रेजी वेबसाइट्स आपको बताने वाला हूँ, उसके बाद एक मेजर रिव्यू. गेमिंग की दुनिया में बहुत ज्यादा ही हलचल हो रही है. सबसे पहले एक बहुत ही क्रेजी वेबसाइट जिसका नाम है cleverhumanizer.ai, cleverhumanizer, क्लेवर चालाक वाला क्लेवर ह्यूमनाइजर, ह्यूमन लिखिएगा फिर आइजर, IZER.AI. अभी वेबसाइट पे जाके आपको क्या मिलेगा, आपको ये पता लग जाएगा कि किसी ने आपको जो टेक्स्ट भेजा है वो जो टेक्स्ट है क्या वो टेक्स्ट AI से लिखवाया है या खुद लिखा है. कितनी अच्छी चीज है ना चोरी पकड़ने के लिए. तो आपके पास अगर कोई भी मैसेज आता है जो आपको लगता है यार ये इस शख्स की तो लैंग्वेज नहीं लग रही है भाई, इस बंदी की भाषा नहीं है, इस बंदी की भाषा नहीं है, तो आप वो चेक कर सकते हैं. सिंपली आप वेबसाइट पर जाएंगे, इस पे जाके आप पेस्ट करेंगे और ये आपको बता देगा कि ये तो हमारी बिरादरी का है मैडम, ये ह्यूमंस ने नहीं लिखा है. एंड दिस वे यू कैन फिगर इट आउट कि सामने वाला तेज है कि आप उससे दो कदम आगे हैं. अगली वेबसाइट की तरफ बढ़ते हैं. ये भी बहुत लोगों के काम आ सकती है. ओके, नोट डाउन कीजिएगा. वेबसाइट का नाम है TrustMRR, ट्रस्ट भरोसे वाला ट्रस्ट, फिर MRR.com, ठीक है. तो TrustMRR.com पे जाके आपको दुनिया भर के वो स्टार्टअप्स की लिस्ट मिल जाएगी जो कामयाब हैं, उनके ओनर्स के बारे में पता लगेगा, उस कंपनी के बारे में पता लगेगा, स्टार्टअप कब शुरू हुआ वो पता लगेगा, आपको एक एक ढांचा मिल जाएगा कि भाई कौन सा स्टार्टअप जो है दुनिया भर में काम कर रहा है. इसमें बहुत कमाल के स्टार्टअप्स हैं, मैं सच बता रहा हूँ, जो आपने सोचे भी नहीं होंगे वो आइडियाज आपको यहाँ से मिल जाएंगे. एंड एग्जीक्यूशन भी मिलेगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ आइडिया दे दिया कि भाई ये काम करो ये खोल लो तुम ये बढ़िया स्टार्टअप है, नहीं. यहाँ पर आपको उन स्टार्टअप्स के बारे में जो कामयाब हैं, जो काफी बढ़िया चल रहे हैं, जिससे लोग इंगेज कर रहे हैं, उनके बारे में पता लगेगा और साथ में ये भी जान पाएंगे कि उन्होंने एग्जीक्यूशन कैसा किया है, क्या चीज उस स्टार्टअप की सबसे ज्यादा लोगों को पसंद आई है और जो सेलिंग पॉइंट है वो आपको यहाँ से मिल जाएगा.

0: तो जो आप जरा नजर रखिएगा। अब तीसरी वेबसाइट की तरफ बढ़ते हैं। तीसरी वेबसाइट जो है इसका नाम है motionbgs.com, motion motion, motion b like basket, g like in gorilla, s like salman, motionbgs.com। जब आप इस वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको कई सारे मोशन लाइव वॉलपेपर्स यहाँ पर मिल जाएंगे कैटेगरी वाइज। अब एनिमे चाहते हैं, गेमिंग चाहते हैं, नॉर्मल चाहते हैं, एस्थेटिक चाहते हैं, नेचर चाहते हैं, एनिमल चाहते हैं, व्हिच एवर टाइप ऑफ वॉलपेपर यू लुकिंग फॉर यहाँ पर आपको मिल जाएगा। बहुत बढ़िया भाई, मैं तो ऐसे एक्सप्लोर कर करके ना जाने कितनी मरतबा दिन में वॉलपेपर चेंज कर चुका हूँ इस वेबसाइट की वजह से। गो ऑन विद इट। अब बढ़ते हैं जरा खबरों की तरफ, क्योंकि खबर जो है तगड़ी भाई। तो इंटेक न्यूज में बताना चाहूंगा आपको, पहली खबर जो है गेमिंग की दुनिया से है, बहुत ज्यादा हलचल मची है। सोनी वर्सेस एक्सबॉक्स की जो जंग है वो वापस सामने आई है। भाई मैं खुद प्लेस्टेशन को ओन करता हूँ, मतलब उनका कंसोल ओन करता हूँ, वो कहाँ से ओन करूँगा। और मैं हाल फिलहाल में सोच रहा हूँ कि क्या हो गया सोनी को, कोई घमंड शमंड आ गया, क्या दिक्कत है। बिकॉज क्लियरली एक्सबॉक्स धीरे धीरे धीरे धीरे रेजिलियंस दिखा रहा है और जंग को और बड़ा करता चला जा रहा है। वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर्स इन द गेमिंग वर्ल्ड हिडेओ कोजिमा, उन्होंने उनका रिश्ता खराब हुआ सोनी के साथ और अब वो एक्सबॉक्स की तरफ चले गए हैं, जहां पे उनके एक्सक्लूसिव लॉन्च होने वाले हैं एक्सबॉक्स के साथ। नॉट जस्ट दैट, प्ले स्टेशन का रिसेंट गेम, एक्सक्लूसिव गेम वुल्वरीन, भाई मुझे ट्रेलर देख के लगा नहीं था कि ये इसके साथ कुछ गलत हो सकता है, मगर वुल्वरीन फेल्ड सो बैडली कि मुझे नहीं लगता कि सोनी रिकवर कर पाएगा। इंसोमनियक का एक लौता अगर कोई बुरा गेम है तो वो यही है, और इंसोमनियक इस धब्बे को मिटा नहीं पाएगा। वो लोग जिन्होंने मेजर स्पाइडरमैन गेम्स बनाए, उन्होंने वुल्वरीन बनाया, ये देख के बहुत तकलीफ हुआ भाई। तो ये थी टेक अपडेट, मैं दुहा वाला कबीर FM 107 पे, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर टेक अपडेट।
1: Maximum music, maximum fun. On FM 107, Dil Se Desi.

हाइलाइट्स में हम बात एक ऐसे पाकिस्तानी हॉकी लेजेंड की करेंगे जिन्होंने अपनी स्पीड स्किल गोल स्कोरिंग एबिलिटी और अटैकिंग स्टाइल से दुनिया भर में अपना नाम बनाया एक ऐसा खिलाड़ी जो पाकिस्तान हॉकी के गोल्डन एरा की पहचान बना और वो नाम है हसन सरदार 22 अक्टूबर 1957 को कराची में पैदा होने वाले हसन सरदार को पाकिस्तान के ग्रेटेस्ट सेंटर फॉरवर्ड्स में शुमार किया जाता है उनका इंटरनेशनल करियर 1979 में शुरू हुआ और 1987 तक जारी रहा इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान के लिए 148 इंटरनेशनल मैचेस खेले और 150 गोल स्कोर किए यानी उनका स्कोरिंग एवरेज एक मैच से भी ज्यादा गोल कर रहा है जो अपने आप में उनकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी गोल स्कोरिंग एबिलिटी का सबूत है हॉकी में हसन सरदार इज अ लेजेंड आज भी कोई भी चर्चा हो हसन सरदार इज अ रेफरल पॉइंट हसन सरदार का नाम सबसे ज्यादा पाकिस्तान के हॉकी के गोल्डन एरा के साथ जुड़ा हुआ है उनकी सबसे यादगार परफॉर्मेंसेस में 1982 हॉकी वर्ल्ड कप शामिल है जो बॉम्बे यानी आज के मुंबई शहर में खेला गया था पाकिस्तान ने टूर्नामेंट जीता और हसन सरदार ने जबरदस्त परफॉर्मेंस देते हुए टूर्नामेंट के लीडिंग गोल स्कोरर का मकाम हासिल किया और उन्होंने वर्ल्ड कप में 11 गोल स्कोर किए और उन्हें मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी करार दिया गया अच्छा हसन सरदार 1982 के लिए खास तौर पर कामयाब रहा अगर देखा जाए पाकिस्तान ने इसी दौर में वर्ल्ड कप और एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीते और स्पेशली जो दिल्ली में हुआ था 1982 का एशियन गेम्स फाइनल हॉकी फाइनल की बात करो दोस्तों और इंडिया को एक के मुकाबले में 7 गोल से पाकिस्तान की टीम ने मात दी थी एंड दैट वॉज अ क्लासिकल मैच हसन सरदार पाकिस्तान की लेजेंडरी फॉरवर्ड लाइन का अहम हिस्सा थे और जहां उनके साथ समीउल्लाह खान कलीमुल्लाह खान ये दोनों भाई थे हनीफ खान और मंजूर हुसैन जैसे ऐसे मशहूर मारूफ खिलाड़ी मौजूद थे पाकिस्तान टीम वाज अ ट्रूली ग्रेट टीम ड्यूरिंग दैट एरा एंड हसन सरदार की सबसे बड़ी कामयाबी 1984 लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में सामने आई पाकिस्तान ने हॉकी में गोल्ड मेडल जीता और हसन सरदार इस हिस्टोरिक टीम का हिस्सा थे ओलंपिक्स में उन्होंने 7 मैचेस में 10 गोल स्कोर किए जो उनकी अटैकिंग क्वालिटी को जाहिर करता है और इसके बाद 1984 ओलंपिक्स में पाकिस्तान का सफर भी शानदार रहा टीम ने केनिया को 3-0 कनाडा को 1 के मुकाबले में 7 गोल से और ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से हराया जबकि फाइनल स्टेजेस में जर्मनी को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दी हसन सरदार ने टूर्नामेंट के दौरान पाकिस्तान के अटैक को लीड करने में अहम किरदार अदा किया अच्छा उनके खास बात यह थी कि बिग मैच परफॉर्मेंसेस उनमें नजर आती थी वो सिर्फ ग्रुप मैचेस में गोल करने वाले खिलाड़ी नहीं थे बल्कि बड़े टूर्नामेंट्स के फाइनल्स में भी अपनी टीम के लिए परफॉर्म करते थे रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने 1982 वर्ल्ड कप 1982 एशिया कप 1982 एशियन गेम्स और 1984 ओलंपिक्स के फाइनल्स में भी गोल स्कोर किया एंड दैट्स अ रिकॉर्ड 1985 एशियन कप में भी हसन सरदार पाकिस्तान के टॉप स्कोरर्स में शामिल रहे और उन्होंने टूर्नामेंट में 10 गोल स्कोर किए और पाकिस्तान को टाइटल जीतने में अहम कंट्रीब्यूशन दिया और अगर सिर्फ नंबर्स की बात करें तो हसन सरदार के करियर के आंकड़े वाकई हैरान कुन है 148 इंटरनेशनल अपीयरेंसेस और 150 गोल्स पाकिस्तान के इंटरनेशनल हॉकी गोल स्कोरर्स की लिस्ट में वो हिस्टोरिकली टॉप प्लेयर्स में शुमार होते हैं लेकिन दोस्तों हमेशा मैं यही कहता हूं कि किसी भी खिलाड़ी की ग्रेटनेस सिर्फ स्टैटिस्टिक्स तक महदूद नहीं है और बात यहां पर हसन सरदार की हो रही है एंड डेफिनेटली स्टैटिस्टिक्स कैन नॉट एनालाइज कैन नॉट इवन इवेलुएट कि क्या ग्रेट प्लेयर रहे हैं अपने जमाने में उनकी असली पहचान उनका ग्रेसफुल प्लेइंग स्टाइल बॉल कंट्रोल स्पीड फिनिशिंग और गोल के सामने बेहतरीन पोजीशन थी जिन्होंने देखा वो वाह वाह करते रहे हैं और जिन्होंने नहीं देखा वो कहते होंगे कि यार हसन सरदार क्या खिलाड़ी थे आज वो सोशल मीडिया पर बैठ के हो सकता है कि इस प्रोग्राम को सुनने के बाद आप लोग भी सोशल मीडिया पर हसन सरदार का नाम को सर्च मारिए और आपको पता चलेगा कि व्हाट अ क्लासी हॉकी प्लेयर ही वॉज अगर अगर यू नो आप स्पोर्ट्स लाइक करते हैं नॉट जस्ट क्रिकेट की बात होती है
हॉकी की बात होती है, एक जमाना पहले हॉकी एंड इंडिया और पाकिस्तान ये एक सिनोनिमस रहा है, हॉकी इंडिया और पाकिस्तान दे डोमिनेटेड द वर्ल्ड हॉकी, और हसन सरदार, जफर इकबाल, मोहम्मद शाहिद ये जितने भी खिलाड़ी थे दे वेर आर्टिस्ट ऑन द फील्ड, एंड उनको देखने के लिए भरपूर दर्शक या ऑडियंस फैंस जो है वो स्टेडियम पर उमड़ पड़ते थे, एंड दैट वाज द मैजिक दैट दीज गाइस क्रिएटेड, और हसन सरदार वाज वन ऑफ द लीडिंग स्टार्स ड्यूरिंग दैट एरा। अच्छा, रिटायरमेंट के बाद हसन सरदार ने पाकिस्तान हॉकी में एडमिनिस्ट्रेटिव और कोचिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी संभाली और नेशनल टीम के कप्तान और चीफ सेलेक्टर के तौर पर भी अपना किरदार अदा किया। दोस्तों, पाकिस्तान हॉकी की तारीख में कुछ नाम ऐसे हैं जो सिर्फ प्लेयर्स नहीं बल्कि एक पूरे दौर की पहचान बन जाते हैं। हसन सरदार भी उन्हीं लेजेंड्स में से एक है। उम्मीद है आपको हमारा आज का ये स्पोर्ट्स सेगमेंट पसंद आया होगा। अगली बार एक और स्पोर्ट्स लेजेंड, एक और अपकमिंग स्टार्स के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीर और साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।

0: दोस्तों, ड्राइविंग के दौरान मोबाइल का इस्तेमाल आपको, आपके घर वालों को और दूसरों की जिंदगी को खतरे में डाल सकता है। अपने मोबाइल को हमेशा साइड पर रखें ताकि अपने साथ साथ दूसरों की हिफाजत को भी यकीनी बनाया जा सके। आपकी ये आदत और एहतियात किसी की जान बचा सकती है। महफूज ड्राइविंग के लिए जरूरी है कि पूरी तवज्जो सिर्फ रोड पर हो और हर किस्म के डिस्ट्रैक्शन से बचा जाए। अपनी और दूसरों की सेफ्टी के लिए ड्राइविंग के वक्त मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें और किसी की जिंदगी को रिस्क में ना डालें। ड्राइव करते वक्त पूरी तवज्जो रोड पर रखिए, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी बड़ा हादसा बन सकती है। ये भी याद रखिए कि आपकी जिम्मेदारी सिर्फ अपनी नहीं बल्कि दूसरों की जिंदगी की हिफाजत भी है। वजारत दाखिला का कहना है कि ये छोटी छोटी एहतियात आपको और आपके आसपास के लोगों को महफूज रखती हैं। जिम्मेदार फर्द होने के फर्ज को अदा करते हुए बहुत ही एहतियात और ख्याल से ड्राइविंग कीजिए। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 448-88-8806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

अलर्ट। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एफएम 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का। मेरा नाम है फजील और ये शो है फ्रॉड अवेयरनेस, जहां हर रोज एक नए जमाने के नए फ्रॉड के बारे में मैं आपको इत्तला करता रहता हूं। चाहे वो मिसिंग डिलीवरी का एड्रेस अपडेट का स्कैम हो, चाहे वो फेक ग्रोसरी कूपन का स्कैम हो, या फिर दुनिया के तमाम कोई ऐसे स्कैम जो लगातार लोगों के साथ हो रहे हैं, जो बहुत ज्यादा वायरल है। वेल, आज एक ऐसे स्कैम के बारे में बात करने वाला हूं जिसका नाम है सेकंड हैंड डिपॉजिट फर्स्ट स्कैम। इससे बचना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि स्कैमर्स ऑनलाइन मार्केट प्लेस का इस्तेमाल करते हैं और उस पे यानी कि ऑनलाइन फेक एड्स भी डालते हैं और कोशिश करते हैं कि किसी तरह एक ऐसे मासूम बंदे को फंसाया जा सके जिसके अकाउंट से पैसा चुराया जा सके। वेल, ये स्कैम काम कैसे करता है उस पर बात करते हैं क्योंकि ये है सेकंड हैंड डिपॉजिट फर्स्ट स्कैम। स्कैमर्स सोशल मीडिया मार्केट प्लेस या फिर ऐसे प्लेटफॉर्म पर जहां पर सेकंड हैंड आइटम्स मिलते हैं, जैसे कि लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक्स, सस्ते काउचेस यानी कि सोफा वगैरह, इन सब की फोटोज पोस्ट करते हैं। बायर्स को अट्रैक्ट करने के लिए ये प्राइसेस को बहुत ही ज्यादा कम करके रखते हैं या फिर सोशल मीडिया पर डालते हैं। जब आप सेलर को मैसेज करते हैं तो वो झूठ बोलता है कि बहुत सारे लोग इसको खरीदना चाहते हैं, और यहाँ पर ही आपके साथ स्कैम हो सकता है क्योंकि जब आपको जल्दबाजी दिखाई जाती है तो एक्चुअली में आपको स्कैम करने की कोशिश की जाती है। जब आप सेलर को मैसेज करते हैं तो कहता है हाँ ये तो अवेलेबल है लेकिन बहुत सारे लोगों ने खरीदने के लिए इसमें चाहत दिखाई है। आइटम को आपके लिए होल्ड करने के बहाने वो आपसे किसी डिजिटल पेमेंट के थ्रू एडवांस डिपॉजिट मांगता है। जैसे ही आप पैसा भेजते हैं, सेलर अपना प्रोफाइल डिलीट कर देता है, आपका नंबर ब्लॉक कर देता है और आपको या आपके कैश के साथ वो शख्स गायब हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता कि उस शख्स को ट्रेस कैसे करें, वो बंदा रहता कहाँ है, ये जो डिटेल्स हैं ये डिटेल्स कैसे, क्योंकि उसमें जो अपडेटेड या उसमें जो एड्रेस भी रहता है ना, उस एड्रेस पर जब आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वहां पर कोई ऐसे ही रैंडम स्टोर है या फिर किसी के घर का रैंडम एड्रेस है, आप पकड़ ही नहीं पाएंगे। कई बार ये एड्रेस ऐसे डाल देते हैं कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। लेकिन इन स्कैम से बचने के सॉल्यूशंस भी हैं। कैसे बचा जा सकता है इन स्कैम से? सबसे पहला तरीका है नो एडवांस डिपॉजिट। जब तक आप खुद सेलर से मिल ना लें और आइटम को फिजिकली चेक ना कर लें, तब तक एक रुपया भी एडवांस पेमेंट ना करें। कोई भी जेन्युइन सेलर डील फाइनल होने से पहले एडवांस होल्ड मनी नहीं मांगता है और आमतौर पर नहीं मांग सकता है, ये भी आप कह सकते हैं। पब्लिक प्लेस में मिले ऐसे लोगों से डील करने के लिए हमेशा किसी पब्लिक और सेफ जगह, जैसे कि मॉल या फिर पेट्रोल पंप पे या फिर बाहर किसी नॉर्मल जगहों पे, वहां पर आप उनसे मिले। किसी के घर अकेले जाने से बचना चाहिए। सेलर की प्रोफाइल को खास तौर पे बहुत डिटेल में चेक करें। अगर सोशल मीडिया मार्केट प्लेस पर खरीदारी करने से पहले आप सही से चेक कर लेंगे, प्रोफाइल सही से चेक कर लेंगे, उनकी रेटिंग, रिव्यूज, अकाउंट या एज चेक कर लेंगे ना, तो आपको बहुत ही ज्यादा या बहुत हद तक आपको डिटेल्स पता चल जाएंगी उस शख्स के बारे में। अगर अकाउंट नया है और कोई रिव्यू नहीं है तो अलर्ट हो जाइए क्योंकि हो सकता है ये एक स्कैम हो। कैश ऑन डिलीवरी या हैंड टू हैंड कैश, हमेशा कोशिश करें कि पेमेंट तभी करें जब आइटम आपके हाथ में हो। किसी भी ऑनलाइन ऐप से या पहले किसी लिंक के थ्रू पैसा बिल्कुल ना भेजें क्योंकि हो सकता है ये जो लिंक है या फिर किसी वाउचर के थ्रू या गिफ्ट कार्ड के थ्रू आपको स्कैम किया जा सकता है। लेकिन फिर भी अगर आपके साथ इन सब के बावजूद, इन सब सॉल्यूशन के बावजूद स्कैम हो गया है तो बचने के सिर्फ दो तरीके हैं। प्लेटफॉर्म पर रिपोर्ट करें, फौरन उस सेलर की प्रोफाइल और एड को फेसबुक पर या फिर जहां पर वो एड आपको दिखा है वहां पर रिपोर्ट करें। उसके अलावा बैंक में जाकर या फिर एप्लीकेशन के थ्रू, बैंक एप्लीकेशन के थ्रू जो ऑफिशियल एप्लीकेशन है उसके थ्रू अपना कार्ड ब्लॉक करवाएं या फिर आप बैंक में डायरेक्ट कॉल करके अपना कार्ड ब्लॉक करवा सकते हैं। और अगर आपने पेमेंट कर दी तो जल्दी से जल्दी साइबर क्राइम में जाकर रिपोर्ट करें, हो सकता है कि आपका पैसा वापस भी आ जाए। तो दोस्तों ये था नए जमाने का नया स्कैम जो हम रेगुलर बेसिस पे आपको डेली इत्तला कर रहे हैं, बता रहे हैं, आगाह कर रहे हैं। उम्मीद है कि ये शो यानी कि ये फ्रॉड अवेयरनेस आपके लिए काफी फायदेमंद रहा होगा। इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत। मुलाकात होगी आपसे कल एक नए जमाने

0: Absolute Cinema.
1: ये है वो reaction जिसके लिए आप theater जाना चाहते हैं, पर reviews वो आपको कई मरतबा धोखा दे देते हैं और आप interval से पहले ही घर पे होते हैं. But don't worry, भरोसेमंद review देने के लिए आपको बस सुनना है FM 107 पर review of the week rolling, ताकि every movie experience बने Absolute Cinema. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. FM 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का. मेरा नाम है फजील और ये शो है रिव्यू ऑफ द वीक. क्या प्लान है यार इस वीकेंड का? कुछ तो आपने सोचा होगा, कहीं जाएंगे, कहीं घूमेंगे. नहीं सोचा है, आपके पास कोई काम नहीं है, तो मुझे लगता है सबसे बेहतरीन है मूवी देख लेना. और मूवी देखने के साथ ही आपका एंजॉयमेंट भी हो जाता है, पूरे हफ्ते भर बात करने के लिए आपके पास टॉपिक भी होता है और फिर आपकी क्रिएटिविटी भी थोड़ी बढ़ रही होती है. तो इस्तकबाल है आप सभी का इस शो में जिसका नाम है रिव्यू ऑफ द वीक
0: एब्सोल्यूट सिनेमा,
1: जहां पर मैं बात करूंगा आज एक ऐसी मूवी के बारे में जो अभी हाल ही में रिलीज हुई है. हिंदी मूवी, काफी लंबे वक्त से हम इंग्लिश मूवी के बारे में बात कर रहे हैं और आज हम एक ऐसी मूवी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम अजीब हैवान. ये मूवी है हैवान, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे. मूड क्या है इस मूवी का, हाइप क्या रही थी, रेटिंग क्या मिली है, फन फैक्ट क्या है प्रोडक्शन के बारे में, डायरेक्टर का विजन, फिल्मिंग लोकेशन, एक्टर ट्रांसफॉर्मेशन और मूवी का दिल, सिनेमाटोग्राफी और साउंड के बारे में भी नजर डालेंगे और प्लॉट क्या रहा है, सब कुछ, सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर मिलेगी. सबसे पहले इस मूवी का मूड क्या है, तो चलिए शुरू करते हैं.
2: सर, सर उसने मुझे देख लिया, सर, सर वो मुझे मार देगा, सर मुझे बचा लो, सर, सर मेरे मुस्कान में.
1: दोस्तों इस फिल्म का मूड शुरू से लेकर आखिरी सीन तक निहायत ही डार्क, इंटेंस और तनाव यानी कि टेंस से भरा हुआ है. डायरेक्टर ने पूरी मूवी में एक ऐसी सस्पेंसफुल वाइब बनाई है जो देखने वाले को लगातार बेचैन रखती है. फिल्म में हंसी मजाक या लाइट हार्टेड मोमेंट बहुत ही कम है और पूरी तरह से एक सीरियस टोन मेंटेन की गई है. जब एक अंधा मार्शल आर्टिस्ट एक मासूम बच्ची को बचाने के लिए निकलता है तो फिल्म का मूड बिल्कुल एक सर्वाइवल बैटल जैसा हो जाता है. ये फिल्म आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहां हर मोड़ पर साजिश, धोखा, खतरा मौजूद है. हर एक सीन में छुपी हुई खामोशी और अचानक आने वाले ट्विस्ट से ऑडियंस के दिल की धड़कन तेज हो जाती है. मूड को मजीद बेहतर बनाने के लिए रंगों का इस्तेमाल बहुत सटीक तरीके से किया गया, जहां गली और अंधेरे बैकग्राउंड से कहानी को संगीन और बनाया जाता है. अगर आपको ग्रिटी और सीरियस थ्रिलर पसंद है तो ये फिल्म बिल्कुल आपके लिए. इस मूवी का हाइप क्या रहा था, इस पर नजर डालें तो फिल्म के रिलीज होने से पहले ही इसका हाइप जबरदस्त मेंटेन था, जिसकी सबसे बड़ी वजह दो बड़े सुपरस्टार्स थे, अक्षय कुमार और सैफ अली खान एक बार फिर से आए और वो भी 18 साल बाद. तो हाइप तो बननी थी यार. दोनों को आखिरी बार 2008 की फिल्म टशन में एक साथ देखा गया था. जैसे ही केवीएन प्रोडक्शन ने इसका ऑफिशियल टीजर और ट्रेलर ड्रॉप किया, सोशल मीडिया पर तो बज बन गई, हलचल मच गई थी. प्रीतम के बनाए हुए गाने, फिर उसके बाद जो टाइटल है उसमें एक दो बार चेंजेस भी आए. लोगों की जो एक्साइटमेंट है वो डबल हो रहा था इस चक्कर में. लोग देखना चाहते थे कि क्या प्रिया दर्शन और अक्षय की जोड़ी फिर से वही पुराना वाला जादू चला पाएगी जो उन्होंने पहले कॉमेडी फिल्मों में दिखाया भी था, क्योंकि इस बार दोनों एक सीरियस क्राइम थ्रिलर के साथ वापस आ रहे थे.
3: अंधा होने से बुरा पता है क्या होता है, बेवकूफ होना.
1: सिनेमा हॉल्स में एडवांस बुकिंग बहुत तेजी से हुई और पहले ही दिन थिएटर्स के बाहर लंबी कतारें जो है वो लग गई थी इस मूवी को देखने के लिए. इस जबरदस्त स्टार कास्ट और बेहतरीन प्रमोशनल स्ट्रेटजी की वजह से फिल्म को लेकर पूरे देश में एक अलग ही लेवल का क्रेज बना हुआ था. कतर में थोड़ा कम, लेकिन ऑब्वियसली इंडिया में बहुत ज्यादा. बात करेगा रेटिंग की, मूवी तो लोगों ने देख ली है. ओवरऑल एक्सपीरियंस, एक्टिंग, डायरेक्शन और टेक्निकल एस्पेक्ट्स के बारे में बात करें तो इस मूवी को रेटिंग 5 में से 3.5 दिए जा सकते हैं. ये फिल्म उन लोगों के लिए एक परफेक्ट ट्रीट है जो क्लासिक सस्पेंस थ्रिलर्स को पसंद करते हैं। हाँ, जो बाकी IMDb जैसे प्लेटफॉर्म है उनकी जनता यू नो इस मूवी को देखने के बाद अलग अलग रिएक्शन दे रही है, एक तरह से कहा जा सकता है मिक्स्ड रिएक्शन जो है वो दे रही है। लेकिन फिल्म का स्क्रीन प्ले और एक्टर्स की बेमिसाल अदाकारी इसे एक बार देखने लायक तो बिल्कुल बनाती है। एक्शन सीन्स और बैकग्राउंड स्कोर के लिए फिल्म को पूरे नंबर मिलते हैं, लेकिन कहानी का थोड़ा लंबा होना इसकी रेटिंग को थोड़ा कम कर देता है। फिर भी अगर आप एक बेहतरीन और बगैर किसी मकसद के थ्रिलर देखना चाहते हैं तो ये मूवी आपके लिए जरूर है। लेकिन हर मूवी का एक प्रोडक्शन का फन फैक्ट होता है, डायरेक्टर का विजन होता है, एक लोकेशन होती है फिल्म की, और फिर एक्टर का ट्रांसफॉर्मेशन, और फिर सिनेमाटोग्राफी और साउंड को लेकर भी बहुत बातचीत होती है। तो अगर हम बात करें फन फैक्ट के बारे में तो प्रोडक्शन के हवाले से इस फिल्म से जुड़े कुछ बहुत ही जबरदस्त फैक्ट्स हैं जो आमतौर पर लोग नहीं जानते। सबसे पहले और अहम फैक्ट ये है कि ये फिल्म दरअसल डायरेक्टर प्रियदर्शन की अपनी 2016 की सुपरहिट मलयालम फिल्म ओपम का ऑफिशियल हिंदी रीमेक है। पता था आपको? नहीं पता था, इसीलिए तो आपको रिव्यू ऑफ द वीक सुनना चाहिए। हालांकि इस मूवी में पहले मोहनलाल ने बेहतरीन काम किया है। इस फिल्म की शूटिंग दिसंबर 2025 में मुंबई के मशहूर सेंट जेवियर्स कॉलेज में मुकम्मल हुई थी। एक और दिलचस्प बात यह है कि इस फिल्म में बॉलीवुड के वेटरन एक्टर असरानी साहब ने भी काम किया है, और उनकी जो मौत है वो अक्टूबर 2025 में हो गई थी, जिसकी वजह से ये जिंदगी की उनकी आखिरी फिल्म बन जाती है। तो अगर आप अक्षय और सैफ के लिए ये मूवी ना देखें तो असरानी साहब के लिए आप देख सकते हैं। पोस्ट प्रोडक्शन का काम जुलाई 2026 तक चलता रहा, जिसमें विजुअल इफेक्ट्स पर बहुत ज्यादा मेहनत की गई है, जो कि इंडस्ट्री के बहुत ही एक बड़े प्रोडक्शन डिजाइनर हैं उनके द्वारा, जिनका नाम है साबू सिरिल। उन्होंने फिल्म के सेट्स को इतना रियल बनाया है कि हर एक लोकेशन कहानी का हिस्सा लगती है। वेल, इस मूवी को लेकर डायरेक्टर का विजन भी है। डायरेक्टर प्रियदर्शन का विजन इस फिल्म को लेकर बहुत क्लियर था। उन्होंने हमेशा एक ऐसी फिल्म पर काम किया जो आम कहानियों से अलग हो। इस बार उनका मकसद एक ऐसी क्राइम थ्रिलर बनाना था जहां इमोशनल डेप्थ और हाई स्टेक्स एक्शन का परफेक्ट ब्लेंड हो। प्रियदर्शन चाहते थे अक्षय कुमार का कैरेक्टर और आम कमर्शियल फिल्मों के हीरो जैसा ना दिखे, बल्कि एक ऐसा लाचार मगर बहादुर इंसान लगे जो अपनी खामोश दुनिया में रहते हुए सब कुछ महसूस कर रहा है, देख रहा है, दुनिया समझ रहा है। उन्होंने साउथ इंडियन सिनेमा के रियलिज्म को हिंदी सिनेमा के ग्रैंड स्केल के साथ जोड़ने की कोशिश की है। उनका फोकस सिर्फ जंप स्केयर्स या सस्ते सस्पेंस पर नहीं था जो आमतौर पर मूवीज में होता है, बल्कि वो कैरेक्टर्स के दरमियान चलने वाली दिमागी जंग को स्क्रीन पर उतारना चाहते। तो उनका ये विजन फिल्म के हर एक फ्रेम और डायरेक्शन स्टाइल में साफ नजर आता है। अगर हम बात करें इसकी लोकेशन के बारे में, यानी कि फिल्म की लोकेशन के बारे में, तो फिल्म की शूटिंग बहुत ही खूबसूरत और अलग अलग लोकेशन पर की गई है, जो कहानी के मूड को मजीद निखारती भी है। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि आपने मूवी बना दी लेकिन आपने हर बात पे कोई एक ऐसी लोकेशन का इस्तेमाल करा जहां पर ग्रीन स्क्रीन है, अब हड्डा होगा उन देखें, तो असलियत जो है वो समझ में आ जाती है मूवी में, और बड़े पर्दे पर तो खास तौर पे। हैवान को, यानी कि इस मूवी को, मुंबई के शुरली और मशहूर इलाकों के साथ कोची, वेंगमोन और ऊटी के हसीन वादियों में शूट किया गया है, जहां एक तरफ मुंबई का बिजी कॉलेज और बिल्डिंग्स वगैरह दिखाई गई हैं, शहरी जिंदगी दिखाई गई है, वहीं दूसरी तरफ ऊटी के ठंडे और कोहरे से ढके हुए पहाड़ फिल्म में एक अजीब और सस्पेंस जो है वो दोनों पैदा करते हैं। दिवाकर मणि की सिनेमाटोग्राफी ने इन रियल लाइफ लोकेशन को स्क्रीन पर इतने शानदार तरीके से दिखाया कि लगता है कि मौसम और जगह खुद कहानी का एक कैरेक्टर है। इन लोकेशन का चुनाव फिल्म के इंटेंस सीन को मजीद ठंडा और डरावना बनाता है, क्योंकि आपकी बॉडी भी ठंडी होनी चाहिए ना मूवी देखते हुए, तो वो फील इस मूवी में लाया गया भाई साहब, बहुत गहराई से सोच जाता है। वेल, एक्टर के ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर बात करें तो इस फिल्म में एक्टर्स का ट्रांसफॉर्मेशन सच में तारीफ के काबिल है। अक्षय कुमार ने एक अंधे मार्शल आर्टिस्ट का किरदार निभाया है जिसके लिए उन्होंने बहुत सख्त ट्रेनिंग ली है। उन्होंने अपनी बॉडी लैंग्वेज, चलने के तरीके और आंखों के एक्सप्रेशंस पर महीनों मेहनत की है। अब इतनी ज्यादा फिल्म बेकार चली जाए, फ्लॉप चली जाए, तो मेहनत करनी पड़ती है, अक्षय कुमार ही क्यों ना हो, है ना। बाकी अक्षय एक रियल विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन लग सकते हैं जब आप मूवी देखेंगे, और लगेगा भी कि यार आंख बंद करके काम कर रहा है अगला आदमी। उनका ये रूप उनके पुराने खिलाड़ी वाले अवतार से बिल्कुल मुख्तलिफ और नया भी है। दूसरी तरफ सैफ अली खान के बारे में अगर बात करें तो सैफ अली खान ने एक कन्विक्स विलेनस शेड वाले कैरेक्टर में खुद को ढालने के लिए अपनी वॉइस मॉड्यूलेशन और लुक को काफी चेंज किया है, जो स्क्रीन पर उन्हें बहुत ही ज्यादा खौफनाक और मेन कैरेक्टर बनाता है।
4: अपने बदले की आग में और कितने मासूमों की जान लोगे तुम?
3: ये आखिरी है।
1: दोनों सुपरस्टार का ये ट्रांसफॉर्मेशन इस मूवी की सबसे बड़ी जान है, क्योंकि उन्होंने अपने आम कमर्शियल लुक्स को छोड़कर कैरेक्टर्स की बुनियादी जरूरतों को अपनाया है। और अगर बॉलीवुड में कुछ चेंज करना है तो मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट यही है, यही चेंज करने की जरूरत है और कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। इस मूवी का सिनेमाटोग्राफी और साउंड भी गजब लाजवाब था। फिल्म की सिनेमाटोग्राफी और साउंड डिजाइन इसके सबसे मजबूत पिलर्स हैं। दिवाकर मणि ने कैमरा के साथ जो काम किया है वो गजब का किया है, काबिले तारीफ है। उन्हें डार्क टोन्स, शेडोज और क्लोजअप शॉट्स का बहुत बेहतर इस्तेमाल करना आता है, जो उन्होंने इस मूवी में दिखा दिया। कैरेक्टर्स के डर को, सस्पेंस को बढ़ाकर दिखाना और फिर चिलिंग स्पाइन तक, यानी कि हड्डियों पे, रीढ़ की हड्डियों तक भेजना, ऑडियंस तक भेजना, पहुंचाना, ये कमाल का काम किया। उसके अलावा रॉनी राफेल का दिया हुआ बैकग्राउंड स्कोर भी गजब का है। अगर आप साउंड की दुनिया में, तो रॉनी राफेल को तो आप जानते ही होंगे। बहुत ही गजब का काम किया उन्होंने। जब स्क्रीन पर खामोशी होती है तो हल्की सी आहट या हवा की आवाज भी ऑडियंस को डराने के लिए काफी होती है। वो सही जगह इस्तेमाल हो जाए तो काम मुकम्मल हो जाता है। साउंड और विजुअल का ये तालमेल फिल्म को एक इंटरनेशनल लेवल की थ्रिलर का दर्जा देता है। तो दोस्तों, ये हमने बात कर ली सिनेमाटोग्राफी के बारे में, एक्टर का ट्रांसफॉर्मेशन कैसा रहा, फिल्मिंग की लोकेशन इंडिया के बाहर ज्यादा नहीं है, डायरेक्टर का विजन क्या था और इस मूवी का फन फैक्ट भी, रेटिंग, हाइप, मूड पर हमने बात कर ली। और अब बात आती सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में कि यार फिल्म को तो हम देख लेंगे लेकिन एक प्लॉट क्या है इसका, वो अंदाजा हो जाए तो पता चल जाएगा। ये तो पता चल गया कि कैरेक्टर क्या है ना। सैफ जो है वो विलन के रोल में है और मार्शल आर्टिस्ट के कैरेक्टर में है अपने अक्षय भाई। तो कहानी शुरू होती है एक रिटायर्ड जज से।
5: शायद कोई हमारा पीछा कर रहा है। एक ही जीप की आवाज बार बार सुनाई दे रही है।
1: जो एक ऐसे कन्विक्ट यानी कि मुजरिम से अपनी बेटी को बचाने की कोशिश कर रहा है जिसे उस जज ने कभी जेल भेजा था। लेकिन कहानी में तब एक दर्दनाक मोड़ आता है जब इस जज का कत्ल मर्डर हो जाता है। अब जज की मासूम बेटी बिल्कुल अकेली हो जाती है और उसकी हिफाजत की पूरी जिम्मेदारी एक अंधे मार्शल आर्टिस्ट यानी कि अक्षय कुमार पर आ जाती है, जो इस जज का बहुत ही वफादार और खास बंदा होता है। एक तरफ एक बेरहम कातिल जो हर हाल में बच्ची तक पहुंचना चाहता है, और दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान जो देख नहीं सकता पर उसकी बाकी सेंसेस और मार्शल आर्ट्स की स्किल कमाल की है। क्या एक अंधा इंसान इस मासूम बच्ची को दुनिया के सबसे बड़े हैवान से बचा पाएगा? अब ये तो आपको मूवी देखकर ही पता चलेगा। ऑल्दो ये जो कहानी का प्लॉट है, शुरुआत का जो प्लॉट है, वो तो बहुत जगह होता है कि बचाना चाहते हैं, लो भैया फादर साहब निकल गए। हालांकि फादर भी कई बार जिंदा होते तो बचा नहीं पाते, तो फिर एक हीरो को एंट्री लेनी पड़ती है और इसमें अक्षय कुमार आए हैं और वो भी अंधे बन के आ रहे हैं, एंड देन मार्शल आर्टिस्ट भी हैं, मतलब मार्शल आर्ट्स उनको आते हैं। सो ही इज यानी कि अक्षय कुमार इज अ ग्रेट गाय इन दिस मूवी, ग्रेट कैरेक्टर, बट जब आप मूवी देखेंगे तो आपको बाकी पता चल पाएगा। परफॉर्मेंस के डिस्कशन के बारे में बात करें तो अदाकारी के मामले में यार ये फिल्म एक मास्टर क्लास है। अक्षय कुमार ने अंधे मार्शल आर्टिस्ट के रूप में अपनी जिंदगी की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस में से एक दी है। ये फिल्म दरअसल उन लोगों के लिए एक बड़ा तोहफा है जो काफी अरसे से अक्षय और सैफ अली खान को उनके पुराने कमर्शियल लुक से हटकर कुछ सीरियस और हटके करता हुआ देखना चाहते थे। और ऊपर से इसमें प्रियदर्शन है, उनका जो डायरेक्शन है, फिर दिवाकर मणि जो है, सिनेमाटोग्राफी उनकी है, यार इन दोनों ने मिलकर जो अभी तक काम किया है ना बॉलीवुड में, वो और कोई कर नहीं पाया। आज भी इनकी मूवी के बारे में बात होती है तो अब सस्पेंस थ्रिलर भी आप देख ही लीजिए। ऑल्दो मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग जो है ना उनको नया ही लगेगी, उन्होंने उपम नहीं देखी होगी। अगर आप मलयाली हैं आपने देख ली होगी, क्योंकि लैंग्वेज का भी एक फर्क आ जाता है। बाकी इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत। नेक्स्ट हफ्ते यानी कि अगले हफ्ते हम मिलेंगे और करेंगे बात नए मूवी के बारे में इसी जगह पे, जिसका नाम होगा रिव्यू ऑफ द वीक। तब तक सुनते रहें FM 107, दिल से देसी।
6: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se Desi.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है, अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए। तलहा अशरफ।

0: एक वार्निंग साइन भी होता है। कभी कभी इंसान को अपने आप से ये सवाल पूछना चाहिए, मैं पहले कुरान ज़्यादा पढ़ता था अब क्यों नहीं, पहले तहज्जुद की तौफीक मिलती थी अब क्यों नहीं। मुमकिन है उसकी वजह सिर्फ मसरूफियत ना हो, मुमकिन है उसकी वजह सिर्फ थकन ना हो, मुमकिन है अल्लाह की तरफ से एक तंबीह हो कि अपने आमाल का जायज़ा लो, अपने गुनाहों पर गौर करो, अपने तौबा की तजदीद करो। सबने कराम बिलाखिर सवाल ये है कि इस फतूर से हम कैसे निकलें। पहला इलाज जैसा कि हमने पहले ही बताया कि नीयत की मुसलसल तजदीद। बाज़ लोग समझते हैं कि नीयत एक बार कर ली तो काफ़ी है। अब इल्म के रास्ते में सबसे बड़ी आजमाइश ये है कि इंसान जल्द नतायज चाहता है, वो चाहता है कि चंद महीनों में आलिम बन जाए, चंद सालों में बड़ा मुकर्रर बन जाए, चंद किताबों के बाद माहिर बन जाए, लेकिन हकीकत ऐसी नहीं। बाज़ औक़ात इंसान मंजिल से चंद कदम पहले ही हिम्मत हार बैठता है, जैसे कोई शख्स ज़मीन खोद रहा हो और ख़जाने से सिर्फ दो ज़र्ब दूर हो लेकिन वो थक कर वापस चला जाए। तो सामने के नाम सब्र ज़रूरी है, इस्तकामत भी ज़रूरी है। अगर आप वाकई हिम्मत में इजाफा चाहते हैं, अगर आप वाकई इल्म में बरकत चाहते हैं, अगर आप वाकई इस्तकामत चाहते हैं, तो अपने और अल्लाह के दरमियान ताल्लुक को मजबूत करें, इस्तिग़फ़ार को मामूल बनाएं, तौबा को ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, तक़वा इख्तियार कीजिए। अल्लाह ताला फरमाता है कल्ला बल राना अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, यानी उनके अमाल ने उनके दिलों पर जंग चढ़ा दिया, गुनाह आहिस्ता आहिस्ता दिल को सुस्त कर देते हैं, फिर इबादत भारी, कुरान मुश्किल, इल्म बोझ और नेकी की लज्जत खत्म होने लगती है। इमाम शाफी का मशहूर वाकया, इमाम शाफी फरमाते हैं रहमतुल्लाह कि मैंने अपने उस्ताद वकील से हाफिज़े की कमज़ोरी की शिकायत की तो उन्होंने मुझे गुनाहों को छोड़ने की नसीहत की और फिर फरमाया इल्म नूर है और अल्लाह का नूर गुनाहगार को नहीं दिया जाता। सामने कराम, अगर कभी आपको अपनी ज़िंदगी में फतूर महसूस हो, अगर कभी इबादत में लज्जत कम हो जाए, तो उस वक्त ज़रूर अपने दिल को भी परख कर देखिए, अपनी नीयत को भी देखिए, अपने मकसद को, अपने आमाल को देखें, क्योंकि बाज़ औक़ात मसला वक्त का नहीं दिल का होता है। अल्लाह ताला हमें इखलास, इस्तकामत, बुलंद हिम्मत, नाफ़े इल्म, सच्ची तौबा और दायमी तक़वा नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। प्रोग्राम तफ़हीमुल कुरान के आज के इस हलके से साउंड डिज़ाइनर शकीब अहमद और मुझे तलहा अशरफुज़्ज़मान को आइंदा मुलाकात तक के लिए दीजिए इजाज़त। मअस्सलामा।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।
2: हर नबी की जिंदगी एक सबक है, एक रोशनी जो हमें राह दिखाती है। उनकी कुर्बानियां, सब्र और अल्लाह पर यकीन हमें सिखाता है कि मुश्किलें आती हैं मगर ईमान हमेशा जीतता है। स्टोरीज ऑफ प्रॉफिट्स, स्टोरीज ऑफ प्रॉफिट्स, जिसमें आप सुनेंगे नबियों की दिलचस्प कहानियां, उनकी मेहनत, उनके इम्तहान और उनके पैगामात जो दिल को छू लेते हैं। आप भी इस सफर में शामिल हों और इन पाक कहानियों से अपने दिल को रोशन करें।
1: सुनिए शो आरजे महविश खान के साथ हर बुध दोपहर 1 बजे से ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
3: जेंजी की डिक्शनरी में एक वर्ड होता है फोमो, फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट, यानी एहसास कि कुछ तो छूट गया है। पर हम है ना, 2026 का पूरा कैलेंडर, उसमें जो भी इवेंट्स आएंगे आप अपडेटेड रहेंगे। सो नो फोमो एवर अगेन। सुनिए कतर 2026 आरजे फजील के साथ, रहिए अपडेटेड हर ट्यूसडे रात 9 बजे से सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. Dil se Desi.
1: दोस्तों, मसाजिद और आसपास के घरों के करीब गलत पार्किंग ना सिर्फ ट्रैफिक को रोकने का सबब बनती है, बल्कि ये इमरजेंसी व्हीकल्स जैसे एम्बुलेंस, फायर ट्रक्स और पुलिस कार्स के लिए भी बहुत बड़ी रुकावट है। जब इन व्हीकल्स को जल्दी से गुजरना होता है तो किसी भी हादसे का खतरा लाहक बढ़ जाता है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी पार्किंग की आदतों में बेहतरी लाएं और दूसरों के लिए रास्ता खाली रखें। अगर हम थोड़ा सा वक्त निकाल कर अपनी गाड़ी सही जगह पर पार्क करें तो हम सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि अपने इलाके के हर शख्स के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। इस तरह हम अपनी कम्युनिटी को सेफ, ऑर्गेनाइज्ड और पीसफुल बना सकते हैं। हमारी छोटी सी सोच और मेहनत से न सिर्फ ट्रैफिक का मसला हल होगा बल्कि हमें अपनी रिलीजियस और सोशल ड्यूटीज को बेहतर तरीके से अदा करने में मदद मिलेगी। वजारत दाखला का कहना है कि हम सब मिलकर इस मसले को हल करने में अपना हिस्सा डालें और एक ऐसी सोसाइटी का हिस्सा बने जहां सबके लिए रास्ता खुला हो और सेफ्टी पहली तरजीह हो। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
2: ऐ बनी आदम, क्या तुम दुआ का मजाक उड़ाते हो? दुआ को हकीर समझते हो? हालांकि तुम्हें खबर ही नहीं कि दुआ क्या कुछ करती है। ये रात के तीर हैं जो सीधे अपने निशाने पर जा लगते हैं, खता नहीं करते। अलबत्ता उनका एक वक्त मुकर्रर है जिसके बाद उनका असर जाहिर होता है। और दोस्तों, प्रोग्राम आज की दुआ, इसका मकसद हमें याद दिलाना है कि दुआ बंदे का सबसे कीमती हथियार है, दिल का सुकून है और रब से ताल्लुक का सबसे मजबूत रिश्ता है। आइए चंद लम्हों के लिए हम अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगे। समीन, आज की दुआ इब्राहिम अलैहिस्सलाम की है जिन्हें खलीलुल्लाह का लकब दिया गया। ये दुआ नमाज, दुआ की कबूलियत और क़यामत के दिन मग़फ़रत की दरख्वास्त पर मुश्तमिल है। मज़ीद, ये दुआ इब्राहिम अलैहिस्सलाम की है जो अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़े मकासद में से एक मकसद बयान कर रहे थे और वो है नमाज कायम करना। उन्होंने अल्लाह ताला से अर्ज़ की,

0: वो हर टेस्ट की जरूरत नहीं होती, लेकिन अपनी उम्र, फैमिली हिस्ट्री और हेल्थ कंडीशंस के मुताबिक डॉक्टर से पूछना जरूर चाहिए कि कौन से चेकअप जो हैं वो हमारे लिए मुनासिब हैं। ख्वातीन अपनी सेहत को नज़रअंदाज कर देती हैं, उन्हें नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना, और अक्सर ये होता है कि घर, बच्चों और ख़ानदान की जिम्मेदारियों में अपनी सेहत को आखिर में रखती हैं। अगर सर दर्द है तो काम जो है वो जारी रखती हैं, थकन है तो फिर ये सोचती हैं कि अच्छा आराम बाद में कर लेंगे, और कोई अगर हेल्थ चेकअप ड्यू है तो फिर ये कि अगले हफ्ते जो है उस पर डाल दिया जाता है। लेकिन याद रखिए, घर की जिम्मेदारियां निभाने के लिए भी आपका सेहतमंद होना बेहद ज़रूरी है। ख्वातीन को अपनी उम्र और पर्सनल रिस्क के मुताबिक रिकमेंडेड स्क्रीनिंग्स के बारे में अपनी हेल्थ केयर प्रोवाइडर से बात जरूर करनी चाहिए। मर्द हज़रात भी हेल्थ चेकअप को इग्नोर ना करें, क्योंकि मर्द हज़रात में भी एक आम सोच पाई जाती है कि मुझे कुछ नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ख़ास तौर पर जो कोलेस्ट्रॉल है, ब्लड प्रेशर है, ब्लड शुगर जैसे मसाइल बाज़ुकात शुरू में वाज़े सिम्टम्स नहीं देते, उनकी अलामात जो हैं वो सामने नहीं आती। इसलिए सिर्फ इस बुनियाद पे कि मुझे कोई तकलीफ नहीं है, कोई ख़ास मुश्किल नहीं है, तो हर हेल्थ चेकअप को गैर ज़रूरी नहीं समझना। प्रिवेंशन जो है वो भी बेहद ज़रूरी है, और वैक्सीनेशन भी प्रिवेंशन ही है। वैक्सीनेशन का एक अहम हिस्सा प्रिवेंशन, जैसे हमने कहा है, सिर्फ बच्चों की वैक्सीनेशन ही अहम नहीं है, बाज़ वैक्सीन जो हैं बालिग अफराद के लिए भी उम्र, काम, सफ़र और हेल्थ कंडीशंस के मुताबिक ज़रूरी हो सकती हैं। अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर, अपने डॉक्टर से ज़रूर आप पूछिए कि आपके लिए कौन सी जो वैक्सीनेशंस हैं वो ज़रूरी हैं। लाइफ स्टाइल उस पर भी बेहद तवज्जो देने की ज़रूरत है, और ये भी एक प्रिवेंशन है। और ये जो प्रिवेंशन है वो सिर्फ लाइफस्टाइल पर ही महदूद नहीं है। लेबॉर्ट्री और हॉस्पिटल, हम समझते हैं कि सिर्फ वहाँ टेस्ट करवा के हम किसी भी चीज़ से हम जो है वो बच सकते हैं, ये ऐसा नहीं है। आपकी जो रोज़ाना की आदत भी प्रिवेंशन का या बीमारी से बचाव का एक हिस्सा है, जिसमें बैलेंस्ड डाइट, मुनासिब जिस्मानी सरगर्मी, अच्छी नींद, स्मोकिंग से परहेज़, मुनासिब हाइड्रेशन यानी पानी का पीना, और स्ट्रेस को मैनेज करना, ये सब सेहत की हिफाजत में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। और यहाँ एक अहम बात कि आपको हमें अपनी पूरी ज़िंदगी एक दिन में तब्दील करने की ज़रूरत नहीं है, छोटी तब्दीली से शुरू कीजिए। मसलन अगर आप रोज़ाना सॉफ्ट ड्रिंक लेते हैं तो उसकी जगह आप पानी लेना शुरू कर दीजिए। अगर बहुत देर तक बैठते हैं तो हर कुछ देर के बाद उठकर आप चलिए, और अगर नींद की रूटीन ख़राब है तो सोने और जागने का वक्त बेहतर करने की कोशिश कीजिए। आज जब ये हम बात कर रहे हैं तो उसमें तीन सवाल अपने आप से करना बेहद ज़रूरी है कि मेरा आखिरी चेकअप कब हुआ था, क्या मेरी कोई रिकमेंडेड स्क्रीनिंग या वैक्सीनेशन ड्यू है, और तीसरा ये कि मैं अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कौन सी एक हेल्थ हैबिट बेहतर कर सकता हूँ। सिर्फ एक चीज़ मुंतखब कीजिए, क्योंकि सेहत की हिफाजत बड़े फैसलों से नहीं, अक्सर छोटे छोटे रोज़ाना के फैसलों से शुरू होती है। लिसनर्स, बीमारी आने का इंतज़ार न कीजिए, अपनी सेहत को समझिए, और इस तरह कि सेहत सिर्फ बीमारी ना होने का नाम नहीं है, बल्कि अपनी हेल्थ के बारे में बाखबर और जिम्मेदार होने का नाम भी है। योर हेल्थ मैटर्स, अपना ख्याल रखिए, सेहतमंद रहिए।
1: Maximum music, maximum fun.
2: On FM 107, Dil Se Desi.

0: अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं कल्चर मोमेंट। मैं हूं आपकी आरजे महावश। इस 5 मिनट के सफर में हम बात करेंगे कतर की खूबसूरत सकाफत, रिवायत और विरसे की। यहाँ हर रस्म, हर लिबास, हर खाने और हर मेहमान नवाजी के पीछे एक प्यारी सी कहानी होती है। आइए मिलकर कतर की सकाफत को समझें, महसूस करें और इस विरसे को अगली नस्लों तक पहुँचाने का अहद करें। शादियों की खूबसूरत रिवायात में मेहंदी की रात को खास अहमियत हासिल है। ये खुशी, तैयारी और अपनों के साथ मिल बैठने का प्यारा मौका होता है। इस महफिल में खवातीन और बच्चियां जमा होती हैं, एक दूसरे से बात करती हैं और दुल्हन की खुशी में शरीक होती हैं। मेहंदी का रंग सदियों से खवातीन के लिबास और जीनत का हिस्सा रहा है। कदरी शादी में मेहंदी लगाना सिर्फ सजावट का अमल नहीं बल्कि खुसूसी जज्बाती लम्हा भी होता है। दुल्हन के हाथों में नक्श बनाए जाते हैं और घर की ख्वातीन उसके लिए दुआएं और नेक ख्वाहिशात करती हैं। मेहंदी रिवायती तौर पर महफिल की सूरत में होती है। घर को खूबसूरत तरीके से सजाया जाता है और मेहमानों के लिए आराम का इंतजाम किया जाता है। सजावट में रंग, रोशनी और फूलों का इस्तेमाल किया जा सकता है। मकसद एक ऐसा पुरखुशुश माहौल बनाना होता है जहां सब लोग सुकून और अपनाइत महसूस करें। दुल्हन इस मौके के लिए खास लिबास का इंतखाब करती है। लिबास के रंग, कढ़ाई और लवाजमात को अक्सर मेहंदी की खुशगवार फिजा के मुताबिक मुंतखब किया जाता है। खूबसूरत लिबास और नफीस जीनत महफिल की रौनक बढ़ाते हैं। मेहंदी लगाने वाली खवातीन, जिन्हें आमतौर पर मेहंदी आर्टिस्ट कहा जाता है, बारीक नक्श बनाती हैं। ये नक्श फूलों, पत्तियों और मुख्तलिफ सजावटी शक्लों में होते हैं। हर नक्श अपनी खूबसूरती और हुनरमंदी की वजह से खास नजर आता है। इस महफिल की सबसे बड़ी खूबसूरती अपनों का साथ होता है। माँ, बहनें, खाला, फूफियाँ और दोस्त दुल्हन के साथ वक्त गुजारते हैं। बातचीत, मुस्कुराहट और खुशी के लम्हात मेहंदी की रात को यादगार बना देते हैं। बुजुर्ग खवातीन इस मौके पर अपने तजुर्बात और यादें शेयर करती हैं। वो नई नस्ल को शादी के आदाब और खानदानी रिवायत के बारे में बताती हैं। इसी तरह मेहंदी की महफिल सिर्फ खुशी का मौका नहीं रहती बल्कि खानदानी राब्तों और वर्से को आगे बढ़ाने का मौका भी बन जाती है। मेहंदी की महफिल में मेहमानों के लिए खाने और मशरूबात का इंतजाम किया जाता है। मिठाई, खजूर, कहवा और दूसरी पसंदीदा चीजें पेश की जा सकती हैं। खाना और खुशबू महफिल के एहसास को और दिलकश बना देते हैं। मेहमानों को खुशी से खाना पेश करना और उनकी राहत का ख्याल रखना कतरी मेहमान नवाजी का हिस्सा है। जरूरी नहीं कि पेशकश बहुत ज्यादा हो, दिल से की गई तवज्जो और खुलूस ही महफिल की असल खूबसूरती होता है। कुछ मेहंदी की महफिलों में रिवायती गीत या खुशी के तराने भी शामिल होते हैं। आवाज, ताल और तकरीब के आदाब मिलकर महफिल में रौनक पैदा कर देते हैं। ऐसी सरगर्मियों का मकसद खुशी का इजहार करना, सबको एक साथ शामिल करना होता है। महफिल में हर शख्स की राहत और पसंद का ख्याल रखना अहम है। एक दूसरे के एहतराम को हमेशा तरजीह दी जाती है। आज के कतर में मेहंदी की महफिलें रिवायती और जदीद दोनों अंदाज में देखी जा सकती हैं। कुछ खानदान सादा और खानदानी अंदाज पसंद करते हैं जबकि कुछ लोग सजावट और इंतजाम में नए तरीके शामिल करते हैं। दोनों अंदाज में असल अहमियत मोहब्बत, खानदानी शिरकत और खुशी बांटने की होती है। जदीद मेहंदी में पेशावर डिजाइनर्स और मुख्तलिफ सकाफती अंदाज शामिल हो सकते हैं लेकिन दुल्हन और खानदान के लिए इस मौके की जज्बाती अहमियत कायम रहती है। मेहंदी की रिवायत नई नस्ल को सिखाती है कि सकाफत सिर्फ चीजों का नाम नहीं होती बल्कि उन लम्हात का भी नाम होती है जो लोग मिलकर पैदा करते हैं। किसी बुजुर्ग से नक्श का मतलब पूछना, मेहंदी के हुनर को समझना या खानदानी कहानियां सुनना वर्से से जुड़ने का खूबसूरत तरीका है। मेहंदी की रात हमें ये भी याद दिलाती है कि खुशी तब ज्यादा हसीन होती है जब अपनों के साथ शेयर की जाए। इसमें खानदानी मोहब्बत, दुआएं, मुस्कुराहट और नई जिंदगी के लिए उम्मीद शामिल होती है। आज के कल्चर मोमेंट का पैगाम यह है कि कतरी मेहंदी की महफिल सिर्फ हाथों को सजाने का मौका नहीं बल्कि रिश्तों को मजबूत करने اور خوشی کو مل جل کر منانے کی خوبصورت روایت ہے۔ مہندی کا رنگ چند دن رہتا ہے لیکن اس سے جڑی یادیں اکثر زندگی بھر ساتھ رہتی ہیں۔ تو لسنرز، آج کے کلچر مومنٹ کو یہی مکمل کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، ثقافت صرف گزرے ہوئے وقت کا نام نہیں بلکہ ہماری روزمرہ زندگی کا خوبصورت حصہ ہے۔ میں ہوں آپ کی آرجے مہوش، اگلی ملاقات تک اپنا خیال رکھیے اور قطر کی خوبصورت ثقافت کو ہمیشہ عزت اور محبت کے ساتھ یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔
1: قطر کا پہلا دیسی ریڈیو اسٹیشن FM 107، دل سے دیسی۔

अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के स्पोर्ट्स हाइलाइट्स में हम बात एक ऐसे पाकिस्तानी हॉकी लेजेंड की करेंगे जिन्होंने अपनी स्पीड, स्किल, गोल स्कोरिंग एबिलिटी और अटैकिंग स्टाइल से दुनिया भर में अपना नाम बनाया। एक ऐसा खिलाड़ी जो पाकिस्तान हॉकी के गोल्डन एरा की पहचान बना और वो नाम है हसन सरदार। 22 अक्टूबर 1957 को कराची में पैदा होने वाले हसन सरदार को पाकिस्तान के ग्रेटेस्ट सेंटर फॉरवर्ड्स में शुमार किया जाता है। उनका इंटरनेशनल करियर 1979 में शुरू हुआ और 1987 तक जारी रहा। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान के लिए 148 इंटरनेशनल मैचेस खेले और 150 गोल स्कोर किए, यानी उनका स्कोरिंग एवरेज एक मैच से भी ज्यादा गोल कर रहा है, जो अपने आप में उनकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी गोल स्कोरिंग एबिलिटी का सबूत है। हॉकी में हसन सरदार इज अ लेजेंड। आज भी कोई भी चर्चा हो, हसन सरदार इज अ रेफरल पॉइंट। हसन सरदार का नाम सबसे ज्यादा पाकिस्तान के हॉकी के गोल्डन एरा के साथ जुड़ा हुआ है। उनकी सबसे यादगार परफॉर्मेंसेस में 1982 हॉकी वर्ल्ड कप शामिल है, जो बॉम्बे यानी आज के मुंबई शहर में खेला गया था। पाकिस्तान ने टूर्नामेंट जीता और हसन सरदार ने जबरदस्त परफॉर्मेंस देते हुए टूर्नामेंट के लीडिंग गोल स्कोरर का मकाम हासिल किया और उन्होंने वर्ल्ड कप में 11 गोल स्कोर किए और उन्हें मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी करार दिया गया। अच्छा, हसन सरदार 1982 के लिए खास तौर पर कामयाब रहा। अगर देखा जाए, पाकिस्तान ने इसी दौर में वर्ल्ड कप और एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीते और स्पेशली जो दिल्ली में हुआ था 1982 का एशियन गेम्स फाइनल, हॉकी फाइनल की बात करो दोस्तों, और इंडिया को एक के मुकाबले में 7 गोल से पाकिस्तान की टीम ने मात दी थी, एंड दैट वॉज अ क्लासिकल मैच। हसन सरदार पाकिस्तान की लेजेंडरी फॉरवर्ड लाइन का अहम हिस्सा थे और जहां उनके साथ समीउल्लाह खान, कलीमुल्लाह खान, ये दोनों भाई थे, हनीफ खान और मंजूर हुसैन जैसे ऐसे मशहूर मारूफ खिलाड़ी मौजूद थे। पाकिस्तान टीम वाज अ ट्रूली ग्रेट टीम ड्यूरिंग दैट एरा। एंड हसन सरदार की सबसे बड़ी कामयाबी 1984 लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में सामने आई। पाकिस्तान ने हॉकी में गोल्ड मेडल जीता और हसन सरदार इस हिस्टोरिक टीम का हिस्सा थे। ओलंपिक्स में उन्होंने 7 मैचेस में 10 गोल स्कोर किए, जो उनकी अटैकिंग क्वालिटी को जाहिर करता है। और इसके बाद 1984 ओलंपिक्स में पाकिस्तान का सफर भी शानदार रहा। टीम ने केनिया को 3-0, कनाडा को

टूर्नामेंट्स के फाइनल्स में भी अपनी टीम के लिए परफॉर्म करते थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने 1982 वर्ल्ड कप, 1982 एशिया कप, 1982 एशियन गेम्स और 1984 ओलंपिक्स के फाइनल्स में भी गोल स्कोर किया, एंड दैट्स अ रिकॉर्ड, दैट्स अ रिकॉर्ड। 1985 एशियन कप में भी हसन सरदार पाकिस्तान के टॉप स्कोरर्स में शामिल रहे और उन्होंने टूर्नामेंट में 10 गोल्स स्कोर किए और पाकिस्तान को टाइटल जीतने में अहम कंट्रीब्यूशन दिया। और अगर सिर्फ नंबर्स की बात करें तो हसन सरदार के करियर के आंकड़े वाकई हैरान कुन है। 148 इंटरनेशनल अपीयरेंसेस और 150 गोल्स, पाकिस्तान के इंटरनेशनल हॉकी गोल स्कोरर्स की लिस्ट में वो हिस्टोरिकली टॉप प्लेयर्स में शुमार होते हैं। लेकिन दोस्तों, हमेशा मैं यही कहता हूं कि किसी भी खिलाड़ी की ग्रेटनेस सिर्फ स्टैटिस्टिक्स तक महदूद नहीं है और बात यहां पर हसन सरदार की हो रही है। एंड डेफिनेटली स्टैटिस्टिक्स कैन नॉट एनालाइज, कैन नॉट इवन इवेलुएट कि क्या ग्रेट प्लेयर रहे हैं अपने जमाने में। उनकी असली पहचान उनका ग्रेसफुल प्लेइंग स्टाइल, बॉल कंट्रोल, स्पीड, फिनिशिंग और गोल के सामने बेहतरीन पोजीशन थी। जिन्होंने देखा वो वाह वाह करते रहे हैं और जिन्होंने नहीं देखा वो कहते होंगे कि यार हसन सरदार क्या खिलाड़ी थे। आज वो सोशल मीडिया पर बैठ के, हो सकता है कि इस प्रोग्राम को सुनने के बाद आप लोग भी सोशल मीडिया पे हसन सरदार का नाम को सर्च मारिए और आपको पता चलेगा कि व्हाट अ क्लासी हॉकी प्लेयर ही वाज। अगर यू नो आप स्पोर्ट्स लाइक करते हैं, नॉट जस्ट क्रिकेट की बात होती है, हॉकी की बात होती है, एक जमाना पहले हॉकी एंड इंडिया और पाकिस्तान ये एक सिनोनिमस रहा है, हॉकी इंडिया और पाकिस्तान, दे डोमिनेटेड द वर्ल्ड हॉकी। और हसन सरदार, जफर इकबाल, मोहम्मद शाहिद, ये जितने भी खिलाड़ी थे दे वेर आर्ट, दे वेर आर्टिस्ट ऑन द फील्ड। एंड उनको देखने के लिए भरपूर दर्शक या ऑडियंस, फैंस जो है वो स्टेडियम पर उमड़ पड़ते थे, एंड दैट वाज द मैजिक दैट दीज गाइज क्रिएटेड। और हसन सरदार वाज वन ऑफ द लीडिंग स्टार्स ड्यूरिंग दैट एरा। अच्छा, रिटायरमेंट के बाद हसन सरदार ने पाकिस्तान हॉकी में एडमिनिस्ट्रेटिव और कोचिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी संभाली और नेशनल टीम के कप्तान और चीफ सेलेक्टर के तौर पर भी अपना किरदार अदा किया। दोस्तों, पाकिस्तान हॉकी की तारीख में कुछ नाम ऐसे हैं जो सिर्फ प्लेयर्स नहीं बल्कि एक पूरे दौर की पहचान बन जाते हैं। हसन सरदार भी उन्हीं लेजेंड्स में से एक है। उम्मीद है आपको हमारा आज का ये स्पोर्ट्स सेगमेंट पसंद आया होगा। अगली बार एक और स्पोर्ट्स लेजेंड, एक और अपकमिंग स्टार्स के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीर और साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।

आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।

FM 107 से अब पेश खिदमत है तिलावत कलाम पाक। मतलूआ आयात का उर्दू तर्जुमा तिलावत के फौरन बाद पेश किया जाएगा।

जाएंगे तो हमें जजा और सजा दी जाएगी। अब क्या आप लोग देखना चाहते हैं कि वो साहब अब कहाँ हैं? ये कहकर जूं ही वो झुकेगा तो जहन्नम की गहराई में उसको देख लेगा और उससे खिताब करके कहेगा, खुदा की कसम तू तो मुझे तबाह ही कर देने वाला था, मेरे रब का फजल शामिल हाल न होता तो आज मैं भी उन लोगों में से होता जो पकड़े हुए आए हैं। अच्छा तो क्या अब हम मरने वाले नहीं हैं? मौत जो हमें आनी थी वो बस पहले आ चुकी, अब हमें कोई आजाब नहीं होना। यकीनन यही अजीम शान कामयाबी है। ऐसी ही कामयाबी के लिए अमल करने वालों को अमल करना चाहिए। बोलो, ये ज़ियाफ़त अच्छी है या ज़क़ूम का दरख्त? हमने उस दरख्त को ज़ालिमों के लिए फितना बना दिया है। वो एक दरख्त है जो जहन्नम की तह से निकलता है, उसके शगूफे ऐसे हैं जैसे शैतानों के सर। जहन्नम के लोग उसे खाएंगे और उसी से पेट भरेंगे, फिर उस पर पीने के लिए उनको खौलता हुआ पानी मिलेगा और उसके बाद उनकी वापसी उसी आतशे दोजख की तरफ होगी। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने बाप दादा को गुमराह पाया और उन्हीं के नक्शे कदम पर दौड़ चले, हालांकि उनसे पहले बहुत से लोग गुमराह हो चुके थे और उनमें हमने तंबीह करने वाले रसूल भेजे थे। अब देख लो कि उन तंबीह किए जाने वाले लोगों का क्या अंजाम हुआ। इस बद अंजामी से बस अल्लाह के वही बंदे बचे हैं जिन्हें उसने अपने लिए खालिस कर लिया है।

हमको इससे पहले नूह ने पुकारा था, तो देखो हम कैसे अच्छे जवाब देने वाले थे। हमने उसको और उसके घर वालों को कर्बे आजीम से बचा लिया और उसी की नस्ल को बाकी रखा और बाद की नस्लों में उसकी तारीफ और तौसीफ छोड़ दी। सलाम है नूह पर तमाम दुनिया वालों में। हम नेकी करने वालों को ऐसी ही जजा दिया करते हैं। दरहकीकत वो हमारे मोमिन बंदों में से था। फिर दूसरे ग्रोह को हमने गर्क कर दिया और नूह ही के तरीके पर चलने वाला इब्राहिम था। जब वो अपने रब के हुजूर कल्ब सलीम लेकर आया, जब उसने अपने बाप और अपनी कौम से कहा, ये क्या चीजें हैं जिनकी तुम इबादत कर रहे हो, क्या अल्लाह को छोड़कर झूठ घड़े हुए माबूद चाहते हो, आखिर रब्बुल आलमीन के बारे में तुम्हारा क्या गुमान है। फिर उसने तारों पर एक निगाह डाली और कहा, मेरी तबीयत खराब है। चुनांचे वो लोग उसे छोड़कर चले गए। उनके पीछे वो चुपके से उनके माबूदों के मंदिर में घुस गया और बोला, आप लोग खाते क्यों नहीं हैं? क्या हो गया, आप लोग बोलते भी नहीं? इसके बाद वो उन पर पिल पड़ा और सीधे हाथ से खूब जरबे लगाई। वापस आकर वो लोग भागे भागे उसके पास आए। उसने कहा, क्या तुम अपनी ही तराशी हुई चीजों को पूजते हो, हालांकि अल्लाह ही ने तुमको भी पैदा किया है और उन चीजों को भी जिन्हें तुम बनाते हो। उन्होंने आपस में कहा कि इसके लिए एक अलाव तैयार करो और इसे दहकती हुई आग के ढेर में फेंक दो। उन्होंने उसके खिलाफ एक कार्रवाई करनी चाही थी, मगर हमने उन्हीं को नीचा कर दिखाया।

इब्राहिम ने कहा, मैं अपने रब की तरफ जाता हूँ, वही मेरी रहनुमाई करेगा। ऐ परवरदिगार, मुझे एक बेटा अता कर जो सालेहों में से हो। इस दुआ के जवाब में हमने उसको एक हलीम बुर्दबार लड़के की बशारत दी। वो लड़का जब उसके साथ दौड़ धूप करने की उम्र को पहुंच गया तो एक रोज इब्राहिम ने उससे कहा, बेटा मैं ख्वाब में देखता हूं कि मैं तुझे ज़िबह कर रहा हूं, अब तू बता तेरा क्या ख्याल है। उसने कहा, अब्बा जान, जो कुछ आपको हुक्म दिया जा रहा है उसे कर डालिए, आप इंशा अल्लाह मुझे साबिरों में से पाएंगे। आखिर को जब उन दोनों ने सरे तस्लीम खम कर दिया और इब्राहिम ने बेटे को माथे के बल गिरा दिया और हमने निदा दी कि ऐ इब्राहिम, तूने ख्वाब सच कर दिखाया, हम नेकी करने वालों को ऐसी ही जजा देते हैं। यकीनन ये एक खुली आजमाइश थी और हमने एक बड़ी कुर्बानी फिदिये में देकर उस बच्चे को छुड़ा लिया और उसकी तारीफ और तौसीफ हमेशा के लिए बाद की नस्लों में छोड़ दी। सलाम है इब्राहिम पर, हम नेकी करने वालों को ऐसी ही जजा देते हैं। यकीनन वो हमारे मोमिन बंदों में से था और हमने उसे इसहाक की बशारत दी, एक नबी सालहीन में से, और उसे और इसहाक को बरकत दी। अब उन दोनों की जुर्रियत में से कोई मोहसिन है और कोई अपने नफ्स पर सरीह जुल्म करने वाला है। और हमने मूसा और हारून पर एहसान किया, उनको और उनकी कौम को कर्बे अजीम से नजात दी, उन्हें नुसरत बख्शी जिसकी वजह से वही गालिब रहे, उनको निहायत वाज़ह किताब अता की, उन्हें राह रास्त दिखाई और बाद की नस्लों में उनका जिक्र खैर बाकी रखा। सलाम है मूसा और हारून पर, हम नेकी करने वालों को ऐसी ही जजा देते हैं, दरहकीकत वो हमारे मोमिन बंदों में से थे।